0: नॉनस्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक मनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भूशाला है। वही भूशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भूशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भूशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं भूशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंभे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भूशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भूशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंभे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंभों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंभे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भूशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भूशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे, पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जिसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो लेकर के भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया।
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भोजशाला अब अधूरी नहीं, पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है। हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
6: फैसले को देखते हो और कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
7: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
6: आप क्या करेंगे? आप
7: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग्देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
8: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
9: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
10: बाहर का तो एक और कमाल मौला
9: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए
11: सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
4: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
11: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
4: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
12: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता।
4: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
13: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
4: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज नीदरलैंड से स्वीडन के लिए रवाना प्रधानमंत्री। इससे पहले भारत नीदरलैंड के बीच कई करार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक नीदरलैंड। राजा रानी से भी मिले प्रधानमंत्री। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला। एविएशन सेक्टर को दी गई बड़ी राहत। विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया गया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी। आतंकियों को पनाह देने से बाज आए, वरना तय कर लें कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे चीन। 19 मई को रूसी राष्ट्रपति को 2 दिवसीय बीजिंग दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। नीदरलैंड्स दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें व्यापार, निवेश, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों ही देशों ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी और को मजबूत करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात की है। भारत और नीदरलैंड्स के संबंधों को ऐतिहासिक और रणनीतिक भी बताया। इस दौरान भारत यूरोप की ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एफटीए को लेकर भी चर्चा को आगे बढ़ाने पर जोर देता नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और विकास यात्रा पर भी बात की। ये दौरा भारत यूरोप संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। और अब आपको बता दें कि आगे प्रधानमंत्री स्वीडन रवाना हो जाएंगे, जहां वो स्टॉकहोम में प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो नॉर्वे और उसके बाद पहुंचेंगे इटली, जहां रक्षा, क्लाइमेट एक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार सहयोग पर अहम फैसले प्रस्तावित हैं।

0: नीदरलैंड्स के एक शहर में आयोजित सीईओ राउंड टेबल बैठक में दोनों ही देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ा साझा रोडमैप तैयार करने की बात की गई है। इसके साथ ही तकनीक से जुड़े कई अहम पहलुओं पर भी करार हुए। तो नीदरलैंड्स भारत की साझेदारी का के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, भारत प्रोडक्शन हब बनने के लिए तैयार है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री की कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन और तकनीक पर करार किया गया है नीदरलैंड्स की तरफ के साथ भारत की तरफ से। 11वीं सदी की धरोहर भारत लौटेगी, ये भी प्रधानमंत्री ने यहां से अश्योर किया है। भारत में निवेश का सही समय है ये, और ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र किया।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: तो प्रधानमंत्री मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का जिक्र भी करते नजर आए, साथ ही साथ तो उस झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की जो बंगाल चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बन गई थी।
0: साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नेट पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली की अदालत ने कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और आरोपी मनीषा बागमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई का दावा यह है कि पीवी कुलकर्णी नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और उसे पेपर तक सीधी पहुंच थी उसकी। आपको यह भी बता दें कि जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर चुनिंदा छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई थी, जहां उसने कथित तौर पर वही सवाल और जवाब डिटेक्ट किए जो बाद में असली नीट परीक्षा में पूछे गए थे। सीबीआई का कहना यह भी है कि छात्रों को नोटबुक में लिखे हुए सवाल हूबहू असली पेपर से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं, असली पेपर से मेल खाते हैं वो। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पूरे नेटवर्क की और बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए आरोपियों से लंबी पूछताछ जरूरी है। इससे पहले धनंजय लोखंडे समेत कई अन्य आरोपियों को भी सीबीआई रिमांड पर भेजा जा चुका है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था और अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जांच लगातार जारी है। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की बात कही है। सीबीआई ने बॉटनी की एक सीनियर अध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुणे के एक कॉलेज में टीचर है। बताया जा रहा है कि मनीषा मंधारे बायोलॉजी के सवालों को लीक कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात यह कि मनीषा भी नीट के पेपर बनाने वाली टीम में विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त की गई थी। उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी की पूरी पहुंच थी। मंधारे ने पुणे की संभावित उम्मीदवारों को जुटाया था और अपने पुणे स्थित आवास पर इन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं भी आयोजित की थी। इन एग्जाम्स में इन कक्षाओं के दौरान बॉटनी और जूलॉजी के विषयों पर विभिन्न सवालों को समझाया गया था, बताया गया था। छात्रों से उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने और अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी चिन्हित करने के लिए इन्होंने कहा था। इनमें से अधिकांश सवाल जो है वो जो 3 तारीख को आयोजित हुई थी नीट यूजी की परीक्षा, उसमें पूछे गए थे, तमाम ये सवाल मेल खाते हैं। 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाशी ली थी, छापेमारी की थी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक विवरण और साथ ही साथ मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे। जब्त की गई चीजों की जांच लगातार जारी है। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार होती जा रही है। पुणे में प्रोफेसर मनीषा मन्हारे की पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके आवास पर भी छानबीन की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में मन्हारे और अन्य आरोपियों के बीच गहरा कनेक्शन सामने आ चुका है। आरोपी भी है कि कुलकर्णी और मन्हारे ने मिलकर पेपर सेटिंग से जुड़े सिस्टम का दुरुपयोग किया और कुछ विषयों के प्रश्न अलग अलग चैनल्स के जरिए लीक कर डाले। ये भी सामने आया है कि कोचिंग और निजी संपर्कों के जरिए यही सवाल छात्रों तक पहुंचा दिए गए। सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि इस बड़े पेपर लीक रैकेट का खुलासा किया जा सके। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा है कि 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद कर दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा से 2 दिन पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर बांटे जा रहे थे और फिर भी सरकार कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम रही। राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तुरंत बर्खास्त करें या फिर खुद इसकी जिम्मेदारी लें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी आरएसएस का गठजोड़ देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है और विश्वविद्यालयों में योग्यता की नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में अब तक 80 बार पेपर लीक हो चुके हैं और करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। उन्होंने दोषियों को जेल भेजने की भी मांग की है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
1: तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी ने सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि लगातार पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूट रहा है, छात्र आत्महत्या तक कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष ने आरोप ये भी लगाए कि सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है और साथ ही साथ नीट दोबारा कराने और पूरे नेटवर्क को निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है। तो वाकई में बहुत गंभीर मामला है और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्जाम की जो परीक्षा पेपर हैं वो लीक हुए हों और इसी को लेकर विपक्ष एकजुट होकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस पर सरकार के एक्शंस क्या हैं और क्यों कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। नीट पेपर लीक पर एम्स, आपको बता दें कि एमआईएम के नेता हैं वारिस पठान और धर्मेंद्र प्रधान से लगातार उन्होंने कई सवाल पूछे हैं, क्या उनकी तरफ से कहा गया है जरा देखिए।
3: देखिए ये बहुत ही गंभीर अफसोसजनक बात है कि नीट का इस तरह से जो पेपर है वो लीक हो रहा है। इसकी पूरी पूरी जवाबदारी सरकार की बनती है। सरकार ने 23 लाख स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप। अरे आप चुपचाप चले जाओगे और ये स्टूडेंट जिन्होंने पैसा भरा है, जिन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, कौन जवाबदारी तय करेगा उनसे? इस तरह पेपर लीक होते जा रहे हैं।
1: तो नीट के मामले पर भड़के रामदास अठावले, और आपको यह भी बता दें कि उन्होंने भी कहा है कि गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: मुझे लगता है कि जो पीवी कुलकर्णी है लातूर में रहने वाली थी और नीट एग्जाम में जो पेपर पब्लिश हुई है तो नीट एग्जाम में भी बार बार इसी तरह की न्यूज सुनने के लिए मिलती है और उसमें महाराष्ट्र से मतलब कुलकर्णी नाम के आदमी का भी उसमें बड़ा रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैक मेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
1: तो नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए सवालों के घेरे में आ चुकी है क्योंकि अब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था जिसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
5: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
6: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
5: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला? दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था, जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
6: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
5: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर। हाई कोर्ट के फैसले के बाद माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने भोजशाला के गर्भगृह में पूजा अर्चना और संध्या आरती करके इसे मंदिर के रूप में पुनर्स्थापित करने की बात कही है। स्थल अब मां सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और दिन भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे पूजा अर्चना की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को बताया है एक तरफा और विरोध जता दिया गया है। उनका कहना यह है कि अदालत ने उनके पक्ष की दलीलों और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और सर्वे रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। फिलहाल भोजशाला परिसर में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर है।

0: Yutsun. You just... ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा
1: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है
0: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया
1: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है
0: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है ये कोई मस्जिद नहीं मंदिर है हिंदुओं का पवित्र स्थल है इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी बिना किसी पाबंदी के होगी विधि विधान से होगी क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद हाई कोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं
2: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो
3: बहुत बहुत अच्छा फैसला है न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में

0: ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
1: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
2: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
1: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
3: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
5: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या है अधिक मास का पूजा विधान, अधिक मास में कैसे करेंगे उपासना और कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
6: Are you wondering how you can fit a teaching degree into a busy lifestyle? WGU's Bachelor of Arts in Elementary Education degree program is designed for working adults. With our competency-based curriculum model, you can progress through courses as soon as you prove mastery of the material. No rigid seat or class times. No endless waiting for your teaching dream to begin. Just a degree that fits your schedule. Get classroom ready on your time. Learn more at wgu.edu.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
11: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप
12: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
13: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
14: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
12: शुभेंदु अधिकारी,
11: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
15: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
16: अनुपम मिश्र,
17: मोहम्मद भारद्वाज,
18: पीयूष मिश्रा,
19: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: काम आसान बनाने आई टेक्नोलॉजी अब काम छीनने लगी है और यही बदलाव धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने कंपनियों की स्पीड बढ़ाई है, खर्च घटाया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा खतरा भी खड़ा हो गया है जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। एक नई स्टडी में इस खतरे को ऑटोमेशन ट्रैप नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार कंपनीज AI के जरिए लागत घटा रही हैं, लेकिन छटनी होने पर लोगों की कमाई भी घटती है, जिससे बाजार में कुल खर्च कम होने लगता है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से कंपनीज फायदा कमा रही हैं, वही आगे चलकर उनके बिजनेस पर दबाव बना सकती है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनीज चाहकर भी इस रेस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसकी वजह है कि एक कंपनी ऑटोमेशन करती है तो बाकी को भी करना पड़ता है। ये ऑटोमेशन आर्म्स रेस बन चुकी है, जिसके असर से जरूरत से ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। इसका असर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कम नौकरियां मतलब कम सैलरी, और कम सैलरी का सीधा असर बाजार की डिमांड पर दिखता है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस पर असर पड़ सकता है। जमीन पर भी इसके संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल 2025 में 1,00,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हुई। इनमें आधे से ज्यादा मामलों में AI नौकरी जाने की वजह रही। 2026 में तो महज 4 महीने में ही 92,000 से ज्यादा लोग नौकरी गंवा चुके हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ताकतवर होगा और कंपनीज के बीच मुकाबला बढ़ेगा, ये समस्या और गहरा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई तरीके भी सुझाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं UBI, रीस्किलिंग और कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देना, ऑटोमेशन पर खास टैक्स लगाने का सुझाव जिससे कंपनीज छटनी के असर को भी ध्यान में रखें। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ये कदम पूरी समस्या को सुलझा नहीं पाते, यानी टेक्नोलॉजी की दौड़ में संतुलन बनाए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। AI ने काम करने का तरीका तो बदल दिया है, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो कमाता भी है और खर्च भी करता है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

नीदरलैंड से स्वीडन रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी. इससे पहले भारत नीदरलैंड के बीच हुए कई करार. प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित. नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा. मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे. धार बोधशाला केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा मुस्लिम पक्ष. पर्सनल बोर्ड ने कहा कानूनी लड़ाई के लिए तैयार. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने परिसर को माना है हिंदू मंदिर. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी. आतंकवादियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले कि इतिहास बनना है या भूगोल में रहना है. और ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे चीन 19 मई को. रूस के राष्ट्रपति का 2 दिवसीय बीजिंग दौरा. दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा. नीदरलैंड्स दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है जिसमें व्यापार, निवेश, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. दोनों ही देशों ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी और को मजबूत करने पर सहमति जताई है. प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के किंग विलियम एलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात की है. भारत और नीदरलैंड्स के संबंधों को ऐतिहासिक और रणनीतिक भी बताया. इस दौरान भारत यूरोप की ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एफटीए को लेकर भी चर्चा को आगे बढ़ाने पर जोर देता नजर आया. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की जहां उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और विकास यात्रा पर भी बात की. ये दौरा भारत यूरोप संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. और अब आपको बता दें कि आगे प्रधानमंत्री स्वीडन रवाना हो जाएंगे जहां वो स्टॉकहोम में प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वो नॉर्वे और उसके बाद पहुंचेंगे इटली जहां रक्षा, क्लाइमेट एक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार सहयोग पर अहम फैसले प्रस्तावित हैं.

0: तो प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र किया।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनाव और उससे मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी उन्होंने वहां जिक्र किया, साथ ही साथ उस झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की जो बंगाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था।
0: जो भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: एक मामले में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली की अदालत ने कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और आरोपी मनीषा बागमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई का दावा यह है कि पीवी कुलकर्णी नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और उसे पेपर तक सीधी पहुंच थी उसकी। आपको ये भी बता दें कि जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर चुनिंदा छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई थी, जहां उसने कथित तौर पर वही सवाल और जवाब डिटेक्ट किए जो बाद में असली नीट परीक्षा में पूछे गए थे। सीबीआई का कहना यह भी है कि छात्रों को नोटबुक में लिखे हुए सवाल हूबहू असली पेपर से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं, असली पेपर से मेल खाते हैं वो। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि पूरे नेटवर्क की और बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए आरोपियों से लंबी पूछताछ जरूरी है। इससे पहले धनंजय लोखंडे समेत कई अन्य आरोपियों को भी सीबीआई रिमांड पर भेजा जा चुका है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था और अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जांच लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की बात कही है। सीबीआई ने बॉटनी की एक सीनियर अध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुणे के एक कॉलेज में टीचर है। बताया जा रहा है कि मनीषा मंधारे बायोलॉजी के सवालों को लीक कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात यह कि मनीषा भी नीट के पेपर बनाने वाली टीम में विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त की गई थी। उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी की पूरी पहुंच थी। मंधारे ने पुणे की संभावित उम्मीदवारों को जुटाया था और अपने पुणे स्थित आवास पर इन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं भी आयोजित की थी। इन एग्जाम्स में इन कक्षाओं के दौरान बॉटनी और जूलॉजी के विषयों पर विभिन्न सवालों को समझाया गया था, बताया गया था। छात्रों से उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने और अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी चिन्हित करने के लिए इन्होंने कहा था। इनमें से अधिकांश सवाल जो है वो जो 3 तारीख को आयोजित हुई थी नीट यूजी की परीक्षा, उसमें पूछे गए थे, तमाम ये सवाल मेल खाते हैं। 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाशी ली थी, छापेमारी की थी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक विवरण और साथ ही साथ मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे। जब्त की गई चीजों की जांच लगातार जारी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा है कि 22 लाख छात्रों की मेहनत को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक पूरी तरह से खामोश हैं, चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा से 2 दिन पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर बांटे जा रहे थे, फिर भी सरकार कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम रही। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तुरंत ही बर्खास्त कर दें या फिर खुद इसकी जिम्मेदारी लें। आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी आरएसएस का गठजोड़ देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है और विश्वविद्यालयों में योग्यता नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में अब तक 80 बार पेपर लीक हो चुके हैं और करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। उन्होंने दोषियों को जेल भेजने की मांग की।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
1: तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी ने सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि लगातार पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूट रहा है, छात्र आत्महत्या तक कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष ने आरोप ये भी लगाया कि सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है और साथ ही साथ नीट दोबारा कराने और पूरे नेटवर्क को निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है। तो वाकई में बहुत गंभीर मामला है और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्जाम की जो परीक्षा पेपर है वो लीक हुए हों, और इसी को लेकर विपक्ष एकजुट होकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस पर सरकार के एक्शंस क्या हैं और क्यों कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। नीट पेपर लीक मामले पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी धर्मेंद्र प्रधान को घेरा। उन्होंने कहा कि सवालों से शिक्षा मंत्री भाग रहे हैं।
3: बहुत ही गंभीर अफसोसजनक बात है कि नीट का इस तरह से जो पेपर है वो लीक हो रहा है। इसकी पूरी पूरी जवाबदारी सरकार की बनती है। सरकार ने 23 लाख स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। NTA आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, CBI की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे CBI की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है, और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप। अरे आप चुपचाप चले जाओगे, और ये स्टूडेंट जिन्होंने पैसा भरा है, जिन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, कौन जवाबदारी तय करेगा उनसे? इस तरह पेपर लीक होते जा रहे हैं।
1: पर भर के रामदास अठावले, और आपको यह भी बता दें कि उन्होंने भी कहा है कि गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: मुझे लगता है कि जो PV कुलकर्णी है, लातूर में रहने वाली थी, और नीट एग्जाम में जो पेपर फुटेज हुई है, तो नीट एग्जाम में भी बार बार इसी तरह की न्यूज सुनने के लिए मिलती है, और उसमें महाराष्ट्र से मतलब कुलकर्णी नाम के आदमी का भी उसमें बड़ा रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है, और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है, और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है, और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैक मिलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं, और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
1: आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर। हाई कोर्ट के फैसले के बाद माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने भोजशाला के गर्भगृह में पूजा अर्चना और संध्या आरती करके इसे मंदिर के रूप में पुनर्स्थापित करने की बात कही है। स्थल अब मां सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है, और दिन भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे पूजा अर्चना की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को बताया है एक तरफा और विरोध जता दिया गया है। उनका कहना यह है कि अदालत ने उनके पक्ष की दलीलों और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और सर्वे रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। फिलहाल भोजशाला परिसर में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर है।
5: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
6: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
5: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके पक्ष में फैसला आया।
6: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
5: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भोजशाला अब अधूरी नहीं, पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है। हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है, न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
7: फैसले को देखते हो और कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
8: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज बहुत साला परिसर में खड़े,
7: आप क्या करेंगे आप?
8: अब यहाँ पर बहुत साला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
9: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
5: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
10: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
5: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
1: और अब बात करेंगे महंगाई की, जिसे लेकर जारी सियासत अब सड़कों पर नजर आने लगी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के बाद विपक्ष चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश में है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, जहां वो बैलगाड़ी से सफर करते हुए नजर आए। वहीं अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां बाइक को ठेले पर लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या है अधिक मास का पूजा विधान, अधिक मास में कैसे करेंगे उपासना और कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
15: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: धार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया, जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी, जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया, तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: 13 महीने की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे, पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 महीने की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
3: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का
4: ये तबड़क तबड़क।
2: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
3: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.

नीदरलैंड से स्वीडन रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले भारत नीदरलैंड के बीच कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए में बड़े बदलाव। दो नए ऑफिसर्स की नियुक्ति। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। अब तक 9 की गिरफ्तारी। धारभोजशाला में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश का आदेश जारी। पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट के फैसले को किया लागू। सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। यौन शोषण मामले में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का बेटा गिरफ्तार। पिता बोले न्यायपालिका पर भरोसा। के कविता का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। पद से हटाने की मांग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अधिक मास की। क्या होता है अधिक मास, इसकी महिमा क्या है, इसके पूजा विधान क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ प्रतिपदा, रात के 9:40 तक, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर के 2:32 तक, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अधिक मास की। अधिक मास होता क्या है और क्यों इसको अधिक मास कहा जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग में कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, और ये निर्भर करते हैं

सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर। एक होता है सौर मास जो सूर्य पर निर्भर करता है, और एक होता है चंद्रमास जो चंद्रमा पर निर्भर करता है। हर साल सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है, और तीसरे साल में ये अंतर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है सौर मास और चंद्र मास को बैलेंस करने के लिए। आम बोलचाल की भाषा में इसको मलमास भी कहते हैं, हालांकि मलमास कहना उचित नहीं है, इसको अधिक मास कहना ज्यादा बेहतर है। इस बार अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में है, यानी ये 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो ज्येष्ठ का अधिक मास होगा इस बार, और 17 मई से ये आरंभ हो रहा है, 15 जून तक रहेगा। इस अधिक मास के नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो अधिक मास के पीछे का विज्ञान क्या है, गणित क्या है, ये आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि अधिक मास का महत्व क्या है। देखिए, पहले अधिक मास को बहुत अशुभ माना जाता था। तो कथा आती है पुराणों में
कि अधिक मास उसके बाद भगवान विष्णु के पास गया और उसने कहा कि मुझे बड़ा अशुभ माना जाता है, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो भगवान विष्णु ने श्री हरि ने कहा कि आज से अधिक मास मेरे नाम से जाना जाएगा और मेरे सारे गुण इस महीने के अंदर पाए जाएंगे। यानी श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में चूंकि भगवान विष्णु का स्वरूप है ये महीना, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कृपा करना, करुणा करना, पापों का नाश करना, पापों का प्रायश्चित करना और भक्तों की समस्याओं का निराकरण करना। ये तमाम गुण अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जितना संभव हो अधिक मास में साधना उपासना करनी चाहिए। आप अधिक मास में जितनी पूजा उपासना साधना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास पुरुषोत्तम मास है और धर्म कार्यों के लिए, ईश्वर की पूजा आराधना के लिए इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं करने चाहिए। कौन से काम हैं? अधिक मास का जो महीना है ये आध्यात्मिक महीना है। इस महीने भौतिक जीवन से संबंधित कार्य करने की मनाही है। जो सामान्य लोक जीवन के कार्य हैं वो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। विवाह करना, कान छेदना, चूड़ाकरण, ये मांगलिक कार्य अधिक मास में वर्जित होते हैं। अधिक मास में नए घर के निर्माण की शुरुआत भी मना है और अधिक मास में गृह प्रवेश करना भी वर्जित है, मना है। लेकिन जो काम पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आप मकान पहले से बनवा रहे हैं तो आगे बनाते रहिए। किसी बच्चे का जन्म होना है और जन्म के समय की शुभ पूजा है, मांगलिक कार्य है, तो उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे के जन्म को भी रोका नहीं जा सकता। तो कुल मिला जुला के जो काम पहले से निश्चित हैं या जो काम पहले से चले आ रहे हैं वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन शादी विवाह, नए काम की शुरुआत करना, मंगल कार्य करना, गृह प्रवेश करना, ये सब अधिक मास में मना होता है। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राजीव जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1978, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म का स्थान है महू और मेल लिखते हैं हमें इंदौर से। राजीव कह रहे हैं कि मैं अपना व्यवसाय करता हूं लेकिन मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे ऊपर थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और कब तक मैं अपने कर्जों से मुक्त हो पाऊंगा। राजीव, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका समय चल रहा है, अगस्त 2026 के बाद आपका काम लगातार बेहतर होता चला जाएगा और उसके बाद आप काम में सफलता पाएंगे, लेकिन कर्ज चुकाने में अभी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 1.5 वर्ष के बाद आप अपने कर्जों से मुक्त हो पाएंगे। स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, उन समस्याओं से आपको जुलाई 2026 के बाद धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि अधिक मास में कौन कौन सा काम करना चाहिए, अधिक मास में कौन सा काम करना शुभ होता है। देखिए, नियमित रूप से पूरे अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु अपने गुरु या अपने इष्ट देव की आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अपना आहार, विचार और व्यवहार सात्विक रखिएगा। अधिक मास में अगर आपको मौका मिले तो श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। जितना भी कर पाए रोज, थोड़ा थोड़ा पाठ रोज करिए।
या भगवत गीता का रोज पाठ करिए, एक एक अध्याय का या कुछ श्लोकों का नियमित पाठ करना अच्छा होगा। और अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए, क्योंकि ज्येष्ठ का अधिक मास है, इसीलिए जल का, अन्न का और वस्त्र का दान पूरे महीने में जब मौका मिले करते रहिए। ज्येष्ठ के महीने में अगर आप अपने पूर्वजों की, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। लौकिक कामनाओं के लिए इस महीने आप प्रार्थना कर सकते हैं, यानी अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में दरिद्रता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूजा उपासना करें और साथ में प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। देखिए, भौतिक जगत के काम अधिक मास में नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर पूजा साधना करें, भगवान के नाम का जप करें, नियमित रूप से मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दर्शन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, तो अधिक मास में किए गए धर्म कार्यों का फल जीवन में काफी ज्यादा प्राप्त होता है। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनी योजनाएं गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
देखिए, अधिक मास का समय बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही अच्छा समय है। और अगर आप अधिक मास में साधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, तो आप ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं और ईश्वर की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो अधिक मास में क्या करें जिससे ग्रह अनुकूल हों, मन पवित्र हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। पूरे महीने जितने दिन अधिक मास है, सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिएगा। जितना संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करना आपके लिए बेहतर

कथा का श्रवण करिए, सुनिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर भगवान की कथाएं आप सुन सकते हैं, या स्वयं श्रीमद् भागवत आप पढ़ें या हरिवंश पुराण पढ़ें, जिसमें भगवान की लीलाओं का उल्लेख है उसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। चूंकि ज्येष्ठ के महीने का अधिक मास है और ज्येष्ठ में जल का महत्व सबसे ज्यादा है, तो निर्धनों को नियमित रूप से जल का और ऋतु फल का, मौसम के फल का दान करिएगा। यानी गरीबों को जल पिलाइए, शरबत पिलाइए, जो मौसम के फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, इसका दान नियमित रूप से करते रहिए। और महीने के अंत में यानी अधिक मास के अंत में नियम ये कहता है कि 30 की संख्या में मिठाई का दान करिएगा। 30 की संख्या में गरीबों में, निर्धनों में मिठाई बांटिएगा। अगर आप ऐसा करें, अधिक मास में अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक पूजा करें, तो निसंदेह आपका कल्याण होगा। और जैसी भी प्रार्थना आप ईमानदारी से करेंगे, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार की समस्या से परेशानी होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

प्यार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए। ऐसा

क्यों? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ आदमी अगर पैर करके सोए या कोई भी पैर करके सोए तो उसके शरीर की एनर्जी निकलने लगेगी, शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगेगी और वो व्यक्ति बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। आप देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाए। लेकिन अगर आप जीते जी आप स्वस्थ हैं, बेहतर हैं और आप अपना पैर दक्षिण की तरफ करके सोएंगे तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कृपा करके दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोइए। दक्षिण की तरफ सर करके सोना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके सोएं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको नींद बेहतर आएगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

शुभ होगा। वृषभ राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। क्योंकि अधिक मास चल रहा है, इसलिए इस समय नए काम का आरंभ ना करें। आज गुड़ और जल, अगर आप इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

नीट पे बल एक मामले में तेज हुई सियासत, विपक्ष ने सरकार के घेराव करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। नीट मामले में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी का दावा, 80 बार पेपर लीक हुआ, 2 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप, का बीजेपी आरएसएस गठजोड़ ने देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। नीट मामले पर बढ़ गए रामदास अठावले का, गुनहगारों को मिलेगी सख्त सजा। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज हुई, कथित मास्टरमाइंड 10 दिन की रिमांड पर। नीट केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा नीट गड़बड़ी पर सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस। नीट पेपर लीक मामले पर मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह बोले, नीट पेपर हो सकता है लीक लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेना की व्यवस्था निष्पक्ष है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने धर्मेंद्र प्रधान की को चिट्ठी लिखी, परीक्षा रद्द होने पर जताई चिंता, तत्काल व्यवस्था का सुधार की मांग की गई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी, एनटीए की एक्सपर्ट टीचर मनीषा मंधारे ने ही लीक किया था बायोलॉजी का पेपर। एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव, अनुजा बापट और रुचिता विज ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। भारत नीदरलैंड्स के बीच कई करार, प्रधानमंत्री बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के राजा रानी से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, भारत नीदरलैंड संबंधों पर चर्चा की गई। नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नीदरलैंड्स ने 11वीं सदी के भारत की ये बेशकीमती चीज प्रधानमंत्री को लौटाई, तांबे की प्लेट्स चोल राजा राजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के जमाने के। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार, मध्यस्थता कोर्ट ने फैसले को एमईए ने फिर से नकारा, कहा सिंधु जल संधि भारत की ओर से स्थगित रहेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, भ्रष्टाचार के सभी केसों की होगी जांच, अभिषेक बनर्जी की संपत्ति की मांगी सूची। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, शुभेंदु अधिकारी बोले ऑफिसर्स की कॉल डिटेल की जांच की जाएगी, अभिषेक को निर्देश पर काम करने वालों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, मदरसा शिक्षा मंत्री सुधीराम टुडू ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पलता उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला, कहा यह सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि संविधान बहाली की लड़ाई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा, कहा तथाकथित पुष्पा अब उनकी जिम्मेदारी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, कहा जो राज्य में तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपए देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में घटती हुई जनसंख्या पर चंद्रबाबू नायडू ने जताई चिंता, कहा समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने पर मिलकर करना होगा काम। तमिलनाडु में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गृह विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग, पुलिस समेत कई विभाग अपने पास रखे। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान, कहा मेरी मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की। पौड़ी से सतपुली जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जंगलों में लगी भीषण आग को देखकर तुरंत रोका अपना काफिला। सांसद बलूनी ने मौके से ही अधिकारियों को फोन करके तुरंत आग बुझाने के कड़े निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भागीरथ ने पॉस्को मामले में सरेंडर कर दिया है, साइबराबाद पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस का नियमित सेवा का उद्घाटन किया, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें शामिल हुए। पंजाब के बेहतर शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना हुआ, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। यूपी पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया रील्स पर सख्ती, आपत्तिजनक पोस्ट और रील्स डालने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर आपदा पीड़ित के परिजनों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, आंधी तूफान आसमानी बिजली से 127 लोगों की जान चली गई थी। गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, सूरन कोट इलाके में आतंकवादियों की तलाशी। सीबीएसई ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं को अनिवार्य कर दिया, 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूरी हैं, 1 जुलाई से नियम लागू हो जाएगा। सीबीएसई में 10वीं की तीसरी भाषा का परीक्षा नहीं होगी, एनईपी के तहत सीबीएसई ने फैसला लिया है। ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बीजेपी का देश भर में विशेष अभियान, बीजेपी दफ्तरों में 50% तक ईंधन कटौती का लक्ष्य, वर्चुअल बैठकें करने की अपील। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवादियों को पनाह देने के से बाज आए, वरना तय कर लें कि भूगोल इतिहास का हिस्सा नहीं रहना है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के लोगों को जागरूक करने के लिए लेक्चर का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। बहुशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी मस्जिद कमेटी, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दावा किया है। धार बहुशाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर ईएसआई का बड़ा फैसला, अब साल भर पूजा कर सकेंगे हिंदू।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: GK Max. Best पुट्टी?
4: JK Wall Max.
2: Best paint?
5: JK Max.
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
6: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
8: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है.
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
10: हमारे सीमेंट में नहीं है?
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
6: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

0: बीमारी का डर जितना नहीं डराता उससे ज्यादा डराता है अस्पताल का बिल, और उससे भी ज्यादा वो पल जब इंश्योरेंस होने के बावजूद जेब खाली हो जाए। इसी बढ़ते बोझ के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमाने बिलिंग पर लगाम लगेगी। इसमें मेडिकल डिवाइस पर ट्रेड मार्जिन कैप करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सिरिंज, ग्लव्स से लेकर पेसमेकर और हार्ट वॉल्व तक शामिल रहेंगे, चार्ज कर रहे हैं। इसी वजह से ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जिसमें तय लिमिट से ज्यादा बिलिंग नहीं हो पाएगी। अस्पताल के इस बढ़ते बिल का असर इंश्योरेंस सेक्टर पर भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 12 से 18 महीनों में प्रीमियम 10 से 15% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी 15,000 से बढ़कर 22,000 रुपए से ज्यादा की हो सकती है, यानी इलाज महंगा और उससे बचाने वाला कवर भी महंगा हो जाएगा। इसी बीच एक नया ट्रेंड सामने आया है जो दिखा रहा है कि युवा इंश्योरेंस से दूरी बना रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 34% को लगता है हेल्थ ठीक है और बीमा की जरूरत नहीं है, जबकि 31% लोग ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं जहां रिटर्न मिले, वहीं 17% लोग कवरेज और सर्विस से संतुष्ट नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कवरेज बढ़ा जरूर है और 2025 में ग्रामीण इलाकों में 47% और शहरी क्षेत्रों में 44% लोगों के पास हेल्थ कवर है, जबकि 2017-18 में ये आंकड़ा 14% और 19% था। लेकिन इस बीमा कवर के बावजूद जेब पर इलाज का खर्च काफी भारी है, क्योंकि एक हॉस्पिटलाइजेशन पर औसत खर्च 34,066 रुपए हो रहा है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में महज 6,631 रुपए खर्च होते हैं। यानी आम आदमी के लिए इलाज एक बड़ा फाइनेंशियल झटका है। यही वजह है कि अस्पताल बिलिंग पर कंट्रोल की ये तैयारी लोगों के इलाज पर हो रहे भारी खर्च कम करने में मदद कर सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
5: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
6: विक्रम एक हिंट तो देते
7: विक्रम
6: हिंट
5: बड़े आराम से
6: बहुत टायर्ड हो गई
8: No added sugar, preservative के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
9: लायन डेट नट बाइट्स
10: और वही कहाँ गए थे घूमने
11: जीके मैक्स
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
13: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद JK मसाले जहां स्वाद वहां JK
14: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है

0: धार की भोशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद ASI ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मिली की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी और उन्होंने जब ये 13 मिली की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई। परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: कभी अमेरिकी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाकर कारोबार बढ़ाती थी लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल रही है। अब भारतीय कंपनियां भी अमेरिका की जमीन पर बड़ा दाव खेल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि निवेश केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है, इससे भारी संख्या में अमेरिका में नौकरियां पैदा हो रही हैं और वहां सप्लाई चेन भी मजबूत हो गई है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी ब्रेंडन ब्रेमिंगटन ने दावा किया है कि भारतीय कंपनियों का अमेरिका में निवेश लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारत का FDI करीब $16.4 अरब पहुंच चुका है जिससे करीब 70,800 नौकरियां बनी हैं। वहीं भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $313 मिलियन R&D पर खर्च किए और $1.5 अरब के एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट मिला। भारतीय कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी का असर अमेरिका के कई बड़े राज्यों में दिखाई दे रहा है। खासकर टेक्सास, जॉर्जिया और न्यू जर्सी में देसी कंपनियां तेजी से विस्तार कर रही हैं। CII की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास में भारतीय कंपनियों का निवेश $9.8 अरब रहा जबकि जॉर्जिया में $7.5 अरब और न्यू जर्सी में $4.2 अरब तक पहुंच गया। भारत के निवेश की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 2023 में CII की रिपोर्ट ने अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों का कुल निवेश $40 अरब बताया था। इसके दम पर करीब 4,25,000 नौकरियां तैयार हुई थी। साथ ही भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर $1 अरब लगाए और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट में $195 मिलियन का योगदान दिया। भारतीय कंपनियों का फिलहाल फोकस हाई वैल्यू सेक्टर्स पर तेजी से बढ़ रहा है। फार्मा से लेकर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर तक भारतीय कंपनियां अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में भारत की सन फार्मास्यूटिकल ने अमेरिका की ऑर्गेनॉन एंड कंपनी को खरीदने के लिए बड़ी डील का ऐलान किया था। अमेरिका में भारतीय कंपनियों की बढ़ती ताकत को लेकर भारतीय दूतावास ने भी बड़ा बयान दिया। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नमग्या खंपा ने कहा कि इंडियन कंपनियां अमेरिका की इकोनॉमी में पूंजी ला रही हैं जिससे नौकरियां बढ़ रही हैं और सप्लाई चेन मजबूत हो रही है। खास बात है कि इसका असर लोकल कम्युनिटी तक दिखाई दे रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि कभी एक दौर ऐसा भी था जब अमेरिकी कंपनियां भारत में मौके तलाशती थी, लेकिन आज भारत की कंपनियां अमेरिका में बिजनेस, रिसर्च और रोजगार का नया नेटवर्क खड़ा कर रही हैं। आदित्य के राणा आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पावर के साथ कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित। नीदरलैंड ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। नीट पेपर लीक कांड में सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, तो बीजेपी ने बच्चों पर राजनीति के आरोप लगाए। अब तक 9 की गिरफ्तारी। एनटीए ने 2 नए ऑफिसर्स की एंट्री करवाई। केंद्रीय मंत्री बन्नी संजय का बेटा भागीरथ पॉस्को केस में गिरफ्तार। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। पिता बोले न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। के कविता का पीएम को पत्र, पद से हटाने की मांग। धार गौशाला में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश का आदेश जारी। पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। आज भी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। और सोना न खरीदने की अपील के बाद चांदी पर सरकार की सख्ती। 15% बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी। IGST भी 3% बढ़ाया गया। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की कवायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है हैदराबाद से, जहां केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा। बंदी भागीरथ को गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि बंदी संजय के बेटे पर नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। हालांकि बंदी संजय का कहना यह है कि उनके बेटे ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बंदी संजय के बेटे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट ने भागीरथ को न्यायिक हिरासत में भेजा है। और आपको ये भी बता दें कि कहा यह बंदी संजय की तरफ से जा रहा है कि उनके बेटे ने सरेंडर किया है। 8 मई को बंदी भागीरथ पर केस दर्ज करवाया गया था। हैदराबाद पॉक्सो एक्ट की धाराओं में ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर जुड़ गए। अब्दुल, क्या जानकारी है? और के कविता तो चिट्ठी लिख चुकी है कि पद से हटाया जाना चाहिए बंदी संजय को।
1: जी बिल्कुल, देर रात कल 8:15 बजे बंदी संजय की अगर हम माने तो उनके बेटे ने अपने आप को टेक पार्क नारसिंगी पुलिस स्टेशन लिमिट के अंदर में उन्होंने सरेंडर किया है। बल्कि पुलिस का कहना है कि लगभग 8:15 बजे उन्होंने टेक पार्क के वहां पर बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को अरेस्ट किया है। 5 मई 8 तारीख को केस रजिस्टर हुआ था। लगभग 6 से 7 दिन के बाद एब्सकॉन्डिंग रहने के बाद, फरार में रहने के बाद कल वो सरेंडर या अरेस्ट हुए हैं, जिसके बाद उनको मेडिकल जांच के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, जिन्होंने उसे मई 29 तारीख तक जुडिशियल रिमांड में भेजा है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। ये केस जो बना है उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में 17 साल की माइनर को सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप में ये केस उनके खिलाफ बना था, दर्ज हुआ था। और जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन भी मांगी थी, जिसको खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट के तरफ से। उसके बाद में कल रात में वो सरेंडर या अरेस्ट हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वो अरेस्ट किए गए हैं, बल्कि उनके पिताजी जो यूनियन मिनिस्टर है बंडी संजय जी का कहना है कि वो सरेंडर हुए हैं। हालांकि एक और केस जो बंडी भागीरथ ने करीमनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रजिस्टर किया है, उसमें उन्होंने पीड़िता के परिवार के ऊपर हनी ट्रैप का आरोप लगाया है। 5 करोड़ की मांग उन्होंने की है। ऐसा एक केस भी उन्होंने रजिस्टर किया है। लेकिन जो धाराएं बंडी भागीरथ के खिलाफ लगी है पॉक्सो एक्ट के तहत, वो काफी गंभीर होने के नाते उनको इमीडिएटली।
0: अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से, जबकि बंदी संजय का कहना यह है कि उनके बेटे ने सरेंडर किया है। इस खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी और अहम खबर यह है कि धार स्थित भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ASI ने नया आदेश जारी करते हुए हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में पूजा और अध्ययन परंपरा के जुड़े हुए जो कार्य हैं उनका प्रवेश देने की बात कह दी गई है। स्थल से नाम से आधिकारिक तौर पर मस्जिद के नाम को हटा दिया गया है। उधर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों में है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कल भी लोग यहां पहुंचे थे और बड़ी संख्या में आज भी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह जुड़ गए। रवीश, क्या जानकारी है? जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक झलक पा लेना चाहते हैं।
2: बिल्कुल, ये दरअसल धार के लोगों के लिए एक सिर्फ एक विवाद का मुद्दा नहीं था, ये उनका एक लंबा संघर्ष था जो हिंदू पक्ष के लोग थे खास तौर से, और पिछले कई सालों से या फिर यूं समझ लीजिए कि पिछले कई दशकों से वो इस विवाद में उलझे हुए थे। लेकिन अब इसका पटाक्षेप जब हुआ है तो बीते दो दिनों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं। और देखिए, कल जब हम वहां मौजूद थे और हमने देखा था कि लोग जब पहुंच रहे थे तो उनके मन में एक सवाल था कि क्या ये पूजा की अनुमति हमें पूरे साल के लिए मिली है या फिर हमें जो है सिर्फ मंगलवार के साथ साथ जो अहम दिन होते हैं उसके लिए अनुमति मिली है। लेकिन कल देर शाम जब ASI का आदेश आ गया तो अब वहां पे जो कर्मचारी मौजूद है भोजशाला में उनके सामने भी तस्वीर साफ हो गई है। और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पहले जहां सिर्फ मंगलवार को जाने की अनुमति थी और सरस्वती पूजन के दिन जाने की अनुमति थी हिंदू पक्ष को, अब वो साल के 365 दिन भोजशाला में जा सकेंगे, पूजा कर सकेंगे। और इसने कहीं ना कहीं धार के लोगों को आज सुबह जब उनकी नींद खुली और उन्होंने अखबारों में और मीडिया में ये तमाम चीजें देखी, आदेश देखा, तो वो सुबह से धार के भोजशाला में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब
0: रवीश आप बने रहे हमारे साथ, इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, हम उसका रुख करेंगे। मध्य प्रदेश से ये खबर है और आपको बता दें कि रतलाम जिले के आलोट में चलती ट्रेन में लग गई है आग। जानकारी ये मिल रही है कि निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस के कोच B1 में ये आग लगी है। आलोट और लूणी रिक्चा स्टेशन के बीच की घटना है। घटनास्थल कोटा रेल मंडल में आता है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह करीब लूणी रिक्चा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर यह हादसा देखा गया है। हादसे की खबर के बाद कोटा रेल मंडल से राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया गया था। तुरंत ट्रेन में आग आगे के कोच नंबर B1 में लगी थी और कोच में 68 यात्री सवार थे। कुछ ही सेकंड्स में आग पूरे कोच में फैल गई थी। आग लगने की सूचना गार्ड ने सबसे पहले लोको पायलट को दी। इसके बाद ट्रेन को रुकवा दिया गया और पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया है। बाद में ट्रेन में मौजूद RPF स्टाफ और दूसरे लोगों ने तुरंत ही कोच से पैसेंजर की डीबोर्डिंग शुरू की। करीब 15 मिनट में पूरा का पूरा कोच जो है वो खाली करवा लिया गया था। तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए कि किस तरीके से ये ट्रेन वार्निंग ट्रेन बन गई। और आपको ये भी बता दें कि 68 से ज्यादा पैसेंजर इस कोच में बताए जा रहे थे। आगे की तरफ से आग लगी थी और कुछ ही सेकंड्स के भीतर आग की चपेट में ये पूरा का पूरा कोच आ गया। रतलाम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। तुरंत ही रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। कुछ ही मिनट्स के भीतर इस पूरे के पूरे कोच को खाली करवा लिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश लगातार बने हुए। रवीश, क्या और जानकारी इस घटना के बारे में मिल पा रही है और क्या सभी यात्री सुरक्षित हैं?
2: देखिए शशि, तस्वीरों को देख करके शुरुआत में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया था क्योंकि आग बेहद भयावह थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आग चलती ट्रेन में लगी थी और ट्रेन भी कोई मामूली नहीं बल्कि राजधानी एक्सप्रेस है जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम तक जाती है। कोटा रेल मंडल में ये स्टेशन आता है, लूछारिंडी और साथ ही में आलोट रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में आता है और रतलाम जिले में पड़ता है। तो ये इस जगह पे घटना हुई है। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास की घटना थी जब एक कोच के अटेंडर ने सबसे पहले ट्रेन में आग को देखा और उसने तुरंत जो है इसकी सूचना दी और जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 मिनट में 68 यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ यात्रियों का सामान इसमें जल गया है लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी शख्स की इसमें कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई है, कोई भी शख्स इसमें जो है हताहत नहीं हुआ है, ये राहत की बड़ी बात है। लेकिन ट्रेन में आग इतनी तेजी से फैली और खासतौर से ये AC कोच में आग लगी थी। B1 कोच था ये ट्रेन में जो ट्रेन के सबसे आगे के हिस्से की तरफ लगा हुआ था इंजन की तरफ से। और ऐसे में ये घटना और बड़ी हो जाती अगर समय रहते अटेंडर ने इसका ध्यान नहीं दिलाया होता और इस ट्रेन को रोका नहीं गया होता। फिलहाल सभी यात्रियों को उतार लिया गया है, दूसरी ट्रेन से उन्हें आगे रवाना किया जा रहा है कि इसके आगे जो है आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जंक्शन आते हैं, नागदा जंक्शन आता है, रतलाम जंक्शन आता है और उसके बाद जो ये ट्रेन है फिलहाल उसे इस कोच को खास तौर से काट करके अलग कर दिया गया है कुछ देर के लिए। तकरीबन 2 घंटे के लिए इस ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ था। काफी व्यस्त रेलवे ट्रैक माना जाता है ये, दिल्ली और मुंबई के बीच में शॉर्टर रूट है क्योंकि जो दूसरा रूट है वो थोड़ा लंबा होता है, दिल्ली से भोपाल इटारसी होता हुआ फिर वो मुंबई की ओर जाता है। लेकिन ये जो ट्रैक है ये दिल्ली से सीधे मुंबई की ओर रवाना होता है नागदा रतलाम होते हुए। तो ऐसे में इस ट्रैक पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ था ट्रेन का। अब ये परिचालन दोबारा शुरू हुआ है। कोटा रेल मंडल की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुंच गई है इस पूरी घटना की जांच के लिए और यात्रियों को सकुशल इस ट्रेन से बाहर निकाल के अब दूसरी ट्रेन के जरिए आगे रवाना किया गया है।
0: बिल्कुल रवीश, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी अनहोनी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। देखिए किस तरीके से एहतियात बरतते हुए और जो चौकन्ना रहते हुए इस पूरे के पूरे कोच को खाली कराया गया, तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस ट्रेन को रोका गया है, वो बहुत बड़ी राहत भरी खबर रही है। 68 से ज्यादा यात्री इस कोच में बताए जा रहे थे जिन्हें तुरंत ही बाहर निकाला गया, और तस्वीरें बाकी सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि कैसे ये पूरी की पूरी ट्रेन बर्निंग ट्रेन बन गई है, धू धू कर जली है। अच्छी बात यह रही है कि सभी यात्री सकुशल हैं, उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। डिबोर्डिंग हालांकि शुरू कर दी गई है, कुछ यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी लोगों को बाहर निकालना और सुरक्षित सबको बचा लेना। राहत और बचाव का काम तुरंत ही शुरू कर दिया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन से तमाम लोग नीचे उतर आए थे तुरंत। 68 यात्री इस कोच में, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन से तमाम लोग नीचे उतर आए थे तुरंत। 68 यात्री इस कोच में सवार थे, आगे की तरफ से आग लगनी शुरू हुई थी, एसी कोच में आग लगी है और इसकी वजह बताई जा रही है अभी फिलहाल शॉर्ट सर्किट। रतलाम में त्रिवेंद्रम राजधानी में भीषण आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा हादसा आज तड़के हुआ है। अच्छी बात यह रही है कि सभी यात्री सकुशल हैं। और अब हम बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, क्योंकि एक और जहां जांच लगातार जारी है, केस के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से सीबीआई ने पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंदारे को गिरफ्तार किया, जो कि नीट की पेपर सेटिंग प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। अब तक इस कुल मामले में 9 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आपको बता दें कि एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है और सीबीआई ने बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मंदारे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक कॉलेज में टीचर है। बताया जा रहा है कि मनीषा मंदारे ने बायोलॉजी के सवालों को लीक किया था। सबसे बड़ी बात यह भी कि मनीषा नीट का पेपर बनाने वाली टीम में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी थी, नियुक्त उन्हें किया गया था। उनकी बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। मंदारे ने पुणे की मनीषा बागमने के जरिए संभावित उम्मीदवारों को जुटाया था और अपने पुणे स्थित आवास पर इन छात्रों के लिए एक विशेष कोचिंग क्लासेस भी आयोजित की थी। इन क्लासेस के दौरान उसे बॉटनी और जूलॉजी विषयों के विभिन्न सवालों को समझाया गया था। छात्रों को बताया कि उन्हें नोटबुक में वो अपनी लिख लें, अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी उसे चिन्हित करने के लिए कहा गया था और बाद में जब मैच किया गया तो लगभग वही सेम सवाल थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। मनीषा मंदारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीधा सीधी संलिप्तता इनकी पाई गई है इस पूरे पेपर लीक मामले में। कुछ स्टूडेंट्स को इन्होंने अपने घर पर बुलाया था, जिन्हें बताया था कि इन तमाम प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखें और साथ ही साथ इन्होंने अपने स्टूडेंट को इन सवालों से पूरी तरह से अवगत कराया था, जानकारी दी थी। तो नीट पेपर लीक मामले में बड़ी और अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की अदालत ने कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और आरोपी मनीषा बागमने को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई का दावा यह है कि पीवी कुलकर्णी नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, उसे पेपर तक सीधी पहुंच हासिल थी। जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर चुनिंदा छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई थी, जहां उसने कथित तौर पर वही तमाम सवाल और जवाब किए थे और अपने स्टूडेंट्स को बताए थे जो बाद में असली नीट परीक्षा के दौरान पूछे गए। सीबीआई का कहना यह है कि छात्रों को नोटबुक में भी लिखने के लिए कहा गया था और ये जो नोटबुक जब चेक की गई है तो हूबहू असली पेपर से सवाल मेल खा रहे हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पूरे नेटवर्क और बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए आरोपियों से लंबी पूछताछ जरूरी है। इससे पहले धनंजय ने भी इस पूरे मामले में कई खुलासे किए हैं। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर बांटे जा रहे थे और उसके बावजूद सरकार कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम रही। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसके लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया है और उनसे तुरंत प्रधानमंत्री से बर्खास्त करने की उन्हें मांग की है।
3: नीट में दो साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
0: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
5: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
6: विक्रम एक हिंट तो देते
7: विक्रम
6: हिंट
5: बड़े आराम से
8: और वही कहाँ गए थे घूमने
9: जीके मैक्स
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
9: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
11: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ हमारे देश के असली हीरो के हाथ जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद देश का किसान देश का हीरो
12: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें
14: Character, the taste of success.
15: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील टीएमटी से बना
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड
18: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता
19: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
20: लायन डेट नट बाइट्स
21: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहाँ स्वाद वहाँ जेके
22: यार
23: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
22: इसमें माइक्रोफाइबर है
23: माइक्रोफाइबर यानी
22: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
23: हमारे सीमेंट में नहीं है
22: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
24: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
12: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का
2: ये तबड़क
0: आपको आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires.
4: Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/26. See dealer for warranty details.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. Ah! We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
8: इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है. ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है.
9: पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप पर, हुण किथे ने हो इस वक्त, किथे ने प्राइम मिनिस्टर? नीदरलैंड गए हुए ने. हुण मेरे ख्याल अगले तीन चार मुल्कां दा होर दौर है, लोकां नूं मना करके आप चले जांदे ने. हर एक चीज तुसीं शट डाउन कर दो, सोना ना खरीदो है जी, ते विदेश यात्रा ना करो, घरों काम करो, प्रधानमंत्री घरों काम कर ले, प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना. ये सिर्फ लुकाउण वालियां गल्लां ने, 3 रुपए लीटर तेल दा रेट बढ़ाता, डीजल दा, पेट्रोल दा, ठीक है ना, ताकि बस प्रधानमंत्री ने कहता तो शुक्र है, हजे थालियां ते तालियां नहीं कहा है ना. हो सकता कोई होर जादू टूना करन नूं कह देना भी इदां करिया करो. सो देश नूं चलाउणा है जी. असीं तां बिशप गुरु बनना सी, बिशप चेले बना के रखते, जंग किते होर लगी है, पाबंदियां साडे मुल्क च लगी जांदियां, होर किसे मुल्क च क्यों नहीं लगियां, नेपाल च क्यों नहीं कीता इदां, इह यही गल्लां किसे होर मुल्क दे विच क्यों नहीं होईयां.

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेक चल रहा है मोदी जी का। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेक चल रहा है मोदी जी का।
2: ये
0: आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पावर के साथ कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित। नीदरलैंड ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। नीट पेपर लीक कांड में सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो बीजेपी ने बच्चों पर राजनीति के आरोप लगाए। अब तक 9 की गिरफ्तारी। एनटीए में 2 नए ऑफिसर्स की एंट्री। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का बेटा भागीरथ पॉस्को केस में गिरफ्तार। कोर्ट ने न्याय की हिरासत में भेजा पिता। बोले न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। के कविता का प्रधानमंत्री को पत्र, पद से हटाने की मांग। धार गौशाला में हिंदुओं के निर्माण प्रवेश का आदेश जारी। पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट के फैसले को किया लागू। सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। आज भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में आग से अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के रतलाम में B1 कोच धू धू कर जला। आनंद फानंद में सभी 68 यात्रियों को निकाला गया, कोई हताहत नहीं।

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हजरत निजामुद्दीन तिरुअनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में अचानक से लगी थी भीषण आग। आग के बाद ट्रेन को रोककर 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत और बचाव के दल मौके पर पहुंच गया था। करीब 15 मिनट में पूरे कोच को खाली करवा लिया गया था। ग्रेटर नोएडा के सावरी मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई। इलाके में अफरा तफरी मची। इंदौर से सागर जा रही चार्टर्ड बस में भीषण आग लगी। बाल बाल बचे यात्री। 18 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोनीपत में टक्कर के बाद आग का गोला बनी थी कार। जिंदल यूनिवर्सिटी के पास हुआ हादसा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। नीट पेपर लीक मामले में तेज हो गई सियासत। विपक्ष ने सरकार को घेराव करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। नीट मामले में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी का दावा, 80 बार पेपर लीक हुआ है, 2 करोड़ युवाओं के भविष्य का कोई ख्याल नहीं। राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी आरएसएस गठजोड़ ने देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। नीट के मामले पर बढ़कर रामदास अठावले। कहा, गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज हुई। कथित मास्टरमाइंड 10 दिन की रिमांड पर भेजे गए। नीट केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। का नीट गड़बड़ी पर सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस। नीट पेपर लीक के मामले में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह बोले, नीट पेपर हो सकता है लीक, लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेना की व्यवस्था निष्पक्ष है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी। परीक्षा रद्द होने पर जताई चिंता। तत्काल व्यवस्था का सुधार की मांग की गई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी। एनटीए के एक्सपर्ट टीचर मनीषा मंधारी ने ही लीक किया था बायोलॉजी का पेपर। एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव। अनुजा बापट और रुचिता विज ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त। भारत नीदरलैंड्स के बीच कई करार हुए। प्रधानमंत्री बोले, भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के राजा रानी से भी मिले प्रधानमंत्री। भारत नीदरलैंड संबंधों पर चर्चा की गई। नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नीदरलैंड्स ने 11वीं सदी के भारत की बेशकीमती चीज प्रधानमंत्री मोदी को लौटाई है। तांबे की प्लेट चोल राजा राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के जमाने की है। सिंध जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार। मध्यस्था कोर्ट के फैसले को एमईए ने फिर से नकारा। कहा, सिंध जल संधि भारत की ओर से स्थगित रहेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, भ्रष्टाचार के सभी केसों की होगी जांच। अभिषेक बनर्जी की संपत्ति की मांगी सूची। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी बोले, ऑफिसर्स की कॉल डिटेल की जांच की जाएगी। अभिषेक के निर्देश पर काम करने वालों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। मदरसा शिक्षा मंत्री सुधीराम टुडू ने कहा, अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फलता उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला। कहा, यह सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि संविधान की बहाली की लड़ाई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। कहा, तथाकथित पुष्पा अब उनकी जिम्मेदारी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे 30,000 और जो चौथा बच्चा पैदा करेगा उसे 40,000 रुपए देंगे। आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर पर चंद्रबाबू नायडू ने जताई है चिंता। कहा, समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। तमिलनाडु में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री विजय ने गृह विभाग, महिला बाल कल्याण और पुलिस समेत कई विभागों को अपने पास रखा। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान। कहा, मेरी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने युवाओं को कुछ नहीं कहा। पौड़ी से सतपुली जा रहे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने जंगलों में लगी हुई भीषण आग को देखकर काफिला रोका। सांसद बलूनी ने मौके से ही अधिकारियों को तुरंत आग बुझाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भागीरथ ने पॉस्को मामले में सरेंडर किया। साइबराबाद पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का उद्घाटन किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में पीजी डिप्लोमा के 20 बच्चे बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें शामिल हुए।
पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना हुआ, सीएम भगवंत मान ने रवाना किया। यूपी पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया रील्स पर सख्ती, आपत्तिजनक पोस्ट और रील्स डालने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर आपदा पीड़ित के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात कही गई। आंधी तूफान, आसमानी बिजली से 127 लोगों की गई थी जान। गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के दफ्तर के उद्घाटन के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाने की जरूरत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों की तलाशी। सीबीएसई ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं को अनिवार्य किया, 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूरी हैं, 1 जुलाई से नियम लागू। सीबीएसई में 10वीं की तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी, एनईपी के तहत सीबीएसई का फैसला। ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बीजेपी का देशभर में विशेष अभियान, बीजेपी दफ्तरों में 50% तक ईंधन कटौती का लक्ष्य, वर्चुअल बैठकों का दौर। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवादियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर लें कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना या नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लोगों को जागरूक करने के लिए लेक्चर का आयोजन किया था, कार्यक्रम में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। गौशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी मस्जिद कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया। धार गौशाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर ईएसआई का बड़ा फैसला, अब साल भर पूजा कर पाएंगे हिंदू। ड्रग तस्करी के खिलाफ एनसीबी की बड़ी सफलता, 227 किलोग्राम से ज्यादा कैप्टागन टैबलेट पाउडर बरामद किया गया, खाड़ी देशों में जानी थी ड्रग्स की खेप। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी नागरिक के पास से 3.5 किलो सोना बरामद किया गया, 115 गोल्ड बार भी बरामद। दिल्ली सरकार ने एयरलाइंस को दिया राहत, जेट फ्यूल पर वेट 25% से घटाकर 7% किया। सरकार ने चांदी के आयात पर बढ़ाई है सख्ती, 99.9% शुद्धता की चांदी के आयात पर बैन लगाया गया, नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू। कूचबिहार में बीएसएफ और पुलिस का साझा अभियान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के दायरे में अवैध जूट की खेती को नष्ट किया गया। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साई ने ऑपरेशन सिंदूर में स्मृति में सिंदूर पार्क का उद्घाटन किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, कहा बीजेपी के राज्य में देश भर में हो रहा है विकास। बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में संजना भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, दिल्ली से थाईलैंड के लिए रवाना हुई। गोरखपुर में सीएम योगी ने डिजिटल स्वतंत्र प्रपत्र पूरा करने का आग्रह किया, लोगों से जनगणना में भाग लेने की अपील की गई। विकासनगर में नहर में डूब रहे 2 मासूमों को स्थानीय लोगों ने बचाया, महिला की तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत और बढ़ेगा तापमान, लोगों को सतर्क रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा है 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा है पारा, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। झांसी में भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान से बेहाल जनजीवन, ट्रांसफार्मर्स को कूलर से बचाने के लिए जुटा बिजली विभाग। टिहरी में अचानक से बदला है मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश हुई है, सड़कें तालाब बन गई। हरियाणा के झज्जर में गैंगवॉर में हत्या, कार सवार शख्स को मारी गई थी 30 गोलियां, रोहित गोदारा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली। लखनऊ पुलिस का वांटेड दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, यूपी एसटीएफ ने नाइजीरिया ठग को गिरफ्तार किया, 68 लाख की ठगी का आरोपी। पटना के फातुहा में बट सावित्री पूजा के दौरान बरगद के पेड़ में लगी थी भीषण आग, बाल बाल बची महिलाएं। एमपी के देवास में टोंक कला पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, बड़ी कार्रवाई, एसडीएम संजीव सक्सेना, टप्पा चिदवाड़ के नायब तहसीलदार रवि शर्मा सस्पेंड। सट्टा मामले में रायगढ़ की पुलिस ने गोवा से 6 बड़े सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला निकला तांत्रिक, झांसी में गिरफ्तार, पिस्तौल रिवॉल्वर समेत 7 हथियार जब्त किए गए। रायगढ़ की सिंघनपुर गुफा में वैज्ञानिकों पर मधुमक्खियों का हमला, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर के किशनगढ़ में जिम ट्रेनर पर अश्लील वीडियोज बनाने के आरोप और ब्लैकमेल करने के आरोप, आरोपी की पत्नी ने खुलासा किया है। सूरत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के टैंकर से पेट्रोल चोरी का भंडाफोड़ हुआ, 3 की गिरफ्तारी।
रायसेन में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की मौत हुई, चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग नहीं होने से प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। प्रवास की कल की दो में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण की पैडी के ट्रेलर लॉन्च में होगी एमएस धोनी की एंट्री, 4 जून को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 9 जून को रिलीज होगी कॉकटेल, दो फिल्में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन अहम रोल में। अविका गौर से सालों के बाद मिले गौरव खन्ना, कहा ये इतनी सी थी, के 15 में दिखेंगे साथ। फिल्म भूत बंगला ने मचाया है धमाल, फिल्म में 29 दिनों की 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फ्रेंचाइज को ले जाएगी नेक्स्ट लेवल, रोहित शेट्टी की इस मूवी में विलेन का रोल करेंगे। गोलमाल 5 में मेकर्स ने इस फिल्म की का बजट बढ़ा दिया है, अक्षय कुमार इस मूवी में एक कॉमिक विलेन के रूप में नजर आएंगे। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई, आंखों में काजल और बालों में फूल लगाए नयनतारा ने ढेर सारे पोज दिए। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार है नयनतारा, फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी खूबसूरत है। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल के सामने आया है सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में नजर आए एक्टर। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो बड़े मुकाबले, पहला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। शाम को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें होंगी आमने सामने, प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत जरूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 247 रन से दर्ज की धमाकेदार जीत, गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया। फिन एलॉन ने 35 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, केकेआर को मिली तेज शुरुआत। अंगकृष रघुवंशी की 82 रन की पारी, मध्यक्रम की मजबूत संस्था बनी कैमरून ग्रीन की 52 रन की तेज पारी। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी भरा संदेश, सोशल मीडिया पर साझा की गई हमलों से जुड़ी एक तस्वीर। दूसरे पोस्ट में नाव पर सवार नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति, ट्रंप के साथ उनके सैन्य अधिकारी भी तस्वीर में नजर आए। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका, चीन से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए। अमेरिका के खिलाफ पूर्व आईआरजीसी प्रमुख कमांडर मोहसिन रजाई का बड़ा दावा, अमेरिका अब नई विश्व व्यवस्था का केंद्र नहीं है, चीन से मदद मांग रहा है अमेरिका। नाइजीरिया में मारा गया आईएसआईएस का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी। शेमेश के पास रक्षा कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में जोरदार धमाका हुआ, आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया, इलाके में दहशत। यरूशलम के पास विस्फोट से अफरा तफरी मच गई थी, कंपनी ने बताया पहले से तय प्रयोग के तहत हुआ था यह ब्लास्ट। यूक्रेनी शहरों पर हो रहे हमलों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का जवाब दे रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और तेल के डिपो को तबाह किया गया है, इससे पहले रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में बड़े पैमाने पर हमला किया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा हुआ, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से बस को टक्कर की वजह से जबरदस्त दुर्घटना।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अधिक मास की। क्या होता है अधिक मास, इसकी महिमा क्या है, इसके पूजा विधान क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ प्रतिपदा, रात के 9:40 तक, नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, दोपहर के 2:32 तक, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अधिक मास की। अधिक मास होता क्या है और क्यों इसको अधिक मास कहा जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग में कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, और ये निर्भर करते हैं सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर। एक होता है सौर मास जो सूर्य पर निर्भर करता है, और एक होता है चंद्रमास जो चंद्रमा पर निर्भर करता है। हर साल सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है, और तीसरे साल में ये अंतर लगभग 1 का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है सौर मास और चंद्र मास को बैलेंस करने के लिए। आम बोलचाल की भाषा में इसको मलमास भी कहते हैं, हालांकि मलमास कहना उचित नहीं है, इसको अधिक मास कहना ज्यादा बेहतर है। इस बार अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में है, यानी ये 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो ज्येष्ठ का अधिक मास होगा इस बार, और 17 मई से ये आरंभ हो रहा है, 15 जून तक रहेगा। इस अधिक मास के नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष
मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो अधिक मास के पीछे का विज्ञान क्या है, गणित क्या है, ये आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि अधिक मास का महत्व क्या है। देखिए, पहले अधिक मास को बहुत अशुभ माना जाता था। तो कथा आती है पुराणों में कि अधिक मास, उसके बाद भगवान विष्णु के पास गया और उसने कहा कि मुझे बड़ा अशुभ माना जाता है, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने कहा कि आज से अधिक मास मेरे नाम से जाना जाएगा और मेरे सारे गुण इस महीने के अंदर पाए जाएंगे। यानी श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में चूंकि भगवान विष्णु का स्वरूप है ये महीना, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कृपा करना, करुणा करना, पापों का नाश करना, पापों का प्रायश्चित करना और भक्तों की समस्याओं का निराकरण करना। ये तमाम गुण अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जितना संभव हो अधिक मास में साधना उपासना करनी चाहिए। आप अधिक मास में जितनी पूजा उपासना साधना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास पुरुषोत्तम मास है और धर्म कार्यों के लिए, ईश्वर की पूजा आराधना के लिए इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं करने चाहिए। कौन से काम हैं? अधिक मास का जो महीना है ये आध्यात्मिक महीना है। इस महीने भौतिक जीवन से संबंधित कार्य करने की मनाही है।
जो सामान्य लोक जीवन के कार्य हैं वो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। विवाह करना, कान छेदना, चूड़ाकरण, ये मांगलिक कार्य अधिक मास में वर्जित होते हैं। अधिक मास में नए घर के निर्माण की शुरुआत भी मना है और अधिक मास में गृह प्रवेश करना भी वर्जित है, मना है। लेकिन जो काम पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आप मकान पहले से बनवा रहे हैं तो आगे बनाते रहिए। किसी बच्चे का जन्म होना है और जन्म के समय की शुभ पूजा है, मांगलिक कार्य है, तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे के जन्म को भी रोका नहीं जा सकता। तो कुल मिला जुला के जो काम पहले से निश्चित हैं या जो काम पहले से चले आ रहे हैं वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन शादी विवाह, नए काम की शुरुआत करना, मंगल कार्य करना, गृह प्रवेश करना, ये सब अधिक मास में मना होता है। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

योग हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राजीव जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1978। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म का स्थान है महू और मेल लिखते हैं हमें इंदौर से। राजीव कह रहे हैं कि मैं अपना व्यवसाय करता हूं लेकिन मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे ऊपर थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और कब तक मैं अपने कर्जों से मुक्त हो पाऊंगा? राजीव, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका समय चल रहा है, अगस्त 2026 के बाद आपका काम लगातार बेहतर होता चला जाएगा और उसके बाद आप काम में सफलता पाएंगे, लेकिन कर्ज चुकाने में अभी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 1.5 वर्ष के बाद आप अपने कर्जों से मुक्त हो पाएंगे। स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, उन समस्याओं से आपको जुलाई 2026 के बाद धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि अधिक मास में कौन कौन सा काम करना चाहिए, अधिक मास में कौन सा काम करना शुभ होता है। देखिए, नियमित रूप से पूरे अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु अपने गुरु या अपने इष्ट देव की आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अपना आहार, विचार और व्यवहार सात्विक रखिएगा। अधिक मास में अगर आपको मौका मिले तो श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। जितना भी कर पाए रोज, थोड़ा थोड़ा पाठ रोज करिए या भगवत गीता का रोज पाठ करिए, एक एक अध्याय का या कुछ श्लोकों का नियमित पाठ करना अच्छा होगा। और अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए। चूंकि ज्येष्ठ का अधिक मास है इसीलिए जल का, अन्न का और वस्त्र का दान पूरे महीने में जब मौका मिले करते रहिए। ज्येष्ठ के महीने में अगर आप अपने पूर्वजों की, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा।
लौकिक कामनाओं के लिए इस महीने आप प्रार्थना कर सकते हैं। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में दरिद्रता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूजा उपासना करें और साथ में प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। देखिए, भौतिक जगत के काम अधिक मास में नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर पूजा साधना करें, भगवान के नाम का जप करें, नियमित रूप से मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दर्शन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, तो अधिक मास में किए गए धर्म कार्यों का फल जीवन में काफी ज्यादा प्राप्त होता है। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनी योजनाएं गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, अधिक मास का समय बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही अच्छा समय है, और अगर आप अधिक मास में साधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें तो आप ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं और ईश्वर की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो अधिक मास में क्या करें जिससे ग्रह अनुकूल हो, मन पवित्र हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। पूरे महीने जितने दिन अधिक मास है, सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिएगा। जितना संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। शाम के समय दीपक जरूर जलाइए उनके सामने,
और दीपक जला करके नियमित रूप से प्रार्थना करिए। नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करिए, सुनिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर भगवान की कथाएं आप सुन सकते हैं, या स्वयं श्रीमद् भागवत आप पढ़ें या हरिवंश पुराण पढ़ें जिसमें भगवान की लीलाओं का उल्लेख है, उसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। चूंकि ज्येष्ठ के महीने का अधिक मास है और ज्येष्ठ में जल का महत्व सबसे ज्यादा है, तो निर्धनों को नियमित रूप से जल का और ऋतु फल का, मौसम के फल का दान करिएगा। यानी गरीबों को जल पिलाइए, शरबत पिलाइए, जो मौसम के फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, इसका दान नियमित रूप से करते रहिए। और महीने के अंत में यानी अधिक मास के अंत में नियम ये कहता है कि 30 की संख्या में मिठाई का दान करिएगा। 30 की संख्या में गरीबों में, निर्धनों में मिठाई बांटिएगा। अगर आप ऐसा करें, अधिक मास में अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक पूजा करें, तो निसंदेह आपका कल्याण होगा। और जैसी भी प्रार्थना आप ईमानदारी से करेंगे, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार की समस्या से परेशानी होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

प्यार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ आदमी अगर पैर करके सोए या कोई भी पैर करके सोए तो उसके शरीर की एनर्जी निकलने लगेगी, शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगेगी और वो व्यक्ति बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। आप देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाए। लेकिन अगर आप जीते जी आप स्वस्थ हैं, बेहतर हैं और आप अपना पैर दक्षिण की तरफ करके सोएंगे तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कृपा करके दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोइए। दक्षिण की तरफ सर करके सोना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके सोएं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको नींद बेहतर आएगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो
तो अपने साथ दो लौंग रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। क्योंकि अधिक मास चल रहा है इसलिए इस समय नए काम का आरंभ ना करें। आज गुड़ और जल, अगर आप इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, महंगाई का एक और झटका लगा है। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर से ₹1 प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दो दिन पहले ही ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी और आज एक और रुपया बढ़ा दिया गया है प्रति किलो पर। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तीन दिन में सीएनजी हो गई है ₹3 प्रति किलो महंगी। 15 मई को सीएनजी के दाम बढ़ गए थे और आज एक बार फिर से ₹1 प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दामों को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर ₹3 सीएनजी बढ़ चुकी है प्रति किलो के हिसाब से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये क्या धीरे धीरे दाम बढ़ाने

0: दुर्घटना से बचा लिया गया है। लोको पायलट को तुरंत ही जानकारी दी गई और इस कोच को बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया गया। हालांकि 2-3 घंटे पूरा जो रेल मार्ग है बाधित रहा है, लेकिन 68 यात्रियों को आनन फानन में नीचे उतारा गया था। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा कोच आग की चपेट में उसके बाद आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी की ट्रेन को रवाना कर दिया गया था। जो बाकी के यात्री उतारे गए थे उनमें से कुछ का कहना है कि उनका सामान जरूर जला है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पूरी तरह से सुरक्षित यात्री बाहर निकाल लिए गए थे कुछ ही मिनट्स के भीतर। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, अफरा तफरी मची। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीवन कोच धू कर जला। आनंद फानंद में सभी 68 यात्रियों को निकाला गया, कोई हताहत नहीं। महंगाई की एक और किस्त आई, दिल्ली में सीएनजी की बढ़ गई है कीमत, प्रति किलो 1 रुपए का इजाफा। 2 दिन पहले ही 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पार्क के साथ कई करार, प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत के लिए आमंत्रित किया। नीदरलैंड ने चोल वंश का ताम्रपत्र सौंपा। नीट पेपर लीक मामले में सियासत गरमाई, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो बीजेपी ने बच्चों के ऊपर राजनीति करने के आरोप लगाए। अब तक 9 की गिरफ्तारी, एनटीए में 2 नए ऑफिसर्स की एंट्री। और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का बेटा भागीरथ पॉस्को केस में गिरफ्तार, कोर्ट ने न्याय की हिरासत में भेजा। पिता बोले न्यायपालिका पर भरोसा। के कविता का प्रधानमंत्री को पत्र, पद से हटाने की मांग की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्रा।
0: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में लगी थी अचानक से आग। आग के बाद ट्रेन रोककर 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। करीब 15 मिनट में पूरा कोच जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा के शाबेरी मार्केट में लगी थी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक हुई। इलाके में मच गई थी अफरा तफरी। इंदौर से सागर जा रही चार्टर्ड बस में भीषण आग लगी, बाल बाल बचे यात्री। 18 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोनीपत में टक्कर के बाद आग का गोला बन गई थी कार। जिंदल यूनिवर्सिटी के पास हादसा हुआ, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी हुई, आज से 1 रुपए बढ़ोतरी के बाद नई दरें लागू। लगातार दूसरे दिन सीएनजी के रेट्स बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में लगभग 89 रुपए प्रति किलो हो गई है सीएनजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली में प्रदर्शन, बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जताया गया विरोध। करोल बाग पेट्रोल पंप पर जुटे थे कार्यकर्ता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर लिखा, पीएम ने डीजल पेट्रोल पर महंगा कर दिया, चुनाव के बाद दिखाया ठेंगा। कच्छ के कांडला बंदरगाह पर एलपीजी कैरियर जहाज SYMI पहुंचा, 20,000 टन एलपीजी की खेप पहुंची। नीट पेपर लीक के मामले में सियासत तेज हो गई, विपक्ष ने सरकार पर घेराव करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। नीट मामले में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी का दावा 80 बार पेपर लीक हुआ है, 2 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा बीजेपी आरएसएस गठजोड़ ने देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। नीट मामले पर बढ़कर

मोहिंदा सथाव लेकर गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नीट पेपरली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज हुई, कथित मास्टरमाइंड 10 दिन की रिमांड पर। नीट केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नीट गड़बड़ी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। नीट पेपर लीक के मामले में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह बोले नीट पेपर हो सकता है लीक लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेना की व्यवस्था निष्पक्ष है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी, परीक्षा रद्द होने पर जताई गई चिंता, तत्काल व्यवस्था का सुधारों की मांग की गई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी, एनटीए की एक्सपर्ट टीचर मनीषा मंधारे ने लीक किया था बायोलॉजी का पेपर। एनडीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव, अनुजा बापट और रुचिता विज ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। भारत और नीदरलैंड्स के बीच कई करार हुए, प्रधानमंत्री बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के राजा रानी से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, भारत नीदरलैंड संबंधों पर चर्चा की गई। नीदरलैंड्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नीदरलैंड्स ने 11वीं सदी के भारत की बेशकीमती चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लौटाया, तांबे की प्लेट चोल राजा राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के जमाने की है। सिंधु जल संधि पर भारत की सख्त कार्रवाई, मध्यस्थता कोर्ट ने फैसले को एमईए से फिर से नकारा है, कहा सिंधु जल संधि भारत की ओर से स्थगित ही रहेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, भ्रष्टाचार के सभी केसों की होगी जांच, अभिषेक बनर्जी की संपत्ति की मांगी गई है सूची। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, शुभेंदु अधिकारी बोले ऑफिसर्स की कॉल डिटेल्स की जांच होगी, अभिषेक के निर्देश पर काम करने वालों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, मदरसा शिक्षा मंत्री ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फलता उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा यह सिर्फ विधायक चुनने का वक्त नहीं है बल्कि संविधान की बहाली की लड़ाई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा, कहा तथागत कथित पुष्पा अब उनकी जिम्मेदारी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, कहा अब राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे 30,000 और जो चौथा बच्चा पैदा करेगा उसे 40,000 रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर पर चंद्रबाबू नायडू ने जताई है चिंता, कहा समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत। तमिलनाडु में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री विजय ने गृह विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग तथा पुलिस समेत कई विभागों को अपने पास रखा। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान, कहा मेरी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की। पौड़ी से सतपुली जा रहे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने जंगलों में लगी भीषण आग को देखा, तुरंत काफिला रोका और मौके से अधिकारियों को फोन करके आग बुझाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री बन्नी संजय के बेटे भागीरथ ने पॉक्सो के मामले में सरेंडर किया है, साइबराबाद पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का उद्घाटन किया, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थापक पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें शामिल हुए। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना हुआ, सीएम भगवंत मान ने रवाना किया। यूपी पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया पर रील्स पर सख्ती, आपत्तिजनक पोस्ट और रील्स डालने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर आपदा पीड़ित के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आंधी तूफान आसमानी बिजली से 127 लोगों की जान चली गई थी। गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाने की जरूरत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सुरनकोट इलाके में आतंकवादियों की तलाशी। सीबीएसई ने 9वीं की कक्षा में 3 भाषाएं अनिवार्य की, 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं जरूरी हैं, 1 जुलाई से नियम लागू किए गए। सीबीएसई में 10वीं में 3री भाषा का अनिवार्य परीक्षा होगी, एनईपी के तहत सीबीएसई का यह फैसला। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साई ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का उद्घाटन किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, कहा बीजेपी के राज्य में देश भर में विकास हो रहा है। बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में संजना शेखर मंत्री करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, दिल्ली से थाईलैंड के लिए रवाना हुई।
गोरखपुर में सीएम योगी ने डिजिटल स्वगणन पत्र पूरा करने का आग्रह किया। लोगों से जनगणना में भाग लेने की भी अपील की। विकास नगर में नहर में डूब रहे दो मासूम बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचाया। महिला की तलाश अभी भी जारी। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, और बढ़ जाएगा तापमान। लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा है पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान से बेहाल जनजीवन। ट्रांसफार्मर्स को कूलर से बचाने के लिए बिजली विभाग जुटा। टिहरी में अचानक से बदल गया मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश हुई, सड़कें बनी तालाब। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, बाराबंकी पुलिस ने शुरू किया साइकिल अभियान। साइकिल से गश्त करके ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जालना से मनोज जरांगे ने 30 मई से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। मराठा आरक्षण को लेकर फिर से तेज हुई है लड़ाई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेअदबी कानून के खिलाफ गुरुद्वारों के बाहर लगाए हैं जागरूकता बोर्ड्स लगाए हैं। एसजीपीसी का विरोध प्रदर्शन। जालौर के फर्नीचर कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी और शोरूम पर फायरिंग करके डराया, पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर में एक मोहल्ले में नाली विवाद में हिंसक रूप, 2 पक्षों में जमकर पथराव, हिंसा में 2 लोग घायल हुए हैं। नाली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि लोगों ने छतों से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात के अमरेली में रिजर्व फॉरेस्ट की 70 एकड़ जमीन पर माइनिंग को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी एमएलए ने फॉरेस्ट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर कहा इससे इलाके में शेरों और वन्य जीवों को खतरा। सहारनपुर में गौकशी केंद्र गैंग पर पुलिस का शिकंजा, कार से मिला 50 किलो गौवंशीय अवशेष, 4 की गिरफ्तारी। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए अवैध कब्जे। हरियाणा के झज्जर में गैंगवार में हत्या, कार सवार शख्स को 30 गोलियां मारी गई। रोहित गोदारा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। लखनऊ पुलिस को वांटेड दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ ने नाइजीरियाई ठग को गिरफ्तार किया, 68 लाख रुपए की ठगी का आरोप। अहमदाबाद में पानीपुरी से निकली थी हड्डी, शिकायत करने पर दुकानदार बोला कहीं से उड़कर आ गई होगी। नासिक में सराफा दुकान में हथियारों के साथ लूटपाट की कोशिश की गई, 2 महिलाएं और 1 शख्स ने 4 लोगों को खदेड़ा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सट्टा मामले में रायगढ़ की पुलिस ने गोवा के 6 बड़े सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, 0.5 दर्जन से ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला निकला तांत्रिक, झांसी से गिरफ्तार किया गया। पिस्तौल रिवॉल्वर समेत 7 हथियार जब्त किए गए। रायगढ़ की सिंगनपुर गुफा में वैज्ञानिकों पर मधुमक्खी ने हमला बोला, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर के किशनगढ़ में जिम ट्रेनर पर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोप हैं, आरोपी की पत्नी नहीं इसका खुलासा किया। सूरत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से टैंकर से पेट्रोल चोरी का भंडाफोड़ हुआ, 3 की गिरफ्तारी। रायसेन में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हुई, चेतावनी बोर्ड बैरिकेडिंग नहीं होने के बाद प्रशासन से सवाल पूछे गए। प्रवास की कल की 2 में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण की पैड्री के ट्रेलर लॉन्च में हो गया। एमएस धोनी की एंट्री, 4 जून को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन नजर आएंगे। अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना का, ये तीसरी थी के 15 में नजर आएंगे साथ। फिल्म भूत बंगला ने मचाया है धमाल, फिल्म ने 29 दिनों के भीतर 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, रोहित शेट्टी की इस मूवी में विलेन का रोल करेंगे। गोलमाल 5 में मेकर्स ने इस फिल्म को खास बताया, अक्षय कुमार इस मूवी में कॉमिक विलेन के रूप में नजर आएंगे। साउथ की सुपरस्टार नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा काफी फेमस हैं, फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती हैं। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल के सामने आया है सुनील शेट्टी का भी फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 बड़े मुकाबले। पहला मुकाबला धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच। शाम को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें होंगी आमने सामने। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत जरूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 247 रन से दर्ज की धमाकेदार जीत। गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया।
फिन एलॉन ने 35 गेंदों में 93 रन बनाए थे। केकेआर को मिली तेज शुरुआत। आंग कृष रघुवंशी को 82 रन की पारी। मध्यक्रम की मजबूत संस्था बनी कैमरून ग्रीन की 52 रन की तेज पारी। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी भरा संदेश। सोशल मीडिया पर साझा की हमलों से जुड़ी एक और तस्वीर। दूसरे पोस्ट में नाव पर सवार नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके सैन्य अधिकारी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ईरान पर फिर से हमले कर सकता है अमेरिका। चीन से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं। अमेरिका के खिलाफ पूर्व IRGC के प्रमुख कमांडर मोहसिन रजाई का बड़ा दावा। अमेरिका अब नई विश्व व्यवस्था का केंद्र नहीं है। चीन से मदद मांग रहा है अमेरिका। नाइजीरिया में मारा गया ISIS का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी। बेशेमेश के पास एक रक्षा कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में जोरदार धमाका हुआ। आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया। इलाके में दहशत थी। यरूशलम के पास विस्फोट से अफरा तफरी मच गई थी। कंपनी ने बताया पहले से तय प्रयोग के तहत यह ब्लास्ट किया गया। यूक्रेनी शहरों पर हो रहे हमलों पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेनी सेना रूस के हमलों का जवाब दे रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और तेल डिपो को किया गया था तबाह। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में बड़े पैमाने पर हमला किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा हुआ। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने बस को जोरदार टक्कर मारी थी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम, एक हिंट तो देते।
4: विक्रम!
3: हिंट
5: बड़े आराम से।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
13: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
15: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: JK Masala ne hamesha waqt ke saath apni technique ko upgrade kiya hai. Traditional Bhartiya masalon ka wahi purana blockbuster swaad. JK Masala, jahan swaad, wahan JK.
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है.
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है.
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
6: Lion Date Nut Bites.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
11: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
0: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल. हिंट, बड़े आराम से. कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
3: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
7: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
8: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं.
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप.
10: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही.
11: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर.
12: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके.
10: शुभेंदु अधिकारी,
9: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.
13: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
14: अनुपम मिश्र,
15: मोहम्मद भारद्वाज,
16: पीयूष मिश्रा,
17: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove Station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
8: बोलो जुबान केसरी
9: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके
10: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिया
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था एनटीओ को पता नहीं
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ एनटीए जागी पेपर रद्द हुआ हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा
12: जहां खबर वहां खबरदार
16: इन एसोसिएशन विद
17: मोंटी कार्लो इट्स द वे यू मेक मी फील
18: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: धार की भोशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद ASI ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई। परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह धार आज तक।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो तबड़क तबड़क
1: घोड़ा नहीं दौड़ा है।
0: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एक्शन पर बवाल, अवैध रूप से बने चैम्बर तोड़ने पर वकीलों का हंगामा, नगर निगम कर्मचारियों को रोका, हाईकोर्ट से आया था आदेश। महंगाई की एक और किश्त आई, दिल्ली में सीएनजी की कीमतें फिर से बढ़ी, प्रति किलो एक रुपए का इजाफा, दो दिन में 3 रुपए की बढ़ोतरी। नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नो सुपर पार्क के साथ कई करार, प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित, नीदरलैंड ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। नीट पेपर लीक कांड में सियासत गरमाई, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा, तो बीजेपी ने बच्चों के ऊपर राजनीति करने के आरोप लगाया, अब तक 9 की गिरफ्तारी, एनटीए में 2 नए ऑफिसर्स की एंट्री। और तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा तफरी मची, मध्य प्रदेश के रतलाम में B1 कोच धू धू कर जला, आनन फानन में 68 यात्रियों को बाहर निकाला गया, कोई हताहत नहीं।

0: वक्त है वॉर रूम का, लेकिन उससे पहले बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है जो हम आपको बता दें। यहाँ बुलडोजर एक्शन की वजह से हंगामा शुरू हुआ है। लखनऊ के कचहरी के पास नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची है और वहां टकराव की स्थिति देखी गई है। वकीलों ने अवैध तरीके से चैंबर बनाए हुए हैं जिसे तोड़ा जा रहा है और इसी पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। तमाम वकील यहां इकट्ठा हैं और लगातार वो विरोध कर रहे हैं इन चैंबर्स को तोड़ने का। तो लखनऊ कचहरी से तस्वीरें आई हैं सामने और आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामे की जानकारी है। हालांकि यहां पर व्यवस्था प्रशासन की भी चाक चौबंद है, लेकिन जबरदस्त एक्शन हुआ है। यहां बुलडोजर एक्शन के बाद बड़ी संख्या में यहां विरोध जताया गया है तमाम उन वकीलों की तरफ से जिनके चैंबर्स को तोड़ा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, अभी स्थिति क्या है?
1: देखिए, अभी वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, वकीलों का जो प्रदर्शन है वो जारी है, विरोध जारी है। दरअसल नगर निगम के द्वारा जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, सड़क के किनारे जो वकीलों का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रमाइसेस है वहाँ पर चैम्बर बनाए गए थे और उन चैम्बर्स को तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है कि ये अतिक्रमण किया जा रहा है और सड़क चौड़ी की जा रही है, उसी को लेकर के बुलडोजर एक्शन है। आज क्योंकि संडे है, कचहरी भी बंद होती है, कामकाज नहीं होता है, तो इसलिए आज का दिन चुना गया। लेकिन जैसे ही वकीलों को जानकारी मिली, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के सामने वकील भी पहुंचे हुए हैं, विरोध जारी है कि बुलडोजर एक्शन का विरोध हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी लखनऊ कोर्ट प्रमाइसेस में बने हुए तमाम वकीलों के चैम्बर को ऐसे ही तोड़ा गया था, लेकिन अब ये सड़क के किनारे जो अतिक्रमण करके चैम्बर बनाए गए हैं उन पर ये बुलडोजर एक्शन जारी है। जी,
0: और क्या इनको पहले से नोटिसेज नहीं दिए गए थे? क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो जद्दोजहद की तस्वीरें हैं। या अच्छा खासा फोर्सफुली इन तमाम लॉयर्स को हटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से?
1: ठीक है, बिल्कुल, इनको हटाया जा रहा है। और किसी वकीलों का मामला है तो ऐसा नहीं है कि इनको पहले से संज्ञान था, इनको बताया गया था। जो स्थानीय हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई, कि नगर निगम के द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि ये अवैध है, इनको अतिक्रमण करके बनाया गया है और इनको हटाया जाएगा, और उसी क्रम में ये हटाया जा रहा है। जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको हमारी खास पेशकश वॉर रूम।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चीन में बैठकर ट्रंप ने ईरान को जो संदेश दिया है वो सुनने लायक है। शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों ने माना कि हॉर्मूज को खोलना जरूरी है। यही नहीं, शी जिनपिंग के सामने ट्रंप ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग से लौटने के बाद शुरू होगा ईरान युद्ध का राउंड टू, यानी तेहरान के ऊपर फिर बारूद बरस सकता है। लेकिन ईरान भी सीधा झुकने वाला नहीं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स खुली धमकी दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले वॉर अपडेट।
1: अमेरिका का ईरान पर फिर से हमले का प्लान तैयार है। ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन ईरान में कभी भी शुरू हो सकता है। चीन के दौरे से निकलने के बाद ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने में भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने वॉशिंगटन की ओर से आने वाले विरोधाभासी संदेशों को इसका मुख्य कारण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की जगह 20 साल के निलंबन को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को उन जहाजों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल रहा है जो उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी लगातार जारी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार लेबनान इसराइल युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीजफायर के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यूएई ने कहा है कि वो ईरानी हमलों को सही ठहराने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर इलाके में एक सैन्य कैंप पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। अक्टूबर 2025 के बाद यह पहली बार है जब टीटीपी ने किसी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 2 दिनों के भीतर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने बुधवार से अब तक 1567 ड्रोन दागे हैं जिसमें राजधानी कीव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया है। कम से कम 27 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना ने कीव में रूसी हमले में 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया है। इस भीषण तबाही के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 5 देशों के दौरे के तहत यूएई पहुंचे। यूएई के ओपेक से बाहर होने और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुई उथल पुथल के बीच भारत और यूएई ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा किया है। ये समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं।
0: चीन भले ईरान का सबसे बड़ा साथी हो लेकिन बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने साफ कहा कि हॉर्मूज बंद नहीं होना चाहिए। ईरान परमाणु जिद और हॉर्मूज बंद रखने की धमकी से पीछे नहीं हट रहा। इजरायली मीडिया का दावा है कि चीन दौरे के बाद ट्रंप फिर हमला कर सकते हैं। इजरायल भी तैयार बैठा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बातचीत लगभग खत्म। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग भड़क सकती है?
1: पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त एक महायुद्ध का सायरन बज सकता है। आसमान में मिसाइल और जमीन पर धमाकों की गूंज एक बार फिर सुनी जा सकती है। उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी हैं। वजह ईरान की वो जिद जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलने पर आमादा है। चीन भले ही खुद को ईरान का सबसे सच्चा दोस्त बताता हो लेकिन बीजिंग में शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक लकीर खींच दी है। ट्रंप और जिनपिंग दोनों ने एक सुर में साफ कह दिया है कि हॉर्मूज को खोलना ही होगा। लेकिन तेहरान में बैठी सत्ता अपनी न्यूक्लियर जिद और हॉर्मूज को बंधक बनाए रखने की सनक से रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है। चीन से लौटते वक्त एयरफोर्स वन से ही ट्रंप ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
2: wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it. But we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it.
1: ईरानी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में छिपाए जाने की खबरों के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन के रणनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि क्या पाकिस्तान फिर दोहरी नीति अपना रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत मान रहे हैं।
3: I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, you know, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already.
1: तो अब पाकिस्तान का डबल गेम दुनिया के सामने आ रहा है। चीन जाने से पहले ही ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ जो दिखावे का सीज़फायर था, वो अब लाइफ सपोर्ट पर है।
2: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living."
1: आपको याद दिला दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो बमों की बारिश की थी, वो पाकिस्तान के बीच बचाव के बाद रुकी थी। ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि सीज़फायर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक फेवर था। ईरान ने जो शांति प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप ने उसकी पहली लाइन पढ़ते ही उसे डस्टबिन में डाल दिया था।
4: Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
2: No, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away.
1: ट्रंप ने अब ईरान को एक आखिरी टेक इट और लीव इट ऑफर दिया है। अगर ईरान अगले 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह फ्रीज कर दे बिना किसी चालबाजी के, तो अमेरिका मान सकता है।
2: 20 years is enough, but the level of guarantee from them is in other words, it's got to be a real 20 years. We're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a terrible sheep shirt brought on.
1: इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप के चीन दौरे से लौटते ही ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान के यूरेनियम भंडार खत्म होने तक इजरायल पीछे नहीं हटेगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ईरान हॉर्मुज में तेल जहाजों को रोककर टोल टैक्स वसूलने की दबाव की राजनीति कर रहा है। पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने धमकी दी है कि प्रतिबंध हटने और ईरान की शर्तें माने बिना कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका युद्धपोत भेजने की तैयारी में है और इजराइल भी हमले के मौके तलाश रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है।
0: ट्रंप का चीन का दौरा खत्म हो चुका है। फारस की खाड़ी में युद्ध की आहट फिर से एक बार सुनी जा रही है। खाड़ी के देशों में बारूद की गंध पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन अब यह सवाल है कि क्या समुंदर फिर से सुलगने वाला है। खैर, ईरान और अमेरिका के बयानों से तो यही लगता है। दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान का अंत करीब है या खत्म हो जाएगी अमेरिका की बादशाहत हमेशा के लिए। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान को बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान डरकर दुबक गया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि मिसाइलें, ड्रोन अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधे हुए हैं, यानी अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा विध्वंसकारी होगा।
1: IRGC ने समंदर की लहरों पर अपनी हुंकार भर दी है। सीधा और साफ संदेश देते हुए कहा, अगर ईरान के एक भी तेल टैंकर या कमर्शियल जहाज को खरोंच भी आए, तो समंदर की लहरें अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल हो जाएंगी। ये सिर्फ कीदड़ भपकी नहीं है, ये बारूद की वो हकीकत है जो फटने को तैयार है। जनरल सरदार मुसावी ने पूरी दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलें और घातक ड्रोन्स अमेरिकी ठिकानों पर लॉक हो चुके हैं। हमलावर जहाज हमारी रडार पर है और हम बस उंगली दबने का इंतजार कर रहे हैं।
5: ईरान मैनेज कर रहा है क्योंकि उस एक तो ट्रेन है, जो फ्रेट ट्रेन चलती है शांघाई से लेकर के तेहरान तक 15 दिन लेती है, तो कम से कम वो फ्रेट ट्रेन के द्वारा हो रहा है। दूसरा पाकिस्तान ने 6 अपने एंट्री पॉइंट्स खोल दिए हैं, तो वहां से भी सामान अब ईरान के अंदर जा रहा है। और तीसरा स्मगलिंग हो रहा है, ईरान की मदद हो ही रही है। और लेकिन अब जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि एक जब घेराबंदी हो जाती है, ना ईरान से कोई चीज बाहर जा सकती है, ना ईरान से कोई चीज आ सकती है। 90% जो एक्सपोर्ट्स है ईरान पे तेल का, वो सब चीन उठाता था, अब वो वहां पर भी तकलीफ हो रही है।
1: जंग शुरू होने से पहले ईरान को लेकर अमेरिका की जो भी सोच रही हो, लेकिन 75 दिन बाद वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात की तस्दीक अमेरिकी सेनेट भी कर रही है। 400 million that you referred to, Under Secretary Colby's done a great job. दरअसल अमेरिकी सेनेट में सवाल उठा तो वो सिर्फ मिसाइलों का ही था, बल्कि भरोसे का भी था। सेनेटर मर्फी पूछ रहे थे कि आखिर ईरान के पास कितनी मिसाइल्स बाकी हैं।
6: जनरल केन,
1: लेकिन जनरल केन और रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने चुप्पी साध ली।
7: Secretary and others in the president's cabinet have said very clearly that our war objective is to destroy Iran's missile and drone program. The president said just a week ago that Iran maybe had 18-19% of their missile capacity left. But there is public reporting suggesting that our intelligence agencies say that Iran still has 70% of their missile and drone capability, which would be a failure of our objectives if that were to be true. What can you tell us about the number of missiles and drones that they have left, and do you dispute that intelligence estimate?
8: Sir, I'm not going to comment. With deep respect for the question, I'm not going to comment.
1: सेनेट में शायद सबसे भारी चीज कोई दस्तावेज नहीं बल्कि वो खामोशी थी, जिसमें ये स्वीकार छिपा था कि पश्चिम एशिया की आग अभी बुझी नहीं है।
9: ईरान एक तो सीक्रेटिव सा एक रजीम है, और उनके सारी जो प्रोडक्शन है यहाँ तो इंडिजीनियस है, अपने आप ही बनाते हैं, या फिर कुछ चाइना रशिया से मदद लेके बनाते हैं, जो भी वो भी मतलब कॉन्फिडेंशियल सी एक चीज है। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका को पता नहीं है, वो कई बारी जो उनका इंटरनल इंटेलिजेंस है उसको बाहर नहीं दिखाते, और प्रोपेगेंडा वो कह देते हैं कि इनके पास बस खत्म होने वाली है, बस 2000 ही थी, बस और है नहीं। ये अपने प्रॉप अप करने के लिए और थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए और अलाइज को थोड़ा हौसला देने के लिए, अलाइज का मतलब जो गल्फ कंट्रीज हैं या बाकी हैं, इनको थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ चलो भाई इससे ज्यादा नहीं ये लड़ सकेंगे, पर उनकी क्षमता बहुत है। और आज मिसाइल बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं और वो पता नहीं 40 साल से बना रहे होंगे, और 2015 में जाके उन्होंने एक अपना कहा कि चलो हम 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बनाएंगे।
1: दूसरी ओर ईरान की धमकियों के धुएं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की धरती पर जाकर बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के बगल में बैठकर दुनिया को एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी बल्कि ताकत के उस नए व्याकरण की थी, जिसमें दोस्तियां भी सौदे हैं और चेतावनियां भी संदेश।
10: And we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: राजनीति में कई बार शब्द नहीं बैठने की जगह बोलती है। ट्रंप की वो कुर्सी शायद यही कह रही थी कि अमेरिका अब ईरान को केवल मध्य पूर्व का मसला नहीं मानता बल्कि उसे चीन की बढ़ती वैश्विक साझेदारियों के आईने में देख रहा है।
6: If I can be of any help at all, I would like to be of help.
11: Because, he did say that.
6: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
1: आग अभी सुलगी ही थी कि ब्रिटेन ने भी अपना HMS ड्रैगन समंदर में उतार दिया है। ब्रिटेन इसे डिफेंसिव कह रहा है लेकिन ईरान इसे अपनी घेराबंदी मान रहा है। तेहरान ने उन देशों को भी चेतावनी दे दी है जो अमेरिका की गोद में बैठकर साजिश रच रहे हैं, खासकर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब ईरान की हिटलिस्ट में है। तो क्या ये ट्रंप की फाइनल वॉर होगी? इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को मिटाने का जो सपना देखा है, क्या वो हकीकत बनेगा या फिर ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगी? ईरान ने लिख दिया है अपना फैसला, हमला हुआ तो इस बार तबाही पहले से ज्यादा भीषण होगी।
0: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि इजराइल लेबनन बॉर्डर कब तक सुलगता रहेगा। देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
10: और वही कहां गए थे घूमने?
11: JK Maxx।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: JK Maxx, बेस्ट फुटी।
13: JK वॉल मैक्स,
11: बेस्ट पेंट।
14: JK Maxx।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
11: JK Maxx Paints.
15: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
12: हमारे सीमेंट में नहीं है।
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी

इसराइल लेबनन के बीच अमेरिका शांति वार्ता करा रहा है, लेकिन जमीन पर इसराइल लगातार बम बरसा रहा है। लेबनन में हमले, हिजबुल्ला की जवाबी फायरिंग और आईडीएफ सैनिक की मौतों ने साफ कर दिया है कि सीज फायर वहां पर केवल कागज पर बचा है। उधर ट्रंप का बयान भी धमकी जैसा है, डील करो वरना खत्म हो जाओ। चीन ने ईरान को हथियार न देने का भरोसा दिया है, लेकिन वेस्ट एशिया में बारूद अब भी बिछा पड़ा है। वॉशिंगटन में बातचीत शुरू होने से पहले ही इसराइल ने लेबनन पर हमला तेज कर दिया, यानी दुनिया शांति की बात कर रही है और मैदान में युद्ध की तैयारी चल रही है।

दुनिया जिसे सीज फायर कह रही है वो दरअसल अघोषित युद्ध का युद्ध घोष है। इसराइल और लेबनान से हिजबुल्ला लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। 16 अप्रैल को वाशिंगटन से खबर आई कि ट्रंप ने कमाल कर दिया, इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम हो गया। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान से लेकर उत्तरी इसराइल तक फिर से बम वर्षा होने लगी।

0: हिजबुल्ला जो है और जो बफर जोन बनाया था बिटवीन द लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में, वहां पे लेबनीज की फौज ने उस वहां पे जो है अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी प्लस यूनिफिल के द्वारा, लेकिन वहां पे हिजबुल्ला आने के कारण देखते हैं कि पूरी लड़ाई के दौरान जो रॉकेट्स हैं जो माना जाता है कि हिजबुल्ला के पास काफी उसके पास रॉकेट्स का जो भंडार है वो है। इसराइल का ये मानना है कि हिजबुल्ला जो है एक आतंकी संगठन होने के नाते जिस प्रकार से रॉकेट लगातार फायर करता रहता है, तो इसराइल ने अब देख लिया 1982 से 2000 तक 18 साल के बाद जब वहां से इसराइल निकला तो हिजबुल्ला ने वही वैक्यूम जो हुआ वहां पे आके हिजबुल्ला बैठ गया और जिस प्रकार से लगातार परेशान करता रहता है इसराइल को, तो उससे बचने के लिए इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला जो है ये आतंकी संगठन जिसको ईरान मदद करता है उसका खात्मा हो।
1: ये कैसा सीज फायर है जहां शांति के नाम पर सिर्फ लाशें गिनी जा रही हैं? व्हाइट हाउस में बैठकर पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरहद पर गोलियों की भाषा आम हो चुकी है।
2: October 7th, Hamas invaded us, butchered our men, beheaded our men, raped our women and then killed them, burnt our babies, did the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. And guess what? On the other border, Hezbollah from Lebanon was planning to do even more. They had 5,000 Redwan Force terrorists ready to invade the Galilee. So we pushed them back. We've got a security belt now that prevents them from doing that or shooting anti-tank missiles into our kitchens, into our living rooms. But it's not over yet. We still have missiles. We have drones, killer drones. We have to deal with them.
1: आंकड़े सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या इसे शांति कहेंगे।

0: फायर शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने 220 से ज्यादा बार इसराइल पर हमला किया। जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। लेबनान में हिजबुल्ला के 1100 से ज्यादा ठिकानों को खंडहर बना दिया। इसराइल का दावा है कि उसने 350 आतंकियों को खत्म किया है, लेकिन मौत का असली चेहरा कुछ और ही है। 350 आतंकी मारे गए, ये इसराइल का दावा है। लेबनान में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। सोचिए, 1.25 लाख लोग शेल्टरों में ठूंस दिए गए हैं, जहां न भविष्य है न सुरक्षा। क्या ट्रंप प्रशासन की ऐतिहासिक डील का यही अंजाम होना था? इसराइल कह रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है, और हिजबुल्ला कह रहा है उसे प्रतिरोध का हक है। हिजबुल्ला का रुख साफ है। सीनियर कमांडर वकीफ सफा ने दो टूक कह दिया है कि हथियार तब तक नहीं डालेंगे जब तक इजरायली सेना लेबनान की एक एक इंच जमीन खाली नहीं कर देती। हिजबुल्ला को लेबनान की सरकार की परवाह नहीं है, उसे परवाह है अपने आका ईरान की।
1: Let me tell you, the Lebanese would like us to do that. Many, you know, they talk
2: eradicate Hezbollah.
1: Oh yeah, because they want freedom. Who would want a country to be taken over by these killers, these murderers? Of course they want to be free, but they've not shown yet the capacity to fight them. What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically, possibly splitting up the work, to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done as well.
0: वही ईरान जिसने 1982 में इस संगठन को पाला पोसा।
3: Déséquilibré à l'image de cette guerre que ce livre.
0: तेहरान से बयान आता है कि इजराइल लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान की प्रॉक्सी वॉर ही इस पूरे तनाव की जड़ नहीं है? IRGC के कुछ फोर्स की ट्रेनिंग और पैसे के दम पर ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही।
1: If Iran, if this regime is indeed weakened or possibly toppled, I think it's the end of Hezbollah, it's the end of Hamas, it's probably the end of the Houthis, because the whole scaffolding of the terrorist proxy network that Iran built collapses if the regime in Iran collapses. Now that's not guaranteed, but the weakening of that regime weakens the proxies as well. Still a long haul, you know, it's not something that's going to be done
0: इधर अमेरिका एक तरफ वो हिजबुल्ला को आतंकी संगठन कहता है, दूसरी तरफ लेबनान की सरकार से हाथ मिलाता है। ध्यान दीजिए, 14 मई को वाशिंगटन में 8 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद कहा गया सब कुछ सकारात्मक रहा, और 15 मई को हिजबुल्ला के हमले में 6 इजरायली सैनिक मार दिए गए। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक रणनीति है ताकि दोनों पक्ष फिर से गोला बारूद इकट्ठा कर सके? ट्रंप का कहना है कि ये ऐतिहासिक समझौता होगा, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतिहास खून से लिखा जाएगा? एक तरफ बातचीत से शांति की अपील हो रही है, तो दूसरी तरफ गोलीबारी के धमाके। लेबनान की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि सायरन का शोर है। इसराइल रुकने को तैयार नहीं, हिजबुल्ला झुकने को तैयार नहीं, और ईरान आग में घी डालने से पीछे नहीं हट रहा।
1: Because they want Hezbollah to stay there and continue to torture Lebanon, continue to hold its people hostage. He understands what I'm saying. I mean, we want to get rid of that danger to our communities, to our cities. They rocket our cities all the time. They rocket our communities. And of course, would you want to live like that? I mean, would you like to live? Where do you live, Major?
0: लेकिन शोर इसराइल के अंदर भी है। सरकार पर नए मोसाद प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सवाल वहां भी उठ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपने नए मोसाद प्रमुख की नियुक्ति का बचाव किया। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इसराइल की खुफिया एजेंसियों पर आखिरी अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का है, न अदालत का, न मीडिया का। वेस्ट एशिया की इस लड़ाई में अब सच और रणनीति के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। अमेरिका शांति की भाषा बोल रहा है, इसराइल सुरक्षा की, हिजबुल्ला प्रतिरोध की, और ईरान बदले की, लेकिन इन सब के बीच मर कौन रहा है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सीज़फ़ायर कब तक चलेगा, सवाल यह है कि क्या यह शांति की शुरुआत है या अगले बड़े युद्ध से पहले की खामोशी।
4: दुनिया इस वक्त किसी आम युद्ध से नहीं चिंतित है, ये बारूद की नहीं बल्कि तेल की जंग भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आज पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% युद्ध शुरू होने से पहले इसी संकरे रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज ये रास्ता एक ज्वालामुखी बन चुका है और अमेरिका की हार और जीत इसी रास्ते से होकर गुजरती है।

0: आजादी रेजिम चेंज से होते हुए वेस्ट एशिया की जंग अब तेल पर आकर रुक गई है। फरवरी 2026 से पहले हॉर्मुज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल पार होता था, लेकिन आज सन्नाटा है, सप्लाई ठप है। खाड़ी देशों में उत्पादन करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन गिर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो तेल कल तक 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था, वो आज 100 डॉलर की दीवार लांग चुका है। यानी मिसाइलें पश्चिम एशिया में गिर रही हैं और असर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है।
1: पूरा विश्व चाहता है ये लड़ाई समाप्त हो और ईरान को हारा हुआ ना देखा जाए, ना अमेरिका को जीता हुआ देखा जाए। लेकिन विश्व में अगर तेल की किल्लत ना हो, इस तरह का जो परेशानी पूरे विश्व भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर, खाना पीना तकलीफ हो रही है, उससे अगर बचना है तो मुझे लगता है हम लोगों को एक ऑनरेबल एग्जिट देना पड़ेगा ईरान को। लेकिन नहीं तो ईरान को भी तकलीफ होगी। लेकिन ईरान जिस प्रकार से जो चीन जो मदद कर रहा है, अगर चीन मदद करना बंद कर देता है, जो बहुत बहुत मुश्किल है, चीन मदद करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि चीन भी चाहता है कि ईरान किसी ना किसी तरीके से अपने आप को, उसकी अहमियत कम ना हो, उसके अस्तित्व पे चोट ना आए।
0: इस खेल में सबसे ज्यादा वो देश पिस रहे हैं जिनका अपना कोई तेल का कुआं नहीं है। एशिया और अफ्रीका के वो देश जहां आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हालत देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते भर का तेल बचा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की सांसें भी फूल रही हैं। उनके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का रिजर्व है, जबकि नियम कहता है कि कम से कम 90 दिन का भंडार होना चाहिए। वहीं अफ्रीका के कई देशों की हालत भी ऐसी ही है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की 70% आबादी उन देशों में रहती है जिनके पास इस महासंकट से लड़ने के लिए ढाल ही नहीं है।
2: इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, इंडिया अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में, यूरोप में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेट्रोल डीजल और क्रूड और गैस की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ी हैं। जबकि हिंदुस्तान में पिछले 2.5 महीने में, जब से लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, 2.5 महीने में हमने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया है कि कीमत मुश्किल से 1-5% ही बढ़ी है। लेकिन अभी क्योंकि ये जंग लंबी खींचती जा रही है, और अभी जैसे कल भी हुआ, एक हमारा जो मर्चेंट शिप था उसको टारगेट किया गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, गल्फ ऑफ ओमान में, तो अभी आगे आगे ये जो पीड़ा है ये जारी बढ़ेगी और इसके लिए हमें पूरा तैयार रहना है।
0: बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, रसोई तक आग पहुंच चुकी है। भारत में ही देख लीजिए, पिछले 2 महीने में एलपीजी की खपत 13% कम हुई है। समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, ऊपर से ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बहता हुआ हजारों बैरल तेल। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, कुदरत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इस अंधेरे में भारत अपनी मशाल जलाए खड़ा है। दिल्ली जानती है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। मई 2026 में भारत रिकॉर्ड 23 लाख बैरल रूसी तेल हर रोज मंगा रहा है। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि हमारे लिए देश का आम नागरिक और उसकी रसोई पहले है। रूस भी कह चुका है कि वो भारत के हितों पर आंच नहीं आने देगा।
3: मूल रूप से अमेरिका ने ऐसे कई रुख अपनाए हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। उनका लक्ष्य सब कुछ हथियाना है, उन सभी ऊर्जा रूट को हथियाना है जो अहम है। ये लक्ष्य काफी स्पष्ट है और मुझे विश्वास है कि भारत समझता है कि क्या हो रहा है। अब वे हमारे गैस और तेल पर केवल इसलिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रूस को सजा देनी है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि रूसी आपूर्ति के मामले में भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यह अनुचित तरीका, अनुचित प्रतिस्पर्धा हमारी व्यवस्थाओं को प्रभावित न कर सके।
0: क्या भारत सुरक्षित है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आंकड़े तसल्ली देते हैं।
4: आवर एलपीजी, द सिलेंडर गैस व्हिच यू यूज इन किचन्स, अबाउट 60% यूज्ड टू कम फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। Now we had to make arrangements. And look and behold, I mean, I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आईएमएफ की वो चेतावनी सच हो सकती है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में फंसेगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। खाद, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।
5: वेस्ट एशिया में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव नहीं है, ये दुनिया की नई पावर पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। ऊपर से सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन पीछे युद्ध की तैयारी चल रही है। हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया के बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं, आज मिसाइलों, युद्ध पोतों और धमकियों के बीच फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी हो कि अगला धमाका जाने कब हो जाए। यूएस की नजर क्यूबा पर भी है, हालात वहां भी सामान्य नहीं है। यूएन चेतावनी दे रहा है कि युद्ध हुआ तो मानवता को खतरा है।

0: ईरान अब पहले वाला ईरान नहीं दिखता जो सिर्फ अमेरिकी सैंक्शन से डर जाए। तेहरान का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। उसकी नौसेना स्पीड बोट्स, ड्रोन, सी माइंस और छोटी पनडुब्बियों के साथ हॉर्मुज में ऐसी तैनाती कर रही है जैसे वो दुनिया को बता देना चाहता हो कि अगर दबाव बढ़ा तो तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक भी सकती है।
1: When it comes to
2: भारत के लिए ऊर्जा संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई जा रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे तब हम यहीं पास में श्री अराउची के साथ थे और अब वे यूएई में हैं। भारत के लिए ऊर्जा संकट एक गंभीर मुद्दा है।
3: भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं। इतिहास में ईरान और भारत के बीच कई समानताएं रही हैं। कूटनीतिक रूप से हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और हम निरंतर संपर्क में हैं। अन्य देशों के साथ हमारे संबंध हमेशा से भारत के विरुद्ध नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा है कि कोई भी द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के साथ हमारे संबंध आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित
4: है Mutual respect, mutual,
3: और हम भारत के साथ स्वस्थ संबंधों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं।
0: ईरानी सेना खुले तौर पर कह रही है कि फारस की खाड़ी में उसकी डॉल्फिन पनडुब्बियां हर वक्त अलर्ट पर हैं। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जमीन पर नहीं समंदर में भी मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका है, ट्रंप प्रशासन लगातार दबाव बढ़ा रहा है। बातचीत जारी रखने की कोशिशें होती दिख जरूर रही हैं, लेकिन उसके साथ युद्ध पोत भी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और नौसैनिक बेड़े खाड़ी में तैनात हैं।
5: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. It's going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise.
0: अमेरिका अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा बल्कि ब्लॉकेड डिप्लोमेसी कर रहा है, यानी पहले आर्थिक और समुद्री घेराबंदी करो फिर बातचीत की शर्तें तय करो। ईरान के पोर्ट्स, बैंकिंग सिस्टम और तेल कारोबार पर नए सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने दबाव के बाद भी ईरान झुकेगा या और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। इस पूरे संकट में यूरोप का बदलता चेहरा भी दिलचस्प है। कुछ महीने पहले तक ट्रंप की रणनीति की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब खुद युद्धपोत भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेजने का फैसला किया है। फ्रांस अपने राफेल और फ्रिगेट्स के साथ मैदान में उतर चुका है। जर्मनी और इटली भी समुद्री रास्तों की निगरानी में लगे हैं। वजह साफ है, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल महंगा होगा, गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में किसी भी विदेशी सैन्य दखल का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यानी खाड़ी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रही, ये संभावित युद्ध का मैदान बन चुकी है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। यूएन ने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज के रास्ते खाद और जरूरी सप्लाई की आवाजाही रुकी तो दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य संकट और भूख जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर आम आदमी की रसोई तक पहुंचेगा। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ट्रंप प्रशासन की नजरें क्यूबा पर भी हैं। अमेरिका अब खुलकर उस नीति की तरफ लौटता दिख रहा है जिसमें वो अपने प्रभाव वाले इलाके में किसी भी विरोधी ताकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। क्यूबा पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है, यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि दुनिया की नई जियो पोलिटिकल लाइनें खींचने की तैयारी है। इस पूरे खेल को चीन भी बहुत ध्यान से देख रहा है। बीजिंग समझना चाहता है कि अगर कल ताइवान को लेकर अमेरिका से टकराव हुआ तो समुद्री नाकेबंदी, आर्थिक प्रतिबंध और ऊर्जा सप्लाई को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि वेस्ट एशिया का ये तनाव अब सिर्फ अरब दुनिया की खबर नहीं रहा, ये वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और यूरोप की रणनीतियों का हिस्सा बन चुका है।
1: वॉर रूम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today? Beautiful.
6: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
6: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
10: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का
2: ये तो तबड़क तबड़क
1: तबड़क
0: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।

दुनिया के अमीरों की दुनिया भी निराली होती है। जहां आम आदमी घर खरीदने से पहले होम लोन और ईएमआई के बारे में सोचता है, वहीं अरबपति देश बदलने से पहले टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। एक समय था जब लंदन और पेरिस स्टेटस का प्रतीक थे, लेकिन फिर दुबई टैक्स फ्री सपना बन गया। ये तस्वीर एक बार फिर बदल रही है और इस बार रईसों की नज़र इटली पर टिक गई है, क्योंकि दुनिया भर के हाई नेटवर्क लोग फ्रांस और ब्रिटेन छोड़कर इटली का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह विदेशी कमाई पर फ्लैट टैक्स है, जो अधिकतम करीब 3 लाख यूरो सालाना है। वहीं प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस टैक्स में इटली में बड़ी राहत मिल रही है, यानी कमाई चाहे जितनी हो टैक्स फिक्स रहेगा और नियम भी आसान है। ऐसे में इटली अमीरों के लिए नया हॉट डेस्टिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ट्रेंड के पीछे की वजह केवल टैक्स नहीं है, लोकेशन भी बड़ी वजह है, क्योंकि यूरोप के बीचों बीच होने से यहाँ पर बिजनेस कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। इससे पेरिस, लंदन, बर्लिन जैसे शहरों तक पहुँचना आसान रहता है। वहीं पहली प्रॉपर्टी पर कई टैक्स से राहत मिलती है, जबकि 10 लाख यूरो तक इनहेरिटेंस पर शून्य टैक्स लगता है और इसके बाद भी केवल 4% टैक्स चुकाना होता है। इसके मुकाबले फ्रांस में तस्वीर बिल्कुल अलग है, वहाँ टैक्स का बोझ ज्यादा है और नियम सख्त होते जा रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर हफ्ते लोग फ्रांस छोड़ने की सलाह ले रहे हैं। भविष्य में ज्यादा सख्ती का डर भी बना हुआ है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा मिडिल ईस्ट से जुड़ा है, जहां हालात ने गेम बदल दिया है। मिडिल ईस्ट तनाव से दुबई जैसे टैक्स फ्री हब पर अनिश्चितता बढ़ गई है, निवेशक नए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि बड़े स्तर पर तो माइग्रेशन नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेंड साफ तौर पर बदलता दिखाई दे रहा है। साफ है कि दुबई जो कभी अमीरों की पहली पसंद था, वहां भी हलचल नजर आने लगी है। डेटा के मुताबिक महामारी के बाद पहली बार प्रॉपर्टी की कीमतों में 5.9% की गिरावट आई है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करीब 30% तक घट गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे क्रैश नहीं हेल्दी करेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि महामारी के बाद प्रॉपर्टी की कीमतें 70% तक बढ़ चुकी थी। ऐसे में थोड़ा ठहराव और कुछ गिरावट को जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल निवेशक वेट एंड वॉच मोड में हैं, यानी जल्दबाजी की जगह सोच समझकर फैसला कर रहे हैं। इस पूरी तस्वीर से साफ समझ आता है कि जहां टैक्स में स्थिरता और सुरक्षा है, हर कोई उसी दिशा में जा रहा है और इटली उसकी नई मिसाल बन रहा है। आदित्य के रा आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

में बुलडोजर एक्शन पर बवाल। अवैध रूप से बने चैंबर तोड़ने पर वकीलों का हंगामा। नगर निगम कर्मचारियों को रोका, हाईकोर्ट से आया था आदेश। महंगाई की एक और किस्त आई, दिल्ली में सीएनजी की कीमत फिर से बढ़ी। प्रति किलो एक रुपए का इजाफा, 3 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पावर के साथ कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित। नीदरलैंड्स ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। नीट पेपर लीक कांड में सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। तो बीजेपी ने बच्चों पर राजनीति का लगाया आरोप। अब तक 9 की गिरफ्तारी। एनटीए में 2 नए ऑफिसर्स की एंट्री।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। वक्त है शतक आज तक का, लेकिन उससे पहले बड़ी और अहम खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां एक कैदी पुलिस वाले के साथ भिड़ गया था। कैदी ने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला बोला है, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, जिसमें कैदी की मौत की खबर है। कैदी का मेडिकल करवाने के लिए पुलिसकर्मी उसे लेकर गया हुआ था, लौटते वक्त कैदी ने हमला बोला और बदले में पुलिसकर्मी ने गोली चलाई और कैदी की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज इसकी सामने आ गई है। बचाव में पुलिसकर्मी ने किस तरीके से कैदी पर ताबड़तोड़ फायरिंग किया वो तस्वीरें देखिए, और कैसे चाकुओं से जबरदस्त हमला इस कैदी की तरफ से पुलिस वाले पर किया गया था। आपको बता दें कि मेडिकल करवाने के लिए पुलिसकर्मी इसे लेकर गया था और लौटते समय इस कैदी ने ताबड़तोड़ चाकुओं से इस पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया था। तो मेडिकल कराने के बाद जब वापस लौटने लगे पुलिसकर्मी, उस दौरान यह घटना घटी है। और आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है। पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, जिसमें कैदी की जान चली गई है। तुरंत ही हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। जो पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कैदी ने चाकू से ताबड़तोड़ पुलिस वाले पर हमला बोला है। ये देखिए तस्वीरें, मेडिकल कराने के लिए इसको ले जाया गया था और उस दौरान जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदने की कोशिश पुलिसकर्मी को इस कैदी की तरफ से हुई है। मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया था, लौटते समय ये घटना घटी और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए।
1: नसीब सिंह ये भजन की कोशिश की, हथकड़ी नू पंदी हुई सी एंड वी आर वेरीफाइंग। जो इन्हें भजन की कोशिश की तो साढ़े को एक वेपन भी सीगा, शार्प एज वेपन, वो कितों इन्हें लिया वो असी इनकुआयर करते हैं, बिकॉज हूँ ये जेल तो बाहर सीगा, कितने इन्हें लिफ्ट किया है, किसी ने यदि मदद की कुछ होया वो वी विल इनवैसटीगेट। तो उस नाइफ के नाल इन्हें साढ़े पुलिस परसनल से सीनियर कॉन्स्टेबल जसदीप सिंह से मल्टीपल अटैक किए।
0: तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें काफी कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि बचाव में पुलिस वाले ने गोली चलाई है और कैदी को दो गोलियां लगी थी, मौके पर ही जान चली गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता कमल जी जुड़ गई हैं। कमल जी, तस्वीरें काफी कुछ है बयां करने के लिए, सवाल अब ये कि ये चाकू आया कहां से कैदी के पास?
2: देखिए ये 3 मिनट का वीडियो है और इसमें एक साफ चीज ये हो जाती है कि 1:30 बजे शनिवार को 4 पुलिस पर्सनल हैं जो कि 3 इनमेट्स को लेकर जाते हैं, जिसमें नसीब सिंह हैं और इसके साथ साथ में ये जो पुलिस वाला है ये बताया जा रहा है जो कि सीनियर कांस्टेबल जसदीप सिंह आइडेंटिफाई किया गया है। अब ऐसा बताते हैं कि जसदीप सिंह अस्थमा से सफर करते हैं, वो ई रिक्शा में इसको एम्बुलेंस तक लेके जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल जेल होशियारपुर दोबारा को लेके जाना था। उसी बीच में जिस तरह से दोनों के बीच में झड़प हुई है, नसीब ने मल्टीपल टाइम्स अटैक करने की कोशिश की है और एक शार्प एज वेपन यानी एक छुरी भी हो सकती है उसके साथ उसने जसदीप सिंह को अटैक किया और इंजर किया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे, पाँव पे और हाथ पे जगह जगह उसको चोटें भी पहुंची हैं और उसे अस्पताल भी बाद में भर्ती कराया गया। लेकिन जो झड़प हुई अपने आप में बहुत ड्रामेटिक है और दिखाते हैं किस तरह से जो क्रिमिनल माइंड का पर्सन है वो ओवर पावर करने की कोशिश कर सकता है। और इस नसीब सिंह के ऊपर पहले से ही कुछ 7 क्रिमिनल मामले दर्ज हैं, जिसमें एनडीपीएस के भी मामले हैं, यानी ड्रग्स जुड़े मामले हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, ये सब मामले इसके ऊपर जो है। और
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे शतक आज तक।

0: लखनऊ में कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट के बाहर बने अवैध चैम्बर्स को नगर निगम ने किया ध्वस्त, पुलिस तैनात। बुलडोजर एक्शन पर वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट के 72 चैम्बर्स को हटाने के आदेश की आड़ में 240 चैम्बर्स को ध्वस्त कर दिया गया। एमपी के बैतूल में ब्रेक फेल होने से 35 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, 108 एम्बुलेंस टीम और ग्रामीणों ने 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। होशियारपुर में जेल से अस्पताल ले जाए जा रहे कैदी ने पुलिस पर चाकू से हमला बोला, भागने की कोशिश की। झड़प ऑफ फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कैदी के हमले के बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी, कैदी नसीब सिंह की मौत हुई। वाशिम के अकोला नाका स्थित पेट्रोल पंप पर कतार में नंबर को लेकर ग्राहकों के बीच भिड़ंत हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर में हत्या, कार सवार शख्स को मारी गई 30 गोलियां, रोहित गोदारा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। अहमदाबाद में पानीपुरी से निकली थी हड्डी, शिकायत करने के बाद दुकानदार बोला कहीं से उड़कर आ गई होगी। नासिक में सराफ दुकान में हथियारों के साथ लूटपाट की कोशिश, 2 महिलाओं और 1 शख्स ने 4 लोगों को खदेड़ा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में भीषण आग लगी। आग के बाद ट्रेन रुककर 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया था, 15 मिनट में पूरा कोच खाली करवा लिया गया था। ग्रेटर नोएडा के शावेरी मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई, इलाके में अफरा तफरी मची। इंदौर से सागर जा रही चार्टर्ड बस में भीषण आग लगी थी, बाल बाल बचे यात्री, 18 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोनीपत में टक्कर के बाद आग का गोला बन गई थी कार, जिंदल यूनिवर्सिटी के पास हादसा, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी हुई, आज से 1 रुपए बढ़ोतरी के बाद नई दरें लागू, लगातार दूसरे दिन सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं, दिल्ली में लगभग 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गई है सीएनजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन, बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जताया गया विरोध, करोलबाग पेट्रोल पंप पर जुटे कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर लिखा, प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल पर दिया महंगा कर दिया है, चुनाव के बाद दिखाया ठेंगा। कच्छ के कांडला बंदरगाह पर एलपीजी कैरियर जहाज SYMI पहुंचा, 20,000 टन एलपीजी की खेप पहुंची। नीट पेपर लीक के मामले में तेज हो गई है सियासत, विपक्ष ने सरकार का घेराव करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। नीट मामले में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, राहुल गांधी का दावा 80 बार पेपर लीक हुआ, 2 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी आरएसएस गठजोड़ ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। नीट के मामले पर बढ़के रामदास अठावले, कहा गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज हुई, कथित मास्टरमाइंड 10 दिन की रिमांड पर। नीट केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा नीट गड़बड़ी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। नीट पेपर लीक पर मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह बोले, नीट पेपर हो सकता है लीक लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेना की व्यवस्था निष्पक्ष है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी, परीक्षा रद्द होने पर जताई चिंता, तत्काल व्यवस्था का सुधार की मांग की गई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी, एनटीए की एक्सपर्ट टीचर मनीषा मंदारे ने ही लीक किया था बायोलॉजी का पेपर। एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव, अनुजा बापट और रुचिता विज ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त। भारत नीदरलैंड्स के बीच कई करार, प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के राजा रानी से भी मिले प्रधानमंत्री, भारत नीदरलैंड्स संबंधों पर चर्चा की गई। नीदरलैंड्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। नीदरलैंड्स ने 11वीं सदी के भारत की ये बेशकीमती चीज प्रधानमंत्री मोदी को लौटाई, तांबे की प्लेट चोल राजा राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के जमाने की है। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार है, मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को एमईए ने फिर से नकारा है, कहा सिंधु जल संधि भारत की ओर से स्थगित रहेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम विश्वेंद्र अधिकारी का बयान, भ्रष्टाचार के सभी केसों में जांच होगी, अभिषेक बनर्जी की संपत्ति की सूची मांगी गई। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, शुभेंदु अधिकारी बोले ऑफिसर्स की कॉल डिटेल की जांच होगी, अभिषेक ने निर्देश पर काम करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, मदरसा शिक्षा मंत्री ने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। फलता उपहास उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला, कहा ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि संविधान बहाली की लड़ाई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने साधन शाना का तथाकथित पुष्पा मेरी जिम्मेदारी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, कहा अब राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे 30,000 और जो चार बच्चे पैदा करेगा उसे 40,000 रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में घटती जन्म दर पर चंद्रबाबू नायडू ने जताई चिंता, कहा समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। तमिलनाडु में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री विजय ने गृह विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग और पुलिस समेत कई विभागों को अपने पास रखा। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान, कहा मेरी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की। पौड़ी से सतपुली जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूली ने जंगलों में लगी भीषण आग को देखकर तुरंत काफिला रोका और वहीं से अधिकारियों को तुरंत फोन करके आग बुझाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री संजय के बेटे भागीरथ ने पॉस्को मामले में सरेंडर किया है, साइबराबाद पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का उद्घाटन किया, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान ने पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें शामिल हुए। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना हुआ, सीएम भगवंत मान ने रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करना करती दिया कुमारी भी नजर आई, अजमेर दौरे पर ट्रेन से पहुंची, केसरपुरा में नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगी। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साई ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का उद्घाटन किया, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, बीजेपी के राज्य में देश भर में हो रहा है विकास। बैंकॉक में मिड ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में संजना करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, दिल्ली से थाईलैंड के लिए रवाना हुई। गोरखपुर में सीएम योगी ने डिजिटल स्वगणन पत्र पूरा करने के लिए लोगों से आग्रह किया, लोगों से जनगणना में भाग लेने की भी अपील की गई। विकासनगर में नहर में डूबे दो बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचाया, महिला की तलाश अभी भी जारी। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिली गर्मी से राहत, और बढ़ जाएगा तापमान, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा है पारा, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। झांसी में भीषण गर्मी है, 45 डिग्री तापमान में बेहाल जनजीवन, ट्रांसफॉर्मर्स को कूलर से बचाने की कवायद। टिहरी में अचानक से बदल गया मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश, सड़कें बन गई तालाब। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, बाराबंकी पुलिस ने शुरू की साइकिल अभियान, साइकिल से गश्त कर ईंधन बचान और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश। जालना में मनोज जरांगे ने 30 मई से भूख हड़ताल का ऐलान किया, मराठा आरक्षण को लेकर फिर से तेज हुई है लड़ाई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने बेअदबी कानून के खिलाफ गुरुद्वारों के बाहर लगा दी है जागरूकता बोर्ड, एसजीपीसी का विरोध प्रदर्शन। जालौर के फर्नीचर कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी के बाद पुलिस जांच में जुटी। ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपिस्ट ओम ने कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक 5,000 किलोमीटर दौड़ पूरी की है, कुष्ठ रोग के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। धौलपुर के एक मोहल्ले में नाली विवाद में हिंसक रूप, दो पक्षों में जमकर हंगामा, घायल भी हुए दो लोग। नाली को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि लोगों ने छतों से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात के अमरेली में रिजर्व फॉरेस्ट की 70 एकड़ जमीन पर माइनिंग को लेकर विवाद हुआ, बीजेपी एमएलए ने फॉरेस्ट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, कहा इससे इलाके में शेरों और वन्य जीवों को खतरा हो सकता है। सहारनपुर में गौकशी गैंग पर पुलिस का शिकंजा, कार से 50 किलो गौवंशीय अवशेष और 4 आरोपी गिरफ्तार। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए अवैध कब्जे। नागपुर में फ्लैट में घुसकर फाइनेंस कंपनी के एजेंट की दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश का है ये पूरा मामला। रामचरण की पैटी के ट्रेलर लॉन्च में होगी एमएस धोनी की एंट्री, 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल, 2 फिल्मों में शाहिद कपूर, रश्मिका और साथ ही कृति सेनन की भी एंट्री। आविका गौर से सालों के बाद मिले गौरव खन्ना, कहा ये इतनी सी थी, केके 15 में नजर आएंगे साथ। भूत बंगलायर ने धमाल मचाया है, फिल्म ने 29 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, रोहित शेट्टी की इस मूवी में विलेन के रूप में नजर आएंगे। गोलमाल 5 में मेकर्स ने इस फिल्म को बेहतरीन बताया, अक्षय कुमार इस मूवी में कॉमिक विलेन का रोल करेंगे। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में नजर आई, बेहद खूबसूरत नजर आई नयनतारा। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार है नयनतारा। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल के सामने सुनील शेट्टी का भी फर्स्ट लुक सामने आया, स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो बड़े मुकाबले, पहला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। शाम को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें होंगी आमने सामने, प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत जरूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 247 रन दर्ज की धमाकेदार जीत, गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया। फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, केकेआर को मिली तेज शुरुआत। आंगकृष रघुवंशी ने 82 रन की पारी खेली, मध्यक्रम की मजबूत संस्था बनी कैमरून ग्रीन की 52 रन की तेज पारी। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी भरा संदेश, सोशल मीडिया पर साझा की हमलों से जुड़ी एक और तस्वीर। दूसरे पोस्ट में नाव पर सवार नजर आए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके सैन्य अधिकारी भी तस्वीर में नजर आए। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका, चीन से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए। अमेरिका के खिलाफ पूर्व आईआरजीसी प्रमुख कमांडर मोहसिन रजाई का बड़ा दावा, अमेरिका अब नई विश्व व्यवस्था का केंद्र नहीं, चीन से मदद मांग रहा है अमेरिका। नाइजीरिया में मारा गया आईएसआईएस का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अबू बिलाल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी। विशेमेज के पास रक्षा कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड का जोरदार धमाका, आसमान में नजर आया आग का गोला, इलाके में दहशत। यरूशलम के पास विस्फोट से अफरा तफरी मच गई थी, कंपनी ने बताया पहले से तय था प्रयोग के तहत हुआ ब्लास्ट। यूक्रेनी शहरों पर हो रहे हमलों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की सेना हमलों का जवाब दे रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और तेल डिपो को तबाह किया गया, इससे पहले रूस ने यूक्रेन के जपोरजिया में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने बस को मारी जोरदार टक्कर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां बुलडोजर एक्शन की वजह से हंगामा बढ़ गया है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर नगर निगम टीम ने बुलडोजर चलाया है और ये एक्शन वकीलों के अवैध चैंबर्स पर चलाया गया है, कई चैंबर्स को तोड़े जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। इस एक्शन के खिलाफ बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की गई, अब वहां टकराव की स्थिति भी नजर आई। वकीलों का आरोप यह है कि बेहतर चैंबर्स को गिराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन नगर निगम की टीम 240 चैंबर्स को गिरा रही है और इसी बात से नाराज होकर जबरदस्त हंगामे की खबर यहां से आई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अवैध चैंबर्स को गिराने का काम लगातार जारी है और आपको यह भी बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ही इन तमाम चैंबर्स को गिराया जा रहा है जो अवैध बने हुए हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर जबरदस्त नाराजगी वकीलों की तरफ से दिखाई गई है। उन्होंने कहा है कि कुल 70 चैंबर्स को गिराने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था, लेकिन 240 से ज्यादा चैंबर्स को ध्वस्त करने की बात और कार्रवाई यहां नगर निगम कर रहा है, जिस पर नाराजगी उनकी तरफ से जताई जा रही है। बड़ी संख्या में वकील यहां पहुंच गए थे, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था यहां चाक चौबंद थी, नौबत हाथापाई तक आ गई थी। जबरदस्त नारेबाजी वकीलों की तरफ से की गई है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन तमाम चैंबर्स को गिराया जा रहा था, जिसमें जबरदस्त वकीलों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की है, नाराजगी जाहिर की है।
2: हाईकोर्ट के आदेश दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: गिराने के कितने गिरा रहे हैं?
2: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
3: ये कितने चैंबरों को गिराने का नोटिस था उनकी आड़ में? ज्यादा
4: मात्र 72 चैंबर तोड़ने का आदेश हुआ था, उसका प्रशासन कंप्लायंस कर चुका है, 150 से ज्यादा चैंबर तोड़े जा चुके हैं। आखिर अधिवक्ता रोड पे बैठने को क्यों मजबूर है? हमारी पुरानी तहसील पीछे बनी हुई थी, तहसील शिफ्ट होकर गोमती नगर खरकापुर चली गई है, वहाँ पे 4.5 बीघे जमीन पड़ी हुई है, अगर प्रशासन चाहे तो उस जमीन को सदुपयोग कर सकता है।
3: वहाँ पे लोगों को कभी नोटिस दिया गया? इसका
4: नोटिस नहीं दिया गया है, नोटिस।
0: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: This year, experience the NHL playoffs your way. Want to watch a single do or die game 7? A full week of a heavy-hitting back-and-forth series? Then check out Sling's 1, 3, and 7 day passes. Watch the chase for the cup on ESPN and TNT starting as low as $4.99. No long-term contracts or overpaying. Just live hockey at home or when you want it. Sling lets you do that. Visit sling.com to learn more.
10: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Sokudo.
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
16: जेके वॉल मैक्स।
17: बेस्ट पेंट
18: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Director, the taste of success.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। Gallant Advance बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। Gallant Advance TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ।

लखनऊ में चैम्बर्स पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प धक्कामुक्की। नगर निगम का बयान, हाईकोर्ट से आया था अवैध निर्माण गिराने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़े सीएनजी के दाम, 3 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। राजधानी में पहली बार 80 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। नोएडा गाजियाबाद में भी झटका। नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पार्क के साथ कई करार, प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित। नीदरलैंड्स ने चोल वंश का ताम्रपत्र सौंपा। नींद पेपर लीक कांड में सियासत गरमाई, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। तो बीजेपी ने बच्चों पर राजनीति के आरोप लगाया, अब तक 9 की गिरफ्तारी। एनटीए में 2 नए ऑफिसर्स की एंट्री। और तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग से अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के रतलाम में B1 कोच धू धू कर जला। आनन फानन में 68 यात्री निकाले गए, कोई हताहत नहीं।

0: लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए के साथ सीधा सीधा वास्ता है, सीधा सीधा संबंध है। वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने पेपर लीक की साजिश रची। अब तक इस केस में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। तो नीट पेपर लीक मामले में कल गिरफ्तार की गई मनीषा मांद्रे को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में मनीषा की पेशी हुई थी, क्योंकि सीबीआई की तरफ से कहा गया था इस पूरे मामले में कौन कौन कहां कहां शामिल है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसके लिए जरूरी है कि समय उन्हें मिले। तो 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीषा पांडे को भेज दिया गया है। राव रेवेन्यू कोर्ट में मनीषा की जब पेशी हुई थी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल दिल्ली से मनीषा को गिरफ्तार किया गया था। मनीषा पर बायो का पेपर लीक करने का आरोप है और आपको बता दें कि अपने घर पर इसने तमाम बच्चों को बुलाकर तमाम क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने के लिए इनकी तरफ से कहा गया था। और इतना ही नहीं, ये तमाम जो सवाल मनीषा की तरफ से लिखवाए गए थे अपने स्टूडेंट्स को वो एग्जाम पेपर से मैच खाते हैं। कई छात्रों को अपने पुणे आवास पर बुलाकर कोचिंग दी थी, उन्हें प्रश्न लिखवाए थे, उन्हें समझाया था कि इन प्रश्न पर ज्यादा बारीकी से काम करें और हूबहू वही सवाल प्रश्न पत्र में भी हैं जो फाइनल एग्जाम था नीट का, उसमें भी पूछे गए हैं। मांडरे ने जो प्रश्न लिखवाए थे हूबहू नीट पेपर में वो प्रश्न पाए गए हैं। तो 2026 प्रक्रिया का जो मामला सामने आया है, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुल जुड़ गए हैं। अंशुल, क्या जानकारी है और सबसे बड़ा सवाल ये कि गलती किसकी, और बार बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं बार बार इन तमाम एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स का लीक हो जाना, और जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर ये पूरा का पूरा पेपर घूम रहा था, कार्रवाई तब भी नहीं की गई।
1: जी बिल्कुल, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक बार दोबारा सीबीआई बहुत गहराई से तफ्तीश कर रही है। किस तरीके से जो एनटीए में कुछ लोग मौजूद थे उनके इन्वॉल्वमेंट के वजह से जो ये पेपर है, ये पेपर करीब 3 से 4 दिन पहले ही लीक हो गया था। 29 अप्रैल की डेट बताई जा रही है जिस दिन जो ये नीट का पेपर था वो लीक हुआ था, और अभी तक इस पूरे तफ्तीश में सीबीआई ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी कुछ देर पहले मनीषा मात्रे, जो खुद एक जूलॉजी और बॉटनी की टीचर हैं, इनको एनटीए ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था और इनका काम था क्वेश्चन पेपर को ट्रांसलेट करना एनटीए के लिए, और इनके पास जो है फाइनल एक्सेस था क्वेश्चन पेपर का, और यहीं से जो है बॉटनी के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि करीब 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो लीक हुए बॉटनी बायोलॉजी जूलॉजी के, जो बच्चों को कुछ दिन पहले ही मिल गए थे, उन्होंने वो सारे क्वेश्चन याद किए और फिर जाकर के एग्जाम दिया। तो करीब 9 लोग अभी तक जो है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। इसके अलावा सीबीआई का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो नंबर है ये और आगे बढ़ सकता है। एनटीए के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो इसमें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सवाल अब ये कि क्या एनटीए के इनसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया? ये सवाल बीते 2 दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट के पेपर सेटिंग वाली टीम से जुड़े हुए थे। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े कुछ और लोग भी उनकी इस साजिश में शामिल थे।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस की कई कड़ियां लगातार खुलती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर भी अब लगातार गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में

0: दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधा हिस्सेदार रहे, वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मांडेर तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मांडेर नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मांडेर की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मांडेर का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मांडेर ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मांडेर की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का एग्जाम पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
2: और अब नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 किरदार सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2 वो आरोपी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक करवाया है और 3रा वो आरोपी है जो दोनों ही जगह जुड़ा हुआ था। छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में ये लगे हुए थे।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पहले आपको उन दो टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मांडरे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं और उन पर बायो पेपर लीक का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री का पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है। दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए। क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब बताए।
1: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मांडरे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों के लिए सवाल जवाब बनाए। अब सवाल ये भी है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांडरे भी किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांडरे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वीपी कुलकर्णी और मनीषा मांडरे इस केस की सबसे अहम कड़ी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज से पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
2: तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं।
3: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत तूफान पर है। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
4: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
3: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
4: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है
3: इस केस में।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: धार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया, जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी, जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया, तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे, पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो तबड़क तबड़क
1: घोड़ा नहीं तबड़ा है।
0: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है। भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था। आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है। भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही ये स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो तबड़क तबड़क
1: तबड़क तबड़क तबड़क है।
0: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।

0: presented by Patanjali.
1: लखनऊ में चैंबर्स पर बुलडोजर्स एक्शन से भड़के वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की। नगर निगम का बयान, हाईकोर्ट से आया था अवैध निर्माण गिराने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़े सीएनजी के दाम, 3 दिन में 3 रुपए की बढ़ोतरी। राजधानी में पहली बार 80 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। नोएडा गाजियाबाद में भी झटका। नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नो सुपर पार्क के साथ कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित, नीदरलैंड्स ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। नीट कांड पर पेपर सेट ही निकले चीटर, केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। और तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग से अफरा तफरी, मध्य प्रदेश के रतलाम में B1 कोच धू धू कर जला, आनन फानन में 68 यात्री बाहर निकाले गए, कोई हताहत नहीं।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक प्रधानमंत्री मोदी की 7 अपीलें अगर सरकार की नजर में वक्त की जरूरत और भविष्य का रोडमैप मानी जा रही हैं, तो विपक्ष के लिए यह गैर जरूरी और डराने वाला कदम है। सोना न खरीदने की सोच हो, तेल की खपत कम करने की बात हो या फिर स्वदेशी अपनाने का आह्वान, इन अपीलों का कारण क्या है? क्या भारत के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है या फिर ये कदम भारत को ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकते हैं? क्या आम लोगों की छोटी छोटी आदतें देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सकती हैं? पेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के आर्थिक पहलुओं पर श्वेत पत्र।

0: संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले।
1: कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देश से 7 वचन मांगे हैं। ये 7 वचन बचत की सलाह है, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए किसी योजना का ब्लूप्रिंट है, किसी महासंकट से पूर्व की चेतावनी है, या युद्ध से जूझती दुनिया के बीच भारत के लिए सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। देश के सामने इन दिनों कई सवाल हैं।
3: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year. And certainly during the elections.
4: 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है, फर्टिलाइजर पे भी कोई कीमतें नहीं बढ़ाई है। 3,000 रुपए के खर्च के सामने किसानों को आज भी वही पुराना रेट देना पड़ता है, 300 रुपए, यानी 90%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने बोझ अपने ऊपर उठाया।
5: हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है।
6: हर आम आदमी को अपनी जिंदगी की शैली में अगर 10-10% भी कटौती करे, अपने घूमने में, अपने गाड़ी चलाने में, अपने खाने में, तेल की खपत में, खाने के तेल की, तो ये आप ये सोचिए कि 140 करोड़ लोग अगर ये खपत करना शुरू कर दें तो हमारी कितनी बचत हो जाएगी।
2: क्या प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके लिए वो देश को पहले से तैयार करना चाहते हैं?
0: पेट्रोल, वर्चुअल मीटिंग, खाने के रेल की खपत कम करें, हम सोने की खरीद को टालें।
2: क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की अनिश्चितता, वैश्विक सप्लाई चेन का संकट, डॉलर पर बढ़ती निर्भरता और दुनिया में बनते नए आर्थिक गुट भारत के लिए भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं? आखिर क्यों 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला भारत अपने भविष्य को लेकर अलग तैयारी करता दिख रहा है?
7: भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, वो जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी।
8: हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस हो सकता है सरकार वापस दाम ले।
9: खुद विदेश चले गए और पूरे देश को कह रहे हैं कि विदेशों की यात्राएं मत करिए, और खुद विदेशी यात्रा पर निकल गए। तो दरअसल अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी रिहाई का सौदा करने के लिए, उसकी वसूली देश की जनता से की जाएगी।
10: कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
2: प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने को कहा तो इससे देश को क्या फायदा होगा? खाने वाला तेल कम खर्च करने को कहा तो इसका विदेशी मुद्रा भंडार से क्या संबंध है? गाड़ी कम चलाने को कहा तो इसका देश की बचत से क्या कनेक्शन है? प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक साल तक विदेश यात्रा टालने को क्यों कहा? हम आपको आसान शब्दों में आज ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री को 24 घंटे के अंदर 2 बार देश से ये अपीलें क्यों करनी पड़ी, क्यों वो देश की जनता को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति बनाने को पुकार रहे हैं।
11: देशी मुद्रा बदलना जरूरी है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इससे। इस वजह से हम लोग कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर खरीद लेंगे। कोशिश करेंगे नहीं खरीदें, जितना घर में उससे काम चला लें। हम लोग तो सरकार के पक्ष में हैं, नहीं खरीदेंगे।
12: सोच यही है कि एक के बचत करने से नहीं होगा, भारत में जितने भी सदस्य हैं सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छा है सबके लिए।
9: यहाँ पे जो खरीदने आए सोना, ये अपने पुराने सोने को एक्सचेंज करके खरीदने आए हैं, ना कि नया सोना अपने नई मुद्रा से खरीदने आए हैं।
13: अन्य माध्यम ढूंढेंगे, जैसे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं या थोड़ा सा भी टाइम मिला तो चलो ऐसे घूम के आते हैं, तो उस सब पे थोड़ा सा रोक लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे मेट्रो है उसका यूज करेंगे।
14: अब रेट बढ़ जाने की वजह से आम व्यक्ति के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3-4 रुपए शायद जो रेट बढ़ा है डीजल और पेट्रोल पे, तो ऑलरेडी इतना महंगा था, तो अब वही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को।
2: देश पर जब जब संकट आया तब तब प्रधानमंत्रियों ने देश की जनता से सोने को लेकर अपील की है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा और सेना की मजबूती के लिए देश की जनता से स्वेच्छा से सोना दान करने की अपील की थी। 1967 में विदेशी मुद्रा के भारी संकट के समय इंदिरा गांधी ने देश की जनता से किसी भी रूप में सोना न खरीदने की अपील की और गोल्ड कंट्रोल एक्ट भी लागू किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या देश इस समय किसी भारी संकट से जूझ रहा है।
15: भारत में आमतौर पर सोना आभूषण और सोने के बिस्किट या सिक्कों की शक्ल में खरीदा जाता है। हालांकि अब गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं, लेकिन हम आपको आभूषण और सिक्कों की खरीद का एक आंकड़ा दिखाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत ने 2025 की पहली तिमाही में 82 टन सोने के आभूषण खरीदे गए, लेकिन 2026 की पहली तिमाही में यह गिरकर 66 टन पहुंच गया। हालांकि सिक्कों और बिस्किट के मामले में यह बिल्कुल उल्टा रहा, 2025 की पहली तिमाही में 47 टन सोने के सिक्के और बिस्किट खरीदे गए, जबकि 2026 में यह बढ़कर 62 टन हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान सोने की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल था और लोगों ने निवेश के लिहाज से सोना ज्यादा खरीदा। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों कह रहे हैं कि सोने की खरीद को टाल दें।
1: देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा, विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: सोना सिर्फ एक महंगी धातु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सोने के आभूषण खरीद में चीन और भारत सबसे अग्रणी देश हैं। ये दोनों देश दुनिया की आधी से अधिक ज्वेलरी डिमांड तैयार करते हैं। हर साल भारत में 700 से 800 टन तक सोने की खपत होती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील करने से पहले ही साल 2026 में खपत कम हो गई थी। जनवरी में 100 टन थी, फरवरी में 65 से 66 टन रह गई और मार्च में 20 से 22 टन ही खपत हुई। अप्रैल में सिर्फ 15 टन आयात रह गया था। सप्लाई में रुकावट, बैंकों से अनुमति में देरी, कस्टम क्लियरेंस और टैक्स से जुड़ी अनिश्चितता को आयात में गिरावट का कारण माना गया और अब पीएम मोदी की अपील के बाद भी कुछ असर मार्केट पर देखने को अभी से मिल रहा है।
16: हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें काफी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक बड़ा कहते हैं नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान के हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम आगे करें और पूरा साल हम कैसे ये बिजनेस को आगे ले जाए।
17: अपील है प्रधानमंत्री जी और सरकार से कि जैसे कोई भी निर्णय ले
4: तो इसमें अपने हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो नेशनल बॉडी है और जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनके साथ एक संकलन करके इसमें हमें भी नुकसान कम हो और देश में भी विदेशी उंगलियामण की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो। ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ये है ना, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें काम करने वाले लोग हर महीने हर दिन की कमाई पे भी चलते हैं, तो इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा।
2: यहाँ कई सवाल एक साथ उठते हैं। भारत गोल्ड खपत का अग्रणी देश है तो भारत खुद कितना सोना पैदा करता है? भारत में सोने की वास्तविक स्थिति क्या है? भारत का सोना दुनिया में कहां कहां है? पीएम सोना ना खरीदने की अपील क्यों कर रहे हैं?
15: भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं में से एक है। सोना भारत में स्टेटस सिंबल है, निवेश की सुरक्षित गारंटी है, शादी विवाह की जरूरी रस्म है। देश में साल भर में जितने सोने की खपत होती है उसका 50% अकेले शादी के सीजन में खरीदा जाता है। औसतन शादियों में 30 ग्राम से 250 ग्राम तक सोने का इस्तेमाल होता है। शादियों के कुल खर्च का लगभग 25% हिस्सा आभूषण पर खर्च होता है।
2: भारत अपनी कुल खपत का 90% आयात करता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में सोने का उत्पादन बेहद कम होना। देश में कुल 4 सोने की खदानें प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से कर्नाटक की हुट्टी गोल्ड माइंस ही मुख्य उत्पादन करती है। बाकी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में जोनागिरी, ओडिशा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में उत्पादन काफी कम है। वैसे देश में 2191.53 मीट्रिक टन से अधिक के सोने के खनिज संसाधन होने का अनुमान है, लेकिन तकनीकी और अन्य कारणों से इनका खनन सीमित है। इन सब के बीच देश में वार्षिक स्वर्ण उत्पादन लगभग 1.5 से 2 टन के बीच है, जबकि खपत बहुत अधिक है। लिहाजा भारत को अपनी जरूरत का सोना विदेश से आयात करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत सोना किन किन देशों से आयात करता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 40% सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है। स्विट्जरलैंड विश्व स्तर पर सोने की शुद्धता और रिफाइनिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद लगभग 16% सोना भारत यूएई से खरीदता है। दक्षिण अफ्रीका की खदानों से लगभग 10% कच्चा सोना भारत आता है। इसके अलावा पेरू, घाना और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ कुछ मात्रा में सोना आयात किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि सोना खरीदने को प्रधानमंत्री मना क्यों कर रहे हैं और इससे क्या असर पड़ेगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डेटा के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 690.69 बिलियन डॉलर है। आरबीआई के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। दुनिया में चल रही जंग के असर के कारण अप्रैल में ये घटकर 690 बिलियन डॉलर रह गया।
17: विदेशी मुद्रा भंडार को हमें, जो हमारे पास इस समय 700 बिलियन डॉलर के आसपास का है, उसको हमने लंबे से लंबा चलाना है, जिससे कि देश की वो बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके जो कि हमारे देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हाल पर ना ले आए।
2: अब यहाँ सवाल ये उठ सकता है कि इसका आम भारतीयों के सोना खरीदने या ना खरीदने से क्या संबंध है। तो अब ये समझिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अनुमान लगाया है कि 2026 में भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो GDP का लगभग 2% होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने का सीधा मतलब है देश में आने वाले डॉलर के मुकाबले बाहर जाने वाले डॉलर की मात्रा अधिक होना। दरअसल आयात किए जाने वाले सोने का भुगतान डॉलर में करना होता है, इसलिए भारी मात्रा में सोने की खरीद से चालू खाता घाटा और बढ़ता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। एक साल तक सोना न खरीदने से भारत से डॉलर का बाहर जाना सीधे तौर पर कई अरब डॉलर तक कम हो सकता है। ऐसे समय में जब कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर है और भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85% से 90% तक आयात करता है, तो बचाए गए ये डॉलर बहुत मायने रखते हैं। इनका इस्तेमाल जरूरी ऊर्जा आयात का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
15: चलिए आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा सोने की डिमांड किस देश में है। मेटल्स फोकस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2026 के अब तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 85 टन डिमांड चीन में है। भारत 66 टन के साथ नंबर 2 पर है। अमेरिका में 13 टन, सऊदी अरब में 13 टन, तुर्की में 7 टन, रूस में 7 टन, मिस्र, ईरान, हांगकांग, UAE सभी में 5 टन की मांग है और दक्षिण कोरिया में 2026 की पहली तिमाही तक 4 टन सोने की डिमांड रही।
2: भारत दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व देशों में शामिल है। पहले देख लेते हैं कि भारत के अंदर कितना सोना आधिकारिक रूप से जमा है। मार्च 2026 के अंत तक आरबीआई के पास भारत में कुल 680 मीट्रिक टन सोना था। ये सितंबर 2025 के 575.8 मीट्रिक टन के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी सिर्फ 6 महीनों में आरबीआई ने करीब 104.2 मीट्रिक टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। इसके अलावा भारत के सोने का बड़ा हिस्सा विदेशी बैंकों में जमा है। कुल मिलाकर भारत का स्वर्ण भंडार इस तरह है। आरबीआई के पास 680 मीट्रिक टन जो कुल गोल्ड रिजर्व का 77% है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास भारत का 197.67 मीट्रिक टन यानी करीब 22%। इसके अलावा विभिन्न जमा योजनाओं में डिपॉजिट के तौर पर 2.8 मीट्रिक टन यानी 0.3% सोना भारत का जमा है। विदेशों में गोल्ड रिजर्व रखने के पीछे भी कई कारण होते हैं। दरअसल विदेशों में सोना रणनीतिक और व्यावहारिक कारणों से रखा जाता है। विश्व बाजार तक आसान पहुंच, ग्लोबल ट्रेड में लेन देन की सरलता और मुश्किल हालात में सोने की सुरक्षा के अलावा युद्ध या हमले की स्थिति के साथ प्राकृतिक आपदा के दौरान सोना सुरक्षित रहता है। आरबीआई ने बीते 3 सालों में कई टन सोना विदेशों से निकालकर भारत की तिजोरी में वापस जमा किया है। आने वाले समय में दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के कारण संभवतः ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत की 140 करोड़ जनता से सोना न खरीदने की अपील है ताकि देश किसी भी मुश्किल हालात से निपटने में सक्षम रहे।
15: पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर पीएम की तरफ से महत्वपूर्ण अपील की गई, और केवल अपील नहीं बल्कि पीएम ने अपने काफिले को बिल्कुल छोटा करके मिसाल भी पेश की। पर एक तरफ है नेताओं के काफिले, दूसरी तरफ आम लोग जिन्हें रोजाना इस्तेमाल करना है। अब पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार भारत में हर दिन करीब 13 करोड़ लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है। इसमें मान लें कि अगर हफ्ते में एक दिन सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो 13 करोड़ लीटर पेट्रोल बचेगा। इसी तरह महीने में 4 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें तो 52 करोड़ लीटर पेट्रोल बच सकता है। माना यह व्यावहारिक नहीं हो सकता, हमेशा सभी पेट्रोल गाड़ियां एक साथ बंद नहीं हो सकती। जरूरी सुविधाओं वाली गाड़ियों को भी हम इससे अलग कर दें और एक मोटा अनुमान लगाएं कि 50% गाड़ियां एक दिन के लिए सड़क पर न चले तो करीब 6.5 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत हो सकती है। और अगर पेट्रोल के दाम को औसतन 100 रुपए समझा जाए तो 650 करोड़ की बचत।

0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रभावित कर दिया। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। यह रास्ता बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील कर डाली।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, अगर खपत कम नहीं हुई तो महंगे आयातित तेल का बोझ संभालना मुश्किल हो सकता है। इसका असर तेल आयात बिल, विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई, रुपए की मजबूती और उद्योगों की लागत पर पड़ सकता है। सरकार की ये अपील किसी पाबंदी के तौर पर नहीं बल्कि भविष्य के आर्थिक जोखिम को कम करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है।
2: जो भी चीज हम विदेश से मंगाते हैं, अगर मैं टॉप तीन चीजों का नाम लूं जो विदेश से यहाँ आती है, सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है करीब $140 बिलियन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो कि क्योंकि हम मोबाइल फोन बहुत मात्रा में बना रहे हैं उसके जो कलपुर्जे हैं वो विदेश से आते हैं, और तीसरे नंबर पर गोल्ड आता है। तो प्रधानमंत्री जी ने देखिए जो चीज हमारी एक्सपोर्ट होती है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, तो उन्होंने इसलिए क्रूड और गोल्ड के ऊपर बात करी कि क्रूड को आप बचत करिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, स्कूल्स को सलाह दी ऑनलाइन आप क्लासेस लीजिए। तो हमें अगर थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, अगर भारत का हर नागरिक थोड़ा थोड़ा इन चीजों का इस्तेमाल कम करेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो तेजी से कम होगा अगर क्रूड ऑयल के दाम ऊपर रहे तो वो कम होने से बच जाएगा।
3: एनर्जी कंजम्पशन इज एक्चुअली गॉन अप। इफ आई लुक्ड एट सम स्टैटिस्टिक्स व्हिच माय कॉलीग्स गेव मी यस्टरडे, पेट्रोल कंजम्पशन इज गॉन अप बाय 6% इन अ क्राइसिस। देयर बीन नो शॉर्टकट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो ड्राईआउट्स। Every petrol pump in the country has had petrol, diesel, LPG supply is more than enough.
0: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर पीएम मोदी ने तेल बचाने की अपील क्यों की है? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। भारत अपनी जरूरतों का 85-90% तेल आयात करता है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल का रिफाइनरियों के पास मौजूद स्टॉक और विदेश से आ रहे तेल को मिलाकर भारत की कुल भंडारण क्षमता लगभग 10 करोड़ बैरल तक है। इसके अलावा 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है। ये आपातकालीन तेल भंडार उस हालात में काम आएगा जब तेल बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये जमीन के नीचे बने विशाल भंडार है जहां लाखों टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा जाता है ताकि सप्लाई रुकने पर देश की जरूरतें पूरी की जा सके। भारत ने अपने आपातकालीन तेल भंडार रणनीतिक तौर पर अलग अलग जगहों पर बनाए हैं। इनमें पहले चरण में विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में बड़े भूमिगत तेल भंडार तैयार किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के पहले चरण की कुल क्षमता करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। अगर पूरी तरह तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो ये भंडार भारत की जरूरतें लगभग 9.5 दिनों तक पूरा कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? दरअसल भारत के पास इसका दूसरा बैकअप भी है। भारत के पास तेल कंपनियों के कमर्शियल रिजर्व भी मौजूद हैं। सरकारी भंडार और कंपनियों के स्टॉक को मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास करीब 74 दिनों तक देश चलाने लायक तेल भंडारण क्षमता मानी जाती है। अगर अमेरिका ईरान संघर्ष लंबा खींचता है और 74 दिनों का भंडार भी घटने लगता है तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसमें पेट्रोल डीजल की राशनिंग, घरेलू कीमतों की भारी बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव आ जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी अभी से ईंधन बचाने पर जोर दे रहे हैं।
1: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
0: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना करीब 87.45 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल है। 2026 में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर लगभग 134.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल का होता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 37-39% है। डीजल का उपयोग मुख्य रूप से ट्रक, बस, खेती और दूसरे भारी वाहनों में किया जाता है। वहीं पेट्रोल की हिस्सेदारी करीब 14-16% है और इसका लगभग पूरा इस्तेमाल कार, बाइक और दूसरे सड़क वाहनों में होता है। एक आम भारतीय हर महीने औसतन करीब 9 लीटर ईंधन खर्च करता है, जिसमें लगभग 3 लीटर पेट्रोल और 6 लीटर से ज्यादा डीजल शामिल है। यानी साल भर में एक व्यक्ति अकेले करीब 109 लीटर ईंधन जला देता है। इसमें डीजल की खपत इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत में डीजल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं, माल ढुलाई बढ़ती है और नए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डीजल की मांग भी तेजी से बढ़ने लगती है और ये सीधे तौर पर देश में महंगाई से भी जुड़ता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील से थोड़ा सा बदलाव भी आया तो ये बड़ा कदम होगा। चलिए हम आपको बताएं कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किस देश ने पेट्रोल के दाम कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी म्यांमार में दर्ज की गई, जहां दाम करीब 89.7% बढ़े। इसके बाद मलेशिया में 56.3%, पाकिस्तान में 54.9%, यूएई में 52.4%, अमेरिका में 44.5% की बढ़ोतरी हुई। फिलीपींस में पेट्रोल 40.6%, श्रीलंका और नेपाल में 38.2%, दक्षिण अफ्रीका में 33.1%, कनाडा में 31.9% महंगा हुआ। वहीं चीन में पेट्रोल 21.7%, फ्रांस में 20.9% और ब्रिटेन में 19.2% महंगा हुआ। इसके मुकाबले में भारत में पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सऊदी अरब में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इधर भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम भी उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बड़ी डील हुई है। दोनों देशों ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई के कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत यूएई अब भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया।
4: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स टू अ लेवल ऑफ 30 मिलियन

0: जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए, ये एडवाइजरी होगी। और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कम्फर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें।
1: भारत ने कोरोना काल में इसका बड़ा प्रयोग देखा था, लेकिन अब इसकी वापसी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति के तौर पर हो रही है। दफ्तर जाने में तेल की खपत बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट में कम ईंधन खर्च होना सीधे भारत के आयात बिल और विदेशी निवेश दबाव को कम कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े शहरों जैसे गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और मुंबई में एक दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू हो जाए तो लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद के आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम से रोज करीब 6 लाख लीटर ईंधन बचाया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा असर शहरों में ट्रैफिक पर पड़ सकता है। हाइब्रिड वर्क से सड़क पर गाड़ियां कम होंगी, प्रदूषण घटेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव भी कम होगा। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कर्मचारियों के लिए सुविधा नहीं बल्कि कंपनियों के लिए खर्चे कम करने का तरीका भी बन चुका है। ऑफिस की बिजली, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च घटता है। वर्क फ्रॉम होम भारत के लिए सिर्फ तेल बचाने का जरिया नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने का तरीका भी है। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ सकता है, बड़े शहरों पर दबाव कम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार लगभग 40 देशों ने ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। श्रीलंका और फिलीपींस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू किया। इंडोनेशिया और म्यांमार ने ईंधन संकट के चलते रिमोट वर्क और ऑफिस आने के दिनों में कटौती की। पाकिस्तान ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम की है। वियतनाम ने कंपनियों को ऑनलाइन मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। थाईलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश जैसे देशों ने AC उपयोग सीमित करने, गैर जरूरी यात्रा रोकने और काम के समय में बदलाव जैसे उपाय अपनाए हैं। यूरोप ने भी ऊर्जा संकट के दौरान कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के सीमित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। यानी दुनिया अब समझ रही है कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ईंधन और ऊर्जा बचाने का बड़ा हथियार भी है।
2: स्वदेशी अपनाने का सीधा मतलब देश में बने उत्पादों की मांग बढ़ना, लोकल उद्योगों और छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत का आयात खर्च घट सकता है, देश का पैसा देश में ही घूमे जिससे GDP और निवेश दोनों बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों की अहमियत प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार बता चुके हैं।

0: आज देश के सामने ऐसा संकट है जो सीमाओं पर हथियारों से नहीं बल्कि आम लोगों की जेब और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर लड़ा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भयंकर युद्ध के कारण दुनिया भर की आर्थिक धमनियां चौक हो चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल के पार जाने का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया एक बड़ी आर्थिक तबाही की दहलीज पर खड़ी है।
1: ईरान का देखो एक होता है हॉट वॉर, जो हम इंडियन आर्मी में यूज करते हैं कि हॉट वॉर होता है कि बिल्कुल आपका आपस में लड़ाई हुई है, जो हुई है पीछे। और ये नो वॉर नो पीस वाली जो सिचुएशन चल रही है ना, ये कोरिशन की होती है, अगले को धमकाना, अगले की बाजू मरोड़नी, अगले पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना, और फिर अपनी भी जो अमेरिकन जो उनका नुकसान हुआ है, जो खत्म हो गया है एमुनिशन, उसको रीबिल्ड करना, उनकी फैक्ट्रियां, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, इतनी ज्यादा नहीं। आपको पता उन्होंने कहां कहां से अपने एयर डिफेंस सिस्टम मूव किए, पैट्रियट मिसाइल जो कितनी डिन्यूमल, कितनी कमी होगी उनके स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा इसमें समझौता होने वाला नहीं है।
0: प्रधानमंत्री

0: ने देश से बचत की कई और अपीलों के साथ स्वदेशी 2.0 की अपील भी की है। एक बार उन्होंने कोरोना संकट के समय स्वदेशी की अपील की थी, अब वैश्विक हालात से उपजी स्थितियों को आपातकाल की दस्तक मानते हुए देश से आर्थिक राष्ट्रहित की बात कही है। स्वदेशी अपनाते हुए देश के डॉलर भंडार को बचाने का मुद्दा उठाया है।
1: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।
0: दुनिया दरअसल इस दशक के सबसे बड़े भू राजनीतिक संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट के अस्थिर हालात ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज के रास्ते से आयात होता है और ये पूरा क्षेत्र जंग का मैदान बना हुआ है, जिससे भारत में एक तो ऊर्जा का संकट बढ़ सकता है, दूसरे अधिक कीमत चुकाने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से कम हो सकता है। भारत पर इस समय आर्थिक दबाव इतना है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक स्तर पर गिरावट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। रासायनिक खाद खरीदने पर भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है। डीजल की जगह सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने को कहा है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के जरिए विदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की जगह स्वदेशी और घरेलू स्तर पर बने उत्पादों को अधिक से अधिक अपनाने की अपील की।
1: खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं, हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती माँ को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती माँ को मारना नहीं चाहिए।
0: युद्ध और उसके बाद उपजते हालात को लेकर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताते हुए दुनिया को गहन आर्थिक मंदी की ओर बढ़ने का खतरा जताया है। ऐसे में विदेशों पर जितनी अधिक निर्भरता रहेगी, देश उतना ही कमजोर होगा। प्रधानमंत्री मोदी देश से इसके लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी पद्धतियों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने जनता से 7 अपील की, तो जरूरत थी लीडिंग बाय एग्जाम्पल की, यानी खुद एक मिसाल बनने की। और सबसे पहले खुद पीएम ने अपने काफिले से गाड़ियां कम कर दी और सिर्फ 2 से 4 गाड़ियों को ही अपने काफिले में रखा। बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसका अनुकरण किया। देवेंद्र फडणवीस बाइक से दफ्तर पहुंचे, मनोज तिवारी ईवी से, राजनाथ सिंह ने राजस्थान के सीएम के साथ कार पूलिंग की, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ही चल निकले।

0: संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें।
1: भारत में जरूरत का अधिकांश तेल आयात से आता है और कीमतें डॉलर में चुकानी पड़ती हैं, जिसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर दुनिया ऊर्जा आपूर्ति के संकट से गुजर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपनी 20 कारों के काफिले को घटाकर 2 कार कर दिया। देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी इसका अनुसरण किया। लोकसभा स्पीकर ने कारें कम कर दी। कानून मंत्री ई रिक्शा से आने लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बुलेट से विधानसभा पहुंचे। हरियाणा के सीएम ने काफिले से कारें कम कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या तत्काल प्रभाव से 50% घटाने को कहा है। साथ ही मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए नो व्हीकल डे मनाने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों और बड़े ऑफिसेज में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और सेमिनार, बैठक, वर्कशॉप आदि को ऑनलाइन करने को कहा है।
2: ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं।
1: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री सुरेश खन्ना तो साइकिल से ही विधानसभा आने लगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। प्राइवेट कंपनियों को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में 60% की कटौती की, जिससे अब उनके काफिले में 4 गाड़ियां रह गई हैं। इनमें से 2 इलेक्ट्रिक हैं। अधिकारियों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 20% की कटौती की और अगले 6 महीने तक कोई नई गाड़ी न खरीदने का फैसला लिया है।
3: मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर देशव्यापी है। हल्दिया के बीजेपी विधायक भी साइकिल पर आ गए। गुजरात के राज्यपाल साइकिल पर हैं।
4: मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा, और ज़्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कार किट के द्वारा, 3 गाड़ी से ज़्यादा मैं कार किट में नहीं रख रहा।
1: औरंगाबाद के जिला जज भी साइकिल से अदालत पहुंच रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम के मेयर और पार्षद साइकिलों से दफ्तर आने लगे। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि पीएम मोदी की तेल बचाने की अपील देश हित में एक अभियान बन चुकी है और तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी है।
5: श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: जेके मैक्स पेंट।
8: जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
10: Director, the taste of success.
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
5: हमारे सीमेंट में नहीं है,
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा. मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक. कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक.
4: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊँ.
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप.
6: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही.
7: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर.
8: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके.
6: शुभेंदु अधिकारी,
5: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.
9: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
10: अनुपम मिश्र,
11: अमित भारद्वाज,
12: पीयूष मिश्रा,
13: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: If teaching is what you're meant to do, WGU is where you can become great at it. Earn your bachelor's or master's in education online on your schedule and with support that's available when you need it. Make your passion your profession. Learn more at WGU.edu.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
6: नीट में दो साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई. पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा. धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं. कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं. सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है. और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है. पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं. अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं. अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं. यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है. प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए.
7: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी. ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं. आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
8: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी, और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया, और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है, और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है, और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट।
1: थोड़ी देर में नीदरलैंड से स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पावर के साथ कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में किया आमंत्रित। नीदरलैंड ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। लखनऊ में चैंबर्स पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकीलों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की। नगर निगम का बयान, हाईकोर्ट से आया है अवैध निर्माण गिराने का आदेश। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर से 100 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद। पुलिस ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के अवैध दस्तावेज भी बरामद किए। जमीयत उलेमा हिंद ने वंदे मातरम के खिलाफ खुला मोर्चा। कार्य समिति में बोले संगठन के अध्यक्ष अरशद मदनी, हमारे धार्मिक विश्वास के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। देश की राजनीति में कुछ नेता चुनाव जीतते हैं और कुछ नेता चुनाव जीतने का पूरा विज्ञान बदल देते हैं। आज की कहानी ऐसे एक रणनीतिकार की जिसने बूथ को सत्ता से जोड़ा, कार्यकर्ता को सबसे बड़ी ताकत बनाया और भारतीय राजनीति का भूगोल बदल दिया। आज कहानी बात उस चेहरे की जो मंच पर कम दिखता है लेकिन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी पटकथाओं का लेखक माना जाता है। आज कहानी अमित शाह की।

मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए।

0: कुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे।
1: जहां सफलता न हो वहां भी अड़िग रहने वाले एक राजनीतिक नेता, इसका मतलब है अमित शाह।
2: कठिन से कठिन तर परिस्थिति से कभी पीछे नहीं हटते। कार्यकर्ताओं को हौसला देना एक ऐसा गुण है जो उनको एकदम से अलग कर देता है।

राजनीति में कोई भी विस्तार सिर्फ नारों से नहीं होता, उसके पीछे होती है लंबी रणनीति, संगठन की परतें और जमीन पर लगातार चलने वाला राजनीतिक अभियान। अमित शाह ने भारतीय राजनीति को सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे बूथ, सामाजिक समीकरण और वैचारिक विस्तार के नए मॉडल में बदल दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी का बढ़ता हुआ राजनीतिक नक्शा सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि उस रणनीति की कहानी भी है जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरणों को बदल कर रख दिया।

0: भारत की राजनीति में कुछ चेहरे मंच पर दिखाई देते हैं और कुछ चेहरे मंच के पीछे रहकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य की दिशा तय करते हैं। अमित शाह कौन है? इस सवाल का जवाब सिर्फ उनके समर्थकों के पास ही नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों के पास भी है और हर जवाब में उनकी रणनीतिक क्षमता की झलक दिखाई देती है।
1: अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ।
2: अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सचमुच भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन कराने में कामयाबी हासिल करेगी, यह मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास।
3: पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में।
0: सवाल है आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरण बदल दिए? साल 2013।
2: श्री नरेंद्र मोदी विल बी अवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
0: बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहाँ संगठन बिखरा हुआ था, स्थानीय नेतृत्व कमजोर था और जाति, धर्म और राजनीति इतनी गहराई से जुड़ी थी कि राजनीतिक विशेषज्ञ साफ कह रहे थे कि यहाँ जीतना लगभग नामुमकिन है। 2013 में ठीक यही चुनौती सामने थी अमित शाह और यहीं से शुरू हुई भारतीय चुनावी राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक की कहानी।

0: देखिए, राजनीतिक फैसला अगर आप कहते हैं, कई ऐसे राजनीतिक फैसला है, पर एक अगर आप देखते हैं कि मानिए उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी थे राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, और कठिन प्रदेश था उत्तर प्रदेश। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या परिस्थिति था, राजनीतिक परिस्थिति आप सब जानते हैं उसको। उत्तर प्रदेश में उन्होंने तय किया कि सारे निकायों का चुनाव होगा, पंचायत से शुरू करके लोकसभा तक चुनाव होगा, और उनका प्रवास जो उत्तर प्रदेश में, ये जो माइंडसेट कि हम कोई एडजस्टमेंट कहीं नहीं करेंगे, हम अपना जो स्ट्रेंथ है, अपने पार्टी के जो पक्ष है उसको रखेंगे और उसको विस्तार करेंगे, पार्टी का विस्तार करना है, और इसलिए हमको हर स्तर पे चुनाव लड़ना है।
1: अमित शाह ने कमल के ढेर लगा दिए। उन्होंने ऐसे ऐसे राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी जहां उसका प्रवेश तक असंभव माना जाता था। त्रिपुरा और नागालैंड तक बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा तो बंगाल में भी सारे समीकरण ध्वस्त करके पहली बार सरकार बनाई।
0: में गए नक्सलबाड़ी में, सारे विश्व के इतिहासकार लोग नक्सलबाड़ी को पहचानते हैं। 60 के दशक में नक्सलबाड़ी से ही नक्सल आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अर्बन नक्सल हो, ये नक्सल हो, सब सारा पूरा विचार वहां से शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी सबसे कठिन उत्तर बंग में उस समय 2017 में हमारे लिए सबसे कठिन जगह था। तो उनको पूछा गया कि आप कहां से शुरू करेंगे, उन्होंने कहा मैं वहां से शुरू करूंगा। 2017 याद रखिएगा, 2017 उन्होंने गया, वो जाकर वहां कार्यक्रम किया, और एक ही मंच पे बूथ के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष एक ही मंच पे होते थे।
1: भारत के नक्शे पर खेलता हुआ कमल इन भव्य दृश्यों में अमित शाह की रचना है। नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उन्होंने जो कमाल रचा है वो बेमिसाल तो है ही, बेशुमार भी है।
2: ने 2014 की जीत ने सिर्फ बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचाया, बल्कि भारतीय चुनावी राजनीति का पूरा मॉडल बदल दिया। बूथ मैनेजमेंट, सोशल इंजीनियरिंग और माइक्रो प्लानिंग अब राजनीति के नए हथियार बन चुके थे। लेकिन अमित शाह की रणनीति यही नहीं रुकी, इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी के विस्तार का सबसे बड़ा अभियान। ऐसे राज्य जहां कभी कमल का नाम तक नहीं सुनाई देता था, वहां भी पार्टी ने अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी। सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं था, ये जुनून था भारतीय राजनीति का नया भूगोल लिखने का।
1: 22 अक्टूबर 1964, गुजरात का एक छोटा सा शहर मानसा। एक साधारण व्यापारी परिवार में अमित शाह का जन्म होता है। ना कोई राजनीतिक विरासत, ना कोई बड़ा राजनीतिक सरनेम, लेकिन बचपन से ही एक आदत अलग थी, लोगों को देखना, समझना और याद रखना। स्कूल के दिनों में अमित शाह भीड़ का हिस्सा कम, भीड़ को समझने वाले छात्र ज्यादा थे।
3: 27 में यहाँ से स्कूल में से दिल्ली की टूर बनाई थी हमने, कुल 68% थे, 60 स्टूडेंट थे, 8 टीचर्स थे, इसमें अमित भाई भी साथ में थे। उस टाइम पे वो छोटे से छोटे बच्चे, यंग स्टूडेंट, करीब 14-15 साल के ही थे, लेकिन कोऑर्डिनेट करने में सबसे बढ़िया रहते थे हमारे साथ। इंदिरा गांधी से मिले हम, तो इंदिरा जी गांधी जी गए तो बैठने में सबके आगे थे, वो छोटे थे तो इंदिरा जी के पास में बैठे थे, उनके बगल में बैठे थे। क्वेश्चन आंसर भी उन्होंने गुजराती में भी किए थे, हिंदी में भी किए थे।
1: अमित शाह को जानने वाले बताते हैं कि उन्हें शुरू से संगठन बनाना पसंद था, लोगों को जोड़ना, टीम बनाना और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से चलाना।
4: पहली बार उनको इतनी बड़ी विधानसभा की टिकट मिली थी तो उसमें अहमदाबाद शहर भी था और छोटे छोटे गांव भी थे, तो उन्होंने अहमदाबाद शहर के नगरपालिका और नगर पंचायतों, उनके जो चेयरमैन, उनको सबको, क्योंकि सब टाइम उस टाइम सब भाजपा में नहीं थे, उन सबको इकट्ठा करके रात 2-2 बजे तक सबको बुला के, और प्रचार इतना, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे पूरा ऐसा एक चैन बनाया।
1: 16 साल की उम्र में अमित शाह आरएसएस से जुड़ते हैं। आरएसएस की शाखाओं में अनुशासन था, नेटवर्क था और राजनीति को समाज के जरिए समझने का तरीका था। और इसी दौरान गुजरात में 1980 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात होती है।
5: अहमदाबाद के कॉलेजियन युवाओं से बातचीत करने का, तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं जहां रहता था वो वार्ड में आए थे, नानपुरा वार्ड में आए थे। बहुत कम युवा थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आरएसएस का काम, आरएसएस के बारे में, वो उद्देश्यों की पूर्ति से देश को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और अंत में बताया कि अगर आरएसएस को जानना है तो इनको सुनना चाहिए, तो आप लोग जितने हो सके उतने युवाओं को लेकर ये कार्यक्रम में आई। उस वक्त मैं आरएसएस का स्वयंसेवक बन चुका था, परंतु पहली बार संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया।
0: 77 में जो इलेक्शन हुआ था, मणिबेन पटेल कॉन्टेस्टेड। मणिबेन पटेल कांग्रेस के खिलाफ उस समय जेबी कृपलानी सारे लोग उतर के आए कि कांग्रेस को हराना है। इमरजेंसी के बाद जेबी कृपलानी अमित भाई के घर में ठहरते थे उस समय, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो गांधीयन थे, उनका बहुत एक एक्टिव लिंक था ये पूरे सर्कल के साथ। मणिबेन पटेल लड़े उस समय इलेक्शन। अमित भाई का उस समय बहुत मुश्किल से 13 साल या ऐसा 13-14 साल की उम्र था। उन्होंने उस समय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कैंपेन में पार्टिसिपेट करना, पोस्टर्स लगाना, ये सब करना उस समय उन्होंने शुरू कर दिया था। हाँ, तो मुझे लगता है कि उनका गुजरात के, गुजरात में उनका अगर सार्वजनिक जीवन हम देखते हैं तो वो 87 ने, वो 77 से कह सकते हैं कि पिछले 50 साल गुजरात में उनका सार्वजनिक जीवन 50 साल रहा। तो शायद ही एक ऐसा कोना हो, ऐसा स्थिति हो, कुछ भी हो जो वो नहीं जानते हैं 50 साल निरंतर। और ये 50 साल में आप देखिए ऐसा ग्राफ उनका बढ़ता ही गया, संगठनात्मक दायित्व के दृष्टि से इतना कठिन परिस्थिति के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे।
1: शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही जोड़ी आगे चलकर भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली गठबंधन बनेगी। एक के पास भाषण की ताकत थी, दूसरे के पास संगठन को बनाने और चलाने का हुनर था। अमित शाह समझ चुके थे कि राजनीति सिर्फ रैलियों का खेल नहीं है, राजनीति बूथ पर जीती जाती है, डेटा से जीती जाती है, नेटवर्क से जीती जाती है।
0: आपको याद होगा कि 1987 में जब पहला अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसी समय मोदी जी भी संघ से पार्टी में आए दायित्व लेकर, और वो पहला बहुत भारी बड़ा जीत हुआ भाजपा का अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। उसके बाद ये जीत का जो साइकिल ये शुरू हो गया। उसी समय से ये गुजरात में संगठन का नींव मजबूत करना, ये हमने लिखा है पूरा, उसमें हमने डॉक्यूमेंट किया, संगठन का नींव मजबूत करना, लगातार प्रवास करना और कठिन परिस्थिति में प्रवास करना। आपको याद रखना चाहिए जैसे संगठन को विस्तार, संगठन का विस्तार करना, संगठन को मॉडर्नाइज करना, संगठन का सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट करना, सदस्यता करना, यानी गुजरात में आज जो लगातार निरंतर 27 साल भाजपा सत्ता में है, इसका नींव उस समय रखा गया था जब प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री जी तब नरेंद्र भाई के नाते गुजरात में जो उन्होंने काम किया और उनके साथ लगातार अमित भाई ने भी जो किया।
1: 1990 का दशक, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में मजबूत हो रही थी और शाह संगठन के भीतर तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। उन्होंने चुनाव को सिर्फ प्रचार नहीं, मैनेजमेंट की तरह देखना शुरू किया। कौन नाराज है, कौन प्रभावशाली है, किस बूथ पर पार्टी कमजोर है, कहां कार्यकर्ता निष्क्रिय है, हर चीज की अलग रणनीति।
6: जब भाजपा में नरेंद्र भाई की फेवर में जब माहौल नहीं था और यहां केशुभाई की सरकार थी, तब भी नरेंद्र भाई के साथ गुजरात में जो 4-5 लोगों ने शासक से बिना डरे संबंध बनाए रखे, उसमें से अमित भाई एक रहे, मतलब उनके पुराने और गाढ़ साथी रहे कि नरेंद्र भाई के संकट के दिनों में भी अमित भाई ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है।
1: अमित शाह के लिए हर सीट अलग युद्ध थी। 1997 में अमित शाह पहली बार गुजरात विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। फिर आता है साल 2001 और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं।
7: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
1: और यहीं से मोदी शाह की जोड़ी पूरी ताकत से सामने आती है। अमित शाह सरकार और संगठन दोनों में तेजी से प्रभावशाली होते जाते हैं। गुजरात की राजनीति में उनका नेटवर्क मजबूत होता गया। सहकारी संस्थाओं से लेकर स्थानीय चुनावों तक शाह ने संगठन को नीचे तक फैलाने का काम किया। 2010 में राजनीतिक विरोधी कहने लगे कि अमित शाह का करियर खत्म हो गया, लेकिन शायद यहीं से उनकी सबसे बड़ी वापसी शुरू होती है।
8: किनारे घर न बांधी देता समंदर से हूँ परिवार
1: पाछो। अमित शाह ने खुद को सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ना शुरू किया और बीजेपी के भीतर एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में उभरे जो चुनावी गणित को जमीन पर बदल सकता था। 2013 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक मुश्किल सवाल से जूझ रही थी, कैसे जीता जाए उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी थी। सिर्फ कुछ महीनों का समय था अमित शाह के पास और उन्होंने उत्तर प्रदेश को नेता की तरह नहीं मैनेजर की तरह देखा। उन्होंने चुनावी राजनीति को माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल में बदल दिया।
9: अमित भाई की खुद की एक संगठनात्मक समर्पण की भावना, और मुझे लग रहा है कि वो उनके उनके फिलोसॉफी के अध्ययन से आई है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो बड़े पाठक है, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो लगता है उनको कि इसमें से ये काम लेना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अच्छा पाठक जो होता है, रीडर, वो अच्छा राजनेता भी बन सकता है, उसका उदाहरण अमित भाई है।
1: 2014 के जब नतीजे आए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उसी दिन साफ हो गया कि अमित शाह अब सिर्फ संगठन मंत्री नहीं रहे, वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बन चुके हैं। इसके बाद बीजेपी का विस्तार सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं रहा। अमित शाह ने बीजेपी को सिर्फ चुनाव जिताने वाली पार्टी नहीं बनाया, बल्कि लगातार चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक मशीन में बदल दिया। आज भारतीय राजनीति का हर दल बूथ मैनेजमेंट की बात करता है, डेटा की बात करता है, ग्राउंड नेटवर्क की बात करता है, लेकिन इस मॉडल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने वालों में सबसे बड़ा नाम अमित शाह का माना जाता है।
2: वक्त है छोटे से ब्रेक का। हौसला ब्रेक के बाद देखिए अमित शाह की कहानी।

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
5: इसमें माइक्रोफाइबर है
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
4: हमारे सीमेंट में नहीं है
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: तो दिल्ली एनसीआर के लिए एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है. आज सुबह सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है. 48 घंटे में 3 रुपए प्रति किलो सीएनजी की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा सा असर हम पर आप पर पड़ेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खासकर दिल्ली में सीएनजी की कीमतें पहली बार 80 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो चुकी हैं. ज्यादातर जो गाड़ियां हैं, टेम्पो है या इस तरह के व्हीलर्स हैं, उन पर कॉस्ट पड़ रही है. आपकी गाड़ी है भैया सीएनजी चलाते? अच्छा, अभी आज फिर एक रुत 3 दिन लगभग मानिए 2 दिन में 3 रुपया बढ़ा है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन इस पर अब कितना फर्क पड़ेगा?
10: सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है. पहले काफी महंगी हो चुकी है और महंगी होने जा रही है. रोज के रोज रेट बढ़ रहे हैं.
9: रोज का जो खर्चा है आप पर कितना बोझ आ रहा है इससे?
10: सर बहुत बोझ बढ़ रहा है रोज के रोज. आगे से किराया मिलता नहीं इतना जितना बोझ बढ़ रहा है रोज.
9: आपका लोग किराया भी बढ़ाएंगे अब?
10: नहीं, कोई नहीं बढ़ाता सर.
9: अभी नहीं बढ़ाएगा?
10: अभी कोई नहीं बढ़ाएगा सर जी.
9: लेकिन जो जेब का फायदा है, जो कमाई है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा?
10: सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है. हाँ जी.
9: तो दरअसल ये जो चालक है, सब्जियां ले जाना हो, छोटे छोटे सामान हो, छोटे शहरों में जो अप्लाई करते हैं, और उसी के साथ साथ ऑटो रिक्शा. अब दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे ज्यादातर जो ओला उबर कैब एग्रीगेटर है उनकी जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी पर चलती हैं. तो आप समझिए कि 48 घंटे में दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80 रुपए से ज्यादा हो गई है, जबकि नोएडा में या उत्तर प्रदेश आप एनसीआर के दूसरे शहर वहां देखेंगे तो वो लगभग 88-89 रुपए से भी ज्यादा हो गई है. अब इसीलिए सबसे ज्यादा फर्क किस पर पड़ेगा? ऑटो रिक्शा वालों पर पड़ेगा. उनकी रोज की जो कमाई है, सिर्फ 1 किलो सीएनजी पर अगर 48 घंटे में 3 रुपए बढ़ते हैं तो उनका किराया नहीं बढ़ रहा है और पैसेंजर जो है मीटर पर चलना है, तो रोज की कमाई पर असर पड़ेगा. लेकिन कई सारे ट्रांसपोर्टेशन है जिनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ेगा. दरअसल स्थिति इसलिए भी है क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये बढ़ोतरी कब तक चलेगी, आज या कल में ये वापस होगा या अभी कीमतें और बढ़ेंगी. तो एक तबका ऐसा भी है जो इसके लिए तैयार भी है, दूसरा है जिसकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर है जो वस्तुएं जो आई जाती दूसरे शहर से लाई जाती उनकी कीमतों पर इसका असर पड़ेगा और उसका सीधा असर आम आदमी हमारी आपकी जेब पर भी पड़ेगा. दिल्ली में नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
5: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
5: जहां खबर वहां खबरदार.
3: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

पीएम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, कल से मेट्रो के 24 अतिरिक्त फेरे लगेंगे, 6 नई ट्रेनें, सुरक्षाकर्मी स्टाफ सुविधाएं भी बढ़ेंगी। नीदरलैंड्स ने स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नो सुपरपावर से कई करार, प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को दिया न्यौता, नीदरलैंड्स ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। लखनऊ में चैंबर्स पर बुलडोजर एक्शन से बढ़के वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प, धक्का मुक्की, नगर निगम का बयान हाईकोर्ट से आया है, अवैध निर्माण गिराने का आदेश। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर से 100 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद किए गए, पुलिस ने सरकारी जमीन खरीद बिक्री के अवैध दस्तावेज भी बरामद किए। और नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर, केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा।

गोरखपुर में सीएम योगी ने डिजिटल स्वगणन प्रपत्र पूरा करने का आग्रह किया। लोगों से जनगणना में भाग लेने की अपील की गई। योगी ने कहा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और व्यक्ति सबसे बाद में की भावना के साथ काम करने वाली बीजेपी दुनिया की इकलौती पार्टी है। लखनऊ में केसरबाग स्थित सिविल कोर्ट के बाहर बने अवैध चैंबर्स को नगर निगम ने ध्वस्त किया, पुलिस तैनात। बुलडोजर एक्शन पर वकीलों का आरोप, हाईकोर्ट के 72 चैंबर्स हटाने के आदेश की आड़ में 240 चैंबर्स को ध्वस्त कर दिया गया। सहारनपुर में गौकशी गैंग पर पुलिस का शिकंजा, कार से मिला 50 किलो गौवंशीय अवशेष, 4 आरोपी गिरफ्तार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, शिविर का किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा के सावेरी मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर हुई खाक, इलाके में अफरा तफरी। झांसी में भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान से बेहाल जनजीवन, ट्रांसफार्मर्स को कूलर से बचाने में जुटा है बिजली विभाग। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। गोंडा पहुंचे अमेरिका के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल, ब्रिजभूषण सिंह से की मुलाकात।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में। 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ कैसे इसे बार बार लीक किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो पेपर सेटर थे वही चीटर निकले हैं, उन्हीं की साजिश के तहत इतनी आसानी के साथ इसे लीक किया गया है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अगर 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर ये तमाम पेपर्स अवेलेबल थे तो सरकार प्रशासन कहां था, कार्रवाई क्यों नहीं की गई और बार बार इस तरीके से पेपर को लीक करने में ये लोग कामयाब कैसे हो जाते हैं। तमाम जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर अब आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नांदेड़ में सीबीआई की तरफ से छापेमारी हुई है और

0: बताया कि कदम परिवार से पूछताछ की गई है। आरोप ये लगाया गया है कि 5 लाख रुपए में कदम परिवार ने पेपर खरीदा था और इस पूरे मामले में सीबीआई ने यहां पहुंचकर तमाम जानकारियां जुटाई हैं और साथ ही कदम परिवार से पूछताछ लगातार जारी है। आरोप इन पर भी लगाया कि किस तरीके से इन्होंने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, उसी से जुड़े तमाम दस्तावेजों को तलाशा जा रहा है, घर की तलाशी ली गई है। तो नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में जबरदस्त हंगामा जारी है। 9 कुल गिरफ्तारियां हो चुकी है और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई कस्टडी में बायो टीचर मनीषा मंधारे आ चुकी हैं। 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर कोर्ट की तरफ से उन्हें भेज दिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे इसमें होंगे। दिल्ली से कल इनकी गिरफ्तारी की गई थी, बायोलॉजी का पेपर इन्होंने सेट करवाया था और तमाम अपने स्टूडेंट्स को घर बुलाकर ढेर सारे वही सवाल इनकी तरफ से बताए गए थे, नोटबुक में नोट करवाए गए थे जो एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। पेपर सेटिंग से जुड़ी थी मनीषा पंधारे और इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पेपर सेटर्स थे, जो पेपर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को तैयार कर रहे थे, वही लोग हैं जो चीटर साबित हुए, उन्हीं की तरफ से इन तमाम क्वेश्चन पेपर्स को लीक किया गया है। पहले गिरफ्तार किया गया था और केमिस्ट्री का पेपर सेट करने में ये शख्स शामिल रहा है, क्योंकि कुल 9 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और लगातार ये गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई लोगों के नाम अभी भी सामने आ रहे हैं। मनीषा बागमारे से जुड़े हुए थे ये दोनों के दोनों ही, और आपको ये भी बता दें कि अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सवाल विपक्षी तरफ से पूछे जा रहे हैं कि क्या ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस पूरे मामले पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से कई सवाल पूछे गए कि 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर जिस तरह से व्हाट्सएप पर अवेलेबल था उसके बाद प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट में पेश किया गया था मनीषा मंधारे को, 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीषा को भेज दिया गया है और जब मनीषा से यहां सवाल पूछा गया तो मनीषा किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कई और खुलासे होंगे, पूछताछ बहुत जरूरी है, इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीषा मंधारे को भेज दिया गया है। तो मनीषा को आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और कहा जा रहा है कि कई सारे सवालों के जवाब मनीषा दे सकती हैं और इसीलिए 14 दिन की कस्टडी में उनको भेजा गया है। जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा था, जर्नलिस्ट ने कई सवाल पूछने की मनीषा से कोशिश की, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया।
1: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं, कितने
2: क्या कहेंगे आपने
1: और कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व है इसमें, क्या एनडीए का और भी कोई इन्वॉल्व है आपके साथ?
2: आप खुद टीचर हैं,
1: आपने
3: तुम्हें गैर फायदा के तुम्हारे जो एक्सेस होता था
1: 22 लाख बच्चे हैं आपके वजह से दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं,
2: क्या एनडीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपको? मनीषा जी, क्या एनडीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपके साथ?
3: आपको मास्टरमाइंड
1: और भी और कितने लोग शामिल हैं आपके साथ?
4: मनीषा
2: जी, कितने पैसे में आपने ये न्यूज पेपर बेचा था स्टूडेंट्स को?
3: मनीषा जी, आपको मास्टरमाइंड
0: और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल का रुख करें। अंशुल, सवाल अब यह है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आगे की क्या कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल रही है? विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है कि 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा था, बावजूद इसके कानो कान किसी को भनक नहीं।
5: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तक तफ्तीश चली है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा, ये लग रहा है कि एक बहुत लंबी चेन है। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर पहले सेट हुए, सेट होने के बाद एनटीए को दिया गया, एनटीए ने फिर ट्रांसलेशन के लिए मनीषा को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था और मनीषा एक वो शख्स है जिनके हाथ में फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था ट्रांसलेशन के लिए, तो उन्हें बिल्कुल ये पता था कि कौन कौन से सवाल हैं जो क्वेश्चन पेपर में होंगे और इसी वजह से उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर आगे जाके लीक किया और इसके बदले पैसे भी लिए। सीबीआई ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आज कोर्ट की हियरिंग में सीबीआई का यह भी कहना था कि हो सकता है एनटीए के भी कुछ लोग जो ऑफिशियल एनटीए में हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये जानकारी मनीषा ही दे सकती है क्योंकि उनके पास आखिरी पेपर फाइनल पेपर जो है वो उनके पास ही आया था। तो अब जैसे आगे पूछताछ होगी, अब ये देखना होगा कि क्या एनटीए में भी कुछ अफसर ऐसे हैं जो इस पूरे पेपर लीक में और पूरे रैकेट में इन्वॉल्व थे जिसके वजह से 22 लाख छात्र एक बार फिर से नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल अंशुल, सवाल यही है कि क्या एनटीए के भीतर पेपर सेटर ही चीटर निकले हैं? सबके मन में यही सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों की तलाश जुटाने में खोजने में जुटी हुई है सीबीआई।

0: दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधा हिस्सेदार रहे, वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसा पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का एग्जाम पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
2: तो कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी हो चुकी है, मतलब 2 किरदार बहुत साफ साफ सामने आ चुके हैं कि ये पेपर लीक मामले में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तीसरा एक और बहुत ही अहम किरदार है जो इन दोनों से जुड़ा है और अब शक की सुई उस पर अटकी हुई है।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पहले आपको उन दो टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है और उन पर बायो पेपर लीक का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री का पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है। दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए। क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब बताए।
1: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा बंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों के लिए सवाल जवाब बनाए। अब सवाल ये भी है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे भी किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज से पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
2: विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला बोला है और उनकी तरफ से कहा गया है कि यहां शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 2025 का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में भी पेपर लीक मामला सामने आया था और कोई रेजिग्नेशन तभी भी नहीं हुआ था। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। बार बार पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा, और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। एक बार भी पेपर लीक के मामले में कुछ भी प्रधानमंत्री की तरफ से बयान नहीं दिया गया। राहुल गांधी की तरफ से तमाम सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है शिक्षा मंत्री को इस बड़ी लापरवाही पर। इसी के साथ यहां एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 biggie deals how you want them. At Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn. Ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: तो दिल्ली एनसीआर के लिए एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है। आज सुबह सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। 48 घंटे में 3 रुपए प्रति किलो सीएनजी की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा सा असर हम पर आप पर पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खासकर दिल्ली में सीएनजी की कीमतें पहली बार 80 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो चुकी हैं। ज्यादातर जो गाड़ियां हैं, टेम्पो है या इस तरह के व्हीलर्स हैं, उन पर कॉस्ट पड़ रही है। आपकी गाड़ी है भैया सीएनजी चलाते हैं? अच्छा, अभी आज फिर एक रुत 3 दिन लगभग मानिए 2 दिन में 3 रुपया बढ़ा है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन इस पर अब कितना फर्क पड़ेगा?
1: सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, पहले काफी महंगी हो चुकी है और महंगी होने जा रही है, रोज की रोज रेट बढ़ रहे हैं।
0: रोज का जो खर्चा है आप पर कितना बोझ आ रहा है इससे?
1: इससे सर बहुत बोझ बढ़ रहा है रोज की रोज, आगे से किराया मिलता नहीं इतना जितना बोझ बढ़ रहा है रोज।
0: आपका लोग किराया भी बढ़ाएंगे अब?
1: नहीं, कोई नहीं बढ़ाता सर,
0: अभी नहीं बढ़ाएगा,
1: अभी कोई नहीं बढ़ाएगा सर जी।
0: लेकिन जो जेब का फायदा है, जो कमाई है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा?
1: सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हाँ जी,
0: तो दरअसल ये जो चालक है, सब्जियां ले जाना हो, छोटे छोटे सामान हो, छोटे शहरों में जो अप्लाई करते हैं, और उसी के साथ साथ ऑटो रिक्शा। अब दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे ज्यादातर जो ओला उबर कैब एग्रीगेटर्स हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी पर चलती हैं। तो आप समझिए कि 48 घंटे में दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80 रुपए से ज्यादा हो गई है, जबकि नोएडा में या उत्तर प्रदेश आप एनसीआर के दूसरे शहर वहां देखेंगे तो वो लगभग 88-89 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। अब इसीलिए सबसे ज्यादा फर्क किस पड़ेगा? ऑटो रिक्शा वालों पर पड़ेगा। उनकी रोज की जो कमाई है, सिर्फ 1 किलो सीएनजी पर अगर 48 घंटे में 3 रुपए बढ़ते हैं तो उनका किराया नहीं बढ़ रहा है, और पैसेंजर जो है मीटर पर चलना है, तो रोज की कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन कई सारे ट्रांसपोर्टेशन है जिनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। दरअसल स्थिति इसलिए भी है क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये बढ़ोतरी कब तक चलेगी, आज या कल में ये वापस होगा या अभी कीमतें और बढ़ेंगी। तो एक तबका ऐसा भी है जो इसके लिए तैयार भी है, दूसरा है जिसकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर है जो वस्तुएं जो आई जाती दूसरे शहर से लाई जाती उनकी कीमतों पर इसका असर पड़ेगा, और उसका सीधा असर आम आदमी हमारी आपकी जेब पर भी पड़ेगा। दिल्ली में नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
6: Jack, come home. It's supper time.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Could you play that one song with the words?
5: Jack FM, playing what we want.
8: दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधा हिस्सेदार रहे, वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मांडेर तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मांडेर नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थीं। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मांडेर की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच पे जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मांडेर का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मांडेर ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए, नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मांडेर की गिरफ्तारी अहम है, और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का एग्जाम पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।

पीएम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला। कल से मेट्रो के 24 अतिरिक्त फेरे लगेंगे, 6 नई ट्रेन, सुरक्षाकर्मी साफ, सुविधाएं बढ़ेंगे। नीदरलैंड से स्वीडन रवाना होंगे पीएम मोदी, टेक्नो सुपर पावर के साथ कई करार। प्रधानमंत्री ने डच कंपनीज को दिया न्योता, नीदरलैंड्स ने चोल वंश का ताम्र पत्र सौंपा। लखनऊ में चैंबर्स पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प, धक्का मुक्की। नगर निगम का बयान, हाईकोर्ट से आया है अवैध निर्माण गिराने का आदेश। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर से 100 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद, पुलिस ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के अवैध दस्तावेज भी बरामद किए। नीट कांड में पेपर सेंटर से निकले चीटर, केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन सीबीआई हिरासत में भेजा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से, और इटली से बड़ी खबर, जहां पर लोगों को कार से कुचलने की कोशिश हुई है। एक सन के शख्स ने कई लोगों पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में, इस घटना में 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 तो ऐसे जो गंभीर रूप से घायल हैं। हम तस्वीरें भी आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, डराने वाली हैं, इसीलिए हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। इस घटना में 8 लोगों को कुचला गया, 4 तो गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली अपनी बैठक को रद्द कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्रेला भी इटली के उत्तरी शहर का दौरा करेंगे। आरोपी 30 वर्षीय व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि अफ्रीकी मूल का है। तेज रफ्तार गाड़ी आप देखेंगे कि लोगों को कुचलते हुए गाड़ी दीवार से टकराती है और लोगों को कुचलता जाता है। वहां पर अफरा तफरी भी मचती है। सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोग आपको देखेंगे कि जो फुटपाथ है उस पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़क के दोनों तरफ। वो तेज रफ्तार में आता है, गाड़ी लोगों को कुचलते हुए फिर दीवार से जा मारता है और उसके बाद गाड़ी वहां पर खड़ी होती है। ये देखिए, डरा देने वाली तस्वीर। और वो अपनी नॉर्मल स्पीड में एकाएक आता है, लेकिन एकाएक वो भीड़ की तरफ उस गाड़ी का रुख करता है और लोगों के ऊपर उस गाड़ी को चढ़ाते हुए जोरदार टक्कर दीवार पर मारता है। 8 लोग इसमें घायल हैं, 4 इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। अब ये शख्स अफ्रीकी मूल का भी शुरुआती रूप में बताया जा रहा है। उम्र इसके 30 साल बताई जा रही है। आप देखेंगे कि कुछ और तस्वीरें भी आई हैं। हमने एक फुटेज से पहले आपको दिखा, थोड़ा ब्लर करके हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, और ये एक विजुअल ये है। इसमें वो तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ, लोगों को कुचलता हुआ, और लोग गाड़ी के नीचे आने के बाद वहां पर गिरते हुए फिर दिखाई दिए। ये इटली की तस्वीर है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने जो कार्यक्रम थे, जो उनको जाना था, वो रद्द कर दिया है। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली उनकी बैठक थी, वो रद्द कर दी है। चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। लखनऊ के कैसरबाग से सिविल कोर्ट के बाहर बने हुए चैंबर्स को नगर निगम ने किया ध्वस्त, पुलिस बल अब तैनात। बुलडोजर एक्शन पर वकीलों का आरोप, हाईकोर्ट के 72 चैंबर हटाने के आदेश के आड़ में 240 चैंबर ध्वस्त किए गए। एमपी के बैतूल में ब्रेक फेल होने की वजह से 35 फीट गहरे कुएं में जा गिरी कार, 108 एम्बुलेंस टीम और ग्रामीणों ने 3 युवकों को सुरक्षित निकाल लिया। होशियारपुर में जेल से अस्पताल ले जा रहे कैदी ने पुलिस पर चाकू से किया हमला, उसके बाद भागने की कोशिश भी की। जड़पुर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें कैदी के हमले के बाद से पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में की फायरिंग, कैदी नसीब सिंह की मौत। नीट पेपर लीक केस में अब तक 9 गिरफ्तार। पेपर सेंटर से ही ये चीटर निकले, केमिस्ट्री लेक्चरर के बाद से बॉटनी टीचर मनीषा मंडारे पर सीबीआई का सिकंजा। दिल्ली ग्राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने आरोपी टीचर मनीषा मंडारे को 14 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेजा, पेपर सेटिंग में मुख्य भूमिका थी। नांदेड़ में सीबीआई का छापा, बेटी के लिए 5 लाख रुपए में नीट पेपर खरीदने के आरोप में कदम परिवार अब जांच के घेरे में। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बोला हमला, लिखा कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इस परीक्षा पर चर्चा पर आप चुप क्यों हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी, आज से 1 रुपए की बढ़ोतरी के बाद नई दरें फिलहाल। लगातार दूसरे दिन बढ़े सीएनजी के रेट, दिल्ली में 80 रुपए से ज्यादा अब, और जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 88.70 रुपए प्रति किलो हुई सीएनजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन, बढ़ते पेट्रोल डीजल कीमतों पर जताया विरोध, करोलबाग पेट्रोल पंप पर जुटे कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पोस्टर पर लिखा कि पीएम ने डीजल पेट्रोल कर दिया महंगा, चुनावों के बाद दिखाया ठेंगा। कच्छ के कांडला बंदरगाह पर एलपीजी कैरियर जहाज एसवाईएमआई पहुंचा, 20,000 टन एलपीजी की खेप भी पहुंचे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारियों का बयान, भ्रष्टाचार के सभी केसेस की होगी जांच, अभिषेक बैनर्जी की संपत्ति की मांगी सूची। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, शुभेंदु अधिकारी बोले अधिकारियों की कॉल डिटेल की होगी जांच, अभिषेक के निर्देश पर काम करने वालों पर कार्रवाई। कोलकाता के सॉल्टेक में टीएमसी दफ्तर से 100 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद, पुलिस ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के आधार दस्तावेज भी बरामद किए। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई की गाइडलाइंस के बाद से आज विधि विधान के साथ की गई मां वाग्देवी की पूजा, जमकर थिर के भक्त। जमीयत उलेमा हिंद ने वंदे मातरम के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्य समिति में बोले संगठन के अध्यक्ष अरशद बदनी, हमारे धार्मिक विश्वास के खिलाफ हम लड़ेंगे खन में लड़ाई। वीडी सतीश केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर कल लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग होंगे शामिल। के नई सरकार के सामने विकास, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं को लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का बड़ा फैसला, 18 मई से चलेंगे अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं, निजी वाहनों से दूरी की भी अपील। ईंधन बचत अभियान के बीच में दिल्ली मेट्रो में बढ़ेंगे ट्रेन ट्रिप्स, यात्रियों के लिए सुरक्षा और टिकट सुविधाएं भी और मजबूत की जाएंगी। ये मोदी की अपील का पालन करती दिया कुमारी भी आई नजर, अजमेर दौरे पर ट्रेन से पहुंचे, केसरपुरा में नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगे। ये मोदी की अपील का असर, बाराबंकी पुलिस ने शुरू की साइकिल अभियान, साइकिल से गश्त कर ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जालना में मनोज जरांगे ने 30 मई को भूख हड़ताल का किया ऐलान, मराठा आरक्षण को लेकर फिर से लड़ाई तेज। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने बेअदबी कानून के खिलाफ गुरुद्वारों के बाहर लगाए जागरूकता के बोर्ड, एजीपीसी का विरोध प्रदर्शन। जालौर के फर्नीचर कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 2 करोड़ की फिरौती की धमकी, शोरूम पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपिस्ट ओम सथेजा ने कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक 5,000 किलोमीटर दौड़ पूरी की और कुष्ठ रोग के खिलाफ जागरूकता का दिया संदेश। असम दौरे के दौरान प्रशिक्षण शिविर के बाद से गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत बरबारी के सुदर्शनालय भी पहुंचे। गुजरात में जनजागरण का काम भी शुरू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पर पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर और जनगणना करवाई। गोंडा पहुंचे अमेरिका के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर एक्शन हॉल, ब्रिजभूषण शरण सिंह से की मुलाकात। बिहार के छपरा पहुंचे अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और प्रीति अडानी, गायत्री मंदिर शक्तिपीठ की प्रार्थना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में पहुंचे सीएम योगी, शिविर का किया निरीक्षण। नागपुर में फ्लैट में घुसकर फाइनेंस कंपनी के एजेंट के दिन दहाड़े चाकू गोद कर हत्या, पुराने रंजिश का है मामला। भोपाल में एआई से अश्लील फोटो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल किया, 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। भोपाल में पूर्व जज की बहू की मौत मामले में मां बेटे को जमानत, मृतिका का 4 दिन के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कोडरमा में अवैध संबंधों में प्रतिशोध में युवक की पत्नी की हत्या, आरोप में चाचा और चाची गिरफ्तार। वाशिम में अकोला नाका स्थित पेट्रोल पंप पर कतार में नंबर को लेकर ग्राहकों के बीच में भिड़ंत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गिरिडीह में युवती की संदिग्ध मौत के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार, अंतिम संस्कार से पहले मृतक की मांग में भरा सिंदूर, निभाई शादी की रस्म। अहमदाबाद में पानीपुरी से निकली हड्डी, शिकायत करने वाला दुकानदार बोला कहीं से उड़कर आई होगी। नासिक की सराफा दुकान में हथियारों के साथ लूटपाट की कोशिश, 2 महिलाओं और 1 शख्स ने 4 चोरों को खदेड़ा, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस में B1 कोच में लगी अचानक आग। आगे पास से ट्रेन रोककर 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा, लगभग 15 मिनट में पूरे कोच को खाली कराया गया। ग्रेटर नोएडा के साबरी मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक, शाबिर इलाके में अफरा तफरी मची। इंदौर में सागर जा रहे एक चार्टर्ड बस में अचानक भीषण आग लगी, बाल बाल बचे यात्री, 18 यात्रियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। सोनीपत में टक्कर के बाद से आग का गोला बन गई कार, जिंदल यूनिवर्सिटी के पास में हादसा, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। धौलपुर के एक मोहल्ले में नाली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, हिंसा में 2 लोग घायल। नाली को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि लोगों ने छतों से पत्थरबाजी शुरू कर दी, वीडियो भी वायरल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात के अमरेली में रिजर्व फॉरेस्ट की 70 एकड़ जमीन पर माइनिंग को लेकर विवाद, बीजेपी एमएलए ने फॉरेस्ट मिनिस्टर को लिखी चिट्ठी, कहा इस इलाके में शेरों और वन्य जीवों को खतरा हो सकता है। सहारनपुर में कौकशी गैंग का पुलिस का उन पर शिकंजा, कार से मिला 50 किलो गौवंशीय अवशेष, 4 आरोपी गिरफ्तार। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हवा हटाए गए अवैध कब्जे। आज से ब्रज की पवित्र 84 कोशी परिक्रमा की शुरुआत हुई है और भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसीय परिक्रमा। मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमा मार्ग में नंदगांव, गोकुल, बरसाना जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं। अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व है। अधिमास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त, श्रीराम के जयकारों की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा का दिव्य श्रृंगार, सुबह से आरती के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से फिलहाल राहत, बढ़ेगा तापमान, लोगों को सतर्क रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। बांदा में भी लगातार बढ़ा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान से बेहाल जनजीवन, ट्रांसफॉर्मर को कूलर से बचाने की कोशिश में बिजली विभाग। टिहरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश, सड़कें बनी ताला। फिल्म गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। रोहित शेट्टी की इस मूवी में वो एक विलन का रोल करेंगे। गोलमाल 5 में इसे जोड़कर मेकर्स ने इस फिल्म को बढ़ाया भी है। अक्षय कुमार अब इस मूवी में एक कॉमिक विलन का रोल करेंगे। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिखाई दी और आंखों में काजल, बालों में फूल लगाए नयनतारा ने कई पोजेस भी दिए। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार है नयनतारा। फिल्मों को लेकर रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा खूबसूरत ग्लैमरस रहती है, चर्चा में रहती है। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल के सामने से जो है सामने आया सुनील शेट्टी का भी फर्स्ट लुक स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए एक्टर। प्रभास की कल की टू में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण की पेडी का ट्रेलर हुआ लॉन्च, इसमें एमएस धोनी की एंट्री। 4 जून को फिल्म सिनेमा घरों में होगी रिलीज। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन का अहम रोल। अविका गौर से सालों के बाद मिले गौरव खन्ना, कहा कि ये इतनी सी थी कि KR-15 में दिखेंगे सर। फिल्म भूत बंगला में धमाल मचा है, अब तक 29 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी। IPL में आज के लिए जाएंगे दो बड़े मुकाबले। पहला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा। शाम को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम में होंगे आमने सामने। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए भी जीत जरूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 247 रनों से रन बनाए और धमाकेदार जीत दर्ज की। गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हराया। फिर नैदर ने 35 गेंद पर 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। KKR को मिली तेज शुरुआत। अंग क्रिश रघुवंशी ने 82 रनों की पारी खेली, मध्यक्रम को मजबूत बनाया। कैमरन ग्रीन ने भी 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। साई सुदर्शन ने T20 क्रिकेट में रचा नया इतिहास, ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर का महारिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। साई सुदर्शन इनिंग्स के हिसाब से सबसे तेज 3000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। सुदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श को पीछे छोड़ा। शॉन मार्श ने 85 इनिंग्स में पूरे किए थे 3000 रन। सुदर्शन ने 78वीं पारी में ही ये सफलता हासिल कर ली। फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी की बराबरी, 10 छक्के और 4 चौके की मदद से 35 गेंदों पर 93 रन बनाए। गुजरात टाइटंस को हाई स्कोरिंग मुकाबले में हराकर KKR को मिला एक मौका। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुंचे अपने ईरानी समकक्ष के साथ मुलाकात। पाक गृहमंत्री के 2 दिवसीय दौरे के मकसद तनाव को कम करना। दुनिया के सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड 11 महीनों की तैनाती के बाद लौटा अपने देश वर्जीनिया में, भव्य स्वागत हुआ। ईरान में सत्ता परिवर्तन के समर्थन में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रैली, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान में बदलाव की मांग, मदद की अपील। गाजा सिटी में इसराइल ने एक बार फिर से किया जबरदस्त हमला, एक वाहन को निशाना बनाकर 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इसराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोगों ने नेतन्याहू पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उत्तरी इटली के मेरोना शहर में एक शख्स ने भीड़ पर चढ़ाई कर कम से कम 8 लोग इसमें घायल, 4 गंभीर रूप से घायल। रूस के प्रतिगोर्स्क शहर में एक पेट्रोल पंप पर जोरदार विस्फोट, पंप पर ईंधन लेकर पहुंचे टैंकर में जोरदार धमाका, इसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर, 2 के अलग हादसे। ब्राजील के रियो शहर में सालाना एयर शो 10 विमानों ने हवा में दिखाई हैरतअंगेज करतब, अद्भुत नजारे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। रियो डी जेनेरियो राज्य में यह सबसे बड़ा एयर शो। बुल्गारिया ने पहली बार यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीता है और बुल्गारियाई पॉप स्टार दारा ने अपने सॉन्ग बंगा रंगा को गाकर ये जीता है। यूक्रेन की स्टार टेनिस प्लेयर एलिना स्वितोलिना ने जीत दर्ज की है। इटालियन ओपन का खिताब उन्होंने जीता है और विश्व नंबर 4 कोको गॉफ को 6-4, 6-7 से हराया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: अब दिल्ली से आपको एक बड़ी अहम खबर देते हैं। 18 मई से अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें दिल्ली में चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद, पेट्रोल डीजल की बचत के अपील के बाद, लोगों से कार पुलिंग करने की अपील के बाद और जो सार्वजनिक जो दूसरे परिवहन के माध्यम है उनका इस्तेमाल करने की अपील की गई है, तो ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने भी यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कुछ निर्णय लिए हैं। 24 ज्यादा फेरे लगाने का निर्णय लिया गया। DMRC के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेनों के 24 से अधिक फेरे लगेंगे रोजाना। इसके लिए सोमवार से 6 ज्यादा मेट्रो ट्रेनें लगाने का फैसला लिया गया है। मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की अपील के बाद लिया। इसमें उन्होंने तेल की खपत करने के लिए देशवासियों से पीएम ने अपील की थी और कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। मकसद यही है कि लोग मेट्रो से सफर करें। और हालांकि दिल्ली मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बेतहाशा भीड़ रहती है, तो उसी भीड़ को देखते हुए तो ज्यादा भीड़ होती तो ऐसे में ज्यादा फेरे और ज्यादा मेट्रो ट्रेन लगाने का निर्णय है। आपको सुनाते हैं पीएम ने जो अपील की थी वो भी आपको एक बार फिर सुनाते हैं, जिसके बाद DMRC का निर्णय।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
0: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट क्लासिक सोल म्यूजिक दैट गेट्स यू मूविंग एंड TuneIn's एक्सक्लूसिव सोल ग्रूव स्टेशन हैज ऑल द राइट मूव्स। हिट प्ले ऑन द ग्रूवियस्ट 70s सिलेक्शन। Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
8: सवारी सोकुडो

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: और वही कहां गए थे घूमने
5: जीके मैक्स
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
7: यार
6: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
8: इसमें माइक्रो फाइबर है
6: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
6: हमारे सीमेंट में नहीं है
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
2: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: यहां से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं गया।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप।
5: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
6: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
7: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
5: शुभेंदु अधिकारी,
4: यहां पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
8: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सेन गुप्ता,
9: अनुपम मिश्रा,
10: मेहमत भारद्वाज,
11: पीयूष मिश्रा,
12: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।
13: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
14: काम आसान बनाने आई टेक्नोलॉजी अब काम छीनने लगी है और यही बदलाव धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल दे रहा है।

0: Hasta tuvo.
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैम्बर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुए है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैम्बर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैम्बर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैम्बर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैम्बर बने थे। वकीलों की तरफ से कहा गया कि 72 चैम्बर गिराने का हाईकोर्ट का आदेश था, जिनको चिन्हित किया गया था और जिनको गिराया जाना था, लेकिन लखनऊ नगर निगम और पुलिस ने मिलकर इस पूरे इलाके के करीब 240 से अधिक चैम्बर्स को गिरा दिया है। वकीलों का आरोप है कि ये प्रशासन की मनमानी है, बिना नोटिस के उनके चैम्बर गिराए गए हैं। बहरहाल प्रशासन कह रहा है कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई कानून सम्मत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।
2: तो जब वकील कानून के जानकार माने जाते हैं, उन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिए, वो पुलिस वालों के साथ भिड़ गए। वकीलों का गुस्सा और वो उसके पीछे की अपनी दलीलें भी दे रहे हैं। अब जिन वकीलों का चैम्बर तोड़ा गया उनका क्या कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं।
1: लखनऊ में वकीलों के एक चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन से वकीलों के चैम्बर गिराए गए हैं और दूसरी तरफ तमाम वकील, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि यहां पर तमाम जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो वकील पहुंच गए हैं, महिला अधिवक्ता भी हैं, इन्होंने अपने आप को अपने चैम्बर के अंदर बंद ही कर लिया। आपने बंद, ये आपका चैम्बर?
3: जी ये मेरा चैम्बर है।
1: क्यों बंद कर लिया आपने?
3: ये अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
1: पिताजी,
3: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
1: कोई कभी कोई नोटिस,
3: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैम्बर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं, 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक, आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी, आप भी वकील हैं, तो ये मतलब 30 साल से आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया?
4: नोटिस दिया गया है, लेकिन जहां तक दिया गया था वहां, यहां नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहां कार्रवाई की जा रही
1: है। कहां तक दिया गया?
4: ये आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
1: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
4: दिया गया? जी हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
1: कितने गिराने थे, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैम्बर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैम्बर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
1: ये कितने चैम्बरों को गिराने का नोटिस था, उनकी आड़ में ज्यादा गिरा?
5: मात्र 72 चैम्बर तोड़ने का आदेश हुआ था, उसका प्रशासन कंप्लायंस कर चुका है, 150 से ज्यादा चैम्बर तोड़े जा चुके हैं। आखिर अधिवक्ता रोड पे बैठने को क्यों मजबूर है? हमारी पुरानी तहसील पीछे बनी हुई थी, तहसील सिप्टू के गोमती नगर खरकापुर चली गई है, वहाँ पे 4.5 बीघा जमीन पड़ी हुई है, अगर प्रशासन चाहे तो उस जमीन को सदुपयोग कर सकता है।
1: वहाँ पे लोगों को कभी नोटिस दिया गया इसका?
5: नोटिस नहीं दिया गया है,
1: नोटिस कभी
5: नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं।
1: अचानक
5: ना नगर निगम कोई अधिकारी मौके पे आ रहा है, सिर्फ पीएससी वाला आ रहा है, नगर निगम कोई अधिकारी नहीं कह रहा कि यहाँ हमने निशान लगाया था, ना इन चैम्बरों पे कहीं निशान लगे हुए हैं। जिन पे निशान लगे थे वो सारे चैम्बर तोड़े जा चुके हैं। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के ऊपर स्वास्थ्य भवन चौराहे पे लाठीचार्ज भी किया जा चुका है। सुबह प्रशासन ने 10 बजे का समय दिया था।
6: मैं सिविल कोर्ट की जमीन में हूँ, मैं अब
1: पानी पे लीजिए, आप परेशान मत हो, आपके लोग मदद रख कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। तो ये देखिए, ये जाहिर सी बात है कि 30 साल से लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आते हैं तो उनका एक एड्रेस होता है कि यहीं पर मिलेंगे, और अचानक से इनका आरोप है कि यहाँ अचानक से बिना किसी नोटिस के बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।
2: अधिवक्ताओं के आरोप बेहद गंभीर है, वो कह रहे हैं कि कोई नोटिस थाने और

0: बिना नोटिस के आप बुलडोजर चला देंगे, लोकतंत्र में क्या यह जायज है? बहरहाल इस पूरे मामले पर डीसीपी से भी खास बातचीत की गई, कमलेश दीक्षित क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं।
1: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
2: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया गया
1: जी जी।
2: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
1: रहा है। नहीं नहीं, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
2: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैम्बर में बंद कर
1: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
2: चलिए,
0: सब आराम से चल रहा है। वेल, तो लखनऊ में ये बुलडोजर एक्शन, उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नई बीजेपी की सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। बीती रात हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर बैठे हुए दुकानदारों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला है। कई साल से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करके व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कर दिया। तो शिवेंद्र सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी कहा कि जहां पर अतिक्रमण होगा वहां पर अभियान चलाया जाएगा, यानी कि सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा।
3: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
0: जमीयत उलेमा हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है और इसे विवादित गीत कहा है। जमीयत उलेमा हिंद की कार्य समिति के दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है और मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। तो वंदे मातरम को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ये आपत्ति।

तो वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व हर कोई जानता है। जब इसे 1937 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद जैसे जो विद्वान थे वो बैठे और सिर्फ दो छंदों को लिया गया। लेकिन अब अरशद मदनी को इसमें आपत्तियां हैं और वो कह रहे हैं कि इसे तो हटाया जाना चाहिए, हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस में कई कड़ियां भी जुड़ती जा रही है, कई किरदार सामने आ रहे, कई आरोपियों पर शिकंजा खस रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए से सीधा ताल्लुक है, सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने पेपर लीक की साजिश रची। अब तक इस केस में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तो इस्तीफे की मांग की है। तो क्या एनटीए के इनसाइडर्स ने ही नीट का ये पेपर लीक करवाया? ये सवाल बीते दो दिनों में हुई दो गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट के पेपर सेटिंग करने वाली टीम से जुड़े हुए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी इस साजिश में शामिल थे?

0: दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधा हिस्सेदार रहे, वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसा पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ कंटिन्यूस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का एग्जाम पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम हैं। 2 वो जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3रा वो जो दोनों से जुड़े हुए थे। छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने के साजिश में लगे हुए थे।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पहले आपको उन दो टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है और उन पर बायो पेपर लीक का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री का पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है। दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए। क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब बताए।
1: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा बंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों के लिए सवाल जवाब बनाए। अब सवाल ये भी है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे भी किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज से पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
2: और एक बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के बाद अब स्वीडन का उनका दौरा, और स्वीडन के लिए वो रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें भी हैं, नीदरलैंड का जो दौरा है वो सफल भी है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण करार हुए हैं नीदरलैंड के साथ। लेकिन अब जो अगला गंतव्य है वो है स्वीडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर थे तो विदाई देने के लिए आप देखेंगे पूरा डेलीगेशन वहां पर, और जाते हुए भी उनको जो है सी ऑफ करने के लिए भी नीदरलैंड के जो प्रतिनिधि है वो पहुंचे हुए दिखाई दिए। और अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus Card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
12: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

तेल बचाने की अपील अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रही, ये सीधे भारत के ऑफिस कल्चर तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद देश में फिर से वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा तेज हो गई है। कई कंपनियां और सरकारी संस्थान अब सीमित वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स और कार पूलिंग जैसे विकल्पों पर काम भी कर रहे हैं। भारत ने कोरोना काल में इसका बड़ा प्रयोग देखा था, लेकिन अब इसकी वापसी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति के तौर पर हो रही है। दफ्तर जाने में तेल की खपत बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट में कम ईंधन खर्च होना सीधे भारत के आयात बिल और विदेशी निवेश दबाव को कम कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े शहरों जैसे गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और मुंबई में एक दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू हो जाए तो लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद के आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम से रोज करीब 6 लाख लीटर ईंधन बचाया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा असर शहरों में ट्रैफिक पर पड़ सकता है। हाइब्रिड वर्क से सड़क पर गाड़ियां कम होंगी, प्रदूषण घटेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव भी कम होगा। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कर्मचारियों के लिए सुविधा नहीं बल्कि कंपनियों के लिए खर्चे कम करने का तरीका भी बन चुका है। ऑफिस की बिजली, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च घटता है। वर्क फ्रॉम होम भारत के लिए सिर्फ तेल बचाने का जरिया नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने का तरीका भी है। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ सकता है, बड़े शहरों पर दबाव कम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार लगभग 40 देशों ने ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। श्रीलंका और फिलीपींस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू किया। इंडोनेशिया और म्यांमार ने ईंधन संकट के चलते रिमोट वर्क और ऑफिस आने के दिनों में कटौती की। पाकिस्तान ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम की है। वियतनाम ने कंपनियों को ऑनलाइन मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। थाईलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश जैसे देशों ने AC उपयोग सीमित करने, गैर जरूरी यात्रा रोकने और काम के समय में बदलाव जैसे उपाय अपनाए हैं। यूरोप ने भी ऊर्जा संकट के दौरान कार पूलिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। थाईलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश जैसे देशों ने AC उपयोग सीमित करने, गैर जरूरी यात्रा रोकने और काम के समय में बदलाव जैसे उपाय अपनाए हैं। यूरोप ने भी ऊर्जा संकट के दौरान कार पूलिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। थाईलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश जैसे देशों ने AC उपयोग सीमित करने, गैर जरूरी यात्रा रोकने और काम के समय में बदलाव जैसे उपाय अपनाए हैं। यूरोप ने भी ऊर्जा संकट के दौरान कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के सीमित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। यानी दुनिया अब समझ रही है कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ईंधन और ऊर्जा बचाने का बड़ा हथियार भी है।

छह नई ट्रेनें और ईंधन संकट से बचाने के लिए डीएमआरसी का बड़ा ऐलान। नीट पेपर कांड में पेपर सेंटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंदारे पर भी कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
2: रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानबाजियों के लिए, अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों में उन्होंने जो लगातार बयान दिए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की टेंशन हाई कर दी है। लगातार लोग परेशान है, चिंता में है कि आखिरकार कब डोनाल्ड ट्रंप किसी नई जंग का ऐलान तो कर नहीं करने वाले। लेकिन बात इस बात को लेकर भी है कि 40 दिनों में जो अमेरिका और ईरान के बीच में जंग हुई थी, ना तो वो ताकत अब ईरान अमेरिका के पास बची है और ना ही वो हौसले अमेरिकी सैनिकों के पास है कि वो एक बार फिर से नई जंग का आगाज कर सके। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं बयानों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में नई जंग होने वाली है। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, लेकिन रणभूमि स्पेशल में आज हम जिन बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे उसमें सबसे पहली खबर होगी कि अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव से लेकर इसराइल और हिजबुल्ला तक युद्ध के बादल मंडराने लगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसने वाला है, क्योंकि खबरें आ रही हैं और ये तय मानी जा रही है कि ट्रंप किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर होगी, अमेरिका ने समंदर और आसमान में युद्ध का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि ट्रंप ने अपने दो सोशल मीडिया पोस्ट में इसका इशारा भी कर दिया है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर, हम आपको बताएंगे कि अमेरिका हमलों की खबरों के बीच ईरान ने भी हॉर्मुज पर अपने कब्जे को और मजबूत करने का प्लान दुनिया के सामने रखा है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर, हम आपको दिखाएंगे कैसे इसराइल और लेबनान में युद्ध के विराम के बाद एक दूसरे पर अब भी जंगी बादल मंडरा रहे हैं, एक दूसरे पर वो हमले कर रहे हैं। इसके बाद रणभूमि स्पेशल में पांचवी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड यानी एक इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज की है, जिसका सफलतापूर्ण एक्सरसाइज करने के बाद अपनी काबिलियत को, अपनी शौर्य को एक बार फिर दिखाया। इसे युद्ध की तैयारी के लिहाज से भी देखा जा रहा है। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर, और इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर, और इन दोनों से जानेंगे कि आखिरकार कैसे ये युद्ध अब और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो रणभूमि स्पेशल की पहली खबर है। रणभूमि स्पेशल में हम तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, नीदरलैंड से चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले ही वहां के एक बांध का दौरा किया। PM मोदी के साथ वहां के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी तकनीक और इसकी बारीकियों के बारे में जानकारी साझा की। डैम के दौरे के दौरान PM मोदी ने पोस्ट लिखा और कहा कि जल संसाधन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नीदरलैंड के आगे कोई नहीं है और उनका काम अग्रणी है। इसके अलावा संपूर्ण वैश्विक समुदाय को उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। PM मोदी ने लिखा कि आज सुबह मुझे डैम का दौरा करने का, इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं को समझने का अवसर मिला। नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब स्वीडन के लिए रवाना होंगे। तो अब लौटते हैं युद्ध की खबरों पर, जहां अमेरिका से लेकर ईरान तक और इसराइल से लेकर चीन तक ये संकेत मिल रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद एक और नया भीषण जंग छिड़ सकती है। और लगता तो यही है कि महायुद्ध जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्योंकि पीस प्लान को लेकर अभी तक ना तो अमेरिका और ना ईरान के बीच सहमति बन पाई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि ईरान ने शांति समझौते पर मोहर नहीं लगाई है तो इस बार उसे ज्यादा विनाश झेलना पड़ सकता है। अंदर ही अंदर ईरान खुद भी महायुद्ध पार्ट 2 की तैयारियां कर रहा है। उसके शीर्ष अधिकारी साफ कह चुके हैं कि कोशिश जारी है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा करना उनके लिए नामुमकिन है।
3: फिर छिड़ने वाला है युद्ध भयंकर। अमेरिका इजराइल मिलकर लाएंगे ईरान में बवंडर। तैयार है प्लान, फिर झुलसेगा ईरान। US मीडिया का दावा, हफ्ते भर में मचेगा कोहराम। क्या युद्ध विराम की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी है? क्या जल्द ही बमों की बरसात फिर शुरू होने वाली है? क्या मिसाइलों का शोर फिर घमासान मचाने वाला है? इन सवालों के जवाब बेशक अभी किसी के पास ना हो, लेकिन हालात जो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक महायुद्ध फिर शुरू होने की तैयारी तीनों देश कर रहे हैं। अमेरिका भी, इसराइल भी और ईरान के सिर तो ये आशंका उसी दिन से मंडरा रही है जिस दिन से सीज फायर लागू हुआ था। इधर ट्रंप के चीन दौरे तक रही सही जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो चुकी है, और अब अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। इन अटकलों को हवा दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट ने, जिसके जरिए ट्रंप ने कहा कि ये तूफान से पहले की शांति थी। सोशल मीडिया पर साझा की गई एक एआई वाली तस्वीर में ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल कैप पहने हुए देखा जा सकता है और उनके साथ हैं यूएस नेवी के एक एडमिरल। इस तस्वीर में ये दोनों उफनते पानी और बिजली कड़कने के बीच नेवी के एक वॉरशिप पर सवार नजर आ रहे हैं और पीछे ईरानी जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। तूफान से पहले की शांति कैप्शन के साथ शेयर की गई इस तस्वीर को ईरान के लिए एक साफ धमकी के तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही युद्ध फिर शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वॉर रूम से मिली खबरों के आधार पर दावा किया है कि ट्रंप जल्दी ही ईरान को लेकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। अमेरिकी फौज के आला अधिकारी ईरान पर चौतरफा हमलों की योजना को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ट्रंप हर दूसरे दिन साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान डील पर जल्दी ही मुहर नहीं लगाता तो उसका विनाश तय है। सीज फायर के बाद से हर हफ्ते कम से कम एक बार बातचीत के बाद समझौता होने की उम्मीद जगती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इन कोशिशों की हवा निकल जाती है। यूरेनियम और होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, न डील हो पा रही है, न भरोसा कायम हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने तो इतना तक कह दिया है कि बातचीत का नया दौर शुरू होने की उम्मीद जगी है, लेकिन उन्हें अमेरिका पर भरोसा कम ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का फैसला लेते हैं तो एक विकल्प ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर और ज्यादा बम बरसाने का है, जबकि दूसरा विकल्प एक जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन है जिसमें ईरान के यूरेनियम स्टोरेज सेंटर को तबाह करना है। इस बीच इसराइल के यरूशलम के करीब एक जबरदस्त धमाका हुआ है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जोरदार धमाके के बाद आसमान में कई मील दूर से आग के शोले उठते दिखाई दिए और फिर धुएं का गुब्बार फैलता चला गया। ये धमाका इसराइल की एक सरकारी डिफेंस कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में हुआ है जो इसराइल के बेहद सीक्रेट रॉकेट और मिसाइल इंजन बनाती है। वैसे तो इसराइल इसे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तर्क को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल के आधुनिक डिफेंस सिस्टम को इससे भारी नुकसान हुआ है।
2: और अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने चेतावनी जारी की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के सहयोगी देश न केवल उसकी कूटनीति का समर्थन कर रहे हैं बल्कि वे हमले की नीति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वॉशिंगटन से अगली बार की जाने वाले हिंसा के नतीजों के लिए वो मुल्क भी जिम्मेदार होंगे। ये अमेरिका के सहयोगी देशों को ईरान की ओर से सीधी चेतावनी माना जा रहा है। दरअसल ईरान पहले भी कह चुका है कि जो भी मुल्क लगातार अमेरिका के इसमें मदद कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है वो भी इस जंग के दायरे में सीधे तौर पर आ जाएगा। और ये सभी बयान उस समय आ रहे हैं जब एक बार फिर से ये आशंका लगाई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करने की तैयारी में, यानी एक और फेज का ऑपरेशन या वॉर शुरू हो सकती है। इसी बीच ईरान की तरफ से ये कड़ी चेतावनी दी गई है। और एक और बड़ा अपडेट इसी युद्ध को लेकर आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ युद्ध ऑपरेशन की फिर से शुरुआत करने की आशंका प्रबल होती जा रही है। अमेरिकी सैन्य परिवहन बेड़े यानी उनके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट से वापस बुलाया जा रहा है। ये अमेरिका की तैयारी के तौर पर इस पूरी रणनीति को देखा जा रहा है जहां अमेरिका अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों को सुरक्षित करना चाहता है। सबसे खास बात यह कि जो उसके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैवी लिफ्ट है उनको वो मिडल ईस्ट से वापस बुला रहा है या फिर दूसरी जगहों पर डिप्लॉय कर रहा है। आपको याद होगा कि पहले भी जब 40 दिन का युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान ने सभी उस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था जहां पर अमेरिका के रडार सिस्टम्स, उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या उनके फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हुए हैं। चलो एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड रिकॉर्ड तोड़ 11 महीनों की युद्ध तैयारी के बाद तैनाती के बाद लगातार एक बार फिर से नॉरफॉक स्थित अपने अड्डे पर लौट आया, यानी अपने बेस पर लौट आया। लौटने की तस्वीरें भी इसको जारी की गई है। कहा जा रहा है कि शानदार स्वागत किया गया और इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद तमाम बड़े लोगों को या फिर आप कह सकते हैं उनके ऑफिसर्स को, उनके मरीन्स को संबोधन करने के लिए वहां पर खुद अमेरिका के अधिकारी पहुंचे थे। 11 महीने की तैनाती के बाद ये वापस लौटा है। आपको बता दें कि लंबे समय तक इसकी तैनाती इसराइल की सुरक्षा के लिए की गई थी। मेडिटेरियन सी के अंदर इसको तैनात किया गया था ताकि ईरान हूतिया कहीं से भी हिज़्बुल्लाह की तरफ से होने वाले हवाई हमले मिसाइल हमलों से वो इसराइल को सुरक्षित रख सके। अभी भी अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद हैं, जिसमें अब्राहम लिंकन और बुश दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय गल्फ ऑफ ओमान में उनकी तैनाती की हुई है। देखिए, आशंकाएं लगाई जा रही है कि एक बार फिर से नए युद्ध का आगाज होगा, लेकिन अगर इस नए युद्ध का आगाज होता है तो फिर खाड़ी देशों के तेल उत्पादन पर कैसा असर पड़ेगा, हम आपको एक बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या था इनका उत्पादन जनवरी में यानी 28 फरवरी से पहले और अब इनका उत्पादन प्रतिदिन क्या हो गया है। प्रतिदिन मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से इनका उत्पादन होता था। अगर आप जनवरी का देखें, सबसे पहले बात मैं खुद ईरान की करता हूं, ईरान का था 3.14 और ये नीचे जाकर हो गया 2.85। ये प्रतिदिन यानी प्रतिदिन मिलियन बैरल के हिसाब से। अब कुवैत की बात करते हैं, कुवैत में जनवरी में जो था 2.58 और ये सीधा जाकर अगर आप देखें अप्रैल महीने में आ गया 0.60, यानी आप मानिए कहां 2.58 और अब सीधा 0.60। अब यूएई की बात करते हैं, जनवरी में इसका था 3.38 और उसके बाद अप्रैल आते आते आधे से भी कम हो गया 2.02। और अब बात करते हैं ऊपर सऊदी अरब की, सऊदी अरब का अगर आप आंकड़ा देखें जनवरी का 10.08 और सीधा जाकर अप्रैल में हो गया 6.76। ये उन चार मुल्कों का आंकड़ा है जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया। मिडल ईस्ट के तमाम देश जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि अगर एक बार फिर से जंग का आगाज होता है तो फिर इनको ऑयल जो इनका उत्पादन है उस पर सीधे तौर पर इनका इन पर असर पड़ेगा। और आप मानिए ये सिर्फ अप्रैल तक के आंकड़े हैं, मई में क्या हालत होगी या फिर अभी इनको अपने आप को रिवाइव करने में कई महीनों का दौर लगेगा, उसके बाद ही अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन पर ये आ पाएंगे। माना जाता है करीबन 6 महीने का वक्त कम से कम लग सकता है इनको नॉर्मलसी पर आते आते, लेकिन अगर ये दोबारा से इसी तरीके से स्थिति बनी रही तो फिर आप मानिएगा कि ये ऑयल जो आप कह सकते हैं उत्पादन वो सीधे तौर पर बंद ही माना जाएगा। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज और मेजर जनरल हमारे साथ संजय मेस्टन सर जुड़े हैं। ए के सिवाज सर, सबसे पहला सवाल यही कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हालिया बयान दिए गए हैं, क्या उनसे संकेत लगाया जाए कि सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है या सच में अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, शायद उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब युद्ध का ही विकल्प बचा है?
4: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई ये है कि अभी भी होप है कि कहीं ना कहीं बातचीत का दौर स्टार्ट हो सकता है। एक प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि लास्ट रिसोर्ट पे प्रेशर डाला जाए ईरान पे। चीन की तरफ से उनको लगता था कि कोई प्रेशर डलेगा, वहां तो प्रेशर डला नहीं। मगर ये भी सच्चाई है, अगर बातचीत का दौर नहीं चलता है तो फिर अमेरिका बिल्कुल तैयार है। ये अलग है कि क्या अमेरिका वैसा ही हो परिणाम लाएगा जैसा पिछली बार हुआ था, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो ईरान ने भी बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार कर लिया है, उसके पास 40-50% अभी भी जो एक प्रकार से मिसाइल रॉकेट ड्रोन का भंडार है, और वो अगर उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके ऊपर जो उनके ऑयल सेक्टर पे हमले होंगे, उनके ब्रिजेस पे होंगे, उनके बाद वो पलट वार करेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, जितना भी इनका एनर्जी सेक्टर है, इनके डीसेलिनेशन प्लांट्स हैं, और इनका टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सोचना कि ईरान को अमेरिका खत्म कर देगा अगर इस बार हमला होता है तो शायद बहुत बड़ी गलती होगी। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है बब अलमंदेव। इस बार जो पहली बार जो हमला हुआ है उसमें बब अलमंदेव को बंद नहीं किया गया। अगर बब अलमंदेव बंद हो जाता है तो 35% ऑयल और गैस जाती है और वहां पर करीब की 50% का करीब जो बाकी का जो ट्रेड है एशिया से यूरोप जाता है। तो आप देखें क्या इंपैक्ट होगा, और ये लड़ाई एक भयानक रूप लेगी कि अगर वो राउंड 2.0 होता है। मुझे अभी भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं बातचीत की कोशिश हो रही है, मगर अगर ये कोशिश नहीं होती और ट्रंप ये गलती करते हैं कि वो दोबारा युद्ध करते हैं ईरान पे, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाले, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगाएगी, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर की कीमत जो है वो 10-12 गुना बढ़ सकती है।
2: बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी है। संजय मेस्टन सर, देखिए आर्थिक रूप से तो जिस तरीके से एके सिवा सर बता रहे थे कि देखिए अगर टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, अगर हूती भी उसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो जाता है, तो 35-40% ऑयल और गैस का उत्पादन एक तरीके से रुक जाएगा, उनकी जो आप कह सकते सप्लाई लाइन रुक जाएंगी। लेकिन ईरान की तरफ से जो हालिया बयान आया जिसमें ईरान ने कहा है कि जो देश लगातार अमेरिका के बयानों का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके वॉर स्ट्रेटजीज को सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको भी इस जंग के दायरे में मानेंगे, तो ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होगी, ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी।
5: देखिए सुमित, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं और खासकर जो ईरान ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हम ये खाड़ी देश, बेसिकली वो टारगेटिंग खाड़ी देशों पे है और कोई शक नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ईरान के पास, वो खाड़ी देशों पे ही टारगेट करेंगे और उनके पास बड़े सारे टारगेट्स हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बल्कि अभी एक थोड़ी देर पहले ही एक रिपोर्ट आई है, कितनी कंफर्म्ड है, कि यूएई में एक और फिर ड्रोन स्पॉट किया गया है और वो जहां पर जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है कराबाख में यूएई में, उसके पास जाके कुछ वो गिरा है और कुछ फायर वगैरह लगी है। तो कहने का मतलब है ये सारे ईरान से भी मैसेजिंग जारी है। और थोड़े दिन पहले आपने देखा था फुजायरा पोर्ट पे भी इन्होंने, ईरान ने फायर किया था यूएई, जिसको वो डिनाई करते हैं, और बदले में यूएई ने भी फायर किया था उनके ऊपर कुछ ड्रोन्स, और वो भी दोनों कंट्रीज डिनाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ड्रोन्स तो लॉन्च किए गए हैं, तो इसका साफ बात यह निकलती है कि इस टाइम जो युद्ध होगा, और देखिए जितने अभी तक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के और ईरान के भी, बातचीत का रास्ता तो बहुत कोशिश कर ली गई है। और अभी आज भी मेरे ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का फिर ईरान में गया है कुछ कोशिश करने की, लेकिन अब सारे ऑप्शंस बंद होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला था कल अपने एयरक्राफ्ट वो जब इसमें एयरफोर्स वन में जा रहे थे कि वो युद्ध में हम पहले ही जीत रहे थे, ये उनका स्टेटमेंट है, लेकिन ये कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जैसे पाकिस्तान आसिम मुनीर, उन्होंने मेरे को फोन करके ये थोड़ा युद्ध को टालने के लिए बोला। तो कहने का मतलब है कि अब स्टेटमेंट जितने आ रहे हैं, हो सकता है कि अभी युद्ध भड़क सकता है, और अगर भड़कता है तो कोई डाउट नहीं है ईरान पूरे खाड़ी देशों में टारगेटिंग करेगा। लेकिन इस टाइम फर्क यह होगा कि सऊदी अरेबिया जैसे देश और यूएई जैसे देश ये भी वापस में काउंटर रिटेलिएटरी फायर करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे जो ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान से ने जहां पर 6 दिनों की खुदाई के बाद लगातार उन एरियाज के अंदर जहां पर अमेरिका ने और इसराइल ने बम्बारमेंट की थी, उन इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है। और इसी में पश्चिमी ईरान के एक इलाके में डेल्फान के अंदर 18 मीटर की गहराई में एक 2000 पाउंड का MK-84 बम या फिर उसका शेल सुरक्षित निकाला गया। ऐसी तस्वीरें लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों से आ रही है। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत यह होती है, सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब युद्ध खत्म होता है, नॉर्मलसी आती है, तो फिर जिन जिन इलाकों के अंदर ऐसी बम्बारमेंट हुई है वहां पर कई बार एक्टिव शेल्स या फिर आप कैसे जीवित शेल जो होते हैं वो बच जाते हैं, उनकी खुदाई उनको निकालना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही काम अब ईरान में भी किया जा रहा है। ईरान के कई इलाकों के अंदर इस तरीके के बॉम्ब शेल्स अभी भी पाए जा रहे हैं जहां रिहायशी इलाकों में गिरे थे, जिनको निकालने के लिए आप देखिए 18 मीटर तक की खुदाई करनी पड़ी। 2000 पाउंड के ये शेल थे जिनको निष्क्रिय किया गया और इनकी तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई है। ईरान का कहना है कि इन शेल्स को रिहायशी इलाकों पर जानबूझकर अमेरिका और इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया था। और चलिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
7: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप, यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। मैकडॉनल्ड्स, लिमिटेड टाइम ओनली, प्राइस एंड पार्टिसिपेशन मे वेरी, कैनॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर ऑफर अ कॉम्बो मील।
8: Ba-da-ba-ba-ba. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little southern hospitality now.
9: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
12: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
14: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
15: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहां खबर वहां खबरदार।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
21: इन एसोसिएशन विद
22: भारत।
23: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
24: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप। यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening. Now.
26: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More more country roads.
0: Thank God I get to wake
26: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
26: just
1: Jay-Z.
26: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके
2: अमेरिका का ईरान पर फिर से हमले का प्लान तैयार है ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन ईरान में कभी भी शुरू हो सकता है चीन के दौरे से निकलने के बाद ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने में भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है उन्होंने वाशिंगटन की ओर से आने वाले विरोधाभासी संदेशों को इसका मुख्य कारण बताया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है इसके साथ ही अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की जगह 20 साल के निलंबन को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को उन जहाजों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल रहा है जो उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करेंगे दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी लगातार जारी है अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार लेबनान इजराइल युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है हालांकि सीजफायर के बावजूद इजराइल के लेबनान पर हमले जारी है संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है यूएई ने कहा है कि वो ईरानी हमलों को सही ठहराने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर इलाके में एक सैन्य कैंप पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है अक्टूबर 2025 के बाद ये पहली बार है जब टीटीपी ने किसी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है रूस ने यूक्रेन के खिलाफ दो दिनों के भीतर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने बुधवार से अब तक 1567 ड्रोन दागे हैं जिसमें राजधानी कीव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया है कम से कम 27 नागरिकों की मौत हो गई है यूक्रेन की वायुसेना ने कीव में रूसी हमले में 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया है इस भीषण तबाही के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 5 देशों के दौरे के तहत यूएई पहुंचे यूएई के ओपेक से बाहर होने और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुई उथल पुथल के बीच भारत और यूएई ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा किया है ये समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं
6: वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है एड्रेस भी बदल सकता है टाइम जोन भी बदल सकता है लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जाएगा। यानी ईरान टोलबंदी के अपने फैसले को अब अंजाम तक लाने में जुट गया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने साफ कहा है कि अब दुश्मन देशों के सैन्य उपकरणों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान पहले अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी इस रास्ते से गुजरने देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बीच एक चीनी कंपनी के जहाज को सीज करने के बाद से बवाल मचा हुआ है। जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब किसी निजी सिक्योरिटी कंपनी के जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। चीनी सिक्योरिटी कंपनी के जहाज के खिलाफ ईरान की यह कार्रवाई इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि चीन के साथ उसके रिश्ते दोस्ताना हैं और सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में चीन पहले पायदान पर है। हॉर्मुज में हाहाकार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि सीज फायर होने के बावजूद ईरान और अमेरिका की तरफ से हर दूसरे दिन किसी न किसी जहाज पर एक्शन की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। ट्रंप के चीन दौरे से दुनिया को ये उम्मीद जगी थी कि हॉर्मुज खुलने को लेकर शायद दो महाशक्तियां बात करेंगी। ट्रंप ने बाद में कहा भी कि चीन भी हॉर्मुज को खोलने को लेकर रजामंदी दे रहा है, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी की मजबूती का दावा किया है और कहा है कि 16 मई तक 78 कारोबारी जहाजों को उसने लौटाया है, जबकि 4 जहाजों को आवाजाही करने लायक नहीं छोड़ा गया। आज तक ब्यूरो।
1: तो आपने हॉर्मुज पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज की सबसे ताजा तस्वीरें भी जारी की है जिसमें हॉर्मुज में तमाम देशों के जहाज और उनके टैंकर्स खड़े हुए नजर आते हैं। ये तमाम टैंकर्स एक तरीके से हॉर्मुज में अटके हुए हैं क्योंकि जब तक ईरान इन्हें यहां से गुजरने की इजाजत नहीं देता तब तक ये यहीं रहेंगे। और ये तस्वीरें इस बात को लेकर भी ईरान की तरफ से तस्दीक की गई कि देखिए अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से नियंत्रण, पूरी तरीके से कब्जा ईरान का ही है। और ये तस्वीरें खुद ईरान के कई टेलीविजन चैनल्स ने जारी भी की, दिखाई भी, और ये दिखाया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी परिस्थितियां या सिचुएशन ईरान के मुताबिक ही बनी हुई है। इसके अलावा ईरान ने एक और तस्वीर भी जारी की है जिसमें हॉर्मुज के तटीय क्षेत्र में प्रवेश निषेध का एक बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड पर लिखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फारस की खाड़ी के तट पर अमेरिकी नौसैनिक और कुत्ते की मौजूदगी अलाउ नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, जिनका यहां प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। साफ साझा शब्दों में ये तस्वीरें जारी की गई है। खास बात यह भी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसे बोर्ड पहले भी लगातार ईरान की तरफ से लगाने का दावा किया गया था, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि सैलानी या आम लोग जो है वहां पर उसके सामने फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से ईरान एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अमेरिका पे डालने की कोशिश कर रहा है और ये दिखा रहा है कि यहां पर परिस्थितियां या सिचुएशन पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। और यहां लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है अपने लोगों को कि कैसे ईरान जो है वो अमेरिका को काउंटर कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये भी कि 20,000 मैट्रिक टन का एलपीजी के साथ एक बड़ा टैंकर कांडला बंदरगाह पहुंच चुका है। एमवी सीमी जहाज, आपको बता दें कि एमवी सीमी जहाज कांडला पहुंच चुका है। यह जहाज हॉर्मुज से होकर निकला है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह एक अच्छी खबर है। इस जहाज में पश्चिमी एशिया संकट के बीच 13 मई 2026 को अत्यधिक संवेदनशील माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया था और उसके बाद यह कांडला पोर्ट पहुंचा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं एक और जहाज भारत आ पहुंचा है। और देखिए ईरान की घेरेबंदी के बीच हॉर्मुज में भारतीय जहाजों की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, यह आपको बड़ी बिग वॉल पर समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर कई भारतीय जहाज अभी भी टैंकर्स फंसे हुए हैं। सबसे पहले भारत पहुंचने वाला 15वां टैंकर है एमवी सनशाइन। आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे टैंकर्स हैं जो लगातार भारत पहुंच रहे हैं। एमवी सनशाइन में हजारों टन एलपीजी भारत आई है, कांडला पोर्ट ही पहुंचा है। हम आपको अभी तस्वीरें भी दिखाई। एक और एलपीजी टैंकर जल्द पार कर सकता है हॉर्मुज। करीबन कहा जा रहा है कि कई और टैंकर्स वहां पर फंसे हुए हैं लेकिन एक और टैंकर वहां से जल्दी निकल सकता है। एलपीजी सबसे बड़ा कंसर्न है। 10 से ज्यादा टैंकर अभी फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि करीबन 15 टैंकर आ चुके हैं लेकिन 10 टैंकर अभी वहां पर फंसे हुए हैं। उनके भी धीरे धीरे कर रिलीज होने की बात कही जा रही है। आपको बता रहे हैं कि बड़ा अपडेट क्या है कि लगातार अब धीरे धीरे वहां से टैंकर्स निकाले जा रहे हैं लेकिन अब भी 10 टैंकर्स वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों

0: पास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनरल सिवाज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीरें जारी करना, लगातार वहां पर अमेरिका को काउंटर करना, एक एक कर जहाज को निकालना, ईरान ऐसा लग रहा है कि देखिए ये परिस्थितियां भले ही 40 दिन में खत्म हो गई हो, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ये परिस्थिति लंबे समय तक चलने वाली है।
1: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका पूरा कंट्रोल ईरान ने ले लिया, और ईरान उन्हीं शिप्स को जाने की परमिशन दे रहा है जिन देशों के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, और जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशन वो तो शिप्स को सवाल ही नहीं पैदा था ना, उनके कोई टैंकर जा सकते, और जिनको जाने भी दे रहा है उनको सुनने में ये भी आया हो सकता है उनसे टोल भी ले रहा है। अभी भारत के 15 टैंकर निकले हैं और 10 टैंकर अभी फंसे हुए हैं। अभी हमें समझना चाहिए कि भारत का जो ऑयल है वो हमारा जो है 90% हम लेते हैं वहां, यहां से 31% आता है, मगर हमें ऑयल की जो एंटिटीज हैं 24 से 41 कर ली हैं। हम रूस से ज्यादा लेने, अमेरिका से, वेनेजुएला से लेना स्टार्ट कर दिया, वेस्ट अफ्रीका से, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है गैस की। और जो एलपीजी है हम ज्यादातर कतार और यूएई से लेते थे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है अगर ये बंद। मगर ये भी सोचना पड़ेगा ईरान को कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है तो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईरान के भी जो शिप्स हैं वो ऑयल लेके बाहर नहीं निकल पा रहे, और उसका जो 90% ऑयल है जो खर्क आइलैंड से वो चीन जाता है, तो ये भी है कि कहीं ना प्रेशर ईरान को भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक समय के बाद ईरान अपना ऑयल बनाना बंद कर देगा तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये भी एक देखना पड़ेगा ये किस मोड, ये लड़ाई का मोड जाता है। दूसरा जो बाबर मंदेब है जिसकी हम कम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड है ईरान के पास, उसको अगर वो बंद कर देता है इंटरनेट कनेक्शन भी वहां से एशिया से अफ्रीका काट सकता है, वहां से नॉर्मल ट्रेड जो है एक प्रकार सिविल ट्रेड भी जाता 30%, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा जो पिछली बार उसने इतना
0: बिल्कुल
1: नहीं किया था। तो मुझे
0: सर।
1: लगता है कि पलड़ा अभी भी ईरान की तरफ भारी लग रहा है, उसके
0: बिल्कुल
1: पास ज्यादा ट्रंप कार्ड है बनस्पत अमेरिका के पास।
0: बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी। संजय मेस्टन सर, आप इस परिस्थिति को कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, ईरान के पास भी विकल्प ज्यादा नहीं है, अमेरिका के पास भी विकल्प ज्यादा नहीं है, और दोनों ही चाहते नहीं है कि एक और लंबी जंग हो जाए, लेकिन दोनों अपनी शक्ति अपनी क्षमता को भी दिखाना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका कुछ ऐसा ना कर दे डेस्परेशन में जो बहुत ज्यादा विध्वंसक हो पूरे रीजन के लिए?
2: देखिए, जिस प्रकार अभी हालात दिख रहे हैं तो अमेरिका की डेस्परेशन साफ उभर के आ रही है, उसमें कोई शक और सवाल है नहीं। तो मेरे को लगता है कि पहली बात, ये जो बड़ा लंबा समय मिला है, तीन देशों को बहुत टाइम मिला है, और बल्कि खाड़ी देशों को भी प्रिपेरेशन के लिए। उन्होंने अपनी रीडिप्लॉयमेंट की है, मिलिट्री हार्डवेयर की इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, और काफी कुछ इन्होंने प्रिपेरेशन कर ली। और बल्कि आपने देखा, यूएई और सऊदी अरेबिया ने कुछ हथियार इसराइल से भी मंगवाए हैं, खासकर यूएई ने, और आयरन डोम की वहां 2 बैटरीज डिप्लॉयड है। और आपने देखा, ड्रोन भी वो मंगवाए गए यूएई द्वारा इसराइल से, जिसको उन्होंने यूज किया है, सपोजिटली यूज किया है ईरान के प्रति। तो कहने का मतलब है, अमेरिका कोई मिस एडवेंचर करने की संभावना तो दिख रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो गंभीर होगा पूरे विश्व के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, और देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ईरान पे तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जितने भी गल्फ नेशन है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट
0: बिल्कुल।
2: होगा।
0: और सर यही
2: और
0: जी बिल्कुल सर, बात यही है, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन एक और मोर्चा है जिसके बारे में हम बात करना आपको बता दें कि करना चाहते हैं, और आपको बताते हैं कि कैसे इस और एक और बड़े इस मोर्चे पर, जहां पर इसराइल ने हिजबुल्ला और हमास पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इसराइल और लेबनन के बीच में 45 दिन का युद्ध विराम बढ़ा दिया गया था, लेकिन अगले 24 घंटे में ही एक और जंग शुरू हो गई। 24 घंटे के भीतर उसने युद्ध विराम को तहस नहस कर दिया। ताजा हमलों में गाजा और लेबनन पर इसराइल ने बड़े हमले किए, कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं, यहां तक कि हमास के बड़े कमांडर्स के मारे जाने की भी खबरें मिल रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: लेबनान में घमासान, 3 की गई जान, इसराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही, हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीजफायर के दौरान इसराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है, जो ईरान का साथ देते आए हैं और इसराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इजरायली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीजफायर बढ़ने के बावजूद इजराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इजरायल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इजरायल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इस अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। खान यूनिस में इजरायल के हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भारतीय सेनाओं की शौर्य और उनकी क्षमताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको देखकर बहुत गर्व महसूस होगा। भारतीय सेना के जवानों ने नाइट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। नाइट विजन ऑपरेशन के दौरान युद्ध के दौरान इन तैयारियों को जायजा लिया गया। दरअसल आर्मी की इंटीग्रेटेड यूनिट्स को इसमें डिप्लॉय किया गया था। आर्मी एविएशन और स्पेशल फोर्सेस की ऑपरेशंस को जारी किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजी के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया उपलब्धि भारतीय सेनाएं हासिल कर रही है। ये तस्वीरें आपको देखकर गर्व महसूस होगा कि कैसे हमारी सेनाएं हर परिस्थिति में हर माहौल के अंदर तैयार रहती हैं।

0: अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है।
1: एक दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया से सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
0: अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है।
1: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो सबसे अहम गिरफ्तारी हुई उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि जिस पीवी कुलकर्णी को सीबीआई इस केस का मास्टरमाइंड बता रही है उसकी गिरफ्तारी ने एनटीए की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा प्रक्रिया से क्यों जोड़ा, किसकी अनुशंसा से वीपी कुलकर्णी को नीट पेपर बनाने वाली टीम में शामिल होने का मौका मिला। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक पर पूछे जा रहे सवालों को टाल गए थे, लेकिन जब शुक्रवार को वो तमाम जवाबों के साथ मीडिया के सामने आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
0: अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
1: अगर एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्री का दावा इतना ठोस है, सब कुछ इतना पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना, इसका जवाब मिलना बाकी है। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा में आए थे, जिसे पीवी कुलकर्णी ने अपनी स्पेशल कोचिंग क्लासेस में बताए थे। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए के प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगी लाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या कुलकर्णी की गिरफ्तारी के बाद और नाम भी सामने आ सकते हैं? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: आजादी रिजीम चेंज से होते हुए वेस्ट एशिया की जंग अब तेल पर आकर रुक गई है। फरवरी 2026 से पहले हॉर्मुज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल पार होता था, लेकिन आज सन्नाटा है, सप्लाई ठप है। खाड़ी देशों में उत्पादन करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन गिर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो तेल कल तक 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था, वो आज 100 डॉलर की दीवार लांघ चुका है। यानी मिसाइलें पश्चिम एशिया में गिर रही हैं और असर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है। इस खेल में सबसे ज्यादा वो देश पिस रहे हैं जिनका अपना कोई तेल का कुआं नहीं है। एशिया और अफ्रीका के वो देश जहां आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हालत देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते भर का तेल बचा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की सांसें भी फूल रही हैं। उनके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का रिजर्व है, जबकि नियम कहता है कि कम से कम 90 दिन का भंडार होना चाहिए। वहीं अफ्रीका के कई देशों की हालत भी ऐसी ही है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की 70% आबादी उन देशों में रहती है जिनके पास इस महासंकट से लड़ने के लिए ढाल ही नहीं है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, रसोई तक आग पहुंच चुकी है। भारत में ही देख लीजिए, पिछले 2 महीने में एलपीजी की खपत 13% कम हुई है। समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, ऊपर से ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बहता हुआ हजारों बैरल तेल। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, कुदरत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इस अंधेरे में भारत अपनी मशाल जलाए खड़ा है। दिल्ली जानती है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। मई 2026 में भारत रिकॉर्ड 23 लाख बैरल रूसी तेल हर रोज मंगा रहा है। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि हमारे लिए देश का आम नागरिक और उसकी रसोई पहले है। रूस भी कह चुका है कि वो भारत के हितों पर आंच नहीं आने देगा,
1: गांवों को प्रभावित न कर सके।
0: क्या भारत सुरक्षित है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आंकड़े तसल्ली देते हैं।
2: The cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements and look and behold, I mean, I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आईएमएफ की वो चेतावनी सच हो सकती है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में फंसेगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। खाद, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो असुमेघ चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो अरे
0: आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

स्वीडन यात्रा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एआई पर बड़े समझौतों की उम्मीद। गोथेनबर्ग में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद।

0: इस अतिरिक्त फेरे। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटो। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक डिबेट शो दंगल। यूपी की सत्ता में इस वक्त कुर्सियां सजी हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अब भी खाली पड़ी हैं। शपथ हो चुकी है, चेहरे चमक चुके हैं, लेकिन योगी सरकार के नए मंत्री अब भी अपने मंत्रालय का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन चेहरों को बीजेपी ने राजनीतिक संदेश, सामाजिक संतुलन के बड़े चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया, वो अपने विभाग को लेकर पशुपेश में। उधर विपक्ष इस देरी को मुद्दा बना रहा है, बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने तंज कसा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में नरमी नहीं दिखाई। इस बीच में लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों के कई राउंड पूरे हो चुके हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता के बिसात पर चाल बहुत सोच समझ कर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या सत्ता के भीतर कोई खींचतान चल रही है जिसकी वजह से विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा है, या फिर बीजेपी समय लेकर सॉलिड प्लान के साथ जनता के बीच में जाना चाहती है। सवाल यह भी है कि 2027 चुनावों को लेकर बीजेपी के पास कौन से सियासी अंकगणित का प्रश्न आ गया जो 8 दिन में सॉल्व नहीं हो पाया। आज इन्हीं सवालों के साथ दंगल में होगी बहुत बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट।
1: मैं भूपेंद्र सिंह
0: शपथ
1: लेता हूँ।
2: मैं मनोज कुमार पांडे
3: शपथ लेता हूँ।
4: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
5: मैं भारत की 10 मई को शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद 8 दिन बीत गए, यूपी सरकार के नए मंत्री अब भी बिना विभाग के टहल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को जगह मिली। दो पुराने चेहरों को प्रमोशन मिला, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह। लेकिन ये सब अभी इंतजार में, पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आए। योगी सरकार 2.0 के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शोर तो खूब हुआ, लेकिन अब वही विस्तार सत्ता के गलियारों में एक लंबी खामोशी बनता जा रहा। मंत्री हैं, लेकिन मंत्रालय बंटा रहे, कुर्सियां हैं पर जिम्मेदारी नदार। दिलचस्प ये कि जिन चेहरों पर सरकार ने ताकत का प्रतीक बनाकर पेश किया, वो आज फाइलों से ज्यादा इंतजार की राजनीति में फंसे नजर आते हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्रालय के बंटवारे की देरी की असली वजह ये कि ये कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकराने लगे। अखिलेश यादव के तंज का जवाब योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर देते हैं। लिखते हैं कि सपा प्रमुख में सत्ता पाने की इतनी अधिक लालसा है कि वो घर में शोक होने पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नसीहत राजभर देते हैं कि कम से कम भाई की 13वीं तक तो रुक जाते, इसके बाद राजनीति कर लेते। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पुराने दिनों की याद भी दिलाई।
6: जिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिताजी मंत्री बदला करते थे, चाचा जी चीफ सेक्रेटरी बदला करते थे, ताऊ जी अधिकारियों को बदला करते थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। एक्स पे पोस्ट करके सोचते हैं राजनीति हो गई। अखिलेश जी, राजनीति सेवा का कर्म है, निकलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। और परिवारवादी पार्टियों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्हें संगठन की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, बिना पता हुए कुछ न कुछ बोल देना ही वो राजनीति समझते हैं।
5: हालांकि सूत्र कहते हैं मंत्रालय के बंटवारे की संभावना अगले 24 घंटे में बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, ऊर्जा मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली तक दौरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हो, या फिर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की बंद कमरे वाली बातचीत, हर मुलाकात यही बताती है मामला सिर्फ विभाग आवंटन का नहीं, सत्ता के भीतर संतुलन और संदेश तय करने का भी है। इस बीच विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है।
7: उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन मंत्रियों को विभाग नहीं बंट पा रहे, क्योंकि दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली का झगड़ा है और झगड़ा बड़ा है, विभागों का बंटवारा वो बड़ा है। और सुना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो भी गोरखपुर चले गए हैं, कुछ नाराज हैं मंत्रियों के विभागों को लेके। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जनता परेशान, जनता परिवर्तन चाहती।
8: जब पर्ची दिल्ली से आई थी मंत्रिमंडल की, तो खर्ची भी दिल्ली से आएगी और मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली ही करेगा। उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली की हुकूमत है ना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है।
5: जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन ध्यान दिया गया, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन अब विभाग के बंटवारे में होती देरी सवाल बढ़ा देती है। आखिर यूपी में इस देरी की वजह क्या है? क्या देरी अंदरूनी असहमति की वजह से हो रही या फिर बीजेपी सत्ता के शतरंज पर मोहरे सोच समझ कर बिछाने में लगी है ताकि विपक्ष के हर फॉर्मूले की काट निकाली जा सके। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
0: आठवां दिन है और इंतजार अभी हो ही रहा है और अब उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली है। सवाल नंबर एक, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के आठवें दिन तक भी आखिर विभाग का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर दो, क्या अंदरूनी असहमति की वजह से विभागों के बंटवारे में कोई पेंच फंसा हुआ है? ऑपोजिशन तो अब तंज कस रहा है। सवाल नंबर तीन, क्या विभाग बंटवारे में हो रही देरी विपक्ष को हमले करने का नया मौका दे रही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी एमएलए और प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हैं और साथ ही साथ आरएलडी प्रवक्ता मलूक नागर हमारे साथ। हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले एक बड़ी खबर भी जल्दी से दर्शकों को देते हैं। कल कैबिनेट की बैठक जानकारी मिल रही है कि बुलाई गई यूपी में और सुबह लगभग 9 बजे के आसपास योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अब नए कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ तो ले ली है लेकिन उनके पास विभाग नहीं है और इस कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। तो लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल कैबिनेट की बैठक बताया जा रहा है कि होगी और सुबह 9 बजे जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक ये होने जा रही है। लेकिन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा ही अभी तक नहीं हुआ और इसीलिए सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले सवाल आप से कि जो मुश्किल काम था ना, जो आपने तय करना था कि किसको हमें कैबिनेट मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है, वो काम हो गया, लेकिन जो आसान काम है वो आप अभी तक कर नहीं पाए हो। किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो आप पता नहीं कर पाए हो। बट ये देरी के पीछे की वजह क्या है?
1: देखिए, कोई काम आसान नहीं होता और कोई मुश्किल नहीं होता। कोई निर्णय लेना होता है तो सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं इस काम के लिए। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, किसको क्या काम लेना है, क्या काम नहीं लेना, किसको क्या विभाग देना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, योगी जी का काम है और वो बहुत उचित समय पर और बहुत जल्दी इस काम को अंजाम देंगे और बहुत जल्दी आपको देखने को।
0: अरे राजेश जी, आज आठवां दिन चल रहा है और कितनी मतलब ये बहुत देर कर दी बल्कि आपने।
1: अब के बाद की बात कर रहे हैं ना हम, तो बहुत जल्दी होगा, आप इंतजार करिए और बहुत जल्दी आएगा। और उचित व्यक्ति को उचित काम देना, उससे उचित काम लेना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति को तय करना रहता है। सब साथ मिल करके टीम भावना के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे तेजी के साथ दौड़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। उसी में पूरा एनडीए भारतीय जनता पार्टी एक होकर के काम कर रहा है और बहुत जल्दी आपको परिणाम देखने को मिलेगा।
0: ये तो आप कह रहे हैं ना और कहने सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो यही कह रहे हैं ना कि एक होकर ही तो काम नहीं कर रहे हैं, मसला वहीं तो फंसा हुआ है। फैसला दिल्ली ने लिया है, लखनऊ फैसला मानने के लिए तैयार नहीं और इसीलिए ऑपोजिशन कह रहा है कि देरी हो रही है।
1: देखिए, जिनको लड़ने की आदत हो, जो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, अपने पिताजी के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, चाचा के साथ अभद्रता करते हो, उनको तो यही नजर आएगा और उनको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो सड़क पे लड़ रहे थे, जो मंच पे लड़ रहे थे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के में लड़ रहे थे, जो अपने पिताजी से अभद्रता कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री को धक्का करके मंच से नीचे फेंक रहे थे, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? मैं पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है, इसीलिए वो सामने बैठे हुए हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता के मानस को हम ठीक प्रकार से समझते हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छे निर्णय हो रहे हैं और इसी तरह से आगे होंगे और 2027 में फिर इनको निराशा हाथ लगने वाली है।
0: ठीक है मनोज काका जी, चर्चा का हिस्सा बनाते हुए आपको, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोग खूब तंज कस रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, कल अब कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है।
2: नहीं, आपने जो सवाल किया उसी सवाल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री दूसरे दल के जीते हुए, अभी जहां पे उनकी सरकार केरल में नहीं बनी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि वहां तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, कांग्रेस को जल्दी से अपना चीफ मिनिस्टर तय कर लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, जो पार्टी ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता है, अगर ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, संवैधानिक रूप से तो है ही, तो मुख्यमंत्री तो अब तो दिल्ली से भी लौट आए हैं, फिर भी अभी तक लोगों का विभाग क्यों नहीं बटा। सच बात यह है कि यह लूट की बांट है, और लूट के बांट में कहीं मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अब हमारे अगर यह मुख्यमंत्री का निर्णय होता तो मुख्यमंत्री को 2 घंटे लगते, आज 8 दिन हो गए, आप ही कह रहे हैं 8 दिन हो गए और क्या हो गया। और दूसरा जो साथी आचरण की बात कर रहा था, उस साथी को पढ़ना चाहिए। इस देश में एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है जिसके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए, और पढ़ो 2012 में देश की एक सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, और वो है अपने अपने नेता से, शीर्षस्थ नेता से पूछना कि आडवाणी जी का मंच पर कितना सम्मान कर रहे थे जिनकी अंगुली पकड़ के चढ़ना सीखे थे। और तुम्हारा संस्कार वही है जो मध्य प्रदेश का वो एक नेता क्या कर रहा था हाईवे पर, पूरे देश ने देखा। तो हमें संस्कार मत सिखाओ, एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लो, सबसे ज्यादा अपराधी व्यभिचारी अगर 84% किसी राजनीतिक दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये सवाल पूछना हमारा इसलिए हक है कि आप मिनिस्टरों के विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा, कि चूंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं और मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि वो जिसको चाहे जो विभाग दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री तो यहां तो पर्ची परंपरा है, कोई संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में अपनाई नहीं जाती है, पर्ची परंपरा हो। तो इनका आदर्श यह है कि जो ये भाषण दे रहे थे कि हमें विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन विदेश निकल गए, जो कह रहे थे कि हमें वैभव विलास पर नहीं खर्चा करना चाहिए, 15 अप्रैल 2025
3: होटल में 10 घंटे परंपरा एक्चुअल में होती तो इतना लंबा तो खींचता, अगर खींचतान हो रही जैसे कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि खींचतान है, इस वजह से देरी हो रही है, तो खींचतान है यानी कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, सुनी जा रही है, इसलिए लेट लतीफी हो रही, तो पर्ची सिस्टम तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी ही बात इसका खंडन कर रही है।
2: पार्टी बहुत सही बात कहा राजू जी, आपके सवाल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है, एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कौन एक मिनिस्टर हैं जो लगातार धक्के देके एक तरफ करते हैं, और देश के शीर्षस्थ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कौन साथ रहता है, कितना लोकतंत्र है जिसमें पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो कई बार जिसका कोई चयन नहीं हुआ, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वहां कितना लोकतंत्र है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय कौन चलाता है, गवर्नर हाउस कौन चलाता है, इस देश में कितनी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। अभी देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही कहा है कि अगर किसी स्वायत्त संस्था के व्यक्ति का चयन अगर बहुमत के बल पर हो रहा है तो यह तानाशाही है। अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है, कही है कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि देश के निर्वाचन आयोग में कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो जो चयन में उसके रहे, तो वो कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वो
3: बीजेपी। राजेश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरे नंबर उनके पास जाएंगे।
1: राजेश जी जवाब दीजिए, जो हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, इनका लोकतंत्र दिखा रहा हूँ मैं आपको, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अंशुल यादव, संध्या यादव, मृदुला यादव, अर्जेंट सिंह यादव, प्रेमलता यादव, सरला यादव, आदित्य यादव, अनुराग यादव, अरविंद यादव, बिल्लू यादव, मीनाक्षी यादव, बंदता यादव, ये सब एक परिवार के लोग हैं। सब
2: सिंधिया के पापा किसान थे क्या,
1: यहाँ तक
2: इन सवालों में जवाब नहीं दे पा रहे
1: मनोज जैसे, अरे तुम तो गुलाम, ये तो मनोज जैसे लोग का गुलामी कर रहे हैं।
3: परिवारवाद की तरफ चले गए, नहीं एक ही करके बोलेंगे मनोज जी, आपकी बात आई नहीं राजेश जी। राजेश जी आज बहुत गंभीर मामला है ना, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, शपथ ली, नहीं आज फिर वापस मैं चाहता हूँ इधर उधर भटकने नहीं दूंगा राजेश जी, मैं डिबेट को भटकने नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं संगठन की प्रक्रिया कितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी, मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा, नहीं हमें इधर उधर नहीं जाना, ठीक है परिवारवाद पर बहुत लंबी बहस पहले भी हो चुकी है, कितना लंबा चलेगा अभी ये संगठन की प्रक्रिया।
2: गाली देते हैं, ये गालीबाज विधायक है, इसका यही
1: देखिए
2: चरित्र बता रहा हूँ सदन में, रिक्वेस्ट
3: करूँ तू तड़ाके भाषा यहाँ
1: देखिए इस तरह आदमी को हटाओ इसको,
3: इसमें कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा,
1: ये गुंडागर्दी डिबेट में
3: सही तरीके से रखी जा सकती है।
1: राजेश चौधरी नाम है मेरा, जाट के घर में जन्म लिया, जवाब देना जानता हूँ, समझे, जाट के घर में जन्म लिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है,
3: समझे ना, और समाज जो सभ्यता के दायरे में अपनी बात नहीं रखेगा, मुझे उसी समय उसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, तू तराजू जी सभ्यता के दायरे में अपनी बात सिंपल
1: रखेगा। ये लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो नौकरी की सूची लगने के बाद उसको बदल देते थे, एक मुख्यमंत्री कार्यालय से लिस्ट आती थी, एक चाचा के यहाँ से आती थी, एक पिताजी के यहाँ से आती थी।
3: ठीक है, सपा में क्या होता था वो छोड़िए ना, वो सत्ता में तो नहीं है राजेश जी। आप ये बताइए कि आप में आम सहमति क्यों नहीं बन रही है?
1: अरे भाई,
3: मनोज जी का फिल्टर डाउन करिए, मनोज जी का फिल्टर डाउन करिए। राजेश जी, आम सहमति क्यों नहीं बन रही है बताइए।
1: देखिए देखिए, मैंने पहले भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी आपके सामने निर्णय होगा, सबको उचित काम दिया जाएगा।
3: ठीक है,
1: उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है ना, और व्यक्ति की क्षमता देख करके काम दिया जाता है, किसके अंदर क्या काम करने की क्षमता है, क्या उसकी रुचि है, उस हिसाब से विभाग दिए जाएंगे। बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा।
3: बड़ी जल्दी परिणाम है। सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब आपको भी केरल में समय लगा, अगर बीजेपी को समय लग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब आप जो कुरेद देते हो, जो राख जुस्तजू, क्या है? कांग्रेस पार्टी क्यों मतलब ये कुरेद रही इन जख्मों को?
9: राजीव भाई, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबारों की और राजेश चौधरी की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हमारा मसला हमारे तो हमें तो मुख्यमंत्री चुनना था भाई, हमने लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुन लिया, 18 तारीख को शपथ हो जाएगी, 19 तारीख को सारे मंत्रियों के विभाग की घोषणा हो जाएगी। यहां पर तो मुख्यमंत्री चुना हुआ है, प्रधानमंत्री चुना हुआ है, सदन बना हुआ है और 5 आदमियों को मंत्री बना करके इनको मंत्री भी बना चुके हैं, खाली विभाग देना है। अब राजेश भाई को मंत्री नहीं बनाया, इनको इस बात की खीज है, फिजूल के बयानबाजी इसीलिए कर रहे भाई। अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रियों को बनाना और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है अपना सबको विभाग दे देना, तो इसका मतलब यह हो गया कि राजेश भाई से मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है इनसे जिस तरीके की वो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो इन्हें भी मंत्री बनाते, हम लोग पुराने साथी मित्र कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात, आप इस चीज को देखिए ना कि दिल्ली से पर्ची आ रही है तब मंत्री बन रहे हैं। अब राजेश भाई मना करेंगे लेकिन अंदर से तो ये जानती है कि दिल्ली से पर्ची आई, जहां से पर्ची आ रही है, जहां से खर्ची आ रही है, उस मुख्यमंत्री को तो उत्तर प्रदेश में इतना भी अधिकार नहीं कि किसको मंत्री बनावे, तो किसको क्या विभाग दे, इसका कैसे अधिकार मुख्यमंत्री जी को हो जाएगा? तो मुझे तो मुख्यमंत्री जी की बेचारगी पर आज की डेट में दया आ रही है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर पीएमओ को ही उत्तर प्रदेश चलाना है, गृह मंत्रालय को ही उत्तर प्रदेश चलाना है राजीव भाई, तो वो काहे को बेमतलब योगी जी जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखे, हटा दे उनको, सीधे ही पीएमओ यहां पर चलावे, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की? जब आप मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं दे सकते कि वो अपने विभागों को बदल सके, किस मंत्री को क्या विभाग देना है क्या नहीं देना है, जो राजेश जी स्वयं कह रहे हैं विशेषाधिकार है, और मुख्यमंत्री के पास अगर वो विशेषाधिकार सुरक्षित होता तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं राजेश चौधरी जी, वो आपको भी मंत्री बनाते और वो जो है कहीं ना कहीं सारे लोगों को विभाग भी दे चुके होते और भ्रष्टाचारियों को जैसे ओम प्रकाश राजभर है उनको कब का निकाल करके बाहर कर चुके होते। अब जैसे वो ये बड़बोला ओम प्रकाश राजभर को क्या मुख्यमंत्री सहेंगे, जिनको ओम प्रकाश राजभर ने मां की गालियां दी हैं, बहन की गालियां दी हैं और तमाम तरीके से पता नहीं क्या क्या कहा। ऐसे आदमी को अगर योगी जी सह रहे हैं, ऐसे ओम प्रकाश राजभर को सह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं चला रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं
3: मल्लुक नागर जी आपके पास आते हैं कि मौका तो आप लोगों ने ओपोजिशन को बोलने का दे दिया, वो कह रहे हैं कि सीएम के पास अधिकार नहीं है, पीएमओ गृह मंत्रालय यूपी चला रहा है, अगर ये देरी ना होती तो ओपोजिशन का एक तरीके से इस मामले में तो मुद्दा भी ही नहीं होता।
10: राजीव भाई, ये अपने आप में ही कंफ्यूज हैं जो विपक्षी नेता या विपक्षी प्रवक्ता हैं। एक तरफ कह रहे केरल, वहां 4 तारीख के बाद आज तक इनका कैंडिडेट और मिनिस्टर क्लियर नहीं हुए और आधे समय में ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, तो इनकी बात को हम क्या समझें?
3: नहीं, लेकिन वहां व्यक्ति का चयन करना था ना, या यहां तो व्यक्ति पता है, विभाग का चयन नहीं हो पा रहा है ना।
10: देखिए, कहीं भी मंत्रालय हो या मुख्य मंत्रालय हो, व्यक्ति का भी चयन करना है और व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमताओं को देख करके चयन होता है। और जहां तक ये कह रहे हैं पर्ची आती है जो राजपूत साहब, अरे भाई क्या कांग्रेस में देश की जो संगठनात्मक ढांचा है या देश का केंद्रीय नेतृत्व है, क्या वहां से कांग्रेस नहीं चलती, ये कहना चाहते हो? और इसलिए इनका हर जगह ग्रुप या G20 ग्रुप या ग्रुपबाजी कांग्रेस में, या कांग्रेस में हमेशा कन्फ्यूजन, या कांग्रेस में लीडरशिप में कन्फ्यूजन है, क्या ये कहना चाहते हैं? ये अपना ज्ञान बांटना छोड़ें, अपने आप को गिरेबान में झांकें और अपना ठीक कर लें, ताकि देश की जनता ये समझ लगे कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अब ज्ञान बांटने के बजाय खुद का चिंतन करने लगी, आत्म अपना मंथन करने लगी और देश की वास्तविक परिस्थितियों का अनुकूलन करके और उनको बिल्कुल धरातल तक जाके अब जनता के हित में फैसला करके ये सही तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन सब समझ ले अपने आप को, और एनडीए अपने आप सब चीज को संभाल लेगा, सारे मंत्रालय को बांट देगा। राजीव भाई एक बात खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड में,
11: ठीक है कंप्लीट।
10: ये पूरा
11: हाँ 10 सेकंड में कंप्लीट।
10: ये अपने अंदर ये आज आपके नेशनल टेलीविजन पर ये बता दें कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन देश के किसी भी प्रदेश में या पूरे देश के चुनाव में आपस में बगैर लड़े एक भी प्रदेश इनका जाता हो, हर जगह लड़ते हैं, ये उसको नहीं संभाल सकते। तो हमें ज्ञान बांटना बंद करें, मोदी जी को ज्ञान बांटना बंद करें, एनडीए को ज्ञान बांटना बंद करें, खुद गिरेबान में झांक लें, अपने आप को संभालने बेचारे अपने आप को संभालने लायक रहे नहीं, ज्ञान बांटते फिर रहे फ्री में, ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो। अरे ज्ञान खुद को ही ले लो, खुद को देख लो, खुद को समझ लो, अपना मंथन कर लो।
11: राजेश जी के पास जाऊंगा, सुरेंद्र जी।
9: दो चीजें हैं मलूक भाई, देखो इतने बढ़िया आदमी, इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और लगी बात आपने पूरी राजीव भाई, इन्होंने 5 मिनट लगातार प्रवचन दिया, ज्ञान ध्यान इंडिया यूपी, पता नहीं इसके अलावा अगर इन्होंने कुछ बोला हो तो बताओ। असल बात इनको भी मंत्री बनने की है, बन पा नहीं रहे, कर हो कुछ रहा नहीं। अब आज की डेट में इंडिया को गठबंधन को गाली देने से मलूक भाई एनडीए की बुराइयां नहीं खत्म होंगी। दे लो आप हमें जितनी गाली, हम तो प्रतिपक्ष में हैं, गालियां खाने के लिए बैठे हुए, ठीक है दे लो आपको जितनी देनी है, जब तक आप हमारे साथ थे आप भी खाते थे। आप हमें यह बता दो, दो तीन चीजें आपने कहा प्रतिभा
10: वो आपका काम
9: आकलन करना था। सुनो सर, अब बोलो मैं प्रतिभा का प्रतिभा है, इसका मतलब आपने प्रतिभा इन लोगों को मंत्री बनाया? अगर प्रतिभा आंक ली थी तभी तो मंत्री बनाया ना, अगर प्रतिभा आंक ली थी तो क्या नाम तुरंत दे देना चाहिए था मंत्रालय, या इसका मतलब है कि प्रतिभाहीन लोगों को मंत्री आपने दिल्ली के कहने से बनाया। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के योगी जी को विशेष अधिकार होता तो ओम प्रकाश राजभर जैसे आदमी को वो योगी जी मंत्री रख ही नहीं सकते, क्योंकि इस हद तक भ्रष्टता करते हैं, इस हद तक भ्रष्टाचार करते हैं, इस हद तक कदाचार दुराचार के लोगों को बचाते हैं। जिसकी पार्टी में बेदीराम जैसा आदमी हो, जो नौकरियां बेचता हो, जो परीक्षा के पेपर एक नहीं कई बार लीक करता हो, नागर साहब आप तो ऐसे आदमी हो नहीं, पेपर लीक करते नहीं हो, बेदीराम तो आप ही कह रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में है ना,
11: ठीक है
9: तो बेदीराम जैसे लोगों की कम से कम योगी जी नहीं ले सकते सपोर्ट।
11: सवाल उनका बिल्कुल जो कांग्रेस पूछ रही है, मैं वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। सवाल बिल्कुल सिंपल है कि आपको उनकी दक्षता उनकी योग्यता के बारे में पता था ना, तभी तो आपने उनको मंत्री पद दिया, तभी तो शपथ दिलवाई, और आपकी ये दलील फिट नहीं बैठती यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि भाई उनकी दक्षता को हम चेक कर रहे हैं अभी।
1: देखिए राजीव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बढ़िया बातें करते हैं, मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास अब लोगों को करते हैं, पर ये फंसा नहीं पाते हैं। कांग्रेस के पास बातें बनाने के अलावा तो कुछ है नहीं। और जहां तक राजपूत जी की बात है, ये बड़े कुशल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पर कांग्रेस में ही नहीं इनको कोई पूछ रहा है। दूसरी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार 9 साल से काम कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी हमारे घर में झांकने के अलावा, हमारी पार्टी के अंदर झांकने के अलावा कोई मुद्दा। भ्रष्टाचार आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, विकास नहीं हो रहा ये मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी है, इनके पास कोई जब मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, सरकार की खिलाफत नहीं कर पा रहे, तो दूसरे
11: दिखाई देती है आप, मतलब आप ऐसी पार्टी से आते हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं देरी के पीछे मतलब वो वजह तो नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऑब्वियस है।
1: राजीव जी सुनिए,
11: दिक्कत तो है,
1: अभी अभी अभी अभी जो है 4 तारीख को रिजल्ट आए, कई राज्यों में चुनाव हुआ, आसाम की सरकार हमने बना दी, बंगाल के अंदर से अराजकता को उखाड़ करके हमने फेंक दिया, पुडुचेरी के अंदर हमने सरकार बना दी, तमिलनाडु में सरकार बन गई, केरल में आज भी नहीं बनी है। कौन से मुंह से पूछ रहे हो भाई राजपूत साहब? आप केरल में नहीं बना पाए हो, आज हम कहां बैठे, आप कौन सी तारीख में बैठे, कितने दिन हो गए, लगा लो ना हिसाब, आप क्या कर रहे थे। ये प्रश्न आपके ऊपर भी तो लागू होता है। और आप मेरी चिंता मत करिए राजपूत जी, मेरी चिंता मत करिए, मेरा भविष्य मेरी पार्टी में सुरक्षित है। 8 बार के एमएलए को हरा करके चुनाव जीता हूं जी, अपनी मेहनत के दम पर, किसान के बेटा हूं, किसान के परिवार से आता हूं, दिन रात जनता के बीच में रहता हूं, तो मेरी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। मेरी पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, मेरी पार्टी का सारा नेतृत्व मेरी चिंता कर रहा है। आप मेरे प्रति
11: मैं सुरेंद्र जी, मैंने आपकी उंगली देख ली, मैं आपके पास लौटूंगा कि मनोज जी आपके पास आते हुए, चूंकि ओम प्रकाश राजभर का जिक्र हुआ तो उनका बयान है कि भाई घर में शोक है फिर भी आप राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं।
2: देखिए ओम प्रकाश राजभर का आपके चैनल तक और सब जगह एक वीडियो आई होगी कि एक महिला अभी जौनपुर में रो रही थी, विलख रही थी और वो चश्मा लगाए रॉबिन हुड बन रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो हम लोग भी वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जिस भाषा का इस्तेमाल उस व्यक्ति ने भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया, और वो सबके आर्काइव पे है। अभी जिसकी बात हमारे सहकर्मी साथी कर रहे थे, क्या नहीं बोला कि ये चल सन्यासी कहां क्या करेंगे, लोटा है, ये है, वो है, क्या नहीं गाली गुलाज, मतलब भारतीय राजनीति का सबसे अगर निम्नतम और नीचता का कोई स्तर का राजनीति अगर करता है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर, जो स्वयं को स्वीकारता है कि हम दो मुंह है साफ हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब क्या ही देना है, आप बताइए। हम लोग तो चाहते हैं कि राजनीति में कम से कम नैतिकता बचा रहे, आदर्श बचा रहे और ऐसे काम हो जिसमें मानवीय मर्यादा का संवर्धन हो। क्या यही राजनीति है कि नेता कहेगा कि हम तो मुंह साफ है? और सही बात है, उसके बच्चे से उसकी पूरी पार्टी क्या है, अपना बेटा अपने दो बेटा अपने वही पार्टी है और वही क्या हालात है। हम लोगों ने विधायक बनाया, हम लोग खूब जानते हैं कि कितनी उनकी लोक स्वीकृति है। तो ऐसे व्यक्ति का जो वाजिब सवाल है कि यह सवाल क्या मुख्यमंत्री जी का सच में पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन क्या पीएमओ द्वारा चलाया जा रहा है या होम मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा प्रांत है, इसके मुख्यमंत्री को कम से कम ये सोचने वाली कि 25 करोड़
11: क्या आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है समय लग रहा हो कि सही व्यक्ति है, सही मिनिस्ट्री संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, हो सकता है उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं वो?
2: अरे आप बताइए, जो विधायक रहा हो, अब उसमें मान लीजिए कुछ हमारे तरफ से जो दल बदलू गए हैं बेचारे, उनको भी आप सम्मान दे दो, हम लोगों ने तो फ्री कर दिया है, जितना जल्दी हो सके सम्मान आप दे दो। लेकिन अब आपने उनको मिनिस्टर की शपथ दिला दी और अभी आप पे ये नहीं है कि नहीं उनमें विवेक है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीजेपी ने ऐसे लोगों की वोट करा दिया है जो विवेकहीन है, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो जो सवाल आप राजीव भाई कर रहे हैं उसी को हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर आपने लोगों के ही पैसे से वोट हुई होगी, लोगों के ही पैसे का टैक्स का वो गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो उनपे उनका कौन सा विभाग होना चाहिए ये सरकार कब तय करेगी?
11: मलुक नागर जी, भाई जब ये बड़ा फैसला था कैबिनेट विस्तार का तो एक प्रतिनिधित्व का संदेश देना चाह रहे थे कि हम इस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो क्या आप उस वर्ग में ये संदेश नहीं जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मसला है? क्या प्रतिनिधित्व एक्चुअल में देना भी चाह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि विभाग तो मिले नहीं, बस मंत्री पद दे दिया?
10: घूम के फिर बात वहीं आ गई और मैं सीधा बात कह रहा हूं कि इन पे 13 दिन से अपने मंत्री और मुख्यमंत्री तय नहीं हुए और हमारे 6 दिन का फिक्र कर रहे हैं, हमें ज्ञान बांट रहे हैं, हमारे बारे में कुछ का कुछ पूछ रहे हैं, तो क्या आपस में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी सपा, मनोज काका साहब एक बार कांग्रेस से भी पूछ ले 13 दिन से इन्होंने केरल का क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए? हमने आपने भी कहा, हम फिर अभी कह रहे हैं कि हमारा चिंता छोड़े, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की चिंता करें, आपस में एक नहीं रहते, एनडीए में आज तक किसी स्टेट में लड़ाई नहीं हुई, एनडीए में कभी कोई आपस में तालमेल बिल्कुल सही बैठी है, ये देश में किसी भी एक प्रदेश में मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं,
11: तो हमें ज्ञान
10: बांटना छोड़ दें,
11: आप तो साथ ही
10: ध्यान करें।
11: ऑपोजिशन कह रहा है कि वहां बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, आप तो चूंकि साथ रहते हैं तो बता सकते हैं क्या वाकई कुछ है चल रहा है अंदरूनी कलह, कोई गुटबाजी है?
10: बिल्कुल राजीव भाई, एक बार
11: कहने
10: को कोई कुछ कहता रहे, गुटबाजी कहता रहे, गुटबाजी कहता रहे, गुटबाजी दिखती है जब चुनाव होते हैं, गुटबाजी दिखती है जब देश के चुनाव होते हैं, गुटबाजी दिखती है जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं। एक प्रदेश दिखा दो जहां पे एनडीए में किसी भी प्रदेश में गुटबाजी या झगड़ा हुआ हो, या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन एक भी प्रदेश दिखा दे जिस प्रदेश में ये इकट्ठा होकर चुनाव लड़े हो, एक भी दिखा दें। ये आपके नेशनल टेलीविजन पे बात है, जनता सब देख रही है, आकलन करना सब जानते हैं, भापना सब जानते हैं, और सब लोग देख रहे हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है।
11: सुरेंद्र जी,
10: दो चीज पूछ लो कोई से भी, कांग्रेस कैसे सपा से।
12: अरे अब हो गया यार मलूक भाई, मैं मलूक भाई से सहमत हूं कि हमारे अंदर गुटबाजी है, इंडिया गठबंधन में गुटबाजी है। जिंदा लोकतंत्र में तो गुटबाजी होगी, जो लोग मरे हुए हैं उनमें गुटबाजी नहीं हो सकती, डेडवुड में गुटबाजी नहीं हो सकती। एनडीए में ना खाता ना बही, जो चचा मोदी पे है वो सही, किसी की है हिम्मत नहीं है।
10: और हमारे बीच में मत बोलो यार, तो गड़बड़े मेरे वरना अपने में झांक लो और खुद तय कर लो और फिर जवाब दे लो।
12: साहब रुक जाओ, अभी तो और लगेगी आपको, चिंता मत करो। क्यों परेशान हो रहे हो आप, भले आदमी हो, क्यों परेशान इतना हो रहे हो? हम लोग तो जिंदा हैं, हम में तो गुटबाजी
10: बराबर लगा
12: है, आप भी और रहेगी।
11: अरे भले कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने
10: दीजिए, हो बराबर लगाएंगे,
12: इतना तो सम्मान करो। क्या अभी क्या मजाक कर रहे हो? आप जैसा सीनियर आदमी जो लोकसभा में भी बोलता हो, विधानसभा में कई बार बोला हो, आपको इतनी जल्दी वो लग गई, परेशानी आ गई, मिर्चे लग गई, उचित नहीं है ये। आप

0: तो होती जा रही है, डायनासोर बनने वाली पार्टी है ये, इसका कोई नेतृत्व तो है नहीं, राहुल गांधी जी को कुछ ज्ञान नहीं है क्या बोले क्या नहीं बोले, पर्ची थमा दी जाती है तो इनको पर्ची नजर आती है। सोनिया गांधी
1: नहीं, सपा ने
0: बुजुर्ग
1: तो
0: हो गई है
1: लोकसभा में
0: वो,
1: बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है।
0: नहीं सपा इन्होंने झूठ का नैरेटिव खड़ा किया, इन्होंने संविधान और आरक्षण का मुद्दा खड़ा किया, इन्होंने ऐसा झूठ का नैरेटिव खड़ा किया। उसके बाद का बात बता दूं ना मैं आपको, उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, उसके बाद राजस्थान में इसमें चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव
1: महाराष्ट्र,
0: हुआ, बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, कितने चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में अनेक उपचुनाव हुए हैं, परिणाम आपके सामने है। तो काट की हाँड़ी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती है, जल जाती है, वो जल गई इनकी। और ये राजभर साहब का बड़ा विरोध कर रहे हैं, राजभर जी का, अरे भाई वो भी सामान्य परिवार से, ओबीसी से आता है, वो पिछड़ी समाज को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, जब आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे वो, जब आपके साथ सरकार बननी थी उनका वोट बैंक आपको हासिल करना था तो अच्छे थे, हमारे यहाँ आ गए तो बुरे हो गए। और मैं कह रहा हूँ मनोज भाई, आप
1: इसके
0: अपने
1: अलावा
0: अखिलेश
1: उनके
0: यादव
1: जाओ
0: जी
1: उनसे
0: से,
1: ले लो,
0: अखिलेश
1: मनोज
0: यादव
1: भाई
0: जी
1: से
0: से
1: जाओ,
0: बयान
1: मनोज भाई
0: करवाइए
1: से।
0: कि कभी भी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बुलवाइए ना आप, एक बार बुलवा के देखिए तब समझेंगे कि आप राजभर के विरोधी हो। और ऐसे तो आकर के टीवी पे बोल दे रहे हो, आप बोलते रहे हो टीवी पे,
1: ठीक है,
0: कभी
1: मनोज,
0: अखिलेश यादव जी ने कहा कि कभी जीवन में हम राजभर साहब के साथ नहीं जाएंगे?
1: ठीक है
0: अरे आप
1: मनोज
0: तो उनपे
1: काका,
0: डोरे डालने का काम कर रहे हो, 2027 में दोबारा आपकी तरफ आ जाए, इस प्रयास में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, तो आपका ये दोहरा चरित्र है और सब जानते हैं, चिंता मत करिए, आपको कोई मौका
1: मैं
0: नहीं
1: जवाब
0: देंगे,
1: दूं राजू भाई,
0: बिल्कुल मौका
1: राजू
0: नहीं देंगे,
1: भाई जवाब
0: बिल्कुल
1: दो।
0: मौका नहीं देंगे,
1: ठीक है मनोज का
0: 2027
1: कर,
0: में 2017 दोहराएंगे, आप चिंता मत करिए।
1: देखिए देखिए बहुत सारे सवाल मलूक नागर जी ने भी करा और राजेश जी ने भी करा। पहले मलूक नागर जी का जवाब, उन्होंने कहा कि हम हमारी चिंता छोड़ दो, आपकी चिंता तो हमने तभी करना छोड़ दी जब आप ये कह रहे थे आपके शीर्षस्थ नेता कि हम चवन्नी छाप नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा बनाया और वो चवन्नी छाप की तरह बदल गए, तब से ही हमने आपकी चिंता करनी छोड़ दी। और जो साथी कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, चैनल पे कह रहे हैं
2: राजीव भाई
1: कि
2: दस
1: हम लोगों ने
2: सेकंड
1: किसी को
2: राजीव राजीव
1: कभी
2: भाई दस
1: किसी को
2: सेकंड
1: गालीबाज
2: काउंटर
1: नहीं
2: राजीव
1: बनाया।
2: भाई दस
1: अगर ओम
2: सेकंड
1: प्रकाश
2: काउंटर
1: राजभर
2: जरूरी
1: की
2: है,
1: गाली
2: आपको दूंगा
1: किसी को
2: राज
1: गालीबाज
2: राजीव
1: करे
2: भाई
1: तो
2: दस
1: सुबह
2: सेकंड
1: यहाँ शाम वहां,
2: दस
1: अगर
2: सेकंड
1: दो मुहां साफ आपको पसंद है तो आपको मुबारक, समाजवादी पार्टी का
0: जब
1: जिससे
0: वो गाली
1: गठबंधन
0: दे रहे थे
1: पहले था
0: आपके यहाँ
1: 24 में, जिसने
0: थे,
1: आपको हरा दिया, जो
0: जब वो
1: हमारा
0: गाली दे
1: गठबंधन
0: रहे थे
1: 24
0: आपके
1: में
0: यहाँ थे
1: आपको
0: मनोज
1: हरा
0: भाई,
1: दिया, वही गठबंधन आपको 27
0: अरे
1: में
0: जिस समय
1: पूरी
0: वो
1: तरह
0: गाली
1: से
0: दे रहे
1: हरा
0: थे आपके
1: देगा।
0: यहाँ थे आपने
1: और
0: रखा भी नहीं उनको,
1: आप
0: अरे
1: सबसे,
0: आपने उस
1: आपका
0: समय
1: जो
0: उनका विरोध
1: अहंकार
0: किया,
1: है,
0: जब
1: आपका
0: वो
1: जो
0: किसी को
1: अहंकार
0: गाली
1: है
0: दे
1: वो
0: रहे
1: भी
0: थे
1: खत्म
0: तो
1: हो
0: समाजवादी
1: जाएगा
0: पार्टी के
1: और
0: साथी थे,
1: 2027 में जो
0: तब नहीं
1: बचा
0: बोले आप
1: खुचा
0: आसन
1: आपने
0: लगा के गाली
1: बिल्कुल
0: देते।
1: वो
0: जब खत्म
1: खामोशी
0: हुई,
1: से सुन रहे थे
0: हमने
1: मनोज
0: किसी
1: जी,
0: को कभी
1: नहीं जब जब
0: गालीबाजी
1: जब
0: नहीं
1: आप सब
0: सिखाई।
1: लोग बोल रहे थे खामोशी से सुन रहे थे, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मनोज जी ने क्या बोला। मनोज जी प्लीज बाकी सब लोग थोड़ा सा उनको सुन भी लेना क्या बोल रहे हैं वो, प्लीज मनोज जी 30 सेकंड में कंप्लीट
0: देखिए
1: करें आप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत धन्यवाद।
2: सेकंड काउंटर
1: वो जो बात
2: सेकंड
1: है ना कि समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, ब्रिक को दंतहीन, मतलब भेड़िया को दंतहीन और अही को निर्विष करना बाकी है, तो अभी अहंकार जो 24 में थोड़ा कम हुआ था,
2: अच्छा
1: 27 में
2: ठीक है
1: समाजवादी पार्टी
2: मलूक
1: और
2: नगर जी,
1: पीडीए की अवधारणा, बहुजनों का एका, प्रगतिशील सोच का संवर्ण, सब माननीय अखिलेश यादव जी के विकासवादी और समावेशी राजनीति के साथ है, आपको
2: ठीक है
1: 27 में
2: मलूक
1: इस
2: नगर
1: देश
2: जी
1: उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया
2: बस
1: जाएगा और आने
2: बस
1: वाले समय में उत्तर प्रदेश से बाहर हो
2: ठीक है
1: जाएंगे,
2: मनोज जी हो
1: प्रदेश से
2: गया,
1: भी बाहर हो
2: मलूक नगर जी
1: जाएंगे,
2: बोलिए
1: क्योंकि
2: जल्दी से
1: आप
2: बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में भी आए थे। और बाकी चवन्नी छाप का क्या जवाब देना है,
2: देखिए
1: वो तो खुद
2: यो
1: हो गए
2: मनोज,
1: चवन्नी छाप, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो है चवन्नी छाप,
2: सुनो
1: क्योंकि सपा ने राज्यसभा
2: सुनो
1: बनाया और मंत्री बन गए बीजेपी में जाके, तो अब
2: सुनो
1: उनका क्या जवाब दें?
2: यार, ये
1: हाँ आप
2: डबल
1: बोलिए
2: रिपीट
1: प्लीज।
2: कर रहे हैं। देखिए मनोज काका की बात सही है कि एमपी बनाने में इनका योगदान था, साझा था,
1: चलिए बहुत साधु
2: मुझे
1: भावना
2: भी
1: आपने
2: एमपी बनाने
1: स्वीकारा,
2: में योगदान
1: बहुत
2: था, पर
1: धन्यवाद।
2: क्या हमारी, अरे सुनो यार, अभी अभी मनोज मनोज मनोज बीच में नहीं, मनोज प्लीज बीच में नहीं, हमारी तरफ से
1: जी नहीं
2: कितने
1: बोलिए,
2: इनके एमएलए बने ये भी ये बता दें, और चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनका आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत करी और अखिलेश जी उनके बेटे हैं, अगर ये ऐसी भाषा चौधरी चरण सिंह के पोते के लिए कर रहे हैं तो ये इनका चरित्र है और ये इनकी जबान है,
1: आप
2: हमें
1: डेविएट
2: कुछ
1: मत
2: नहीं
1: करिए,
2: कहना।
1: चौधरी
2: ठीक है
1: चरण सिंह किसान नेता, किसान मसीहा, चौधरी चरण सिंह जी जिंदाबाद थे, हैं और
2: अब
1: रहेंगे,
2: बस अब
1: वो
2: बात
1: हमारे आदर्श थे, आजीवन
2: काका
1: रहेंगे,
2: मनोज
1: लेकिन
2: काका
1: लेकिन
2: मनोज
1: किसी
2: काका
1: बड़े
2: पूरी
1: आदमी
2: बात
1: का
2: हो
1: कोई
2: गई,
1: व्यक्तिगत
2: मनोज
1: तंत्र
2: काका
1: अधिकार
2: पूरी
1: नहीं,
2: बात
1: एक
2: हो
1: एक
2: गई,
1: आदमी
2: उस समय बड़ा
1: मनोज
2: गवर्नेंस
1: राज,
2: सबके रिएक्शन
1: मनोज
2: आने
1: पूरी
2: सुरेंद्र
1: बात,
2: पूछे
1: मनोज
2: सुरेंद्र
1: काका
2: जी
1: पूरी
2: सुरेंद्र जी
1: श्रद्धेय,
2: 30 सेकंड
1: मनोज
2: 30 सेकंड में बात रखिए,
1: राजनीतिक उत्तर
2: मनोज
1: वापस
2: काका
1: कैबिनेट
2: कैबिनेट
1: पूरी
2: विस्तार
1: बात
2: पर
1: हो
2: आइए
1: गई,
2: प्लीज,
1: हमने
2: इधर उधर नहीं
1: अपनी
2: जाना,
1: पूरी बात
2: वापस
1: कह दी,
2: कैबिनेट विस्तार पर आइए। हाँ
1: मनोज भाई
2: सुरेंद्र
1: आपने
2: जी
1: पूरी बात कह दी है, अब
2: जी
1: बंद करो।

0: जी राजीव भाई,
1: मेरे पास समय की कमी है, प्लीज लास्ट रिमार्क अपना।
2: जी मैं तो एक ही बात कहता हूं, बैक टू द बेसिक्स आइए। राजेश चौधरी को कुछ नहीं पता है, ना मलूक नागर को कुछ पता है, ये पता, और इवन मुझे आश्चर्य की नहीं है बिल्कुल कि योगी जी को भी कुछ नहीं पता है। ये पीएमओ तय कर रहा है, ये एचएमओ तय कर रहा है कि कौन मंत्री बनेगा, और ये वही लोग तय कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बंदरबाट, भ्रष्टाचार की मलाई किस विभाग में कौन कितनी खाएगा।
1: पहले भी कहते
2: थे, अगर योगी जी को तय करना होता तो राजेश चौधरी मंत्री होते।
1: ठीक है राजेश जी,
2: भाई ये जो दल बदलू मंत्री
3: ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, तो ये 2027 का चुनाव आए तब तक अपना दिल बहलाते रहिए। टॉर्च लेकर के ढूंढते हैं तो विधानसभा में कांग्रेस नजर आती है, बढ़िया वाली टॉर्च लानी पड़ती है, तब तो दिखता है कि हाँ कांग्रेस का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो भी नहीं नजर आएगा। वही हाल आज इनका छत्तीसगढ़ में हुआ है, वही हाल इनका आज बंगाल के अंदर
2: घटिया टॉर्च सप्लाई करती है। इसका मतलब
3: 20 में से 18 मुसलमान जीते हैं आपके, मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। 20 एमएलए जीत करके आए आसाम में, जिनमें से 18 मुसलमान जीते हैं भाई, ये मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस।
2: मुसलमान जीत
3: कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हो आप, सोचिए।
2: ये जो यूएई के साथ
1: सभी को माफी के साथ रुकना पड़ेगा क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अब कैबिनेट विस्तार हो गया, मंत्री पद कब मिलेगा इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई 24 घंटों के अंदर ये फैसला हो सकता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। दंगल मैच के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
3: हमारे सीमेंट में नहीं है,
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
0: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नहीं थम रहा हॉर्मुज में हाहाकार। हजारों जहाजों को समंदर में शांति का इंतजार। अमेरिकी नाकेबंदी जारी, टोलबंदी की ईरान की तैयारी। हॉर्मुज अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अमेरिका यहां से हटने को तैयार नहीं है और ईरान अपना कब्जा और कसने की तैयारियों में जुटा हुआ है। तेल के खेल ने हॉर्मुज को युद्ध भूमि का सबसे हाहाकारी इलाका बना दिया है। समंदर की नई सीमाएं खींची जा चुकी हैं। ईरानी बंदरगाहों को अमेरिका के विनाशकारी युद्ध पोतों ने घेरा हुआ है, तो ईरान की छोटी नावें और IRGC के बड़े हथियार हर विदेशी जहाज पर निगाह बनाए हुए हैं। अब सारी लड़ाई इसी इलाके में अपनी ताकत दिखाने पर है। फिलहाल ईरान हॉर्मुज जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने कहा है, ये व्यवस्था ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें सिर्फ वही कारोबारी जहाज और देश फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली खास सेवाओं के लिए टैक्स लिया जाएगा। यानी ईरान टोलबंदी के अपने फैसले को अब अंजाम तक लाने में जुट गया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने साफ कहा है कि अब दुश्मन देशों के सैन्य उपकरणों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान पहले अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी इस रास्ते से गुजरने देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बीच एक चीनी कंपनी के जहाज को सीज करने के बाद से बवाल मचा हुआ है। जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब किसी निजी सिक्योरिटी कंपनी के जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। चीनी सिक्योरिटी कंपनी के जहाज के खिलाफ ईरान की यह कार्रवाई इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि चीन के साथ उसके रिश्ते दोस्ताना हैं और सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में चीन पहले पायदान पर है। हॉर्मुज में हाहाकार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि सीज फायर होने के बावजूद ईरान और अमेरिका की तरफ से हर दूसरे दिन किसी न किसी जहाज पर एक्शन की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है। ट्रंप के चीन दौरे से दुनिया को ये उम्मीद जगी थी कि हॉर्मुज खुलने को लेकर शायद दो महाशक्तियां बात करेंगी। ट्रंप ने बाद में कहा भी कि चीन भी हॉर्मुज को खोलने को लेकर रजामंदी दे रहा है, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी की मजबूती का दावा किया है और कहा है कि 16 मई तक 78 कारोबारी जहाजों को उसने लौटाया है, जबकि 4 जहाजों को आवाजाही करने लायक नहीं छोड़ा गया। आज तक ब्यूरो।

फिर छिड़ने वाला है युद्ध भयंकर। अमेरिका इजराइल मिलकर लाएंगे ईरान में बवंडर। तैयार है प्लान, फिर झुलसेगा ईरान। यूएस मीडिया का दावा, हफ्ते भर में मचेगा कोहराम। क्या युद्ध विराम की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या जल्द ही बमों की बरसात फिर शुरू होने वाली है? क्या मिसाइलों का शोर फिर घमासान मचाने वाला है? इन सवालों के जवाब बेशक अभी किसी के पास ना हो, लेकिन हालात जो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक महायुद्ध फिर शुरू होने की तैयारी तीनों देश कर रहे हैं। अमेरिका भी, इसराइल भी और ईरान के सिर तो ये आशंका उसी दिन से मंडरा रही है जिस दिन से सीज फायर लागू हुआ था। इधर ट्रंप के चीन दौरे तक रही सही जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो चुकी है, और अब अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। इन अटकलों को हवा दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट ने, जिसके जरिए ट्रंप ने कहा कि ये तूफान से पहले की शांति थी। सोशल मीडिया पर साझा की गई एक एआई वाली तस्वीर में ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल कैप पहने हुए देखा जा सकता है, और उनके साथ हैं यूएस नेवी के एक एडमिरल। इस तस्वीर में ये दोनों उफनते पानी और बिजली कड़कने के बीच नेवी के एक वॉरशिप पर सवार नजर आ रहे हैं, और पीछे ईरानी जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। तूफान से पहले की शांति कैप्शन के साथ शेयर की गई इस तस्वीर को ईरान के लिए एक साफ धमकी के तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही युद्ध फिर शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वॉर रूम से मिली खबरों के आधार पर दावा किया है कि ट्रंप जल्दी ही ईरान को लेकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। अमेरिकी फौज के आला अधिकारी ईरान पर चौतरफा हमलों की योजना को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ट्रंप हर दूसरे दिन साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान डील पर जल्दी ही मुहर नहीं लगाता तो उसका विनाश तय है। सीज फायर के बाद से हर हफ्ते कम से कम एक बार बातचीत के बाद समझौता होने की उम्मीद जगती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इन कोशिशों की हवा निकल जाती है। यूरेनियम और होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। न डील हो पा रही है, न भरोसा कायम हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने तो इतना तक कह दिया है कि बातचीत का नया दौर शुरू होने की उम्मीद जगी है, लेकिन उन्हें अमेरिका पर भरोसा कम ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का फैसला लेते हैं तो एक विकल्प ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर और ज्यादा बम बरसाने का है, जबकि दूसरा विकल्प एक जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन है जिसमें ईरान के यूरेनियम स्टोरेज सेंटर को तबाह करना है। इसराइल में ताजा विस्फोट से है युद्ध का कनेक्शन। भारी तबाही झेलने के बाद अब इसराइल लेगा एक्शन। इस बीच इसराइल के यरूशलम के करीब एक जबरदस्त धमाका हुआ है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जोरदार धमाके के बाद आसमान में कई मील दूर से आग के शोले उठते दिखाई दिए और फिर धुएं का गुब्बार फैलता चला गया। ये धमाका इसराइल की एक सरकारी डिफेंस कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में हुआ है जो इसराइल के बेहद सीक्रेट रॉकेट और मिसाइल इंजन बनाती है। वैसे तो इसराइल इसे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तर्क को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल के आधुनिक डिफेंस सिस्टम को इससे भारी नुकसान हुआ है। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हफ्ते भर में मिसाइलें फिर गरजती दिख सकती हैं। वैसे भी पेंटागन में नए ऑपरेशन के नाम को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं होता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जगह ऑपरेशन स्लेजहैमर शुरू किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: तो दंगल यूपी के कैबिनेट विस्तार पर आपने देखा, अब आगे देखिए बहस बाजीगर अंजना ओम कश्यप।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नीदरलैंड की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एआई पर बड़े समझौते की उम्मीद, गोथेनबर्ग में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद।

पाकिस्तान के आरोप, विस्तार के बाद कल पहली कैबिनेट बैठक। लखनऊ में चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकीलों का गुस्सा, पुलिस के साथ झड़प, धक्का मुक्की, नगर निगम का बैन, हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण गिराया।

0: 24 सत्र फेरे में। नीटगांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वक्त है बहस बाजीगर का और आज यहाँ पर जनता में जबरदस्त जोश है, युवा हैं। तो सबसे पहले नीले गमछे वाले ये युवा हैं, आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। मोशन हम बताएंगे, लेकिन एक तरफ नीले गमछे वाले हैं, दूसरी तरफ सफेद गमछे वाले हैं। कितना उनमें जोश है, कितना एक्साइटमेंट है, कैसे अपनी अपनी टीम को वो सपोर्ट करते हैं, कौन अपने पक्ष में। सफेद गमछे वाले मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, मतलब इनका कोई भाव ही नहीं है दुनिया में, ये एकदम मोक्ष पा चुके हैं जीते जी। शांति प्रिय लोग हैं और बस इनको शांति चाहिए हर चीज में। और ये लाल गमछे वाले लोग हैं, आप भी तालियों के साथ बहुत स्वागत है। तो ये जोश इससे दिख रहा है क्योंकि टॉपिक इनको पहले बता दिया गया है, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत मंत्र लागू हो चुका है। एक एक कर बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं उन उपायों की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें कमोवेश कोविड काल जैसा ही संयम और बढ़ता जा रहा है, जैसे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को कह दिया गया है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 1 दिन मेट्रो डे, जिसमें उनको मेट्रो से सवारी करनी है यानी कार को त्यागना है। लेकिन विपक्ष इसको कह रहा है कि ये सरकार की नाकामी के सबूत है, आपने इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की थी इसलिए आपको ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3-3 रुपए अलग बढ़ गई हैं। देखिए, राजनीति के वार पलटवार के बीच ये भी सच है कि अर्थव्यवस्था में 3F यानी फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, फ्यूल यानी ईंधन और फर्टिलाइजर यानी खाद, जो दोनों ही फॉरेक्स से खरीदे जाते हैं, फ्यूल भी फर्टिलाइजर भी, ये 3 सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बचत मंत्र है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी है, तो इस 3F को हमें अच्छे से संभाल कर रखना है। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन रखा है हमने, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है। पहले विषय को जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर शुरुआत करें।
1: आपको बताते हैं कि आज की इस बहस का मकसद और आधार क्या है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 विशेष अपील की।
2: वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए,
1: जिनका संदेश था नेशन फर्स्ट, स्वदेशी और बचत, तेल बचाना है, विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है।
2: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम सोने की खरीद को टाले, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए।
1: अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ये अपील क्यों करनी पड़ी? तो इसके पीछे है युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन का बिगड़ जाना। जब दुनिया लड़ रही है तब भारत को अपनी ताकत खुद बनना होगा। आपको ये समझना होगा कि आज इस बहस की जरूरत क्या है। आज कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, रुपया गिरेगा तो असर जेब पर होगा। इसलिए आज ये सवाल है कि इस संकट से बचना कितना मुश्किल है, क्या बचत ही संकट से बचा पाएगी, क्योंकि देश का पैसा देश में रहना जरूरी है। इसलिए आज हम पूछेंगे कि क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है।
0: तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है, आज का ये विषय है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जो हमेशा से देखते आए हैं उनको तो पता है, 3-3 लोगों की 2 टीमें यहाँ पर आने वाली हैं, जो फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे, और 3 जजेस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जनता उन्हें मार्क करेगी सवाल के जवाब के आधार पर कि किस टीम ने उनको ज्यादा कन्विंस किया, लेकिन जजेस ये तय करेंगे कि आज इन 6 वक्ताओं में से बहस बाजीगर कौन बनेगा। तो आइए स्वागत करते हैं अपने 3 जजेस का। स्वागत करते हैं कमलेश किशोर जी, 3 ताल के ताऊ हमारे जज बनकर आ जा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिजॉन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और सिद्धार्थ जरावी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, ग्रुप एडिटर हैं बिजनेस टुडे के, और यहाँ पर सब भावी जर्नलिस्ट ही बैठे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर जर्नलिज्म के कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज टॉपिक भी उनके हिसाब से है, देखते हैं उनको कौन आज कन्विंस कर पाता है। कुछ जो आप लोग आज सुनना चाहेंगे, ताऊ
3: आपके जो प्रतियोगी होते हैं, अगर वो विषय के आसपास ही रहें तो उतना काफी होता है।
0: यही जबरदस्त बात कही आपने, निकल लेते हैं दाएं से बाएं से निकल लेते हैं। सिद्धार्थ जी,
4: पहली बार ही ये अनुभव करने वाला हूँ और होपफुली सब लोग विषय
0: पहली बार आ रहे हैं, वाकई जबरदस्त स्वागत है आपका, स्पेशल वेलकम,
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रोफेसर साहब,
5: मैं भी पहली बार आ रहा हूँ।
0: क्या बात है आपकी गुलाबी टाई ने वैसे ही चार चांद लगा दिया मेरे शो में।
5: नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है आने पे, और हम उम्मीद करते हैं कि हंसी के साथ मजाक के साथ भी थोड़ा सीरियसनेस हो।
0: बिल्कुल सीरियसनेस होगा। और आइए अब मंच पर स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं का। पहले आइए तालियों के साथ स्वागत कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दमदार अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। प्रदीप भंडारी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से पत्रकार हैं और अब भारतीय जनता पार्टी थे और बड़ा घूम घूम कर रिपोर्टिंग करते थे। इनका अंदाज, इनका स्टाइल एकदम निराला था भंडारी जी का, लेकिन आज उनको फॉर द मोशन डिफेंड करना है तो उनकी भी टीम आएगी, दो लोग और आएंगे। अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंबईया हैं और कविता और शेरो शायरी खूब करते हैं। माधव आनंद जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। माधव आनंद जी MLA हैं और साथ ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं RLM के, बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिनको चुप करना बहुत मुश्किल काम है, जो बोलते हैं तो रुकते नहीं है, नाम है अनुराग भदौरिया और सत्य प्रकाश मिश्रा जी। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। और अब वो वक्त आ गया है जब बहसबाजी घर में पहले दो वक्ताओं को हम बुलाएंगे, सभी को डेढ़ डेढ़ मिनट का टाइम मिलेगा। आप जाहिर तौर पर, क्योंकि आप इनका समर्थन कर रहे हैं तो आप उनके लिए ताली बजाएंगे, और अगर आपको भी उनकी बात अच्छी लगती है आप लोग बजा सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें, डेढ़ डेढ़ मिनट का समय सभी को मिलेगा और उसके बाद एक एक मिनट का रिबटल राउंड भी होगा। जजेस तय करेंगे कि आज सबसे अच्छा वक्ता कौन रहा, इन छह में से कौन बनेगा बहसबाजीगर, और जनता तय करेगी कि इन्होंने किसको कितना ज्यादा कन्विंस किया, क्योंकि हम आपसे कराएंगे वोटिंग। न सिर्फ यहां पर मौजूद जनता वोट करेगी बल्कि हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं, आप भी स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं उसे स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है, इस विषय पर बोलने के लिए पहले दोनों ही तरफ से प्रदीप भंडारी और अखिलेश प्रताप सिंह का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आइए अखिलेश बाबू, आइए अखिलेश जी। चलिए प्रदीप भंडारी जी, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है, इस विषय पर बोलने का आपका डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
6: मैं 10 सेकंड पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, तेल राहुल गांधी के घर से नहीं आता है, तेल 10 जनपद के घर से नहीं आता है, ना अखिलेश जी के घर से आता है, तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस पे ओछी बातें ना करें और फैक्चुअल बात करें। फैक्ट की बात करूंगा, आज ग्लोबल वैश्विक एनर्जी क्राइसिस है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, IAEA कह रहा है। क्या ग्लोबली संकट है? है। क्या भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है? पड़ा है। पर क्या सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है? सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचत मंत्र चल रहा है। म्यांमार के अंदर 112% दाम बढ़े, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% दाम बढ़े, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 30% दाम बढ़े, भारत के अंदर सिर्फ 3% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, 4 साल में पहली बार बढ़े, करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमारा 2% से कम है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $690 बिलियन का है। पर बचत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता यह क्राइसिस आगे तक कब तक जा सकता है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 1,00,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स खरीद ले, डेट ले और आप सबकी जनरेशन पे छोड़ दे। नहीं, हमारी एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इनके समय में देश डबल डिजिट डेफिसिट पे था। आज देश के अंदर हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत है। पर क्या ये मेजर्स जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जब सब लोग वो मेजर्स लेंगे तभी जाके बात बनेगी। 13 करोड़ से ज्यादा बाइसिकल्स और स्कूटर्स हैं, अगर 10 लीटर तेल भी हम बचाते हैं तो 160 करोड़ से ज्यादा की बचत होती है।
0: बहुत अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी कर दी इधर से, अब ओपनिंग बैट्समैन इधर से मोर्चा संभालने वाले हैं, पैड हेलमेट पहनकर तैयार हैं अखिलेश प्रताप सिंह UP वाले, और आपका डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
7: मोदी जी का नारा है, सरकार हमारी है और समस्याएं तुम्हारी हैं। विदेश दौरे पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं और लोग विदेश ना आए, जितनी भी समस्याएं आई हैं मोदी जी ही लाए हैं। आप देखिए, आज दो दिन पहले मोदी जी बता रहे हैं कि तेल बचाओ। चुनाव के पहले से ये समस्या आ चुकी थी, फरवरी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब चुनाव लड़ना था मोदी जी को, तब उनको ये समस्याएं नहीं आई। क्या मैं देश को किस किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए तब ये बताना भूल गए? राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि ये पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान में, ये पश्चिम एशिया में ये समस्याएं आ रही हैं, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आइए हम सब मिल करके बात करें, इसके लड़ने की तैयारी कर लें। लेकिन मोदी जी ने चुनावी मोड में थे, जब जब विपक्ष ने कोई सुझाव सलाह दिया है मोदी जी ने उसका उपहास किया है। पहले सुझाव देने के पहले अपने आप को कथनी कर्मी करनी पे खरा उतरना पड़ेगा। कहा गया ना, मनसा वाचा कर्मणा, आपको एक रूपता होनी पड़ेगी तभी आपके बात पे कोई अमल करेगा। आप हमेशा देश को, जब भी देश पे कोई संकट आता है, आप उस संकट का मुकाबला करने के बजाय पलायन कर जाते हैं और देश के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया तुम लोग संकट से निपट लो, हमारे पास का नहीं है, हम तो चले अभी देश, यहां पे देख लो। ये प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड है वो एकदम भारत विरोधी। जो
0: समय समाप्त हुआ, गजब अखिलेश बाबू, एकदम गजब किया दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने, अच्छी बल्लेबाजी। ना गुस्से में काहे देख रहे हैं ताऊ, टॉपिक पे रहे कि नहीं रहे दोनों?
3: हाँ, टॉपिक पे रहे हैं। अब प्रदीप भंडारी जी और उनकी टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो एक सवाल जो अखिलेश जी ने, वो विदेश दौरे वाले तो इनका रेटरिक है, वो होना भी चाहिए, विपक्ष में है, वो घूमने तो गए नहीं है, काम से कहीं गए होंगे। पर इतनी देर, फरवरी के आखिरी दिन में युद्ध शुरू हो गया, एक हफ्ते के बाद पता था कि ये लंबा खिंचेगा। ये जो सवाल इनका है कि इतनी देर क्यों कर दी हुजूर, ये बताने में कि हम संकट से गिरे हैं, आग जब लगी थी तभी चेताना था, अब बहुत कुछ जलने के बाद, चूंकि एक तरफ भोज चल रहा है उसको निपटाना था, तो उसका जवाब हम, मैं एक्सपेक्ट करता हूं भंडारी जी से, क्योंकि ये सवाल बड़ा है।
0: सिद्धार्थ जी जल्दी से
4: देखिए, ये दोनों पार्टियों ने अपना अपना तर्क रखा है, पॉलिटिकल तर्क रखा है, बीजेपी कांग्रेस के तरफ नहीं बोल सकती और वाइस वर्सा, परंतु सच्चाई ये भी है कि चार साल तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, एक बारी घटाए गए। क्या इसकी टाइमिंग पे वो सवाल बहुत बड़ा है, पर जब चार साल अगर किसी चीज को नहीं चेंज किया गया और 48 महीने के बाद दो महीने और जोड़ लीजिए अगर चेंज किया गया है, तो शायद ये रणनीति होगी अगर ये अर्थनीति ना भी मानी जाए।
0: हाँ, चुनावी रणनीति। प्रोफेसर साहब,
8: कहा जाता है बेटर टू बी लेट देन नेवर। यू सी, यदि कोई डिसीजन लिया गया वो सोच समझ के लिया गया कि ये करेक्ट टाइम है, इसे लेना चाहिए,
0: ठीक है,
8: और ये देश का पक्ष में है,
0: ठीक है। इसी पर आपसे जवाब, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर इनसे
7: ले। ये जो समस्या है, मैंने शुरू में कहा कि मोदी जी के लाइए, आपने अमेरिका के दबाव में, हमारे प्रधानमंत्री अगर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं होते, अमेरिका के दबाव में अगर रूस और ईरान से संबंध खत्म नहीं करते, तो आज हम उनके मित्र बने रहते और आज हमें तेल की समस्या नहीं होती। वो अपने मित्र देशों को तेल दे रहा है, लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने अपने मित्र देशों से तेल खरीदना बना किया, बंद कर दिया। दूसरी बात, जब क्रूड ऑयल के दाम दुनिया में सबसे कम रेट पे आए थे, $40-50 पर बैरल तक आए थे, आपने वो लाभ इस देश के लोगों को नहीं दिया, एक्स्ट्रा 3 गुना ज्यादा टैक्स लगा करके, 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ा करके 42 लाख करोड़ रुपए 11 साल में आपने कमाए, तब जनता को बोला, आपने जनता को नहीं दिया। आज जब बोझ पड़ रहा है तो बोझ आप जनता पे डाल रहे हैं, और जब पैसे 42 लाख करोड़ आप कमाए तो उसके बदले आपने अपने मित्रों का 40 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ किया, देश की जनता को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था, कम दाम में जो तेल मिलने चाहिए था, वो नहीं दिया।
0: मतलब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मूज बंद हुआ, लेकिन 10 मई संकट आया, क्यों?
6: पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा कि रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया है, ये आज का ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, 1 घंटे पहले का स्टेटमेंट है कि रशिया टॉप एक्सपोर्टर है और रशिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये पहली बात झूठ। दूसरा, कहा कि भाई विदेश के दौरे पे जाते राहुल गांधी जैसे छुट्टी मनाने नहीं जाते जैसे मस्कट में जाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का यूएई का दौरा हुआ, इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म सप्लाई हमारा एलपीजी का और स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व बढ़े, तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर शिप के लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, जज साहब ने कहा कि भाई अभी क्यों पता चला, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसको पता था कौन सी तारीख को होगा? इसका काउंटर थीसिस क्या है? क्या हम ये चाह रहे थे कि पहले दिन ही हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दें, पहले हफ्ते ही बढ़ा दें, पहले महीने ही बढ़ा दें? ये हमारी कैलकुलेशन है भैया। हमको हमारे में दो महीने तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, दो सीज फायर जो है वो स्टॉल हो गए। किसी को नहीं पता था कि दो सीज फायर स्टॉल होंगे और अभी भी सबको पता है कब तक जाएगा, किसी को नहीं पता। बात चुनाव की रही, अंजना जी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करवा दीजिए, कोई भी चीज को चुनावी लेंस से देखना बंद हो जाएगा। आज ही समर्थन।
0: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं, अगले वक्ता को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, पेपर समेट लीजिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। माधव आनंद और आनंद दुबे, आप दोनों का बहुत स्वागत है, अपनी अपनी जगह लीजिए। डेढ़ डेढ़ मिनट का टाइम मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आप टॉपिक पर रहेंगे और धारदार अंदाज में अपनी बात को कहेंगे। माधव आनंद जी, आपका डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है।
9: विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जो सात अपीलें भारतवासियों से की है, मुझे लगता है कि इसको एक सरकारी नारा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। निश्चित रूप से जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमेशा से उस रूप में देखने की आवश्यकता है। और आज के जो वैश्विक स्थिति है, हम सब लोग जानते हैं कि आज की स्थिति क्या बनी हुई है, और उस स्थिति में चाहे कोविड हो, चाहे वैश्विक युद्ध की बात हो या सप्लाई चेन की बात हो, जो संकट है, उस स्थिति में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतवासियों से अपील की है, यह अपील विकसित भारत बनाने की दिशा में एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और इसका हम लोग सब लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। आज वो भारत भारत नहीं रहा। एक समय था कि भारत को कहा जाता था टेक्नोलॉजी इंपोर्टर के रूप में कहा जाता था, आज वही भारत डिजिटल पब्लिक सप्लायर के रूप में जाना जाता है। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम बाजार नहीं है, भारत कहता है हम उत्पादक भी हैं। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम जो है आपको जो है सप्लायर के नहीं, हम इंपोर्टर ही नहीं है, आज हम जो है सो निर्यातक के रूप में भी जाने जाते हैं। आज आप पहले लोग नौकरी मांगते थे, आज स्टार्टअप के माध्यम से लोग नौकरी देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको राजनीतिक के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। विकसित भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको साकार करने के लिए और जो उन्होंने सात वचन जो है, सात जो है रिक्वेस्ट हम लोगों से किया है, हम सब लोगों को मिलकर समर्थन करना चाहिए राष्ट्र हित में। और मैं तो कहता हूं, सीताराम केसरी कहा करते थे, वही न खाता जो कहे सीताराम केसरी वही सही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबको भरोसा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबको सुननी चाहिए।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आपकी बल्लेबाजी, डेढ़ मिनट की शुरू होती है।
10: सभी को हमारा नमस्ते। देखिए, आजादी के बाद से ही जब जब इस देश पर संकट आया है, सभी दलों ने इकट्ठा आने का हमेशा काम किया है, चाहे वो दल सरकार में बैठी हो और चाहे वो विपक्ष में बैठी हो। सवाल हम पूछेंगे आपसे, जब देश भावना हमारे खून में है, हमारी रगो रगो में, और देश अगर संकट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम तो सवाल आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, आप आज से 12 साल पहले सरकार में आए थे अच्छे दिन का वादा करके, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने आपको एक सरकार सौंपी थी, तब हमारे रुपए के मुकाबले डॉलर क्या था, 60 रुपए के करीब था। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप कहते थे, जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे उस समय तो रुपया लुढ़का करता था, आज तो 95 के पार रुपया सोने के कगार पर बैठा है, सोया हुआ है, निद्रा में है, हमें उसे जगाना है, हमें आपकी अंतरात्मा को जगाना है। कि जब आपको पता था कि 28 फरवरी से स्टेट ऑफ हार्बोर्स बंद हो सकते हैं, युद्ध आज चलेगा, कल चलेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा, बंद होगा, आपको जब जानकारी थी, आपने पूरे मार्च को देखा, आपने पूरा अप्रैल देखा, आप नारे लगाते रहे, 4 मई भाजपा आई, और जब 10 मई आई तब आपको चिंता सताई, तब आपको महंगाई की याद आई, तब आपको इस देश की याद आई, नौजवानों की याद आई, तब आपने कहा, भाइयों और बहनों मेरी पुकार पर सोना खरीदना छोड़ दो, अरे भैया विदेश यात्रा जाना छोड़ दो, अरे भैया डीजल पेट्रोल बचाना कम कर दो। ये क्या है, मतलब पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आप खुद पहले उदाहरण दीजिए।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ जल्दी से छोटे सवाल अगर पूछ रहे हो, पूछे प्रोफेसर साहब।
11: नहीं, हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जो पैसा इकट्ठा होता है, यदि आप क्रूड का प्राइस ज्यादा है और आप उसको पास ऑन नहीं कर रहे हो, तो उसका फायदा किसके पास जाता है? कंट्री में जाता है, आम जनता पे जाता है, क्योंकि हर बजट को फुलफिल करने के लिए हमको रकम उस वसूलना पड़ता है। तो अभी जब संकट आ जाए और जब हम जानते हैं कि अब हमको सबको जोड़कर इस काम को करना होगा, तो नेचुरली नेचुरली हमको कुछ बोझ तो देना ही होगा आम जनता पे. तो मेरा यही सिंपल सवाल ये है कि ये पैसा कोई अपने घर के तिजोरी के लिए नहीं ले जा रहा है, देश का विकास के लिए ले जा रहा है.
10: आपका सवाल एकदम जायज है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये संकट की बात सबके सामने आई, क्या सामने से बड़ा हृदय दिखाकर विपक्ष के साथ बैठक करनी चाहिए? क्या सर्वदलीय बैठक में कोई बात करनी चाहिए? क्या विश्वास में लेना चाह नेता प्रतिपक्ष को? आइए हम सब इसका एक निवारण निकाले. एक तरफा आप एक तो रात दिन हमें गालियां दें, रात दिन हमें कोसें, और हम जब सहयोग करने जाएं तो हमें एक देशद्रोही जैसा उपमा देने की जो सरकार की निकम्मी कोशिश है, हम उसके विरोध में.
11: ऐसा नहीं है दुबे जी, ऐसा नहीं है. हर
0: अच्छा सर्वदलीय बैठक में बुला लेते तो ठीक था.
10: बिल्कुल हम बात करते कुछ आपको सलाह देते.
11: नहीं, हम आपको यही बता रहे हैं. आपको कौन रोक रहा है? क्योंकि हम अभी पब्लिक में देख रहे हैं ऑपोजिशन का खाली एक ही काम है, अपोज करना. अरे अपोज क्यों कर रहे हो आप उनको सुझाव दो
10: सर.
11: हम
10: लोग गाड़ियां त्याग के साइकिल पे चल रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, कोई दिखाए तो माने ना. हम लोग क्या करें? हम लोग उपवास करने को भी तैयार हैं. मोदी जी से कहा था कि एक दिन उपवास देश के नाम.
11: नहीं, हम ये कह रहे हैं यदि आपको कोई बैठक में बुलाता है और आप चाहते हो कि बैठक में बुलाए, तो वो तो तब बुलाएगा जब आप कोई सुझाव लेकर आओगे, कुछ सामने का कुछ एक बात कैसे होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे. वो नहीं, आप अंधाधुंध यदि खाली अपोज करोगे तो आपके साथ मीटिंग कौन करना चाहेगा?
10: अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहें कि नेता प्रतिपक्ष आप बैठक में आए और तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बैठक में ना आए तो आपकी सारी बातें सर आंखों पर. लेकिन बुलाए ही नहीं तो क्या करें हम लोग? क्या
0: सवाल?
3: माधव आनंद जी ने बोला कि ये जो है विकसित भारत के सपने के लिए सात संकल्प हैं. ये तो तब तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब सपना देखा गया था.
9: आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और कोई भी जो राष्ट्र के सर्वोच्च नेता होते हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे ही काम करने की आवश्यकता होती है. आज जो वैश्विक स्थिति है वो सबको पता है, जितने भी युवा साथी हैं सबको पता है कि वैश्विक, और इस वैश्विक स्थिति में भी जो विपरीत परिस्थिति में बोल सकता हूं, आज भी भारत सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है. वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भारत सरकार ने अपनाया है. माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आज राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है.
12: अंजना जी, आपके परमिशन अनुमति से यहाँ हाथ खड़ा कर सकते हैं किनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन है? इलेक्ट्रिक है. और कितनों के पास पेट्रोल डीजल के वाहन है? तो ये सच्चाई है, ये परिस्थिति है और ये लॉन्ग टर्म इस देश को एक सच्चाई समझनी पड़ेगी. अगर हमारी इकोनॉमी का और विकास होगा, जितनी आज हमारा जीडीपी अगर ये डबल होगा तो तेल पेट्रोल डीजल गैस की खपत भी बढ़ने वाली है. आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक देशवासी लाभ ले और दूसरा ना ले. इसलिए लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की आवश्यकता है क्योंकि वस्तु स्थिति जो आज हमने इस ऑडिटोरियम में देखी यही है.
0: चलिए तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. और अब आइए, इनको बुलाने की क्या जरूरत है? बिना इनको चुप कराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है. सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब. क्या मोदी, एक टॉपिक बता दूं ताकि भूल ना जाए ये लोग, क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है?
13: कांग्रेस ने समस्याओं की जितनी लगाई थी क्यारियां क्यारी, उन सबको दूर करने की हमारी ही है जिम्मेदारी. यह मेरा जवाब कांग्रेस को है. बचत मंत्र, जब दुनिया में वैश्विक संकट आया उसके बाद 40 देशों से आयात करने के लिए और समझौते हुए 50% एलपीजी बढ़ा. उम्मीद थी कि शांति वार्ता चलेगी लेकिन ट्रंप साहब ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है. भारत ने सतर्कता दिखाई. एक देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है अपने नागरिकों के प्रति. वो देश को आगाह कर थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा बचत कर लेते हैं, थोड़ा सोना कम खरीदते हैं, वर्क फ्रॉम होम चले जाते हैं, थोड़ा जैविक खाद पर लौटते हैं. इस बचत में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ उठ गया कि सब उनको बुला के बात करते बचत के लिए कि चलो मिलके बचत करते हैं. अरे कहा है कूद पड़ो राष्ट्र के निर्माण में, बचत के अभियान में. नहीं, गाल बजाएंगे, बचत नहीं करेंगे. राहुल गांधी की विदेश यात्रा निकल पड़ी, 11 करोड़ आमदनी, 56 करोड़ का विदेश यात्रा, 22 उन पे जाना नहीं चाहते. लेकिन बचत इस राष्ट्र की एक नॉर्मल सी गति है, हर व्यक्ति करता है. राष्ट्र एक साथ करे राष्ट्र समृद्ध होगा. अब यदि हॉर्मुज स्ट्रेट से आने लगे जहाज तो हम जितना बचत कर पाएंगे तो हमारा जो डॉलर है वो बचेगा, सोना कम खरीदेंगे। पिछले साल 71 अरब डॉलर का सोना खरीद लिया, अब कम खरीदेंगे तो चलेगा। सिक्किम 100% जैविक खाद का राज्य बन सकता है तो बिहार यूपी क्यों नहीं बन सकता है?
0: आपका विषय है 1.5 मिनट का बोलने का, पेट का दर्द नहीं, उन्होंने कहा था क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है? आपका विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है।
14: कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आपको आना चाहिए था जब चुनाव के पहले। और हमारे साथी अभी कह रहे थे कि बहुत ये सब सबको आह्वान कर रहे हैं, कूद पड़ो राष्ट्र निर्माण में। अरे जनता तो राष्ट्र निर्माण में कूद पड़ रही है, विपक्ष भी कूद पड़ रहा है, लेकिन सत्ता वाले कब कूदेंगे? वो चुनाव लड़ेंगे खाली क्या? जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक उन्हें याद आएगी नहीं कि देश के अंदर क्या होने वाला है। भाई आप चुनाव लड़ रहे थे, आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, तब तो हेलीकॉप्टर आपके उड़ रहे थे, तब को आपके जहाज उड़ रहे थे, रैलियां हो रही थी, तो वर्चुअल कर लेते, देश के नाम पे वर्चुअल रैलियां कर लेते, तब तो लगता कि आप राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो। आप राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे थे, आप बीजेपी निर्माण की बात कर रहे थे, बीजेपी सरकार लाने की बात कर रहे थे। जब बीजेपी की सरकार आ गई, सबने अपनी अपनी मुख्यमंत्री नोट ले ली, तब आपको राष्ट्र की याद आई, जनता की याद आई। अरे जनता तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा जब जब आपने जनता के आह्वान किया, जब जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है राष्ट्र पे संकट आया है, विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज भी विपक्ष जब राष्ट्र पे संकट है तब भी विपक्ष खड़ा है, लेकिन विपक्ष होने के नाते हमें आपको आगाह करना पड़ता है, हमें आपको बताना पड़ता है आप कहां गलत हो। यही तो हमारी जिम्मेदारी है। और जब विपक्ष आपको आईना दिखाता है तो आप विपक्ष को आईना दिखाने लगते हो, विपक्ष हर बात में विरोध करता है, विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष आपको याद दिलाता है ये जो आपने आज मंत्र दिए, मंत्र आपको पहले लेने चाहिए थे, चुनाव के पहले जनता को बताना चाहिए था कि आर्थिक संकट आने वाला है, ये तेल जो हम बाहर से लगाते हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे इनको पता नहीं तेल बाहर से आता है, सोना बाहर से आता है। क्या हिंदुस्तान को पहली बार पता चला कि बीजेपी के आने के बाद तेल सोना बाहर से आता है? ये तो पहले से ही बाहर से आ रहा था। तो ये जिम्मेदारी आपकी थी कि इसके ऊपर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, जो आपने तैयारी नहीं की, इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष को दोष देती है और अपनी अपने से पल्ला झाड़ती
0: है। बहुत अच्छा, दोनों ही तरह से क्लोजिंग टचेस जो है जबरदस्त दिए गए हैं। जजेस के सवाल,
3: जो मोशन है वो ये है कि क्या ये बचत मंत्र जरूरी है, इसके बारे में भी एक दो लाइन बोल दीजिए।
14: मैंने सीधा बचत, मैंने यही बोला
0: जो करते हैं ना, मतलब ताऊ जी,
14: नहीं,
0: ताऊ जी बात नहीं,
14: नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे, अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो, क्योंकि मैंने जो उन्होंने सवाल पूछा है, जो उन्होंने सवाल पूछा है उसी का जवाब दे रहा था कि बचत मंत्र आपको तब याद आता है जब आपकी सरकार बन जाती है।
0: फिर पूछ रहे हैं वो कुछ,
14: वही तो बोल रहा हूँ, बचत मंत्र जो आपने दिया है,
0: बचत मंत्र जरूरी है,
14: बचत मंत्र जरूरी बिल्कुल है, लेकिन ये तो आपने अपने ऊपर लागू करना चाहिए था ना। मैंने पहले बोला बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये बचत मंत्र जो आपको देना था, बचत मंत्र तो पहले ही देना था ना जब चुनाव के पहले, वो क्यों नहीं दिया आपने? सवाल ये है,
0: कहने लगे कि हाँ जरूरी है,
14: मैंने कहा बचत मंत्र पहले देना चाहिए था चुनाव के पहले, चुनाव के पहले, वो चुनाव के बाद में बचत मंत्र है ना, दिक्कत ही है जी।
8: नहीं, मेरा केवल यही कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन भी देश के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल डिसीजन, जब चुनाव तो होना ही है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप चुनाव से कैसे बच सकते हो? चुनाव तो होना ही है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज चुनाव था करके वो नहीं अनाउंसमेंट हुआ, तो क्योंकि यदि सरकार ये सोचे कि हमारे पास अभी क्षमता है लेके आगे जाने के लिए, हाँ, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करें, हम क्यों लोगों के ऊपर उसको तो अभी भी नहीं बोल रहे हो किसी को कि आप बचत करो, वो एक सलाह दिए हैं कि आपको करना चाहिए क्योंकि देश का भी जरूरी है, आप इसको आप आके जोड़िए अपने को और सबको मदद कीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए।
14: जवाब दे दो सर, वही तो मैं कह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपको बचत मंत्र देना था तो चुनाव में वर्चुअल रैली हो सकती थी, ऐसा नहीं कि चुनाव वर्चुअल रैली नहीं हो सकती, क्या वर्चुअल रैली होती नहीं है क्या? जब नहीं पहुंच पाते तो होती है ना,
8: चुनाव में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है। अरे तो जब पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है उस समय हो सकता है कि वो जरूरी नहीं
14: है। रैली की बात कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूँ।
0: पर अनुराग जी जरा ये बता दीजिए कि बाकी पार्टियां रैली कर रही थी नहीं कर रही थी,
14: तो सभी को करना चाहिए था, तो मंत्र पहले देना था। यही सही आ गया, अब आप सही आ गए,
13: दोनों
14: वक्ताओं करेक्ट है सर। देखिए आगे
13: दोनों
14: तो ये बचत मंत्र तभी दे देना चाहिए था कि सभी पार्टियों को बोल देना चाहिए था कि वर्चुअल रैली करो, तब सभी मान जाते वर्चुअल रैली होती।
13: अनुराग जी और अपने दूसरे साथी से ये प्रश्न है, आप दोनों किसी भी प्रकार की बचत कर रहे हैं क्या?
3: बिल्कुल
14: अब मैं बता रहा हूँ।
12: नहीं नहीं एक एक करके बताइए,
14: मैं अपना बता दूं, मैं अपना बता दूं। मेरा तो देखो,
3: अब मैं आपको एक चीज बताऊं,
0: लंबी सी गाड़ी से आए हैं, साइकिल इनकी इनका चुनाव चिन्ह है।
14: मैं बता रहा हूँ, मैं एकमात्र ऐसा हूँ जो सुबह 5:30 बजे साइकिल से निकलता हूँ, आज नहीं रोज की, मैं वर्षों से।
3: उसके बाद
14: और मैं एक मिनट पूरी बात होने दी, मैं आपके पीछे टोकूंगा तो बुरा लगेगा। वर्कआउट नहीं होता है,
0: झूठ मत बोलिए।
14: नहीं आप, अरे अपने रिपोर्टर बता देंगे, आपके आपके रिपोर्टर बता देंगे, आपके रिपोर्टर वहाँ है और आपके रिपोर्टर मुझे मिलते भी है और वो कहते हैं कि आप पूरा प्रचार या मैं पब्लिक से मिलना साइकिल के माध्यम से करता हूँ लगातार, ये मैं 20 साल से कर रहा हूँ और 20 साल कर रहा हूँ, पूरी पब्लिक से मिलकर पसीने पसीने में लौटता हूँ 2 बजे घर, और आप मुझे बताएंगे। आप
0: मैं अपनी टीम से कहती हूँ, इनकी साइकिल बाहर खड़ी है, साइकिल लेके आइए स्टूडियो में, यहाँ पे हम लोग साइकिल दिखाएंगे सबको, इंस्पिरेशन मिलेगा।
14: आपकी गाड़ी
3: कोई व्यक्ति साइकिल पर नहीं घूमता, साइकिल चुनाव चिन्ह जरूर है। अब आपने पूछा, आपने कोई बचत की, बहुत पर्सनल मसला हो जाएगा। मेरा 6 जून को मैरिज डे है, अर्धांगनी के लिए सोना नहीं खरीदना है, बचत है।
14: हम तो ठीक है, ये तो भाई ये क्या है, वो तो कोई भी नहीं खरीदता, हम तो वैसे नहीं खरीदते।
3: नहीं नहीं सोना जिद होता है, सोना खरीदते हो, लेकिन एक है अस्पष्ट है कि नहीं, अभी मोदी सरकार ने कहा है।
0: अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि
3: सोना नहीं खरीदना है? एक और बता दें, अभी हम लोग दूसरे स्टूडियो से कार पुल करके यहाँ तक पहुँचे, 4 लोग थे।
0: वेरी गुड,
3: ठीक है,
0: वेरी गुड, वेरी गुड। पर कितने लोग ये मानते हैं, अरे सुनिए ना, कितने लोग मानते हैं कि सोना जो
14: है, सोना खरीदते हैं, पहले तो ये सवाल हो जाए, इस देश के अंदर में ज्यादातर लोग किसान हैं, गरीब हैं, कमजोर वर्ग है, वो कितना सोना खरीदता है पहले इसकी पता चल जाए।
3: $71 अरब का पिछले साल अगर सोना आयात हुआ है,
14: जो गरीब परेशान है,
3: और हमारे पास $700 है, तो हम सजा भुगतेंगे।
12: अंजना, अंजना किसान, अंजना जी ऑडियंस से एक मिनट, ऑडियंस से पूछें, आप सोना खरीदेंगे अगर आपके पास ऑप्शन हो, या कोई शेयर बाजार में शेयर खरीदेंगे?
14: बताइए।
12: नहीं नहीं, हाथ खड़ा, गोल्ड कितने लोग,
0: गोल्ड के लिए कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं?
14: और
0: प्रधानमंत्री शेयर
14: ज्यादातर है,
0: ठीक है। अरे ये बच्चे हैं, ये क्या खरीदेंगे? लेकिन एक बताइए कि अगर ये जो प्रधानमंत्री ये कॉलेज पढ़ रहे हैं बेचारे, इनके फीस मैनेज हो जाए, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस देखिए तो सब हैरान रह जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने फोरेक्स को फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए बचाना है, सोना कम खरीदिए एक साल, तो आप लोग कितने लोग मानते हैं?

0: शुरू होता है।
1: अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद वर्चुअल में बात कर रहे हैं, एक हफ्ते में दो बार खुद वो बात कर रहे हैं कि भाई पूलिंग होनी चाहिए। अभी तक विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने जिसने ये भी कहा कि भाई ये बचत जरूरी है, अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया। कोई भी विपक्ष का नेता कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि वो बचत करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज तक कमिटमेंट दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रनीति नहीं। इनने तब से कहा कि दो महीने में आपने क्या किया, 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में हमारे कई टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर स्ट्रैंडेड थे वो वापस आए। 29 मार्च को सरकार ने ब्रीफिंग करी जिसमें दो एलपीजी टैंकर 90,000 मेट्रिक टन के वापस आए। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 13 से 14 मई के बीच में हमारा एलपीजी प्रोडक्शन 30,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 50,000 मेट्रिक टन हो गया। हर दिन सरकार पिछले दो महीने के अंदर स्टेप्स ले रही थी। ये चुनाव की राजनीति में अंधे थे, इसलिए इनको नहीं दिख रहा था। अब मैं बात बिल्कुल काफिला कम करना चाहिए, हमारे लोग तो काफिला कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप है, इनने क्यों नहीं किया। और मैंने कल अंजना जी का शो देखा, अंजना जी के शो के हिसाब से 31 करोड़ जो है टू व्हीलर्स है, अगर 15 से 20 लीटर अगर एक महीने के अंदर खपत होती है, अगर 5 लीटर ही बंद हो जाएगा तो 155 करोड़ पेट्रोल और डीजल बन जाएगा, इससे किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला।
0: चलिए, बहुत जबरदस्त आपने जवाब दिया है। अब जो उस बच्ची का जवाब सवाल था उसको जोड़ते हुए एक मिनट का आपका रिबटल राउंड में टाइम शुरू होता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब
2: अभी यहाँ बच्चों से पूछा गया कि तुम सोना खरीदोगे प्रायोरिटी में या शेयर। भैया पहले विश्व गुरु जी बच्चों का एक परीक्षा एनआईटी बिना पर्चा लीक की हुए तो करा दो, नीट की। सालों साल जब से बीजेपी आई है तब से पर्चे लीक हो रहे हैं। सारे पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? कहेंगे हम विश्व गुरु हैं, एक पर्चा ठीक से कंप्लीट नहीं करा सकते, इम्तिहान कंप्लीट नहीं करा सकते। मोदी जी दूसरों से या देश से कह रहे हैं कि बचत करो। मोदी जी वादा करें कि अब आज के बाद एक साल तक वो रैली नहीं करेंगे, एक साल तक जिले के बाहर जाके रैली नहीं करेंगे। आप लोग पता कर लीजिए, एक सीएम और एक पीएम की अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारा राज्य है, क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर के कोई रैली करते हैं तो कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। एक प्रधानमंत्री की के दिल्ली के बाहर की रैली 10 करोड़ से 60 करोड़।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: विदेश यात्रा कब बंद करेंगे?
2: ये छोड़ो, मोदी जी तो विदेश यात्रा जी बोलते हैं कि विदेश चले जाओ, तो मोदी जी अडानी जी के आदेश पे विदेश चले जाते हैं। अभी अडानी जी को पेनाल्टी भरनी है, अडानी जी को डॉलर में पेनाल्टी भरनी है, मोदी जी कैसे कहलाते हैं वो डॉलर में पेनाल्टी भरे?
3: रैली का समर्थन करेंगे
2: जी, 18 मिलियन डॉलर
3: देश के अंदर अखिलेश यादव डॉलर
2: मोदी जी पेनाल्टी भरेंगे, वो हम पेनाल्टी डॉलर में क्यों भरने जा रहे हैं?
3: जाना बंद करो,
2: किसने कहा कहां से ये पैसा आएगा?
0: कुछ पूछ रहे हैं
4: आप लोग एक एक करके अगर बोलेंगे तो हमें भी समझ में आएगा।
3: उसके बाद ये घुमा के बात कर रहे थे, टॉपिक पर तो बात करेंगे।
4: अरे इसे लोकसभा मत बना दीजिए, ये अंजना जी का प्रोग्राम है, यहाँ सुनना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें भी।
0: चलिए, कोई आप दोनों अपनी जगह जा सकते हैं बटल राउंड का। जल्दी जल्दी दुबे जी और माधव आनंद जाइए। जबरदस्त भाई, ये दोनों टीम लीडर्स तो आज एकदम पानी में आग लगा रहे हैं। आइए, एक मिनट का बटल राउंड में माधव आनंद जी, आपका बोलने का समय शुरू होता है अब।
5: मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत हो यह हम लोगों की मंशा जरूर होती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष के पास भी रहती है। विपक्ष अगर सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो यही कारण है कि आज जो विपक्ष की स्थिति है, चाहे पूरे भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं तो क्या स्थिति है हम सबको पता है। जब राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जब राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होने की बात होती है, तो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए राजनीतिक विरोध को जो है सो भूल जाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में सबको सम्मिलित होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो पूरा जीवन ही समर्पित है जो है सो राष्ट्रभक्ति के लिए, उन पर एक जो है सो दाग नहीं लग सकता। जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में, उसी तरह प्रधानमंत्री जो है सो यहाँ जो है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो अपील की है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा बचत करना स्टार्ट कर देंगे, जब हमारे पास डॉलर का पर्याप्त मात्रा में भंडार रहेगा, जब फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, तो स्वाभाविक है हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। तो थोड़े दिन की बात है, एक साल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के निर्माण के योगदान में सबका योगदान हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: मिठास का भी कुछ मार्क्स रखे हैं क्या आप लोग? उसमें इनको काफी मिल जाएगा, एकदम चाशनी में डुबो कर जो आपने अपनी बातें कही है ना।
4: माधव आनंद जी विजेता होंगे अगर मिठास के लिए
0: मिठास के लिए अगर नंबर होता।
4: हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं।

0: हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं। दुबे जी मुझे देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कौन सा शायरी इसमें फिट बैठेगी। चलिए बोलते हैं, एक मिनट का समय आपका शुरू होता है अब।
1: अंजना जी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हमें क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई, हमें क्यों खलनायक बना रहे हो? हमारे नेता जब मेट्रो से चल रहे हैं, हमारे नेता जब पैदल चल रहे हैं, हमारे नेता जब कार पूलिंग कर रहे हैं, हमारे नेता जब खुद जाकर अपने घर में माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं कि देश संकट में है, हमको सबको साथ रहना, इस पर कोई चर्चा नहीं। केवल खलनायक बना दो विपक्ष को। मोदी जी ने कहा है बचत करना है और विपक्ष कह रहा है बचत नहीं करना है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपनी सांसों को लुटा देंगे इस देश पर। हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। दुख तब होता है ना, नहीं सुनिए, हंसिए मत। दुख तो तब होता है प्रदीप भंडारी जी कि जब नहीं, इनकी बात है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, ये हमको बता रहे हैं बवाली। अरे इनके आंसू देश के लिए घड़ियाली।
0: जबरदस्त, आप दोनों अपनी जगह पर। माइक
2: कौन सा नेता गया?
1: आज कार पुलिंग से आए हैं, सत्य प्रकाश जी गवाह हैं। आज
0: माइक लेके
3: उद्धव ठाकरे गए कार पुलिंग में, दिखाना जरा फोटो दिखाओ, आनंद दुबे की फोटो दिखाओ। नहीं है भैया, झूठे आदमी। आनंद भाई की कहीं नहीं है।
1: मेट्रो में, भीड़ में और खड़े होकर सफर।
3: कार पुलिंग दिखाओ, कल और आज में कौन सी कार पुलिंग करी? परसों नहीं दिखाओ। उद्धव ठाकरे ने कोई कार पुलिंग नहीं की। अखिलेश यादव ने
1: जीवन में काफिला नहीं किया। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला।
3: दिखाओ
1: मेरी तस्वीर,
3: पुरानी तस्वीर।
1: एक मिनट मेरे बच्चों, पुराना नहीं, मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे हूँ, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता।
0: दुबे जी
3: दिखाओ
1: मेरी तस्वीर, मेरे बच्चों, पुराना नहीं, मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे हूँ, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता।
0: दुबे जी बैठे दीजिए। दुबे
1: सर, फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।
3: दुबे जी, ताली पलटने वाले हैं, सब इधर चलेगा उधर नहीं चलने वाला है।
0: चलिए रिबटल राउंड में आपका एक मिनट का समय बोलने का विषय पर सत्य प्रकाश मिश्रा जी शुरू होता है अब।
4: वो बोल गए मैथिली शरण गुप्त की कविता, कुछ छंद पहले भी पढ़ लेते, जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। राष्ट्रीय बचत पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भरी अपील वैश्विक संकट को देखकर है। प्रधानमंत्री जी ने अगर संभावित चीजें देखी हैं और राष्ट्र से थोड़ी सी अपील कर दी, इतना दर्द उठेगा विपक्ष में, इसका अंदाजा नहीं था। मत करिए आप बचत, खरीदिए सोना, मोहल्ले में जब आग लगी हो घर फूंक तमाशा, देखिए आप, खूब जाइए विदेश यात्रा पर, मत करिए जैविक खेती, मत करिए वर्क फ्रॉम होम, देश आपके साथ है नहीं। नकारे गए लोग हैं हर राज्य से, अभी चुनाव कर रहे थे, हार के लौटे हैं। सवाल इस बात का है कि राष्ट्र उसको याद करेगा जिसने संकट के घड़ी में राष्ट्र का साथ दिया। और ये देश ईरान के संकट में डोनेशन करने चला था, जब वैश्विक संकट आया है कि अपने देश के लिए बचत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का ये अपील राष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री है, अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: अब घड़ी समय शुरू होता है अब।
5: ये आज से नहीं, पहले से ही कहते हैं ना, पहले जेब से खर्च चलता था, अब खर्च से जेब चलती है। महंगाई ऐसी बढ़ी कि सांस लेना भी किस्तों जैसी लगती है। ये आज से नहीं हो रहा है, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये बार बार कह रहे थे, इनका एक ही मकसद होता है, विपक्ष को कोसना, विपक्ष को टारगेट करना। अभी नीट का पर्चा जैसे मेरे साथी ने बोला लीक हुआ, अब बताइए जब वहां पे 21 जून की डेट आई है, क्या दोबारा से खर्चे नहीं बढ़ेंगे? क्या डीजल पेट्रोल खर्चा नहीं होगा? फिर वही सेंटर पड़ेंगे, फिर लोग जाएंगे, फिर टीचर आएंगे, फिर इन्वेस्टर जाएंगे, फिर वही व्यवस्था होगी, क्या उसमें खर्चा नहीं आएगा? आपकी गलती की वजह से खर्चे का बोझ आम जनता सहती है। और ज्ञान आप आम जनता को और विपक्ष को देना चाहते हैं। विपक्ष आपको आईना दिखाता है बस, और आपको बताता है कि ये गलती हो रही है, इसको सुधारिए। आप सुधारते नहीं है, फिर जब हम आपको टोकते हैं तो फिर आप विपक्ष पे हावी हो जाते हो कि विपक्ष राष्ट्र के साथ नहीं है। विपक्ष तो राष्ट्र के साथ है, विपक्ष जनता के साथ है, आप धन्ना सेठों के साथ हैं। हम तो जनता की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात करते हैं। किसान के साथ आप खड़े नहीं खड़े पहले ये बता दीजिए। किसान की तो बात करना ही नहीं चाहते, किसान के लिए बताइए क्या क्या सुविधाएं आपने दी, वो देना नहीं चाहते।
0: लेकिन
5: बचत किसान करे, किसान के पास बची नहीं रही
0: नहीं
5: आपका किसान
0: देखिए ना,
5: किसान तो बचत हो ही नहीं रही, किसान बेचारा बचाएगा क्या? हिंदुस्तान की आदत करेक्टर में हिंदुस्तान के अंदर बचत, हर महिला अपने घर में बचत करती है, हर व्यक्ति अपने घर में बचत करता है।
0: बचत कहने से नहीं जा रहा कि हो गया, टाइम खत्म हो गया,
5: हो जाने दीजिए।
6: तो फिर
0: टाइम के लिए बोला
6: था
0: तुमने
6: थोड़ा,
0: पर दर्द रस में आपने जो आज शायरी की है बड़ी अच्छी थी।
5: हाँ, दर्द रस का
0: दर्द भाव होता है ना भाई, कविता का रस का। आइए बैठिए, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए।
5: किस्तों में
0: सांस किस्तों में लेनी पड़ रही है, अच्छी लिख लेते हैं आप कभी कभी गलती से। बैठिए,
5: कभी कभी नहीं, मैं लिखता हूँ लेकिन आप मार्क्स नहीं देते तो हम क्या करें।
0: अब जजेस आपस में बात कर रहे हैं, वो ये तय करेंगे कि इन छह वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन होगा। जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, मतलब जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आपको अपना गमछा बदलना है तो आपको हम मौका दे रहे हैं, अभी आप अपना गमछा बदल सकते हैं। देखो ये बुला रहे हैं इधर से वाले, सफेद गमछे वाला एक जा रहा है, उधर जा रहा है। इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। नीले गमछे वाला एक आया है, लाल गमछे वाले भी जा रहे हैं, एक सफेद गमछे वाले इधर भी जा रहे हैं। चलिए इधर भी दो लोग आए हैं, ये लाल वाले भी खुश हो रहे हैं, लाल वाले भी खुश हो रहे हैं। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया, हाथ उठाइए। कितने नहीं, आपको नहीं उठाना है, जिन्होंने बदल कर लिया है, बदल कर लिया है। एक इधर है, दो इधर है और इधर तीन है। चलिए अब हम लोग वोटिंग शुरू करते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप QR कोड स्कैन करके आप भी इस सवाल पर अपने जवाब पर देखिए, आज का प्रश्न क्या है, क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है? अगर आप मानते हैं हाँ, ये बचत मंत्र अगर हम फॉलो करेंगे तो देश को हम इस मुश्किल स्थिति से उबार लेंगे, तो आप हाँ पर वोट करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि सरकार की नाकामी से ये हुआ है तो आप नहीं पर वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वालों को तो अपनी स्वेच्छा से कह नहीं सकते, पर वोट डाल ही सकते हैं। वोटिंग लाइन्स अब हम शुरू करें, और यहां पर जितने लोग हैं आप भी QR कोड स्कैन करके, वोटिंग का टाइम शुरू हो रहा है। सवाल आपके सामने है, आप अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? अब गमछा तो कई लोग नीला ले रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो जीत रही है, प्रदीप भंडारी की टीम 63% मार्क्स के साथ। अरे आप लोग चुप होने का क्या लेंगे, मैं अपने बचत का पैसा आप लोगों को दे दूंगी, थोड़ा सा चुप रहिए। 58% लोग कह रहे हैं हाँ बचत मंत्र जरूरी है, वहीं 34% कह रहे हैं नहीं, 8% कह रहे हैं नहीं कह सकते यहाँ पर। वैसे सफेद गमछे वाले काफी कम बचे हैं तो ये ठीक लग रहा है, जस्टिफाइड दिख रहा है। लेकिन अब 56% हो गया है हाँ कहने वाले, आखिरी के 15 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। और अब 56% 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं, नहीं कहने वाले 35% हैं, कह नहीं सकते वाले 9% हैं, और 56% 55% 37, और इसी के साथ समय समाप्त हुआ और टीम भंडारी जीत गई है 53% के साथ। तो 53% के साथ चलिए शो के भी अंत होते होते राष्ट्रवाद का पूरा तड़का यहाँ पर लग गया है, लेकिन सवाल यही है जो हमने आपसे पूछा था। और फिलहाल टीम भंडारी जीती है, यानी क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? यहां पर मौजूद ऑडियंस ये मानती है हाँ ये बचत मंत्र जरूरी है। और अब बारी है हमारे तीनों जजेस की, जो ये बताएंगे कि आज इन छह, अरे इधर भी देखिए, छह वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन है?
7: आज का बाजीगर जो है वो सर्वसम्मति से चुना गया है।
0: अच्छा जी, ये बहुत कम होता है,
7: एक ही विचार,
8: एब्सोल्यूट यूनैनिमिटी।
0: अच्छा,
7: और मुझे लगा कि आप लोग खास करके जो टीम अनुराग भदौरिया साहब अखिलेश जी की थी, उन्होंने कहा कि रैलियां रोक दी जाएं, आज मैंने साक्षात यहां पर रैली होते हुए देखी है। जिस तरह से इन्होंने उठ उठकर समर्थन मांगा है, पर खैर आक्रामकता और प्रभावशाली होने के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है। आज सबों ने अच्छा बोला,
0: बहुत अच्छा।
7: मैं समझता हूँ अखिलेश जी की टीम के साथ एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कैसे आप कहें कि जरूरी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अच्छा खेला। आज बिल्कुल सधे हुए अंदाज में, बिना आक्रामक हुए, पर नाप तौलकर और मोशन के कील के बिल्कुल निकट रहकर जिन्होंने अपने दोनों राउंड किए, वो सत्यप्रकाश मिश्र जी हैं।
0: वाह वाह वाह,
7: आज के बहसबाजी।
0: वाह वाह वाह, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मिश्रा जी ने कमाल कर दिया है। मिश्रा जी ने बोला और मिश्रा जी रास में इतना भावुक हो गए कि नारे भी लगवाने लगे। तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता को दिखा दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहसबाजी कर में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
10: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप। यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो व्हेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। मैकडॉनल्ड्स, लिमिटेड टाइम ओनली, प्राइस एंड पार्टिसिपेशन मे वेरी, कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर ऑफर और कॉम्बो मील।
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: बहुत टायर्ड हो गई।
16: Take it, take a date, not bites.
17: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
16: लायन डेट नट बाइट्स।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
3: हमारे सीमेंट में नहीं है।
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
9: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
10: हिंट
11: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: Director, the taste of success.
8: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं गया।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
10: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
11: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
12: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
10: शुभेंदु अधिकारी,
9: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
13: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
14: अनुपम मिश्र,
15: मोहित भारद्वाज,
16: पीयूष मिश्रा,
17: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
2: मैं भूपेंद्र सिंह की शपथ लेता हूं।
3: मैं मनोज कुमार पांडे
4: लेता हूँ। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
5: मैं भारत की
6: दस मई को शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद 8 दिन बीत गए। यूपी सरकार के नए मंत्री अब भी बिना विभाग के टहल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को जगह मिली। दो पुराने चेहरों को प्रमोशन मिला, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह। लेकिन ये सब अभी इंतजार में पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आए। योगी सरकार 2.0 के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शोर तो खूब हुआ, लेकिन अब वही विस्तार सत्ता के गलियारों में एक लंबी खामोशी बनता जा रहा। मंत्री हैं, लेकिन मंत्रालय बंटा रहे। कुर्सियां हैं, पर जिम्मेदारी नदार। दिलचस्प ये कि जिन चेहरों पर सरकार ने ताकत का प्रतीक बनाकर पेश किया, वो आज फाइलों से ज्यादा इंतजार की राजनीति में फंसे नजर आते हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्रालय के बंटवारे की देरी की असली वजह ये कि ये कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकराने लगे। अखिलेश यादव के तंज का जवाब योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर देते हैं। लिखते हैं कि सपा प्रमुख में सत्ता पाने की इतनी अधिक लालसा है कि वो घर में शोक होने पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नसीहत राजभर देते हैं कि कम से कम भाई की 13वीं तक तो रुक जाते, इसके बाद राजनीति कर लेते। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पुराने दिनों की याद भी दिलाई।
7: जिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिताजी मंत्री बदला करते थे, चाचा जी चीफ सेक्रेटरी बदला करते थे, ताऊ जी अधिकारियों को बदला करते थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। एक्स पे पोस्ट करके सोचते हैं राजनीति हो गई। अखिलेश जी, राजनीति सेवा का कर्म है, निकलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। और परिवारवादी पार्टियों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्हें संगठन की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, बिना पता हुए कुछ न कुछ बोल देना ही वो राजनीति समझते हैं।
6: हालांकि सूत्र कहते हैं मंत्रालय के बंटवारे की संभावना अगले 24 घंटे में बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, ऊर्जा मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली तक दौरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हो या फिर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की बंद कमरे वाली बातचीत, हर मुलाकात यही बताती है मामला सिर्फ विभाग आवंटन का नहीं, सत्ता के भीतर संतुलन और संदेश तय करने का भी है। इस बीच विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है। जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन ध्यान दिया गया ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन अब विभाग के बंटवारे में होती देरी सवाल बढ़ा देती है। आखिर यूपी में इस देरी की वजह क्या है? क्या देरी अंदरूनी असहमति की वजह से हो रही, या फिर बीजेपी सत्ता के शतरंज पर मोहरे सोच समझ कर बिछाने में लगी है ताकि विपक्ष के हर फॉर्मूले की काट निकाली जा सके। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

नीदरलैंड्स के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एआई पर बड़े समझौतों की उम्मीद, गोथेनबर्ग में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद। यूपी में शपथ के 8 दिन बाद भी सभी 6 मंत्री मंत्रालय विहीन, अभी तक नहीं हो सका विभागों का बंटवारा, विपक्ष ने लगाए खींचतान के आरोप, विस्तार के बाद कल पहली कैबिनेट।

से लगाएंगे 24 अतिरिक्त फेरे। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटों। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा।

नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने ही अवैध निर्माण हटाने का ढहाने का आदेश दे दिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से, जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में एक बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं, देखिए।
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर गहा दिए।
4: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जाए।
3: कहाँ तक दिया गया?
4: ये आगे आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है, इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
4: दिया गया। जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपने मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले एक्टिंग एक्टिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
8: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
3: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराए गए?
8: जी जी।
3: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराए जा
8: रहे हैं? नहीं नहीं, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
3: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
8: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
9: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
10: अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम कराते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
10: पानी बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे। सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
9: बाद पश्चिम बंगाल की हावड़ा में नई बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बीती रात हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले जो दुकानदार हैं वहां दुकानों पर बुलडोजर। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किया हुआ था, व्यवसाय कर रहे थे। दुकानदारों को हटाने के लिए अभियान जो है यहाँ चलाया गया कि अपने यहाँ से ये अवैध दुकानें हटाए जाए। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हापड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली करा। दशमेंद्र सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां भी अभियान चलाया जाएगा।
11: देखिए बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है कि इस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
9: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत कहा है। जमीयत उलेमा हिंद की कार्य समिति के दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा है, मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार किया जा रहा है।
12: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कॉम्प्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा, जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
9: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद माहौल बदला सा लग रहा है। एक तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ कोलकाता में नाखुदा मस्जिद के मौलाना ने मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
13: और हम सरकार से अपील करते हैं कि गाय को नेशनल जानवर का दर्जा दीजिए और इसका मुकम्मल खरीद फरोख, जो इसको जबा करके हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है, उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और ये खास करके यूपी में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस है जिसका 99% मालिक हिंदू भाई है।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की कटौती करने की अपील के बाद से देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने अहम फैसला लिया है और तय किया है कि 18 मई से दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेनों के 24 अधिक फेरे रोजाना लगेंगे। इसके लिए सोमवार से 6 अधिक मेट्रो ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया और मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की उससे अपील के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने तेल की खपत कम करने के लिए देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल डीजल बचाएं, ज्यादा से ज्यादा आप सार्वजनिक परिवहन का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, उसके लिए प्रेरित किया। अब इसी मकसद से मेट्रो ने यह फैसला लिया है। और अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने तेल की खपत को लेकर क्या अपील की थी, जिसके बाद यह इंपैक्ट दिख रहा है।
14: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
9: अब महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटके की खबर है। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी की दर में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। 15 मई को सीएनजी के भाव में 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई थी और अब आज 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी और महंगी हो गई है। तो पहले 87.70 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे और अब पैसा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 80 रुपए से ज्यादा का खर्च अब हो रहा है। पहले 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया था और आज आते आते 1 रुपया इसमें और वृद्धि कर दी गई है। एक तरफ सीएनजी की दरें महंगी हुई है तो दूसरी तरफ तेल की कीमतों में इजाफे के बाद से देश के अलग अलग शहरों में अभी भी संकट बरकरार है। महाराष्ट्र के वाशिम में तो पेट्रोल पंप पर बवाल हो गया, ग्राहकों के बीच में भिड़ंती हो गई, ग्राहक एक दूसरे पर प्लास्टिक के कैन से हमला करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े कैन लेकर पहुंच गए। पंप पर डीजल से भरा हुआ टैंकर खाली किया जा रहा था, तभी अचानक कुछ लोग आपस में भिड़ गए, कतार में नंबर के लिए वहां हाथापाई हो गए। बात बिहार की। बिहार के सारण जिले के दरियापुर प्रखंड स्थित मस्तिचक पहुंचकर गौतम अडानी ने राज्य के स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं और अडानी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 3 से 4 वर्षों में बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ तक का निवेश करना है। उन्होंने सारण में मस्तिचक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल अडानी सेंटर फॉर आई डिजीज का उद्घाटन किया। गौतम अडानी ने बिहार में 150 करोड़ रुपए की ग्रामीण दृष्टि देखभाल पहल शुरू की जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 33 लाख सर्जरी करना है और राष्ट्रव्यापी विस्तार के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया है।

0: हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की बड़ी वारदात हुई जिसमें कार सवार शख्स को 30 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सभी शूटर्स कार से आए थे और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा की तरफ से लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि हत्या का बदला लिया गया है। इस हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। 15 मई को इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि सफेद कार में दो लोग बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी सामने आलसी शूटर्स की कार तेज रफ्तार से आती है और सफेद कार के सामने ब्रेक मारकर खड़े हो जाते हैं। शूटर्स कार से निकलते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। कार से चार शूटर्स निकलते हैं, गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। शूटर्स कार में बैठकर थोड़े आगे जाते हैं और फिर दोबारा कार से उतरते हैं और फिर कार सवार पर दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब एक खबर पंजाब होशियारपुर से, जहां पर एक कैदी पुलिस वाले से भिड़ गया और कैदी ने पुलिसकर्मी पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी और इसमें कैदी की जान चली गई, मौत हो गई। कैदी को मेडिकल करवाने के लिए पुलिसकर्मी ने उसे लेकर गए और लौटते समय कैदी ने हमला बोल दिया। बदले में पुलिसकर्मी ने गोली चलाई अपनी जान बचाने के लिए और उसमें कैदी की मौत हो गई।
1: नसीब सिंह ए भजन की कोशिश की, हथकड़ी नु बंधी हुई सी एंड वी आर वेरीफाइंग। जो इन्हें भजन की कोशिश की तो साढ़े को एक वैपन भी सीगा, शार्पेस्ट वैपन, वो कितों इन्हें लिया वो असी इनकुआयर करते हैं, बिकॉज हूँ ये जेल तो बाहर सीगा, कितने इन्हें लिफ्ट किया है, किसी ने यदि मदद की कुछ होया, वो वी विल इनवैसटीगेट। तो उस नाइफ के नाल इन्हें साढ़े पुलिस परसनल से सीनियर कॉन्स्टेबल जसदीप सिंह से मल्टीपल अटैक किए।
0: शंखनाथ में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime is what I got and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: तो देते हिंट
6: बड़े आराम से।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
7: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
18: Character, the taste of success.
19: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
20: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
21: लायन डेट नट बाइट्स।
22: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है।
6: और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

पांच देशों के दौरे में स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत। गोथेनबर्ग में भारतीय प्रवासियों के साथ करेंगे संवाद। दिन में नीदरलैंड्स में 17 समझौतों पर हुई मोहर। यूपी में मंत्रालय विस्तार के बाद कल पहली कैबिनेट बैठक, सीएम योगी के घर मीटिंग, लेकिन शपथ के 8 दिन बाद भी 6 नए मंत्रियों को नहीं मिला विभाग। पीएम की अपील पर एक्शन में दिल्ली सरकार, ईंधन बचाने के लिए अधिकतम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। मेट्रो की 6 नई ट्रेनें कल से लगाएंगे 24 अतिरिक्त फेरे। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन सीबीआई हिरासत में भेजा।

जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 3 किरदार सबसे अहम हैं। 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और तीसरी वो जो दोनों से जुड़े हुए थे, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने के साजिश में लगी हुई थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप।

0: जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे जो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे जो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
1: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
1: क्या एनडीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
2: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में जो कि करीब एक हफ्ता पहले है, नीट परीक्षा के पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के बहाने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, लिखा, नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? और विशेष में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
1: Thank God I get to wait.
0: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
3: It's my music and it's my station.
2: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
5: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
19: In association with
20: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
21: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
3: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है,
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
10: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: धार की भोशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद ASI ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई। परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहाँ मिली उनका क्या ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।

पांच देशों के दौरे में स्वीडन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। गोथेनबर्ग में भारतीय प्रवासियों के साथ करेंगे संवाद। दिन में नीदरलैंड से 17 समझौतों पर मुहर। यूपी में मंत्रालय विस्तार के बाद कल पहली कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी के घर मीटिंग, लेकिन शपथ के 8 दिन बाद भी 6 नए मंत्रियों को नहीं मिला विभाग।

छह नई ट्रेनें कल से लगाएंगे 24 अतिरिक्त फेरे। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 6 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंचे दिल्ली एम्स की टीम।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। युद्ध ईरान और अमेरिका का, जिससे निकली महंगाई की तपिश दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत तक असर दिखा रहे हैं। रोज नया हमला किसी न किसी मोर्चे पर हो रहा है। चुनावी इम्तिहान में ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट से विजय हासिल करने वाले प्रधानमंत्री के सामने अब वो लड़ाई है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश डगमगा रहे हैं। और तब प्रधानमंत्री मोदी बचत की ढाल लेकर 140 करोड़ देशवासियों को अपना सैनिक मानकर महंगाई के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए उतर चुके हैं।
1: पश्चिम बंगाल विजय के साथ देश के 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए के शासनकाल का इतिहास नरेंद्र मोदी रचते हैं। लेकिन चुनाव की इसी ऐतिहासिक विजय के चंद दिनों के भीतर प्रधानमंत्री अचानक सावधान करने लगे।
2: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूतला नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे।
1: गुजरात से दिल्ली नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद 12 साल के शासनकाल में जब बीजेपी का भगवा रंग सबसे ज्यादा राज्यों तक जनता के बीच विश्वास का प्रतीक बनकर फैल चुका है, जब जनता के विश्वास पथ पर सबसे आगे नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है, तब क्या वैश्विक संकट ने नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी? क्योंकि कहां तो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य तीसरी अर्थव्यवस्था देश को बनाने का रखा।
2: अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई,
1: और कहां तो अब चुनौतियों का चक्रव्यूह घेरने लगा है।
2: आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है।
1: 11 महीने पहले प्रधानमंत्री तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी है तो मुमकिन है वाला भरोसा देश को देते दिखे।
2: साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़कर के हम आगे निकल गए। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई इसने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है।
1: लेकिन जब देश अर्थव्यवस्था की उसी रफ्तार को मुमकिन करने के रास्ते पर बढ़ता है, तब हालात ये बन जाते हैं कि पहले देश में सिलेंडर की महंगाई, फिर दूध के दाम बढ़ जाना, इसके बाद पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ते जाना, और तीसरी इकॉनमी बनाने का टारगेट सेट करते प्रधानमंत्री को आपदाओं के दशक की हकीकत बतानी पड़ती है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है।
1: क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी डगर पर चलना शुरू किया जहां सुरक्षा के लिए जरूरी 20 गाड़ियों के काफिले को 90% तक घटा दिया, केवल 2 गाड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल पड़े, ये भरोसा देने के लिए कि अगर प्रधानमंत्री दुनिया भर पर छाए संकट की आग से 140 करोड़ भारतीयों को बचाने के लिए खुद तेल की बचत की राह पर चल सकते हैं, तो हर नागरिक क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ये लकीर इसलिए खींचते हैं क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, वो अग्नि परीक्षा जहां 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य पथ से डगमगाने नहीं देना है।
2: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज।
1: वो अग्नि परीक्षा जहां एक दशक के हासिल को हॉर्मूज की आग में झुलसने नहीं देना है।
2: हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है।
1: लेकिन जो कुछ देश ने भविष्य के लिए पाया है वो सब कुछ अब विश्व के आसमान पर छाए युद्ध के काले धुएं में गुम हो सकता है, पिछड़ सकता है, धुंधला हो सकता है।
2: हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें खुद इस युद्ध के सेनापति बनकर देश के हर नागरिक, हर परिवार को सिपाही माना गया और बचत को हथियार। बचत गाड़ी के तेल की, बचत खाने के तेल की, बचना सोना खरीदने से, बचत विदेश यात्रा से, बचना रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल करने से, ताकि विदेश से आयात की जाने वाली चीजों पर खर्च कम किया जा सके, विदेशी मुद्रा भंडार घटने से रोका जा सके। जहां आम आदमी की मिलीजुली प्रतिक्रिया देश के सामने आई।
4: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी तो सामान का पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता है तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप एक रुपया बढ़ाएंगे तो वो तीन रुपये बढ़ाएंगे।
5: बिल्कुल तो। हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
6: हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, वो तो हम सबको ही पता है। जो बाकी कमोडिटीज है उन पे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं,
7: घर के राशन से लेके सब्जियां तक,
6: एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे इम्पैक्ट नहीं आएगा।
8: बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा।
9: तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है।
8: हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया है।
10: महंगाई की फुल मार रहेगी, देखिए अभी तो बड़ा लोगों में वो माहौल है कि आगे चल के कोई और ना समस्या आ जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऊपर से रेट बढ़ रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैम।
11: इससे तो बहुत असर पड़ेगा जी, असी तो फार्मिंग कर रहे हैं, साढ़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जी।
1: तेल भराना और चलना बहुत से लोगों की मजबूरी है, लेकिन सोने की खरीद को लेकर देश के नागरिकों ने बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री को दिया है। लोकल सर्किल्स के 295 जिलों के 84,000 लोगों के बीच हुए सर्वे में तीन अहम बात सामने आई। 61% लोगों ने कहा कि एक साल तक सोना खरीदने से पूरी तरह बचेंगे, 28% ने माना कि वो सोने की खरीद में कमी लाएंगे, 8% ने कहा कि निवेश के रूप में सोने की खरीद जारी रखेंगे। अब सवाल है कि महंगाई के विरुद्ध नरेंद्र मोदी के इस युद्ध में इसी तरह का साथ क्या तब भी लोगों का जारी रहेगा, जब अभी हॉर्मूज बंदी का पक्का इलाज दिख नहीं रहा, जब साफ नहीं कि ईरान युद्ध की आग कब तक धधकती रहेगी, जब आशंका है कि एक बार फिर लड़ाई छिड़ सकती है।
0: भारत में महंगाई के नए तूफान की आशंका के पीछे वो युद्ध है जो कभी भी दोबारा भड़क सकता है। अमेरिका और ईरान भले ही अभी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की डबल नाकेबंदी दुनिया की सांस फुला रही है। ईरान और अमेरिका ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर रखा है, उससे कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार बने हुए हैं। इसने भारत जैसे दूसरे सबसे बड़े तेल आयातक देशों का सारा हिसाब किताब बिगाड़ कर रख दिया है, और बंद होर्मुज के बीच से विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने की चुनौती का सामना करने नरेंद्र मोदी उतरे हैं।
2: जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि देशवासियों को आगे आकर मदद करनी ही होगी तो इसकी वजह जंग की यह आग है जिसके नए सिरे से भड़कने का डर है। आग का ये गोला इजराइल के यरूशलम के पास बसे बेत शेमेश शहर के पास देखा। शनिवार रात को इस जोरदार धमाके ने इसराइल के लोगों को डरा दिया। यरूशलम में मशरूम बादल दिखाई दिए जो परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने के बाद बनते हैं। इसके बाद सवाल उठने लगा क्या इसराइल ने परमाणु हथियारों का कोई परीक्षण किया है। इस सवाल का जवाब इसराइल की सेना के लिए रॉकेट और मिसाइल के इंजन बनाने वाली सरकारी टोमर कंपनी ने दिया जिसने अपने बयान में कहा कि यह धमाका एक पहले से तय परीक्षण था जिसे योजना के अनुसार अंजाम दिया गया। तो भले ही इसराइल ने परमाणु परीक्षण नहीं किया हो लेकिन इससे युद्ध की तैयारी करते इसराइल की खबर जरूर लगती है जो आशंका है कि अमेरिका के साथ मिलकर बहुत जल्द नए हमले ईरान पर कर सकता है। इसका पुख्ता संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप देते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये AI इमेज शेयर की जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखी टोपी पहने हुए हैं। उनके साथ एक अमेरिकी नौसेना के एडमिरल खड़े हैं। फोटो में दोनों समुद्र के बीच एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर खड़े दिखते हैं। दोनों के पीछे से बिजली की चमक दिखती है। इसके पीछे कुछ ईरानी जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इस फोटो को शेयर करते हुए ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को तूफान से पहले की शांति करार दिया है। अब ट्रंप की इस धमकी के कई मायने लगाए जा रहे हैं। चीन के दौरे पर गए ट्रंप को उम्मीद थी कि जिनपिंग से कुछ मदद मिलेगी। इसे लेकर चीन के दौरे में ट्रंप ने लंबे चौड़े दावे भी किए।
12: President Xi would like to see a deal, man. He would like to see a deal, man. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
13: Because, he did say that.
12: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
1: ट्रंप ने ये भी कह दिया कि अमेरिका की तरह चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। मतलब ईरान को लेकर कई मामलों पर चीन अमेरिका से सहमत है।
12: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: Lekin. चीन की तरफ से ट्रंप के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई। चीन की खामोशी ने दुनिया को बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया क्या जिनपिंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव डालने का कोई आश्वासन दिया, इस पर ट्रंप ने जो जवाब दिया उससे अंदाजा होता है कि जिनपिंग की तरफ से ऐसा करने का कोई ठोस संकेत नहीं दिया गया। ईरान पर जिनपिंग की तरफ से कोई ठोस भरोसा नहीं मिलने के बाद ट्रंप अब एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बमबारी कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध विराम के बाद रोके गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को नए स्वरूप में लॉन्च करने की तैयारी की है जिसमें सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले और इस्फहान परमाणु ठिकाने पर विशेष बल भेजना शामिल है। एपिक फ्यूरी 2.0 के लिए अमेरिका और इसराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों सेनाएं अगले ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं।
0: ईरान को धमकाने या फिर नए सिरे से उस पर हमले अमेरिका को भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ईरान का रवैया और कड़ा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूस खुलने की संभावना और कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी हमले से वो दुनिया भर की ऊर्जा जरूरत के लिए जरूरी इस रास्ते को पहले से कहीं ज्यादा ताकत से बंद कर देगा। इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में फिर नए सिरे से सोचेगा।
1: ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि ईरान जल्द ही हॉर्मुज मार्ग में जहाजों की आवाजाही का नया रूट जारी करेगा, जिससे केवल कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। इसके बदले सेवाओं के लिए जरूरी फीस भी वसूली जाएगी। ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका और इसराइल के जहाजों को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा।
13: Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all commercial vessels.
1: शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो कुछ किया वो बताता है कि चाहे जो हो जाए वो झुकेगा नहीं। शनिवार को ही यूएई के एक जहाज को जब्त कर ईरान ले गया। वहीं ओमान के तट पर एक भारतीय जहाज हमले के बाद डूब गया, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी को कामयाब बताते हुए दावा किया कि 16 मई तक उसने 78 कमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान अमेरिका में बड़ा साइबर हमला हुआ। सैकड़ों गैस स्टेशन के सिस्टम में शनिवार को सेंध हैकर्स ने लगाई। हैकर्स ने टैंकों के डिस्प्ले रीडिंग से छेड़खानी की। अमेरिकी एजेंसियों ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया। इधर शुक्रवार को इसराइल ने हमास के एक बड़े कमांडर को मार गिराया। इस हमले से सीज फायर पर चौतरफा सवाल पैदा हो गए। इस तरह सीज फायर के बीच अचानक पिछले एक दो दिन में जो कुछ हुआ है वो दुनिया और भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं देते। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बचत के कवच को मजबूत करने की ही अपील की जा रही है।
0: आम आदमी की जिंदगी की रोज की 60% चीजें जिन पर वो पैसा खर्च करता है उनका सीधा संबंध पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस से जुड़ा होता है। और तब युद्ध के 76वें दिन जब पेट्रोलियम कंपनीज ने 3 रुपए से कुछ ज्यादा प्रति लीटर कीमत बढ़ाई, तब तक जनता इस संकट को समझ चुकी थी। इसीलिए कहीं सवाल ज्यादा नहीं दिखाई दिए, लेकिन यह जरूर दिखा कि क्या भविष्य में भी तेल की महंगाई से आम आदमी की रक्षा का फर्ज सरकार निभा पाएगी।
10: की फुल मार रहेगी। देखिए
4: जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपया बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपये बढ़ाएंगे।
14: आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे।
15: वेतन बढ़ रही है, रेट बढ़ी जा रहे हैं।
16: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे
17: खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
18: हो सकता है मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पे आ जाए।
1: ईरान युद्ध के पहले 2 महीने में जब दुनिया भर में दाम बढ़ते रहे, तब तो नरेंद्र मोदी तेल की कीमतों को संभालने का फर्ज भारत में निभा ले गए। लेकिन क्या आगे तेल की महंगाई के युद्ध में सरकार मोर्चा संभाल पाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि शुक्रवार को जाकर जब कीमत भारत में बढ़ी, तब दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया, मुंबई में 106 तो कोलकाता में 108 रुपए के पार, डीजल भी 3 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगा हुआ। जिस जनता को बहुत दिनों से केवल ये सुनने को मिलता है कि अब दाम बढ़ने वाला है तब दाम बढ़ने वाला है, वो मानसिक रूप से इस बढ़ोतरी के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इजाफा जहां पहले कहा जाता रहा कि ज्यादा होगा वहां 3 रुपए ही बढ़ा।
14: जिस हिसाब से जंग चल रहा है इस वक्त, हालात खराब है इस वक्त, तो बढ़ने की तो उम्मीद थी, लेकिन चलो 3 रुपए तो मेरे ख्याल में 12 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ गया। आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे, तो अगर इतना तो चलेगा तो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए इसे।
19: मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको, तो प्रिकॉशंस चाहिए हर आदमी को, जो प्रिकॉशंस ले थोड़ा कर्व करे हर चीज के लिए।
20: हाँ, हमें पता है, हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, जो बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए। एक्चुअली
5: हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है, और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा।
1: इधर दाम बढ़ा, उधर राहुल गांधी का वार आया, कहने लगे गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आया, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी।
3: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
21: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है? ये नहीं देखा कि 1700 करोड़ रुपए का रोज नुकसान देके 2.5 महीने का हम लोगों ने कवर दिया है इस देश को, और मात्र 3 रुपए बढ़ा है मिनिमल, जो कि अगर हालात सामान्य हो गए, जिस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन इनको आदत है देश में अव्यवस्था फैलाने की, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, महंगाई की मार हो गई, ये हो गया, अरे पूरा विश्व अफेक्टेड है।
22: अखिलेश यादव ने कार्टून के साथ पोस्ट किया, पीएम की तेल कम खर्च वाली अपील का कार्टून लगाकर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है।
23: जब पेट्रोल डीजल का दाम न्यूनतम स्तर पर था, उस समय आपने बेनिफिट दिया नहीं, डिड नॉट पास ऑन टू द कंज्यूमर्स। जो रशिया से तेल खरीदा गया सस्ते, जिसके लिए इतना बवाल हो, उसका कोई फायदा देश को मिला नहीं, आपके मित्रों को मिला। अभी जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी है, आपने उसको कट डाउन कर दिया, लेकिन देश के गरीब जनता पर आपने थोप दिया। इस बात को साबित करता है कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है, आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं।
24: आज देश के अंदर जो संकट है, वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है, वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका ईरान इसराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
22: अब सवाल है कि क्या 3 रुपए का इजाफा एक ट्रेलर है और आगे तेल के दाम फिर बढ़ सकते हैं? सवाल की वजह ये कि 15 मई को सीएनजी की कीमत 2 रुपए किलो बढ़ी और 17 मई की सुबह 1 रुपए किलो फिर बढ़ा दी जाती है। इस पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा, लिखा कि सीएनजी के दाम आज फिर बढ़े हैं, चुनाव खत्म होते ही वसूली जारी है। इसीलिए समझना जरूरी, क्या जो दाम अब तक 3 रुपए पेट्रोल डीजल सीएनजी में बढ़े, वो आगे क्या और बढ़ेंगे, हाँ तो कितना? क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के 78 दिन बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पूरी दुनिया को एनर्जी शॉक लगा। इस शॉक के कारण जब कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर लगातार बनी हुई, पेट्रोल पर तब दावा है कि अब भी तेल कंपनियों को 12.73 रुपए प्रति लीटर का घाटा आ रहा है, जबकि डीजल पर दावा है 13.83 रुपए प्रति लीटर का घाटा अभी है। सवाल है कि अगर ये घाटा पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए दाम बढ़ाने के बाद भी है, तो भविष्य में तेल कंपनियां अगली किस्त महंगाई की ला सकती हैं?
25: 3 रुपए वाकई पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं समझता हूं सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बहुत ही समझदारी से बहुत थोड़ा अमाउंट कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन किया है। परंतु अगर लगातार क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसी प्रकार ऊपर बने रहे या और ऊपर गए, तो ऐसी और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लोगों को तैयार रहना पड़ेगा।
26: युद्ध से पहले तेल $72-74 पर बैरल मिलता था, आज आपको $110-112 पर बैरल, बल्कि इंडियन बास्केट की कीमत उससे भी ज्यादा है। अभी 3-1 रुपए बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब मैं अपने हिसाब किताब या कैलकुलेशन करता हूँ तेल के पूरा जो वो सप्लाई चेन है, तो मुझे लगता है कि अभी तो कीमत और बढ़ेगी।
22: अब तक सरकार ने खुद ही एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल कंपनियों का घाटा और कीमत बढ़ने से रोकना संभालना चाहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो वैश्विक संकट है उसमें ये संभव नहीं। सरकार भी ये कहती है कि फरवरी से 15 मई तक दुनिया के ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत के मुकाबले कहीं अधिक इजाफा हुआ है। एक हिसाब जो मोटा मोटा सामने आया है, उसमें अमेरिका में 46-48% तक तेल के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, चीन में 25-27%, फ्रांस में 22-30% इजाफा पेट्रोल डीजल के दाम में पहले हो चुका है, ब्रिटेन जर्मनी कनाडा जापान हर जगह 10-30% तक तेल की कीमत पहले बढ़ाई जा चुकी है। पाकिस्तान में तो कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 60% तक बढ़ाई गई। बांग्लादेश में भी यही हाल है। बस भारत में करीब 3% का इजाफा पेट्रोल डीजल के दाम में हुआ है। तो अब सवाल आता है कि क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से तेल बचाने की अपील की, जहां मंत्रियों ने काफिला कम कर दिया, मंत्री नेता विधायक मेट्रो से प्रधानमंत्री के कहने पर चलने लगे,
2: और देश से अपील करने लगे कि सभी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। कंपनियों को वर्चुअल मीटिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाने लगा और क्या इसी का पालन सबने किया तो तेल की आगे की महंगाई से भारत बच सकता है। जवाब हमने अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से पूछा है, इनके जवाब को ध्यान से सुनिएगा।
6: You can read the signal in two ways. One, you have a supply shock. Supply has gone down. So either you can voluntarily cut down on your demand and supply and demand adjust itself, adjust themselves without much of a price rise. If you do not adjust demand, then prices will go up and do the needful.
0: पहले रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान युद्ध ने भारत को सबसे बड़ा सबक उसके ऊर्जा जरूरतों को लेकर सिखा है। इसलिए भारत ने भविष्य की तैयारियों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा में जिस तरह कुछ घंटों के लिए यूएई गए, वो भारत की भविष्य की तैयारियों को लेकर काफी अहम दौरा माना गया। प्रधानमंत्री मोदी अब एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके बाद भविष्य में कोई भी युद्ध भारत की ऊर्जा जरूरतों को एक हद तक ही प्रभावित कर पाएगा।

0: आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है।
1: शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का छोटा लेकिन बहुत अहम दौरा किया। इस दौरान भले ही दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिसमें सबसे अहम है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर हुआ समझौता, जिसके तहत अबू धाबी भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 30 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल का भंडारण करेगा।
0: इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।
1: भारत में हर दिन 5.5 मिलियन बैरल की खपत। इस आधार पर यूएई का प्रस्तावित 30 मिलियन बैरल का भंडार किसी आपात या फिर सप्लाई में बाधा की स्थिति में भारत के कच्चे तेल की जरूरत को लगभग 6 दिनों तक पूरा कर सकता है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 30 मिलियन बैरल के जुड़ने से देश की रणनीतिक भंडार क्षमता में लगभग 70% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य के वैश्विक तेल संकट या फिर युद्धकाल में आपूर्ति में होने वाली रुकावटों के खिलाफ भारत की तैयारी काफी मजबूत होगी। इस लिहाज से युद्ध के बीच प्रधानमंत्री का यूएई का दौरा भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम हो गया।
0: भारत हर परिस्थिति यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: सिर्फ 1.5 घंटे के यूएई दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारियों को न सिर्फ पुख्ता किया, बल्कि भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का असर देश की प्रगति पर ना पड़े, इसके भी मुकम्मल इंतजाम की तरफ यूएई को साथ ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन 2000 किलोमीटर लंबी होगी। इसके जरिए गैस ओमान से सीधे भारत में गुजरात तट तक पहुंचेगी। इससे भारत को रोजाना करीब 31 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस डिलीवर होगी। ये पाइपलाइन देश में डिमांड को पूरी करने में मदद कर सकती है। इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इसे पूरा करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं।
0: ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: अहम बात यह है कि यूएई की तरफ से भी भारत को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। यूएई ने अपनी तेल कंपनियों को पश्चिम पूर्व पाइपलाइन परियोजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है, ताकि 2027 तक फुजड़ा की निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सके। यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। मतलब यूएई अपने यहाँ से गैस तेल निकालने की क्षमता को डबल कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से इस गैस तेल को हॉर्मूज बाईपास करके लाने की प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद भी करे तो भारत में गैस तेल की कमी ना हो। मतलब दोनों देशों के बीच संकट के समय में भविष्य को सुरक्षित करने पर काम हो रहा है।
0: आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।
1: तो भले ही यूएई ईरान के हमलों की जद में हो, लेकिन उसने भविष्य में किसी भी तरह के ईरानी ब्लैकमेल का पक्का इंतजाम खोजना शुरू कर दिया, जिससे भारत यूएई की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है। इसीलिए यूएई भविष्य में भारत को 40% से आगे एलपीजी गैस की सप्लाई करता देखेगा। लेकिन भारत की योजना इससे आगे भविष्य के ऊर्जा स्रोतों पर भी काम करने की है, जिसमें नीदरलैंड अहम भूमिका निभा सकता है।
2: हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड भले ही दुनिया का एक छोटा सा देश हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में सुपर पावर है। इसलिए भारत नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर पर तो साथ काम करेगा ही, भविष्य के ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन पर भी नीदरलैंड की मदद लेगा, ताकि तेल और कोयले पर आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम की जा सके। भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। इसके लिए ऊर्जा सबसे जरूरी चीजों में है, जिसकी लगातार सप्लाई से ही भारत की विकास यात्रा पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भारत की ऊर्जा की जरूरत को सुरक्षित करेगा।
3: चुनौती आर्थिक मोर्चे की, चुनौती युद्ध की, चुनौती वैश्विक संकट की। इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी के सामने संकट की दीवार आती रही, लेकिन हर बार ऐसी रुकावटों को पार करके वो आगे बढ़ते रहे। और तब अगर मौजूदा आर्थिक संकट का दौर लंबा चला तो क्या वो भविष्य के चुनावी रण में रक्षक बन पाएंगे, जहां पर आगे उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव आने हैं।
4: सोना ना खरीदो है जी, ते विदेश यात्रा ना करो, करो काम करो, प्रधानमंत्री करो काम कर ले।
5: The Modi nomics has failed. The foreign policy of India has failed.
6: ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है।
7: 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं।
1: चुनावी मैदान में जो विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने छिटपुट जीत हासिल कर पाता रहा, अचानक उसे महंगाई के युद्ध में सवाल और सियासत की ऊर्जा बीजेपी के खिलाफ मिल जाती है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता रिक्शे पर बाइक रखवा के तेल की महंगाई पर प्रदर्शन करने उतर जाते हैं।
8: अभी शुरुआत किया है और समाजवादी साथियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
1: दिल्ली में बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उतरते हैं।
9: कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे बैलगाड़ी के साथ, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे।
10: देखिए, आज मजबूरन लोगों को बैलगाड़ी पर आना पड़ा है, ये पुलिस हमको रोकना चाहती है, लेकिन ये मजबूरी देवेंद्र यादव या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली की जनता की परेशानी है, क्योंकि ये वो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है ये आपके और हमारे सबके सामने है।
1: भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता तेल गैस की महंगाई को लेकर सड़क पर आती। रांची में पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है, विरोध महंगाई के मोर्चे पर किया जाता है। अहमदाबाद में ऑटो वाले कहने लगे कि किराया बढ़ाया जाए। युद्ध के वैश्विक संकट में जिस वक्त महंगाई एक सीरीज की तरह चलने लगी, तब विपक्ष को सबसे बड़ा मौका हाथ लगा है।
7: पिछले 12 साल से मोदी सरकार का जो साइकिल ऑफ लूट है, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस, छोटू सिलेंडर, सीएनजी, इन सब को लेकर वो बदस्तूर जारी है।
11: कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? ये एलपीजी की आ सकती है, ये डीजल पेट्रोल की आ सकती है, ये किसी भी अन्य क्षेत्र की आ सकती है। और जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए।

0: चीन को एक महाशक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया। भारत के लिहाज से यही बात सबसे ज्यादा खबरदार करने वाली है।
1: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: सबसे बड़ी बात कि चीन की तरफ से भी इस बात का कोई मौका नहीं छोड़ा गया कि वो अमेरिका से किसी भी लिहाज से कमतर है। वो चाहे जिनपिंग का कसकर ट्रंप से हाथ मिलाना हो या फिर ट्रंप से ऊंची कुर्सी पर जिनपिंग को बैठाना। ये देखिए 6 फीट 3 इंच की लंबाई वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 फीट 11 इंच वाले चीनी राष्ट्रपति से कम लंबे दिखते हैं। दावा है कि इसकी वजह शी जिनपिंग की कुर्सी है जिसे जानबूझकर ऊंचा बनाया गया जिससे चीन के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा ऊंचे दिखे। संदेश साफ, चीन बता रहा कि वो न सिर्फ अमेरिका के बराबर है बल्कि कई मायनों में उससे बड़ा। बात चाहे दुर्लभ खनिज की हो या फिर चिप, चीन का कई अहम क्षेत्रों में एकाधिकार है जिसने लगता है कि अमेरिका को भी चीन से टकराव का रास्ता छोड़ने के लिए मना लिया। क्योंकि जो ट्रंप अपने सहयोगियों की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, वो चीन से ट्रेड वॉर के बीच अपने सभी बड़े कारोबारियों के साथ जिनपिंग के दरबार पहुंचे।
1: We have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me and they're here today to pay respects to you and to China and they look forward to trade and doing business.
0: अमेरिका में पिछले 3 दशक से G2 मॉडल की चर्चा होती रही। G2 का मतलब है कि दुनिया के बड़े फैसले अब संयुक्त राष्ट्र G20 या कई देशों वाली संस्थाओं में नहीं बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तय होंगे। वो चाहे कारोबार, AI, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, ऊर्जा हो या सुरक्षा, सब कुछ 2 ध्रुवों के बीच संतुलित होगा। ट्रंप का बीजिंग के सामने बेबस होना, 100 धमकियां देकर भी बीजिंग की जमीन पर पूरे लाव लश्कर के साथ उतरना इसी बात को दिखाता है।
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together.
2: UN और WTO जैसी बहुपक्षीय व्यवस्था पहले से निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे में G2 की शुरुआत भारत के लिहाज से कितनी खतरनाक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक हित को देखते हुए चीन के सामने झुक जाएंगे तो फिर क्वाड का क्या होगा? क्या अमेरिका के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले गठबंधन क्वाड का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या चीन की दादागिरी पर अमेरिका आंखें मूंद देगा? चीन के विस्तारवादी नीति को क्या अमेरिका मान लेगा या विरोध की नीति छोड़ देगा? तो फिर यह वाकई में भारत के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है।
0: चीन के हौसलों को ट्रंप ने किस तरह बढ़ाने का काम किया उसकी मिसाल ताइवान का मुद्दा है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर अचानक नरम हो गए, जहां शी जिनपिंग ने ताइवान पर खुलकर अमेरिका को चेतावनी दी, जंग तक लड़ने की धमकी दे दी। वहीं ट्रंप चीन से लौटकर कहते सुने जा रहे हैं कि वो ताइवान को बचाने के लिए इतनी दूर नहीं जाएंगे।
3: That's 9,500 miles away. I think that's the last thing we need. We're doing very well.
4: Would the U.S. defend Taiwan if it came to it?
3: I don't want to say. I'm not going to say that.
0: ट्रंप इतने पर नहीं रुकते, उन्होंने ताइवान को दिए जाने वाले हथियार के सौदे को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसने ताइवान को लेकर अमेरिकी रुख में आए बदलाव के पुख्ता संकेत दे दिए।
3: He asked you if you would send troops, if you would ask me if I defend them. I said, I don't talk about that.
4: She tells him that.
3: I don't talk about that.
0: UN और WTO जैसी बहुपक्षीय व्यवस्था पहले से निष्क्रिय हो चुकी है। ऐसे में G2 की शुरुआत भारत के लिहाज से चिंता की बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, दुनिया और भारत दोनों का सिरदर्द बने हैं। आज अमेरिका अपने दोस्तों में भरोसा खो चुका है, जिसने पहले टैरिफ लादकर कारोबार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद पिछले साल मई का महीना आया और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ

0: आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफें की। मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहकर दुनिया में आतंक के सबसे बड़े केंद्र और उसके आतंकियों की हौसला अफजाई की। ट्रंप का मानो इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने ईरान पर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करवा के ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। और अब जिस तरह जिनपिंग के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति झुके हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से चापलूसी जिनपिंग की गई, उससे चीन को खुली छूट दिए जाने के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल है कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि चीन का हौसला बढ़ाने का मतलब उसकी विस्तारवादी नीति को नई ताकत देना है।
1: कोरोना की महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध जब हुआ भारे और अब ईरान युद्ध की जब आई बारे, भारत को पता है कि धैर्य के साथ मुट्ठी बंद करके बचा भी जा सकता है, लड़ा भी जा सकता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब 7 अपील देशवासियों से की, तो भले ही विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन बड़े एक्सपर्ट्स भी मानने लगे कि महंगाई के विरुद्ध इस युद्ध में सही तरीका यही है, जिससे खतरा कम होगा और जीत मिल सकती है।
2: जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि कोरोना की तरह देश ईरान युद्ध से पैदा हुए संकट से भी निकल जाएगा, लेकिन सवाल कई हैं।
3: क्या ये सही नहीं कि मोदी सरकार ने पिछले 7 महीने में खुद 85.88 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया? तो भैया आप लोगों को तो खेलते हो कि एक मंगलसूत्र मत खरीदो।
0: कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार खुद सोना खरीद रही है, लेकिन जनता को सोना खरीदने से रोक रही है। आखिर क्यों? जनता के मन के इस सवाल को आज तक ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी से पूछा, जिनका जवाब सुनने के लिए पहले आपको सोने की खरीदारी से जुड़ी ये बात समझनी होगी। आरबीआई के पास इस वक्त 880 टन से ज्यादा सोने का रिजर्व है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। गोल्ड रिजर्व की ग्लोबल रैंकिंग में भारत 5वें नंबर पर है। इसकी वजह पिछले 10 वर्षों में भारत की तरफ से हुई सोने की खरीद है, जिसने गोल्ड रिजर्व को 560 टन से 880 टन पहुंचा दिया, यानी करीब 57% ज्यादा। लेकिन सोने में निवेश सिर्फ भारत ने नहीं बढ़ाया, चीन जैसे बड़े देशों ने भी ऐसा किया, क्योंकि अमेरिका ने साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के $300 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने जिस तरह डॉलर को हथियार बनाया, उसने दुनिया को नींद से जगा दिया और भारत चीन जैसे देशों ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार सोने में जमा करने लगे, ताकि उथल पुथल के दौर में सोना काम आ सके। 4 साल पहले समझदारी भरे फैसले का फायदा भारत को अब मिल रहा है।
4: In this turbulent times, India is still growing at 6%. Most people are saying we're likely to grow at 6%. And 6% is not too bad. In normal times, I would have said 6%. We should go into mourning. But with this world turmoil going on, 6% is not too bad. Look at inflation. Inflation, consumer price inflation is still, whether it will breach 4+2, that's yet to be seen. But it's not double digit. Remember the second oil price shock in the 70s, I think. Inflation had gone to double digit. Now, foreign exchange position, we have forgotten that at times our foreign exchange reserve used to cover only 2-2.5 months of imports. We still have $700 billion, which is like 9 months of imports. So is all hell going to break loose? No.
0: अब सवाल है कि जो सोना सरकार को फायदा पहुंचा रहा है, वो जनता के खरीदे जाने पर नुकसानदेह कैसे साबित हो सकता है? तो जवाब सीधा सा है कि सोने का आयात तेजी से बढ़ा है, जिसे खरीदने में भारत का बहुत सा डॉलर खर्च हो रहा है। ज्यादा डॉलर जाने से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे वो कमजोर हो रहा है। इसीलिए सरकार सोने की खरीद कम करने की अपील करती है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे इस सेक्टर में रोजगार प्रभावित नहीं होंगे? इस सवाल पर अब नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया का जवाब सुनिएगा।
5: जो कंज्यूमर हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो जरूर अपना सोने की जो है परचेजेस को कम कर सकते हैं, खरीद को कम कर सकते हैं।
0: हालांकि अगर ईरान का युद्ध लंबा खिंचा तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार के सामने कड़वे फैसले लेने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा।
4: फर्स्ट इज कीप योर कूल, डोंट पैनिक। देयर इज इनफ एमिनिशन इन आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सेकंड, डोंट ट्राई टू कुशन the oil price rise. If international price has gone up, please adjust domestic price accordingly. Third is accelerate the progress in ease of doing business so that not only domestic investment but foreign investment also flows in and improves the capital account.
0: पहले खाड़ी युद्ध ने भी भारत का बजट बिगाड़ दिया था। तब पीवी नरसिम्हा राव ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार करके देश को दिवालिया होने से बचाया। एक्सपर्ट का मानना है कि आज भले ही भारत बहुत बेहतर स्थिति में हो, लेकिन रिफॉर्म नाम की दवा देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के खिलाफ मजबूत बनाने में एक बार फिर कारगर साबित हो सकती है।
1: तो भारत अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो यही वो अग्नि परीक्षा जिसमें तप कर ही सोना बना जा सकता है, जहां पर हर देशवासी को साथ जरूर देना होगा। अब हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
12: So they were disallowed from speaking their language.
11: In-depth conversations with A-list celebrities.
13: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
11: True crime podcasts you just can't stop listening to.
14: Others escape justice to live and die in infamy. These
11: plus the news and sports content you crave in podcast form.
15: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
11: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
16: TuneIn has the music.
17: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
18: TuneIn Poolside has the music I love.
17: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs and get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
19: Cool fans se ghar ko sajayein.
20: Cool fans, bijli bachayein aur kam awaaz karein.
19: Cool fans, ghar ki shaan badhayein.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
7: है। भाई भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
9: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
15: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: एक हिंट तो देते।
17: हिंट, बड़े आराम से।
18: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
19: Take a date, not bites.
20: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites।
19: Lion Date Nut Bites।
21: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
24: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
25: In association with
26: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश में तेल की कीमतें आपका पसीना छुड़ाने वाली हैं और 3 रुपए महंगा हुआ ये तेल देश में कितनी महंगाई बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि आपकी रसोई, आपका बजट, इन सब पर सीधा हमला है। इसलिए आपको महंगाई के नए दौर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तेल महंगा यानी भाड़ा महंगा, भाड़ा महंगा मतलब सामान की कीमतें महंगी, इसके साथ ही आपका आना जाना महंगा। आज सरकार युद्ध की वजह से सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों का की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई को लेकर डरा हुआ है। और आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर, आपके इलाके में जो सब्जियां, फल, रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है उससे भी यही होने वाला है। कैसे, वो समझिए। अगर एक बाइक सवार हर महीने से में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास कार है उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2-5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं वो 7-10% भी महंगी हो सकती हैं क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2-4% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5-7% महंगे हो सकते हैं। अनाज, दाल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, अधिकतम 2% महंगी हो सकती है। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे, तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और ये 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब यह होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना, सामान, वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है लेकिन थोक महंगाई दर 8.3% पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है, इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था, 15.08, अभी कितना है, 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर, 8.3% पर स्तर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई पर 5% की दर से बढ़ी और ये 8.3% हो गई। सोचिए, ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसका असर कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा इन चीजों का, माल ढुलाई का, वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है, और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान युद्ध से पहले जानते हैं कितना था, $68 और अब $108 हो गया है। दुनिया के 98 देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही युद्ध के कारण इन कीमतों को बढ़ा दिया था। तब भारत ने न सिर्फ तेल की किल्लत होने दी बल्कि 14 मई तक इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब 3 रुपए की वृद्धि हुई है और कई देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमत जो है वो कम हुई है। आइए, युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस देश में कितनी बढ़ी हैं वो जल्दी से आपको जरा यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिएगा, पीला कर लेती हूँ, ये देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, कोई गेसवर्क करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो भारत का कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक ही वो देश है जिसका नाम है P for Pakistan, 61% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया है पेट्रोल कीमत की कीमत 50.5%। मलेशिया 58%, यूएई 52%, अमेरिका 46%, श्रीलंका 38%, नेपाल 38%, 34%, कनाडा, साउथ अफ्रीका 33%, चाइना 25%, फ्रांस 22%। तो ये पूरा आपको यहां से लेकर तमाम देशों का हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहां पर आते हैं जहां पर कम वृद्धि हुई है, उन देशों में आप ब्रिटेन को रख सकते हैं 19.1%, फिर है साउथ कोरिया 19.7% है, 17% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, इसराइल में 16.7%, बांग्लादेश में भी 16.7%, इटली में 16.2%, जर्मनी में 10.7%, जापान में 9.70% और 3.2% ये भारत का वृद्धि परसेंटेज है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव होंगे बाकी कीमतों पर। और खुदरा महंगाई दर तो हमने आपको बताया 3.5% है, लेकिन 8.3% के स्तर पर होलसेल महंगाई दर जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की जो औसतन कीमत है वो हम आपको तमाम देशों का दिखा रहे हैं, तो इसमें आप इस पर नजर डालिएगा। तो फ्रांस में 227, हमने आपके लिए सब रुपया में कन्वर्ट किया ताकि रुपये में आपको समझ में आए, 227.81 रुपया, मतलब 227.81 रुपया। जर्मनी 219 रुपया, नंबर 2 पर इसकी यहां पर कीमत है। फिर आ गया इटली, इटली में देखिए 216.99 रुपये, ब्रिटेन 203, कनाडा, इसको जरा ब्लू कर लेते हैं तब ये ठीक से समझ में आएगा, कनाडा में देखिए 148.72, मतलब 150 रुपये के आसपास, साउथ कोरिया में भी 146 रुपया है, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में 143 रुपया, पाकिस्तान में 142 रुपया, श्रीलंका में 139 रुपया, नेपाल में 135 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 127 रुपये, अमेरिका में 121 रुपये, बांग्लादेश में 108 रुपये, लगभग 109 रुपये है, 103 रुपये के आसपास यहां पर जर्मनी में है, सॉरी जापान में है, और भारत में 101 रुपये पर पेट्रोल की कीमतें फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हमने ये कोशिश किया कि हर देश में जब रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पेट्रोल की कीमत है औसतन 1 लीटर की, वो हम आपको बताएं कि बाकी देशों की तुलना में भारत इन कीमतों में कहां पर है। तो ये हमने आपको नंबर्स बता दिए कि जब आप अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली सब जगह जाएंगे तो भारत में 101 रुपये उसकी कीमत है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा है, जो खुदरा महंगाई उसमें है, लेकिन जब आप विश्व के साथ कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के आसपास भारत की है। अब यहां कांग्रेस ये कह रही है कि अगर साल 2016 से 26 तक देखें तो बाकी देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंकड़े में थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें आंकड़े 2014 के लिए से लिए गए हैं, और अब इस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिना लाग लपेट के असली आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं 1 अप्रैल 2014 से। तो चलिए यहां से आपको हम ये पूरा नंबर दिखाना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है, 21.74 रुपये, जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत, जो हरे रंग से है ऊपर में कोने में दिखा दीजिए ये ताकि उनको रेफरेंस समझ में आ जाए, ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है, तो ये थी डीजल की कीमत और 33.71 रुपये थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई, और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 55.49, मतलब 55.49 रुपये पर डीजल था उस वक्त और 72.26 रुपये पर ये था, तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस, जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई। अब इसमें आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे है, वृद्धि कितनी है 63.4%। यहां पर कितनी थी 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है 35.3%। ये हमने अभी का आंकड़ा 15 मई 2026 का निकाला है आपके लिए। तो ये पूरा जो पूरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 से लेकर 26 तक का, 35.3% वृद्धि है पेट्रोल में, और तब कितनी थी 114.4% की वृद्धि थी। तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है। 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखिए, वहां पर 10 साल है और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है, और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। ये तस्वीरें उस दौर की है जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार है। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है। उसी से बचने की बात देश में हो रही है, लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर IMF से $58 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको IMF से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेल आउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गईं कि हमारे जैसा देश, मेहनती स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको IMF से लोन लेना पड़ रहा है और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। ये अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश सोना दे सकते हैं वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या? इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया, जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला, जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन। और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचिए, जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपनी निजी सोना सरकार को देन दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का, लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो एक साल तो भूल जाइए। ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है। स्वाहा, खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और ये सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। और यहां तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं और सोचिए इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर यह संकट एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचाकर रखना है क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को ये अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से युद्ध के पहले की स्थिति पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। यहां आप कहेंगे कि युद्ध तो रुक चुका है, 7 अप्रैल से सीज फायर है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलती है क्योंकि स्थिति हमने आपको बता दी, युद्ध रुका हुआ है। युद्ध रुका हुआ तब माना जाता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका होता। युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला है। जब तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही कर रहे होते तब स्थिति सामान्य होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह समुद्री रास्ता अब भी बंद है, इसकी वजह से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति लगभग ठप है। बड़ी बात यह है कि अब तो यह कागजी सीजफायर भी दम तोड़ने वाला है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है। ईरान ने समझौता करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जो शर्तें बताई थी उन शर्तों को राष्ट्रपति ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में फेंकने की बात कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस युद्ध में लागू हुआ सीज फायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सीज फायर कोई कह रहे हैं कि आईसीयू में है, आईसीयू भी नहीं, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, मतलब आखिरी सांसें चल रही हैं, जिसके बचने की बहुत कम संभावना है। बहुत जल्द ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस धमकी को सुनिए, समझिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, जब सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे अपील करना क्यों जरूरी था।
1: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Diagnostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: अमेरिका का मीडिया दावा यह कर रहा है कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हकीकत में फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। सीएनएन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दोबारा से हमले करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो ईरान द्वारा रखी जा रही शर्तों से नाराज हैं और उन्हें यह लगता है कि ईरान इस समझौते को करने के लिए गंभीर नहीं है। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफ दिया और इस ब्रीफ में क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके खिलाफ आक्रामक रुख को अपनाना बहुत जरूरी है और पेंटागन के अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर फिर से हमला होना ही चाहिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ना तो सीज फायर का कोई फायदा है, ना ही ये उम्मीद करना सही है कि अगले कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। ना रास्ता तेल गैस का खुला है और ना ही ये सीज फायर परमानेंट दिख रहा है। हकीकत तो यह है कि जैसे बॉक्सिंग रिंग के मैच में एक राउंड खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक के बाद बॉक्सिंग का मुकाबला फिर से शुरू हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बदलते हुए फैसले को देखते हुए इसकी संभावना जताई जा रही है। आप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।
2: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे।
0: तो अमेरिकी मीडिया का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले 2 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में लगभग 1 साल या फिर 8 से 10 महीने लगेंगे। अगर यही हॉर्मूज 6 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं और अगर यही हॉर्मूज 1 साल बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई 3 साल बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी से अच्छी स्थिति में भी यह संकट 2027 तक खत्म होगा और बुरी से बुरी स्थिति में यह 2029 तक खींच सकता है। अब सोचिए 2029 तक अगर कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल भी रही तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव आएगा। हमें हर दिन उतनी कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना होगा जो युद्ध से पहले की कीमतों से 66% ज्यादा होंगी और क्योंकि तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य होता है, इसके लिए भारत ज्यादा कीमतों पर भी कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर रहेगा और फिर हम लोगों की जेब पर जो मार पड़ेगी वो स्वाभाविक है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ये कहा है कि वो तेल का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, जबकि सोने को वो 1 साल तक खरीदे ही नहीं। सोना एक लग्जरी आइटम है, इसके ना होने पर गुजारा किया जा सकता है। अगर आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? शायद उन परिवारों में थोड़ी मायूसी होगी जिनके घर में शादी है, लेकिन अगर तेल नहीं मिलेगा तो पूरा देश रुक जाएगा और यही कारण है कि तेल हमें खरीदना ही खरीदना है। तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। तो समझिए ऐसे कि आपके पास अपने घर खर्च के लिए रुपए हैं, वैसे ही देश में जब हमें कुछ विदेश से खरीदना होता है तो हमारे पास फिक्स्ड डॉलर है और वो डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। अब वो हमारे पास फिक्स्ड है, हमें ये तय करना है कि हम उससे सोना ज्यादा खरीदकर देश में लाना चाहते हैं क्योंकि सबको सोना खरीदना है भारत में, या हम उससे तेल खरीदना चाहते हैं क्योंकि तेल के बिना अर्थव्यवस्था थम जाएगी और तेल जरूरी है। ऐसे में हमें वो विदेशी मुद्रा भंडार तेल के लिए ज्यादा रखना चाहिए, तेल के खरीद के लिए, क्योंकि ये खर्च कहां होता है विदेशी मुद्रा भंडार? ऐसे ही क्रूड ऑयल पर होता है, तेल पर होता है, या फिर जो खाने वाले एडिबल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होता है। तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है क्योंकि तेल गैस अभी की स्थिति जितना हम बाहर से आयात करते हैं उस स्थिति में हमें हर हाल में खरीदना ही होगा। हमें जितने डॉलर बचाकर रखेंगे उतना हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा कर रख पाएंगे और तेल को ज्यादा कीमतों पर खरीद कर भी स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारत में हो रहा है, भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की है, लेकिन दूसरे देशों में वो हो रहा है जिसके बारे में आपने अभी तक अपने देश में हमने स्थिति नहीं देखी है, सोचा नहीं है। जैसे थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह की लिफ्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है कि भाई किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगा। थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए और कम से कम ही एसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन सोचिए क्या वहां इस पर कोई राजनीति हुई? भारत और थाईलैंड में फर्क यह है कि थाईलैंड में न्यूज एंकर्स और वहां के नागरिक लाइव प्रसारण के दौरान अपना कोट उतारकर बिजली और तेल बचा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी एंकर या नागरिक ने यह कह दिया कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है और एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा, तेल की बचत करेगा, तो उसको तुरंत सरकार से जोड़ दिया जाएगा। भाई फैसला सरकार का हो सकता है, लेकिन देश तो अपना है। थाईलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है। थाईलैंड क्या, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भी सभी गाड़ियों के लिए एक फ्यूल लिमिट तय की गई है, जिसमें दो पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है, लेकिन वहां भी कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी पेट्रोल पंपों को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन श्रीलंका में भी कोई राजनीति नहीं हो रही है। तमाम ऐसे देश हैं जो हॉर्मूज के तेल से सीधा प्रभावित होते हैं। फिलीपींस, बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है, 24 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। लंच ब्रेक के दौरान लाइट्स, कंप्यूटर सब बंद करने के आदेश है, लेकिन फिलीपींस में इसको सरकार की नाकामी छिपाने के लिए उनके एसी टेम्परेचर का कंट्रोल सरकार ने हाथ में ले लिया है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वियतनाम में भी वहां के लोग इस फैसले का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, वहां पहले ही से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, 60% सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की गई है, 60% सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में आम लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं या जो सामान्य पेट्रोल, सामान्य डीजल आपको मिलता है, उसकी कीमतें पिछले साल से एक बार भी नहीं बढ़ी है और इसके लिए कई देशों ने भारत की तारीफ की है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, यह भी बताना जरूरी है, लेकिन जब संकट बढ़ रहा है इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कम तेल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम चूज करें, सोना ना खरीदे, विदेशी यात्राएं टाल दें, तो ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं, सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और कच्चे तेल और रसोई गैस की भी बचत करनी होगी, वरना विदेशी लेन देन में भारत का घाटा बढ़ जाएगा। और यहां इस बात को नोट करिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह अपील साल 2013 में की थी, जब ना तो ईरान जैसा कोई युद्ध चल रहा था, ना ही कोई बहुत बड़ा वैश्विक संकट था, लेकिन जो सोना हम खरीदते हैं, जो हम आयात करते हैं, 90% से कहीं ज्यादा सोना तो हम बाहर से खरीदते हैं, उसके लिए हमको अपने डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। यानी जब संकट नहीं थी तब भी यूपीए की सरकार ये समझ रही थी कि अगर सोना इसी तरह से लोग खरीदते रहे तो हमें नुकसान हो सकता है, और वह तब सरकार कह रही थी लोगों से कि कम सोना खरीदिए, लेकिन जब संकट है, संकट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को क्या हक है वो लोगों को अपने पैसे से सोना खरीदने से रोके। सुनिए,
3: देयर हैज बीन अ डिटेरियोरेशन मेनली ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूज इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड, higher costs of crude oil imports, and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore export. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports.
0: यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की इतनी ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मूज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। सुनिए।
4: Don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine for 1 year. The whole situation will so dramatically change. You think you're buying gold in rupees, but actually you're buying gold in dollars. I would once again appeal to everyone. Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit.
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाइना की बात सुनिए। चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स। एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब यह हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन से जनता से अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों की को अपनाने की अपील की थी। 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दे। पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी भारत में खाद्य संकट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसे, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है। उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी अपील को पूरे देश ने माना। 1974 में जब अरब और इजराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी, लेकिन ये बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से ये अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो। और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है। और वेस्ट एशिया का यह युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है।
5: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
0: आज एक सवाल और है कि क्या देशहित में सोने की खरीद का त्याग भी नहीं किया जा सकता? आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए, अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब ईरान के लिए भारत के लोग अपना सोना दान दे सकते हैं, तो अपने देश भारत के लिए सिर्फ एक साल सोना खरीदना बंद करने में कौन सा तूफान आ जाएगा?

0: इसमें जो लोग आते हैं जोग दर जोग और इस डोनेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मदद का इजहार करके यहाँ पे जेवरात नकदी और बर्तन जो भी है उनके पास वो डोनेट करते हैं।
1: हमें ईरान के साथ एक मजहबी वाबस्तगी है, उस वजह से यहाँ की आवाम ने पुरजोश होकर जो उनका कीमती एहसास है, जो चाहे उनके पास सोना हो, पैसा हो या जेवरात हो या बाकी असासा जो उनके पास मौजूद हैं, वो उन्होंने इस बड़े मकसद के लिए यहाँ पे जमा किया है।
2: काफ़ी ज़रूरत है ईरान की आवाम के लिए। हमारे जो हाल ही में रहबरी मौज़म की शहादत हुई है, हमारे जानी कुर्बान, माल कुर्बान, हमारे औलाद कुर्बान।
3: मेरी हजार हुई थी जब।
4: सारे दिन?
3: हाँ।
4: क्यों दिया?
3: ये मैंने एक साल तक ये पैसे किए थे जमा, ये मैंने ईरान की मदद करने के लिए दिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार।
5: मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में, हमने देखा मेट्रो पर

0: देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद, मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का कारकेट कम किया। हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी। अच्छा। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खासकर अभी का संदेश, वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है। ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने, मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है।
1: मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए, वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है तो आप कार पूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस लगना चाहिए, दिल्ली में फैसला भी हुआ है। फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं। अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है।
0: देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए की डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और मैं देश को बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है। हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी, ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्यप्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोग दिखावा, इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है, जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का, जिसपे हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है, वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए।
1: अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने अपने एक, जितना मुझे याद आ रहा है, आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई, उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का, तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिला अध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है।
0: नहीं, ये जो आपने कहा, हमने तुरंत इस दिशा में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगल मंडल अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे।
1: अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत है। तो अब इस पर क्या है, क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है?
0: देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं। आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं? और उनके खर्चे में भी प्रश्न उठे, मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पर भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी, सच में मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते।

0: आप बताइए, चुनाव यहां चलते हैं और वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी काउंटिंग के दिन भी जो अपने देश के अंदर नहीं रहेंगे और आने के बाद वो जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बहुत पवित्र पद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसमें लंबे समय तक देश के सामने नहीं दुनिया के सामने हमारे लोकतंत्र के लिए गरिमा और गौरव वाले पद पे एक अपोजिशन के लीडर का जो गरिमा और व्यक्तित्व होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने निराश किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है। उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना एक साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी है, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है, लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो यह संकट कटने वाला है नहीं। क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो जनता यह भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी आपने 3-3 रुपए, दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब।
2: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं। और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है, उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं। अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्र हित के अंदर उन्होंने अपील किया है। और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग ना करें उसके बारे में हमने कहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के व्हीकल, तो किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था, कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा तो ऐसा नहीं है, देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है। और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। ये हमारा प्रयास है, हम उसको लेकर के अंजना जी काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मैंने कहा है कि ये विशेष एक व्यक्ति या एक उसके लिए नहीं है, समस्त राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की इसके अंदर जिम्मेवारी है कि इसमें आगे बढ़ करके अपना योगदान देने का वो काम करे। इस वैश्विक संकट से हमने आगे गति से बढ़ना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत, उसमें इस प्रकार की समस्याएं, संकट ये वैश्विक आते हैं, उनका हम मिलकर के सामना करें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
9: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
10: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
11: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
12: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
11: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
13: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
14: है। भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
13: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
16: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
17: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
16: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
18: समर कूल कूलर,
16: हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
19: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट
3: बड़े आराम से
6: कूल फैंस से घर को सजाएं।
7: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
6: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं मनोज कुमार पांडे
3: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
4: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा।
5: 10 मई को शपथ ली, शपथ ग्रहण के बाद 8 दिन बीत गए, यूपी सरकार के नए मंत्री अब भी बिना विभाग के टहल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को जगह मिली, दो पुराने चेहरों को प्रमोशन मिला, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह। लेकिन ये सब अभी इंतजार में, पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आए। योगी सरकार 2.0 के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शोर तो खूब हुआ, लेकिन अब वही विस्तार सत्ता के गलियारों में एक लंबी खामोशी बनता जा रहा। मंत्री हैं लेकिन मंत्रालय बंटा रहे, कुर्सियां हैं पर जिम्मेदारी नदार। दिलचस्प ये कि जिन चेहरों पर सरकार ने ताकत का प्रतीक बनाकर पेश किया, वो आज फाइलों से ज्यादा इंतजार की राजनीति में फंसे नजर आते हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्रालय के बंटवारे की देरी की असली वजह ये कि ये कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकराने लगे। अखिलेश यादव के तंज का जवाब योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर देते हैं। लिखते हैं कि सपा प्रमुख में सत्ता पाने की इतनी अधिक लालसा है कि वो घर में शोक होने पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नसीहत राजभर देते हैं कि कम से कम भाई की 13वीं तक तो रुक जाते, इसके बाद राजनीति कर लेते। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पुराने दिनों की याद भी दिलाई।
6: जिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिताजी मंत्री बदला करते थे, चाचा जी चीफ सेक्रेटरी बदला करते थे, ताऊ जी अधिकारियों को बदला करते थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। एक्स पे पोस्ट करके सोचते हैं राजनीति हो गई। अखिलेश जी, राजनीति सेवा का कर्म है, निकलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। और परिवारवादी पार्टियों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्हें संगठन की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, बिना पता हुए कुछ न कुछ बोल देना ही वो राजनीति समझते हैं।
5: हालांकि सूत्र कहते हैं मंत्रालय के बंटवारे की संभावना अगले 24 घंटे में बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, ऊर्जा मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली तक दौरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हो या फिर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की बंद कमरे वाली बातचीत, हर मुलाकात यही बताती है मामला सिर्फ विभाग आवंटन का नहीं, सत्ता के भीतर संतुलन और संदेश तय करने का भी है। इस बीच विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है। जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन ध्यान दिया गया ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन अब विभाग के बंटवारे में होती देरी सवाल बढ़ा देती है। आखिर यूपी में इस देरी की वजह क्या है? क्या देरी अंदरूनी असहमति की वजह से हो रही या फिर बीजेपी सत्ता के शतरंज पर मोहरे सोच समझ कर बिछाने में लगी है ताकि विपक्ष के हर फॉर्मूले की काट निकाली जा सके। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई बड़े समझौतों के आसार, भारतीय समुदाय से भी संवाद। यूपी में आज देर रात तक नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभव, मंत्रालय विस्तार के बाद कल पहली कैबिनेट बैठक, सीएम योगी के घर होगी मीटिंग। केरलम के नए सीएम की शपथ लेंगे सतीशन, मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री, राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर, केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन सीबीआई हिरासत में भेजा। उड़ा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप, किडनी फेल होने से अब तक 6 ने तोड़ा दम, जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कभी गर्मी, कभी आंधी तूफान, कभी ओलावृष्टि, कभी बेमौसम बरसात, भारत का मौसम अब चेतावनी नहीं तबाही बनकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, झारखंड से महाराष्ट्र तक मौसम का कहर सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। कहीं बिजली गिर रही है, कहीं तेज हवाएं घरों और पेड़ों को उखाड़ रही हैं, तो कहीं आंधियों में लोग ही उड़ जा रहे हैं। क्या भारत का मौसम पूरी तरीके से मनमौजी हो चुका है? क्या जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक बहस नहीं बल्कि जमीन पर दिखती भयानक हकीकत है?

0: पेड़ जल से उखड़ कर सड़क पर गिर पड़ा। कहीं मकान की छत टूट गई, कहीं गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी तूफान और आकाशीय बिजली के कहर की हैं। बुधवार को यूपी में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कई जिलों में तबाही मच गई। लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला, तेज हवाएं चली, बिजली गिरी और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 लोगों की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई, 52 लोग घायल हैं, जबकि 98 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 130 पशुओं की भी जान गई है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जमीन पर हालात इससे कहीं ज्यादा भयानक दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि लू वाले महीने में इतनी विनाशकारी आंधी आएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बदायूं में तेज आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई। भदोही में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की जान गई। मिर्जापुर में आंधी तूफान की वजह से 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों की जान गई। प्रयागराज में भी आंधी तूफान के कारण 21 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कई जिलों में 1-2 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर बरेली से आई। आंधी में छत उड़ते आपने देखी होगी, तिरपाल उड़ते देखे होंगे, पेड़ गिरते देखे होंगे, लेकिन इंसान हवा में उड़ जाए ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। बरेली में आए तूफान में नन्हे मियां नाम के शख्स हवा में 50 फीट उछल गए। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे AI वीडियो समझ रहे थे, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी थी। दरअसल नन्हे मियां तेज तूफान से बचने के लिए टीम की छत पकड़कर खड़े थे, तभी तेज हवाओं ने पूरी छत को उखाड़ दिया और वो करीब 50 फीट हवा में ऊपर उछल गए। इसके बाद नन्हे मियां जाकर खेत में गिरे, हादसे में उनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं।
1: एक्शन बहुत तेज लग रहा था, दबूजे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए, हमें ना पता कहाँ गिरे क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
2: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था क्या था?
1: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े खड़े हम बाद रस्सी पड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ रस्सी पकड़ी थी, गाड़ी हमारी खड़ी थी, रस्सी पकड़ रही थी,
3: खेत में जाके
1: मकान के खेत में गिरे थे, कम से कम 50 फीट ऊंची से और करीब 30-40 से ज्यादा होती, मतलब 20 मकान गिरे थे। मैं टीम से टीम गई, टीम के साथ में चले गए।
2: अच्छा।
3: तो टीन शेड को रोकने की कोशिश कर रहे थे आप?
1: टीन शेड रोकने से नजर है, मैं उसमें रस्सी पड़ी थी तो मतलब ऐसा है कि मतलब हमारी जाएगी, हम जाकर रस्सी से रुक जाएंगे, तो मैं रस्सी से टीम से सब चली गई।
0: पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसे ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई। में तेज हवाओं के चलते एक नीम का पेड़ उखाड़कर कार पर गिर पड़ा। कार में बैठे व्यक्ति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह तूफान कई परिवारों के लिए मौत बनकर आया। अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। कई जगह पेड़ और दीवारें गिर गई। एक ट्रक ड्राइवर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली इलाके में सड़क किनारे खड़ा यूकलिप्टस का पेड़ तेज हवा में टूटकर ट्रक पर गिर गया। हादसे में 29 साल के ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। भदोही में भी तबाही का मंजर दिखाई दिया। यहाँ 16 लोगों की मौत हुई। एक महिला के घर पर पेड़ गिर गया, जिससे महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हो गए। जबकि दूसरी घटना में मंदिर गई 3 महिलाएं विशाल पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे 3 की मौत हो गई। फतेहपुर में आए तेज तूफान और आंधी ने भारी तबाही मचाई। 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए।
4: तूफान अब किसी एक मौसम में नहीं बल्कि हर मौसम में जबरदस्त तबाही मचाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं, हवा में नमी की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। यही बदलाव अब भारत में आंधी तूफान बेमौसम बारिश को ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं।

0: ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं तेज हवाओं ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, कहीं बिजली के खंभे गिर पड़े, कहीं घरों की छतें उड़ गई और कहीं सड़क पर चलते लोग देखते ही देखते तूफान की चपेट में आ गए। सवाल है, आखिर ये आंधी तूफान इतने खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? क्यों हर साल मौसम पहले से ज्यादा हिंसक दिखाई दे रहा है और क्यों अब तूफान किसी एक मौसम तक सीमित नहीं रह गए हैं? दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती तेजी से गर्म हो रही है। पिछले कई दशकों में ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ी है। इसका असर सिर्फ गर्मी बढ़ने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मौसम चक्र पर पड़ रहा है। पहले आंधी और तूफान का एक तय मौसम माना जाता था लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मार्च में भी तूफान आ रहे हैं, मई जून में भी तबाही मच रही है और कई बार मानसून के दौरान मौसम अचानक बदल ही जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब धरती का तापमान बढ़ता है तो समुद्र भी तेजी से गर्म होने लगता है। गर्म समुद्र ज्यादा भाप छोड़ते हैं यानी हवा में नमी बढ़ जाती है और यही नमी तूफानों के लिए ईंधन का काम करती है।
1: देखिए, एक तो पहली बात है कि होती हैं ये घटनाएं और किसी से दो साल जो एक जैसे नहीं होते। किसी साल में आप देखते हैं तापमान सामान्य से ज्यादा रहते हैं, किसी सीजन में आपके डस्ट स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म सामान्य से ज्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ अब यह है कि जिस तरह से अर्बन हीटिंग ज्यादा हो रही है, अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है, जिस तरह से कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो है क्लाइमेट चेंज का भी इस पे दिखता है।
0: मतलब जितनी ज्यादा नमी उतनी ज्यादा घने बादल और उतनी ही ज्यादा तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। लेकिन इसकी कोई एक खास वजह नहीं है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तेजी से गर्म हो रही है। यही वजह है कि अब तूफानी सिस्टम पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव से उत्तर भारत में भीषण आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ समुद्र ही जिम्मेदार नहीं है, शहरों का तेजी से फैलना भी मौसम को बिगाड़ रहा है। कॉन्क्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, तालाब और खुले मैदान खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में दिन और रात दोनों समय ज्यादा गर्म रहने लगे हैं। वैज्ञानिक इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं।
2: अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है कि जो हमने कंक्रीट जंगल बना लिए हैं, जैसे कि नोएडा है, गुरुग्राम है, जो भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर आपने देखा होगा कि सोसाइटीज बन गई हैं। पहले क्या होता था कि एक जैसे कि 200-300 गज के दायरे में चार या पांच घर होते थे और उससे क्या होता था कि जो एनर्जी है या जो हीटिंग है वो ट्रैप नहीं होती थी। अब एक ही इतनी जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग बन गई है जिसमें एक ही बिल्डिंग में 300-400 घर होते हैं और हर घर में कम से कम 2 AC चल रहे होते हैं। तो उससे जो गर्मी निकलती है वो और जो कंक्रीट जंगल बन जाता है, यानी कि कंक्रीट है और जो रोड है, डावर की रोड है, वो सारा जो सन की एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो जब सनसेट होता है तो एनर्जी इतनी जल्दी रिलीज नहीं हो पाती। इसीलिए जो शहर का तापमान है वो आप जो आउटर एरियाज है उससे 4-5 degrees ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं।
0: जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं और यही गैसें धरती की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। नतीजा, धरती लगातार गर्म हो रही है और मौसम ज्यादा अस्थिर और खतरनाक बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार फसल कटाई के समय अचानक आंधी और बारिश किसानों की मेहनत बर्बाद कर देते हैं।
3: लगाए थे खेती बाड़ी में, खेत में सब बर्बाद हो गया, पत्थर पानी मार के हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग का सब बर्बाद हो गया। तो मतलब हम लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है।
4: जो खेती लगाए थे ना, जो पानी मार के सब नुकसान कर दिया, हर एक खेती के करेली भिंडी पोदी जितना से सब नुकसान हो गया। अब जो सब सड़ गया, बारी में सब सड़ गया, को नहीं है, हम लोग का करें।
5: खेत में पत्थर पड़ने की वजह से ये दो लौकी को देख सकते हैं कैसा हो चुका है और क्विंटल भर खेत का क्या हाल होगा, पत्ता भी खत्म हो चुका है, इसके साथ साथ सारा किसान का खेती खत्म।
6: हाँ, लौकी था, भिंडी था, करेला था, बहुत सारा सब्जी था,
7: सब नुकसान हो गया,
6: सब नुकसान हो गया,
7: सब खराब हो गया,
6: सब खराब हो गया।
0: विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तापमान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में ऐसे तूफान और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, यानी भविष्य में मौसम की मार और गंभीर हो सकती है। ऐसे में सिर्फ सरकारों की नहीं, आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मौसम की कहानी नहीं, ये बदलती हुई धरती का संकेत है जो बता रहा है कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो आंधी, तूफान और तबाही बेमौसम तय है।
8: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बताएंगे कि भारत में क्यों बढ़ रही हैं आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं। देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
13: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
14: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
15: लायन डेट नट बाइट्स।
16: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
17: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
18: एक हिंट तो देते।
19: विक्रम!
18: हिंट
17: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
2: हमारे सीमेंट में नहीं है।
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स।
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
17: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: In association with
8: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।

वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

बात कलयुगी सरकार का पहला कैबिनेट। केरल में नए सीएम की शपथ लेंगे सतीशन, मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री, राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मान। 2 दिनों में दौरे में कई बड़े समझौतों के आसार, भारतीय समुदाय से भी सम्मान। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटों, केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप, किडनी फेल होने से अब तक 6 ने तोड़ा दम, जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम।

0: दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मौसम का भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, दिन के समय अंधेरा छा गया था, लेकिन कुछ ही समय में मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेव की चेतावनी दे दी। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पार कर गया, जो इस साल मई का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे सालों के मुकाबले थोड़ा कम ही है।
1: दिल्ली एक ऐसा शहर जहां इन दिनों मौसम का मिजाज हर रोज बदलता दिखाई दे रहा है। कभी तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी, कभी अचानक काले बादल, कभी तेज बारिश और ओलावृष्टि, तो कभी तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक। राजधानी का मौसम अब इतना अनिश्चित हो चुका है कि लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर अगले कुछ घंटों में मौसम कैसा होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा मौसम देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। दोपहर के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर बारिश के साथ ओले गिरने लगे। दिन में ऐसा अंधेरा छाया मानो शाम हो गई हो। कई इलाकों में पेड़ गिर गए और लोगों को मई के महीने में अचानक ठंड का एहसास होने लगा।
2: अच्छा मौसम हो रखा है और घूमने लायक मौसम है। बाहर से भी काफ़ी टूरिस्ट आए हैं, उनको अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। दिल्ली अच्छी लग रही है क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है उसमें तो लोग घूमते नहीं है, तो अभी अच्छा टाइम है, खुशनुमा टाइम है और अच्छा लग रहा है। लोग
3: बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, धूप से बचाव है, ठंडा मौसम हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी।
1: लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी दिल्ली में अब हीट वेव की चेतावनी जारी की जा रही है। गुरुवार को राजधानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, शुक्रवार और शनिवार को तापमान 41 के पास पहुंच गया।
4: वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, ये जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है जिसके साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस चलते हैं, वो इस बार इस साल और पिछले साल भी हमने देखा था मई में इस तरह की धूल भरी आंधी और बारिश हुई थी, तो इस साल भी जो जेट स्ट्रीम है थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड में है और इसके कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में भी। लेकिन अब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने लग जाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि मई आते आते वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने लग जाते हैं आमतौर पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब लू की स्थिति बन जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, 41, 42 और 43 डिग्री तक दिल्ली का टेम्परेचर जा सकता है।
1: मौसम का लगातार बदलता पैटर्न हर किसी को परेशान कर रहा है। अगर पिछले 10 दिनों के मौसम पर नजर डालें तो दिल्ली में मौसम पूरी तरह रोलर कोस्टर की तरह नजर आता है। करीब 10 दिन पहले तापमान 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, लोगों को ठंडक का एहसास होने लगा था, फिर अचानक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, हवा में नमी बढ़ी और राजधानी में तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, जैसे ही आसमान साफ हुआ तेज धूप निकल आई।
2: नजारा तो यहाँ का बढ़िया है लेकिन धूप बहुत तेज है यहाँ पे, मतलब धूप देख के डायरेक्ट छाव के नीचे जाने का मन कर रहा है,
5: परेशानी होती है इस गर्मी से।
2: हाँ बहुत,
6: हम ठंडा पानी साथ में रख रहे हैं, छाता वगैरह साथ में लग रहे हैं क्योंकि बहुत तेज धूप है इसके कारण।
7: टॉवल ले रखे हैं ये गर्मी से बचने के लिए, और जो है थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग पानी वगैरह पीते रहे तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। ये कुछ चीजें जो बॉडी को हाइड्रेट करती है, थोड़ा गर्मी से हमको बचा सकती है।
8: धूप बहुत ज्यादा हो रखी है, तौलिया लेना जरूरी है, जहाँ बैठने की भी जगह कम है, छांव वगैरह है नहीं।
1: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का मौसम इतना अनिश्चित क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। धरती का तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से मौसम चक्र अस्थिर होता जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ता शहरीकरण भी मौसम को प्रभावित कर रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण, ये सब मिलकर राजधानी को ज्यादा गर्म बना रहे हैं।
9: देखिए, एक तो पहली बात है कि होती हैं ये घटनाएं और किसी से दो साल जो एक जैसे नहीं होते। किसी साल में आप देखते हैं तापमान सामान्य से ज्यादा रहते हैं, किसी सीजन में आपके डस्ट स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म सामान्य से ज्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ अब यह है कि जिस तरह से अर्बन हीटिंग ज्यादा हो रही है, अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है, जिस तरह से कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो है क्लाइमेट चेंज का भी इस पे दिखता है।
1: यही वजह है कि अब दिल्ली में मौसम का बदलाव पहले से ज्यादा तेज और अचानक दिखाई देता है। अब दिल्ली का मौसम सिर्फ गर्म या ठंडा नहीं रहा, बल्कि हर कुछ दिनों में बदलता हुआ एक नया पैटर्न बन चुका है।
0: ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मई का महीना अपनी तपती गर्मी के लिए जाना जाता था, उसमें 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले आंधी तूफान आ रहे हैं, गर्मी जैसे कभी कभी झलक दिखाने के लिए आती है, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का पुराना पैटर्न

0: जाती है। खासकर गर्मियों में सड़कें, खेत, पत्थर और शहरों की इमारतें तेजी से गर्मी सोख लेती हैं। फिर शाम के समय ये गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। ऊपर जाकर यही हवा ठंडी होती है और उसमें मौजूद जल वाष्प छोटे छोटे बादलों में बदल जाते हैं। कई बार ये बादल बहुत तेजी से बनते हैं और अचानक तेज बारिश करा देते हैं। इन्हें अक्सर कनेक्टिव क्लाउड कहा जाता है, क्योंकि ये बादल छोटे और अस्थायी होते हैं। बारिश खत्म होते ही वो जल्दी टूट जाते हैं और आसमान फिर साफ दिखाई देने लगता है।
1: क्योंकि ये समर सीजन है और टेम्परेचर जब दोपहर में 40 और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और हवाओं में सफिशियंट मॉइस्चर होता है, तो ऐसे में जो कन्वेक्टिव क्लाउड सिस्टम डेवलप होता है वो दोपहर के समय और शाम के समय ही ज़्यादा होता है। इसमें जो सरफेस हीटिंग है यानी जो हाई टेम्परेचर कंडीशंस है वो भी काफ़ी रोल प्ले करती है। तो विशेष रूप से जो मई के महीने में अब जो आंधी बारिश की गतिविधियाँ हो रही है ये कन्वेक्टिव सिस्टम है, मेनली हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड एयर की वजह से जो डेवलप होते हैं। तो इन सिस्टम्स का जो लाइफ साइकिल है वो 1 से 1.5 घंटा ही जनरली रहता है। और इसके अलावा बाकी समय देखेंगे तो आसमान साफ मिलेगा, इसका ही क्लियर टाइप की कंडीशंस रहेंगी और सडन डेवलपमेंट होने के बाद विद इन 1 or 2 hours ये थंडरस्टॉर्म, आंधी, तेज हवाएं, गस्टी विंड्स, लाइटनिंग, ये सब इसी कुम्बुलोनिमस क्लाउड के फीचर्स हैं।
0: मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी इस बार समय से पहले यानी मई के तीसरे हफ्ते में ही अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे सकता है। मॉनसून आने से पहले ही हवाओं में नमी और गर्मी के इस मेलजोल ने देश के तापमान को नीचे गिरा दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये ठंडी राहत वाकई कोई अच्छी खबर है? वैज्ञानिकों की माने तो बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे मौसम का पुराना पैटर्न अब पूरी तरह टूट चुका है। अब बारिश, गर्मी और तूफान का कोई फिक्स टाइम नहीं रह गया है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की चेतावनी है कि मई से जुलाई के बीच सुपर अल नीनो और मजबूत हो सकता है, जिससे भारत का मौसम आगे और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो जाएगा। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है बल्कि हमारी पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट सिस्टम एक नए अनप्रिडिक्टेबल और बेहद डरावने दौर में कदम रख चुका है।
2: धरती का बढ़ता तापमान अब आसमान से गिरने वाली बिजली को भी खतरनाक बना रहा है। भारत में पिछले 5 सालों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं 400% बढ़ी। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में हर 1 डिग्री बढ़ोतरी पर बिजली गिरने की घटनाएं 8 से 10% तक बढ़ जाती हैं। इसी वजह से भारत में हर साल 7 से 14% ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज हो रही हैं।
0: गरजते बादल, आसमान में चमकती मौत और बदलता भारत का मौसम, आसमानी बिजली ताकत इतनी कि पेड़ को बीच से भाग दे, शक्ति इतनी कि जमीन पर गिरे तो मानो आसमान को चीरते हुए नीचे गिरे। आसमान में चमकने वाली बिजली सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे ताकतवर ऊर्जा डिस्चार्ज में से एक है। एक सामान्य लाइटनिंग फ्लैश में करीब 300 मिलियन वोल्ट की ताकत होती है और उसमें लगभग 30,000 एम्पियर का करंट बहता है। जरा तुलना कीजिए, हमारे घरों में आने वाली बिजली सिर्फ 220 वोल्ट और लगभग 15 एम्पियर की होती है, यानी आसमान से गिरने वाली बिजली घरेलू बिजली से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होती है, तभी इतनी भयानक तबाही लेकर आती है। भारत में हर साल आसमान से गिरने वाली बिजली की घटनाएं 7 से 14% तक बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी बिजली गिरने की घटनाओं में 8 से 10% तक इजाफा कर सकती है।
3: जिस तरह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है उसके कारण कुछ जो पॉकेट्स में आपके थंडरस्टॉर्म और ये बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है लाइटनिंग की भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी उसमें इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हुई है, तो ये थोड़ा सा जरूर है। और इसके पीछे जो है हमारा लैंड यूज, लैंड कवर चेंज भी है, थोड़ा नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी है और मामूली सा इस पे क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है।
0: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात अब नए बिजली के हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं, वहीं

0: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान के बीकानेर और चुरू देश के सबसे ज्यादा बिजली गिरने वाले जिलों में गिने जा रहे हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और ताप्ती नदी के मैदानों में भी बिजली का खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नदियों के किनारे तेजी से बढ़ता शहरीकरण हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा कर रहा है। कंक्रीट के जंगल गर्मी को रोकते हैं, ज्यादा वाष्पीकरण होता है और आसमान में बनते हैं घातक गरज वाले बादल। अब बिजली गिरने का मौसम भी बदल चुका है। बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल देखने को मिल रही हैं। पहले तूफान के साथ बिजली गिरती थी, अब बिजली के बाद तूफान, ओले और आंधियां भी आ रही हैं। भारत में अब बिजली गिरना एक मौसमी घटना नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता राष्ट्रीय खतरा बन चुका है। साल 2025 के पहले 9 महीनों में देश में बिजली गिरने से 1456 लोगों की मौत हुई, यानी पिछले साल हर दिन औसतन 5 भारतीय आसमान से बिजली गिरने का शिकार हो रहे थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2022 में देश में 2887 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई थी। 2023 में ये संख्या घटकर 2560 हुई, लेकिन 2024 में फिर बढ़कर 2825 तक पहुंच गई। अगर पिछले दो दशकों की तुलना करें तो तस्वीर और डरावनी होती है। साल 2000 से पहले भारत में हर साल औसतन 1800 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर 2800 से 3000 मौतों के बीच पहुंच चुका है। 2025 में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 284 लोगों की जान आसमानी बिजली ने ली। इसके बाद झारखंड में 222, आंध्र प्रदेश में 192, मध्य प्रदेश में 183 और बिहार में 146 मौतें रिकॉर्ड की गई। लेकिन सिर्फ मौतें ही नहीं बढ़ रही, बिजली गिरने वाले दिनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जनवरी से सितंबर 2022 के बीच भारत में 159 लाइटनिंग इवेंट डेज दर्ज किए गए। 2023 में ये बढ़कर 176 हो गए। 2024 में 191 दिन और 2025 में 204 दिन दर्ज किए जा चुके हैं, यानी आसमान अब पहले से ज्यादा दिनों तक इलेक्ट्रिक बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मुताबिक ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्यादा मौतों की एक बड़ी वजह आबादी और कामकाजी ढांचा भी है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में लोग खेती, निर्माण और खुले मैदानों में काम करते हैं, जहां आसमान से बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
1: हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया है। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है, अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि की जिम्मेदारी मिली है, सुमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व एवं हंसराज विश्वकर्मा को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। कुमार अभिषेक, इस इन विभागों के बंटवारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? जो अपोजिशन कह रहा था कि दिल्ली और लखनऊ की जंग, क्या लखनऊ की यहां जीत हुई? क्योंकि पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं यहां पर।
1: नहीं बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, साफ है कि जो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है वही दिखाई भी दिया है। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही थी कि भूपेंद्र चौधरी को कोई बहुत बड़ा विभाग मिलेगा, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग, इसकी चर्चा थी, लेकिन वहां पर सिर्फ एमएसएमई विभाग मिला है। ये कोई बहुत भारी भरकम नहीं, एक कैबिनेट रैंक कैबिनेट है, लेकिन जो जिस विभाग की लगातार चर्चा थी वो सचमुच देखने को नहीं मिला। हाँ ये जरूर है कि मनोज पांडे का जो विभाग है खाद रसद एवं नागरिक आपूर्ति, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा विभाग है, तो ब्राह्मण चेहरे भी हैं और उनको एक बड़ा विभाग दिया गया है। बाकी अगर आप देखें तो सुमेंद्र तोमर ये स्वतंत्र प्रभार है, इनके पास ऊर्जा राज्य मंत्री थे, लेकिन अब सैनिक कल्याण और जिसे कहते हैं कि स्वतंत्र प्रभार इनको सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक ऐसे विभाग दिए गए हैं। तो ये पूरा जो विभागों का बंटवारा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हिसाब से इस बंटवारे को किया। हालांकि चर्चा तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चुकी, लगातार ये डिले हो रहा था। 10 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और आज 17 तारीख को शाम को रात को जाकर के मंत्रिमंडल बंटवारा हुआ है। तो बहुत चर्चा थी कि डिप्टी सीएम जैसे विभाग भी बदले जाएंगे, औरों को भी कई विभाग मिलेगा, लेकिन पूरे तौर पर ये मुख्यमंत्री का इकबाल दिखाई देता है कि जिस तरीके से उन्होंने विभागों का बंटवारा किया है वो साफ उनकी ही छाप इस पूरे मंत्रिमंडल पर दिखाई देती है। लेकिन जितनी चर्चाएं थी उन तमाम चर्चाओं को विराम लग गया है कि किसी को कोई कह रहा था कि पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री से लिया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन जो मुख्यमंत्री का विभाग है वो कहीं कोई उसमें कोई उसको छू नहीं सका। और जो विभाग बांटे गए, अब दोनों कैबिनेट मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं,
0: कुमार सिंह, लेकिन अब लोग ये जो इंटरनल्स की स्टोरी है कि आपने व्यक्ति तय कर लिए लेकिन आपने उनको विभाग क्या देना है, उसको देने में आपको 8 दिन लगे, इंटरनल स्टोरी क्या है, देरी के पीछे की असल वजह क्या है?
1: देखिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का एक माहौल बन रहा था कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं इनके जातीय समीकरण तय कर दिए गए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कई ऐसे विभाग है जो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें से दिया जाना है। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, वो जाकर के उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, लेकिन जिसे कहते हैं अपने मंत्रिमंडल का इकबाल रखना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ मुख्यमंत्री ने तय किया। पर इंटरनल स्टोरी की अगर आप बात करें कि इंटरनल स्टोरी, तो इंटरनल स्टोरी यही है कि बातें चाहे जो हो जाए, मुख्यमंत्री ने जो चाहा है वही किया है। हो सकता है कि जब शीर्ष के नेताओं की तरफ से कुछ बात हुई होगी तो कुछ बातें निकली होंगी, लेकिन वो बिल्कुल दो लोगों के बीच की बात है। ये बात साफ हो गया कि जो चर्चा चल रही थी कि भूपेंद्र चौधरी को एक बहुत बड़ा विभाग दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग मिल सकता है, क्योंकि याद करिए कि पीडब्ल्यूडी का विभाग पहले जितेंद्र प्रसाद के पास था, जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो मुख्यमंत्री के पास गया, लेकिन वो विभाग आज भी मुख्यमंत्री के पास है और इनको एमएसएमई जैसा विभाग दिया गया।
0: भूषण शरण सिंह के शब्दों में कहें तो दबदबा था और दबदबा दिख रहा है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads, and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The Tailgate Top 20.
6: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
5: The Tailgate Top 20.
7: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: Try to keep up.
8: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ.
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
10: लायन डेट नट बाइट्स.
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रोफाइबर है.
11: माइक्रोफाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
11: हमारे सीमेंट में नहीं है?
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
14: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे.
16: और वही कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स.
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट.
18: जेके मैक्स.
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
14: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे.
19: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
19: जहां खबर वहां खबरदार.
23: इन एसोसिएशन विद
24: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
25: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो तबड़क तबड़क
1: तबड़क तबड़क तबड़क है।
0: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at WGU.edu.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Yes, sir. Classic hip-hop. Or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है,
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
10: दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधा हिस्सेदार रहे, वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की बॉटनी के सीनियर टीचर मनीषा मांडेर तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मांडेर नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थीं। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मांडेर की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच पे जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मांडेर का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मांडेर ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए, नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मांडेर की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो दो अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का एग्जाम पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई बड़े समझौतों के आसार, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नई मंत्रियों को बटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद कल योगी सरकार की पहली कैबिनेट। केरलम के नए सीएम की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर भी कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 6 की मौत। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था पिछले 8 दिनों से। आखिरकार वो विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई मिला है, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी मिली है, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैलाश सिंह को राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व, जबकि हंस राज विश्वकर्मा को भी इंपॉर्टेंट लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यूपी कैबिनेट के विस्तार को लेकर ओपोजिशन लगातार घेर रहा था, सवाल पूछ रहा था और दिल्ली लखनऊ की जंग की बातें कर रहा था। और अब कैबिनेट का विस्तार हो गया और कल कैबिनेट की बैठक भी सुबह 9 बजे के करीब है, लेकिन सबसे वरिष्ठ इसमें भूपेंद्र चौधरी, उन्हें लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम विभाग दिया गया, एमएसएमई दिया गया है, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया है। इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। तो नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी स्वीडन के दौरे पर और स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को देशवासियों का सम्मान बताया है। 140 करोड़ की जनता का इसे सम्मान बताया। प्रधानमंत्री अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग में पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया।
1: सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कृष्णा से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: और अब आगे देखिए क्राइम कहानी शम्स ताहिर खान के साथ।
2: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानी विद शम्स में। 1984 की शुरुआती महीने में भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में एक मीटिंग थी। इसमें दोनों देशों के बड़े टॉप जो ऑफिशियल्स हैं वो हिस्सा ले रहे थे। जब मीटिंग शुरू हुई तो भारत का श्रीलंका को लेकर जो भी स्टैंड, जो भी प्लानिंग, जो भी बातें थी वो रख रहे थे। अचानक एक श्रीलंकाई ऑफिशियल्स ने उस मीटिंग में कुछ पेपर निकाले और जो भारतीय नुमाइंदे थे उनके सामने रख दिया उसने कहा आप कहते तो कुछ हैं, बताते कुछ हैं, लेकिन श्रीलंका के बारे में जो आपकी राय है, सोच है वहां की प्लानिंग को लेकर, वो बिल्कुल अलग है। अब जो भारतीय नुमाइंदा यह सुनकर हैरान कि ये क्या कह रहे हैं। फिर श्रीलंकाई ऑफिशियल ने जब पेपर सामने रखा तो वो देखकर होश उड़ गए। वो पेपर दरअसल में रॉ की एक रिपोर्ट थी अपनी खुफिया एजेंसी की, और उस रिपोर्ट में श्रीलंका को लेकर तमाम बातें कही गई थी, और रॉ के ऑफिशियल्स ने, रॉ के टॉप बॉसेस ने वो जो लेटर था वो बातें किसी और से नहीं की थी, बल्कि अपने देश के पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्ट्री, उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो चीज़ें श्रीलंका के बारे में यहाँ पे टॉप सीक्रेट लिखी गई, वो श्रीलंका का ऑफिशियल जो नई दिल्ली में मीटिंग करने आया, वो भारतीय नुमाइंदे के सामने रखकर कहता है कि आप बोलते कुछ है पर आपकी तो अंदर अंदर कुछ और चल रही है। सोचिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी। बाद में रॉ के ऑफिशियल्स हैरान रह गए कि ये पेपर इतना टॉप सीक्रेट, ये बाहर कैसे आया, श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के हाथ में कैसे। तो जब जांच की गई पता चला कि उसकी सिर्फ 3 कॉपी थी जो रॉ ने बनाई थी, उनमें से 2 कॉपी खुद रॉ के टॉप बॉस और नेक्स्ट टू टॉप बॉस उनके पास थी, और जो 3री कॉपी थी वो पीएमओ को भेजी गई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब रॉ के 2 बॉस ने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं कि हमारे यहां से लीक हो, तो फिर क्या पीएमओ से लीक हुई? शक वहीं गया। अब ये हुआ कि तफ्तीश करो, लेकिन इत्तफाक से ये तफ्तीश होती तब तक इंदिरा गांधी की मौत हो गई। फिर उसके बाद चुनाव वुनाव का मौसम आ गया, कहा गया कि भाई इसको अभी ठंडे बस्ते में डालो, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ये धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। अब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, सत्ता में आ चुके थे, और एक बार देश फिर आगे बढ़ रहा था। पर इसी दौरान एक दूसरी कहानी होती है। क्रॉट प्लेस में एक कॉपी, फोटो कॉपी का जो शॉप होता है, फोटो स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं कई बार, तो एक शॉप है क्रॉट प्लेस में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर, बेसमेंट में। ये फोटोकॉपी का जो शॉप है, इसके ओनर का नाम था उस वक्त जो वहां पे थे, वो सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा का ये फोटोकॉपी शॉप जहां पे लोग आते अपनी फोटो कॉपी कराते और चले जाते। सुभाष शर्मा से दोस्ती थी एक और शख्स की, और उनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश शर्मा असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के एक अफसर थे, खुफिया अधिकारी। तो वेद प्रकाश की सुभाष शर्मा से दोस्ती थी, तो वो अक्सर शाम के वक्त IB के लोग जो काम करते हैं वो इधर उधर भटकते हैं जहां से भी खबरें मिल जाए, लेकिन वो शाम को कभी कभी अपने दोस्त सुभाष शर्मा के क्रॉट प्लेस के इस फोटोशॉप पर, फोटोकॉपी शॉप पर पहुंच जाते और वहां बैठकर गप्पे मारते, उसके बाद चले जाते। ऐसे ही एक रोज, ये बात है 84 के अंत की, नवंबर दिसंबर का महीना है 1984, वो अपने सुभाष शर्मा के इस फोटो स्टेट कॉपी जो है शॉप, वहां बैठे हुए थे। अच्छी खासी रोशनी थी, अचानक उन्होंने देखा सामने प्रिंटर लगा हुआ था, फोटो कॉपी हो रही थी। तभी कुछ फोटो कॉपी जब निकलती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से निकलती है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि सामने वो फोटो मशीन, कॉपी मशीन रखी हुई थी और उसमें से प्रिंट आउट निकल रहा था। तभी वेद प्रकाश शर्मा की नजर एक दो कागज पर पड़ती है। उस कागज को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये यहां कैसे। अब उस पर टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही रिपोर्ट, जिस डिपार्टमेंट में खुद वेद प्रकाश शर्मा काम कर रहे हैं। अब वो देख कर सन, क्योंकि ऐसी चीजें कभी बाहर किसी फोटो कॉपी शॉप पे प्रिंट आउट कोई निकाल ही नहीं सकता, ना कॉपी कर सकता। ये सब सीक्रेट होता है, दफ्तर के अंदर ही आपके मशीन है, वहीं से आप निकालिए कॉपी। उन्हें बड़ी हैरानी होती है। फिर वो देखते हैं एक शख्स से लेकर चला गया, उन्हें लगा कि शायद कुछ होगा, छोड़ो। लेकिन दिमाग में था, क्योंकि IB के अफसर थे। उसके बाद वो नेक्स्ट पहुंचे फिर कि शायद कोई ऐसी चीज दिखे, लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो आते रहे। अच्छा, चूंकि पहले आते थे उनके दोस्त को भी कुछ शक नहीं, और अपने दोस्त को उन्होंने बताया भी नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उनकी नजर फिर पड़ी, फोटोकॉपी से प्रिंट आउट निकल रहा है, और वो देख रहे हैं कि ये एकदम डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसकी कुछ चीजें हैं। अब उन्हें लगा कि ये गड़बड़ है, क्योंकि जो चीजें मंत्रालय के बाहर नहीं आनी चाहिए वो एक प्राइवेट फोटोकॉपी शॉप में प्रिंट आउट निकल रहा है। उन्होंने उस जो बंदा आता था, एक प्यून था, उसको देखना शुरू किया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया रिएक्ट, कई दिन लगे रहे। फिर एक रोज वो आया, उसने कई सारे प्रिंटआउट निकाले। उस रोज वेद प्रकाश शर्मा ने एक कॉपी चुपचाप से चुराकर अपनी जेब में रख ली और वो फोटोकॉपी लेकर चला गया। उसके जाने के बाद जब उन्होंने वो प्रिंट आउट पढ़ा तो हैरान रह गए। वो पीएमओ से आया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहां का एक गोपनीय दस्तावेज और उसकी कॉपी वहां हो रही थी। अब उन्हें लगा मामला गड़बड़ है, वो फौरन अपने दफ्तर में अपने बॉस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कनॉट प्लेस में एक फोटोकॉपी शॉप है और वहां इस तरीके से गोपनीय दस्तावेज उसके प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं, फोटोकॉपी हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सबूत पुख्ता होना चाहिए, तो तुम नजर रखो। अब उन्होंने नजर रखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब वहां बैठने लगे तो एक रोज देखा जो प्रिंट आउट लेकर आता था और लेकर जाता था, उन्होंने आईबी के कुछ लोगों को लगा दिया सादी वर्दी में, वो फॉलो करता। जब फॉलो करना शुरू किया तो फिर पता चला कि वो वहीं कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग है हेली रोड पर, और उसी जगह पर एक दफ्तर है और उस दफ्तर के अंदर वो बंदा वो प्रिंट आउट लेकर जाता है। जब उन्होंने पता किया कि ये दफ्तर किसका है तो पता चला कि ये दफ्तर एक इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जो है उसका ये दफ्तर है। अब उस दफ्तर से इस फोटोशॉप या फिर इस जो खुफिया दस्तावेज है उसका क्या लेना देना, लेकिन ये पता चल गया कि ये कॉपी यहां से निकलती है और इस बिल्डिंग तक जाती है। अब जब ये पता चल गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दिया। फिर भी उसके ऊपर निगरानी रखते गए। फिर एक रोज रात के वक्त एक शख्स आता है, उसी फोटोकॉपी से कुछ शूट करता है, मतलब कॉपी निकालता है, और उसके बाद वो लेकर चला जाता है। आईबी वाले उसका पीछा करते हैं, वो उस बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग में जाने के बाद अंदर ही है वेद प्रकाश शर्मा को खबर मिलती है। वो अपनी टीम को तैयार करते हैं और अचानक रात के करीब 11 बजे उस बिल्डिंग पे दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने दो लोग बैठे हुए टेबल पर शराब पी रहे हैं और उसी टेबल पर एक ब्रीफ केस खुला है और उस ब्रीफ केस के अंदर के सारे कागजात टेबल पर फैले हुए हैं। उनमें से एक पेपर को जब वेद प्रकाश शर्मा जी ने उठाया और देखा तो दंग रह गए। उस रोज एक कैबिनेट की मीटिंग थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और जिस वक्त ये उस जगह पे पहुंचे रात के करीब 11 बज रहे थे। ये मीटिंग करीब 9:30 बजे खत्म हुई थी। 1.5 घंटे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के जो नोट्स थे उसका प्रिंट आउट उस शराब के टेबल पर पड़ा हुआ था। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर एक कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया, क्या फैसले लिया गया, उसके जो नोट्स बने थे उस नोट्स की कॉपी कनॉट प्लेस के एक कारोबारी के ऑफिस में एक बिल्डिंग के अंदर टेबल पर है। वेद प्रकाश शर्मा दंग। उन्होंने सारे कागजात समेटे। टेबल पर दो लोग बैठे हुए थे, उन दोनों से कहा आप कहीं नहीं जाएंगे। पूरी रात उस दफ्तर की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद सुबह तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई और इसके बाद एक एक कर छापा पड़ना शुरू हुआ। इस छापे के दौरान अलग अलग उस वक्त करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 12 लोगों के अलावा 3 देशों के एम्बेसडर और 3 देशों पर भी इस जासूसी में शामिल होने के इल्जाम लगे। इनमें एक था फ्रांस, एक था चेकोस्लोवाकिया और एक था उस वक्त ईस्ट जर्मनी, तब तक जर्मनी के 2 हिस्से हुआ करते थे, बाद में एक हो गए। आनन फानन में इन तीनों देशों के जो एम्बेसडर थे नई दिल्ली में, उन्हें कहा गया कि आप देश छोड़ दीजिए, पहली फ्लाइट लीजिए और यहां से निकल जाइए। जो 2 लोग रात को बैठकर शराब पी रहे थे उन दोनों को जब आईबी की टीम ने उठाया, सुबह तक तलाशी ली, ढेरों कागजात मिले, फिर इन दोनों को बाकायदा रेड फोर्ट लाल किला ले गए। लाल किला में इनसे लंबी पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिर पूरी कहानी सामने आई। केरल में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था कुमार नारायण। कुमार नारायण केरल में पैदा हुआ, तब देश आज़ाद हुआ नहीं था। उसने आर्मी ज्वाइन किया, अंग्रेज़ों के अंदर में वो काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद कुमार नारायण की भी जिंदगी बदली, वो अब दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसे डिफेंस मिनिस्ट्री में नौकरी लगी एक स्टेनोग्राफर की, एक टाइपिस्ट की। फिर वहां से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री गया, फिर अलग अलग मंत्रालय में काम किया। ये जो स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट होते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में इनका जो पद होता है वो बेशक नीचे होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन याद रखिएगा, ये वो दौर था जब ये ईमेल और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें मतलब दुनिया में भी आने वाली थी, बल्कि तो उससे पहले की भी बात है। तो हर काम, कोई मीटिंग भी हो रही है, नोट्स भी हो रहा है, तो सब टाइपिंग हुआ करती थी टाइपराइटर पर। तो एक स्टेनोग्राफर या एक टाइपिस्ट ये समझ लीजिए कि अगर आपके भरोसे का नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं और वो जो टाइप कर रहा है और जो लिख रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट जो बेशक टॉप सीक्रेट हो, वो फिर टॉप सीक्रेट नहीं रहते। और कुमार नारायण को अपनी इस काबिलियत का पता था। आर्मी के बाद जब वो डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब जगहों पर काम किया बतौर एक एस्ट्रोनोग्राफर, बल्कि टाइपिस्ट के तौर पर, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो चीज़ें टाइप कर रहा है। दुराज अगर जमाने के सामने आए तो पता नहीं क्या, वहीं से उसके मन में लालच आना शुरू हुआ। इतने वक्त तक उसने नौकरी की तो तमाम मंत्रालय में उसकी दोस्ती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में हो, चाहे पीएमओ में हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, हर जगह उसकी दोस्ती थी उसी ओहदे के लोगों से और ख़ासतौर पर उन्हीं सारे टाइपिस्ट से, और उन सबके पास जानकारी होती थी, पेपर भी होते थे। तो नौकरी करते करते 1959 में अचानक कुमार नारायण ने कहा कि अब हम नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इस नौकरी में इतना कुछ रहा नहीं, अब कुछ और काम करते हैं। तब तक वो सारी चीज़ें समझ चुका था। इसी के बाद उसने एक मुंबई में इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी SLM मानिक लाल, इसको ज्वाइन कर लिया और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदली। अब वो अपने पुराने रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करता। दिल्ली में दफ्तर था, उसकी तैनाती दिल्ली में हुई। अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री, PMO, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट हाउस के अपने उन दोस्तों को बुलाता, महंगी शराब पिलाता, महंगे महंगे शॉप से उनकी शॉपिंग कराता, जो भी कोई फेस्टिवल आता मिठाइयों के महंगे महंगे अच्छी मिठाई उनको गिफ्ट भेजता। और बैठकर जब ये महफिल जमती तो धीरे धीरे वो लोग भी कुछ कुछ राज बताते जाते। पहले राज मुँह से बताते, फिर धीरे धीरे बात कागज़ों पर आई। अब वो कागज़ ला कर देने लगे। वो कागज़ लेकर आते, ये महफिल शराब की जमती, कुमार नारायण चुपके से अपने एक शख्स को वो पेपर देता और कहता जाओ बराबर में हेली रोड रॉक्सी पी बराबर में, वहाँ से फोटोकॉपी करा के ले आओ। वो फोटोकॉपी करा के लाता, ओरिजिनल पेपर वापस, फोटोकॉपी इनके पास, वो चले जाते और ये सिलसिला चलता रहा 59 से 85 तक, मतलब करीब करीब 25 साल। और फिर ये इन सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग देशों के जासूस को भेजता। उनमें से एक फ्रांस थी, उस वक्त फ्रांस के साथ हमारे मिराज और बाकी सारी चीज़ें खरीदनी थी, तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट भेजता जो फ्रांस की जो जासूसी कंपनी थी वो उसका फ़ायदा उठाती कि इनका डिफेंस बजट कितना है, ये क्या खरीदने जा रहे हैं, किस देश से खरीदने जा रहे हैं। तो पहले जानकारी होती तो उसी हिसाब से वो अपनी जो बोली है वो उस रेट के हिसाब से भी लगा देते। यहाँ तक कि जो IB की रिपोर्ट होती, देश के अंदर असम कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं वो भी पेपर इनके पास आ जाता, श्रीलंका में क्या करने जा रहे हैं वो भी खबर आ जाती। मतलब IB रॉ से लेके PMO तक की हर खबर इनके पास आ जाती। और ये जो इंडिया में फ्रेंच उस वक्त एम्बेसडर थे फ्रांस के, उनको ये पता था। और कुमार नारायण उनका सबसे बड़ा एक तरह से क्लाइंट था। इसी तरीके से पोलैंड को पता चला तो पोलैंड ने पेपर खरीदने शुरू किए, ईस्ट जर्मनी को पता चला उसने खरीदने शुरू किए, यहाँ तक कि रशिया भी बीच में आया। तो अब सारे देशों के लोगों को हमारे देश के राज बिक रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बेचता रहा और सरकारी जो मुलाजिम थे वो काम करते रहे। सरकारी मुलाजिम काम करें तब तक तो ठीक है। राजीव गांधी के उस वक्त जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पर्सनल, PC Alexander, बड़ा नाम था उनका, मतलब सभी जानते हैं हम लोग PC Alexander। तो PC Alexander उस वक्त राजीव गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इसका मतलब यह है कि इस देश में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं, PC Alexander को पता होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल साथ और उनके मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि राजदार है। इन्हीं पीसी अलेक्जेंडर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर के हो गया, पीसी अलेक्जेंडर साहब के भी प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनका नाम था एनटी खेर, ये कश्मीर के रहने वाले थे। इसके अलावा एक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे के मल्होत्रा, और एक चपरासी था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तीन ऐसे नाम थे जो बड़े टॉप पे, कि पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर के अपने निजी स्टाफ तीन, ये लोग कुमार नारायण के क्लाइंट थे। पीएम हाउस में या पीएमओ में जो कुछ होता वो पेपर से लेके सारी चीजें इनको रिपोर्ट कर देते और वो दे देते। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट के मीडिया एडवाइजर थे तरलोचन सिंह जी। तरलोचन सिंह के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनका नाम था एस शंकरन। एस शंकरन भी एक क्लाइंट था कुमार नारायण के, और एस शंकरन तो 20 साल तक प्रेसिडेंट स्टेट में रहे, प्रेसिडेंट हाउस में रहे, प्रेसिडेंट हाउस में मुलाजिम रहे, और 20 साल तक, और 25 साल ये जासूसी चली, सोचिए आप 20 साल तक वो शख्स जासूस की मदद करता रहा और वो सारे राज देता रहा। तो प्रेसिडेंट हाउस, पीएमओ, इन सारी जगहों पर इनके लोग थे। अब विदेशी दूतावास को जानकारी कैसे देते थे? जैसे फ्रेंच के जो एम्बेसडर थे उनका ये था कि दिल्ली में कहीं टहलना, मॉर्निंग वॉक बहुत करते हैं जितने भी एम्बेसडर हैं, अगर आप दिल्ली में रहते तो आप जानते होंगे खास खास जगह है। तो फ्रेंच एम्बेसडर जो थे उनका बॉली नाम है, उनको कुतुब मीनार घूमने का बड़ा शौक था, वहां जाकर वॉक भी करने का, तो अक्सर कुतुब मीनार जाते और वहीं पे कुमार नारायण उनको टहलते हुए मिलता और फिर पेपर या सूचनाओं का आदान प्रदान होता। तो अलग अलग तरीके से ये लोग ये सारी खुफिया जानकारी एक दूसरे को देते रहते और 25 साल तक ये चीज़ें चलती रही। क्या क्या जानकारी इस दौरान में पिछले 25 सालों में 1960 से 1985 तक कुमार नारायणन ने मतलब तीन देश और बाकी पता नहीं कितने लोगों को दिया, उसकी जब एक छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लिस्ट निकली, पेपर मिले, तो पता चला कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया के, हमारी जो मिलिट्री है कहाँ पे क्या पोस्टिंग तैनाती है, हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हम फ्यूचर में या अभी करने जा रहे हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, डिफेंस प्लानिंग हमारे फ्यूचर की क्या है, किससे क्या हमें हथियार खरीदने हैं, किससे कौन से जंगी जहाज खरीदने हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट की पूरी किस किस देश से क्या कितने पैसे में खरीदना है, कौन सस्ता देगा, इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी किस देश के साथ आगे हमें कैसे रिश्ता बना के रखना है, रॉ की सारी रिपोर्ट के पेपर, आईबी के सारे रिपोर्ट के पेपर, ये सारी चीजें, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी, मतलब कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो 25 साल में कुमार नारायण ने भेजा दी। इसके बाद जब ये सारा खुला, इन्वेस्टिगेशन हुई 17 साल तक, अब आप यहां पे भी देखिए, फिर वही कोर्ट की हम बात करते हैं, 17 साल तक कोर्ट में मुकदमा चला, 85 में अरेस्टिंग हुई थी उसका 17 साल, 2002 में पहली बार दिल्ली की अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में 13 लोगों को सजा सुनाई गई। जो मानेकलाल कंपनी के मालिक थे योगेश, उनको 14 साल की सजा हुई। उसकी वजह यह थी कि जो ये सारे राज चुराए थे कुमार नारायण ने यूरोप में और बाकी जगहों पर, इस कंपनी को बहुत सारे ठेके मिले इसी राज के बदले में, तो इस जासूसी कांड के एक किरदार वो भी थे, तो उनको 14 ईयर्स कैद की सजा मिली 2002 में। इसके अलावा कुल 12 सरकारी अफसर, कई रिटायर हो गए थे, कई सर्विस में थे, 100 मौजूदा मिलाकर 12 गवर्नमेंट एम्प्लाई जो इस जासूसी कांड में शामिल थे उनको 12-12 साल की कैद की सजा हुई, और इन 12 लोगों में 4 थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले लोग, 4। इसके अलावा 4 थे जो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, तो ये 12 सरकारी अफसर थे। सभी को सजा मिली, लेकिन इस जासूसी का जो किंग पिन, जो मास्टरमाइंड था कुमार नारायण, उसको सजा नहीं सुनाई जा सकी। उसकी वजह ये थी कि 2002 में ये फैसला आया और 2000 मार्च के महीने में कुमार नारायण अपनी मौत खुद मर गया। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई बड़े समझौतों के आसार। भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन के बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को मिले भी प्रभार। विस्तार के बाद कल योगी क्या सरकार का पहले कैबिनेट। केरलम के नए सीएम की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीट। और केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन सीबीआई कस्टडी में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंचे दिल्ली एम्स की टीम।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, इस केस की कई कड़ियां जुड़ती जा रही, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा उसका उनका सीधा संबंध एनटीए से है। वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने पेपर लीक की साजिश रची। अब तक इस केस में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। वहीं पेशी के दौरान पत्रकारों ने मनीषा मंधारे से कई सवाल किए, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
1: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं, कितने
2: क्या कहेंगे आपने,
1: और कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व है इसमें, क्या एनटीए का और भी कोई इन्वॉल्व है आपके साथ,
2: आप खुद टीचर हैं,
1: आपने
3: तुम्हें गैर फायदा के तुम्हारे जो एक्सेस होता था
1: 22 लाख बच्चे हैं आपके वजह से दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं,
2: क्या एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपको, मनीषा जी क्या एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपके साथ,
3: आपको
1: और भी और कितने लोग शामिल हैं
3: आपके साथ शामिल रहे हैं,
4: मनीषा जी कितने पैसे में आपने ये न्यूज पेपर बेचा था स्टूडेंट्स को,
3: मनीषा जी आपको
0: क्या एनटीए के इनसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक करवाया? यह सवाल बीते दो दिनों में दो गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग वाली टीम से जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनके साजिश में शामिल थे।

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है। 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी और छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं। कुछ कहना

0: लीग का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
1: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
1: क्या एनडीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
2: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी, और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत

0: बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
1: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
2: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था दो साल पहले। आज एक स्टूडेंट दो साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है, और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
3: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी ट्वेल्थ का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है, और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है, और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं, और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
1: विपक्ष के हमले जारी हैं, पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
4: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
1: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
5: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कभी
2: कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं पे लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही
3: है। कहाँ तक दिया गया?
4: या आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है, इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
4: दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
8: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
3: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया गया
8: जी जी।
3: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
8: रहा है। नहीं नहीं, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
3: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर लिया,
8: आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
9: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: TuneIn has the music.
12: Take a vacation with poolside hits on TuneIn. TuneIn Poolside has the music I love. Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
13: Let's go. Yeah,
12: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गार्ड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का किया जिक्र, कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती, स्वीडन के सहयोग पर दिया धन्यवाद। स्वीडन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, स्वीडन के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट बागवानी की, फाइटर जेट ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। नीदरलैंड के बाद स्वीडन में भी भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, बंगाली संस्कृति की पीएम मोदी ने की सराहना, कहा कि बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय, स्वीडन भी इससे अछूता नहीं। यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे संभालेंगे खाद्य रसद विभाग, अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली मीटिंग, सीएम आवास पर मंत्रणा। लखनऊ में अनुदेशकों के सम्मान समारोह में बोले सीएम योगी, युद्ध का पूरी दुनिया पर असर, चरम पर अमेरिका में महंगाई, पीएम ने लोगों को राहत के लिए फैसले लिए। केरल में आज सीएम पद की शपथ लेंगे सतीशन, मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। केरल में सतीशन के द्वारा राज्यपाल को 20 मंत्रियों की सूची सौंपी गई है, कांग्रेस के 11 विधायक इसमें शपथ लेंगे। वायनाड में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज, राहुल प्रियंका के खिलाफ लगे थे पोस्टर्स। नीट, सीबीएसई और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, सरकार को तो छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। नीट उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल ने जारी किया एक वीडियो संदेश, कहा कि घबराहट में ना उठाएं कोई भी गलत कदम, मुझे अपना सुझाव भेजें। नीट पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई के रिमांड, मनीषा मंधारे एनटीए के एक्सपर्ट टीम में शामिल थे, अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी, लातूर में कोचिंग संस्थान के प्रमोटर से पूछताछ। नीट पेपर लीक विवाद के बीच में एनटीए के स्टाफ में भारी कमी, 16 में से 8 शीर्ष पद अब भी खाली है, हाल के 4 नए सीनियर अधिकारियों की नियुक्तियां हुई। बजट को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें और 24 अतिरिक्त ट्रिप भी लगाएगी। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम फिर से बढ़े, 1 रुपए की बढ़ोतरी, 2 दिन पहले 2 रुपए बढ़ाए गए थे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा था सोशल मीडिया पर महंगाई मैन बताया। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद से आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बस्तर में कई सारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर नगर निगम के नवनिर्मित एसीबी प्लांट का किया दौरा, वृक्षारोपण अभियान में भी लिया हिस्सा। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली सरकार। बंगाल में खरदहा में ऑनलाइन लॉटरी की दुकान में तोड़फोड़ की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छापा मारकर हंगामा किया। आसनसोल के मोहिशेला में धन्यवाद रैली में शामिल हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल, भ्रष्टाचार पर बोले कि भाई चोर का होगा हिसाब। कोलकाता में नाखुदा मस्जिद में इमाम मोहम्मद शफीक अहमद का बड़ा बयान, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखती है। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर पर चला बुलडोजर, नाराज वकीलों ने जमकर किया प्रदर्शन। रतलाम में त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही थी ट्रेन। उत्तराखंड में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा और एनसीबी ने 227 किलो से ज्यादा की ड्रग को बरामद की, सीबीआई नागरिक भी अरेस्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 6.5 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए गए, बैंकॉक आई यात्री के बैग से हाइब्रिड गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। देवघर में नशे के पांच सौदागर गिरफ्तार किया गया, आरोपियों के पास 102 ग्राम मादक पदार्थ और 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद। कूचबिहार में ईद से पहले पशुओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, बीएसएफ के साथ अभियान में अब तक 17 मवेशियों को बचाया गया, 1 गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में 4 जजों की बढ़ोतरी का अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37। उधम सिंह नगर में सिडकुल को जोड़ने वाले पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास, लगभग 11.40 करोड़ की लागत से बनाया पुल। बिहार के सहरसा में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कार्यकर्ताओं को वैचारिक संगठनात्मक और राजनीतिक प्रशिक्षण का गुण सिखाया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर जताई आपत्ति, कहा कि यह विवादित गीत है, इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मोर्चाला के फैसले पर बोले दिग्विजय सिंह, हाईकोर्ट का आदेश साफ नहीं है, एएसआई संरक्षित जगह पूजा की जगह नहीं। पंजाब के होशियारपुर में कैदी ने पुलिस पर चाकू से किया हमला और आत्मरक्षा में पुलिस कर्मी ने कैदी पर दागी गोलियां। राजस्थान के नागौर में 2 कारों के टक्कर हादसे में 4 लोगों की मौत।
दिल्ली के एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के मासूम की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। जालंधर में थाने से 600 मीटर की दूरी पर सरेआम स्नेचिंग, बच्चे के साथ चिल्लाती रही महिला, घटना सीसीटीवी में कैद। दुर्ग में अंतर्राज्यीय चोर दामाद गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 13 लाख से ज्यादा की रुपए इनके पास से जब्त। एमपी के छतरपुर में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप, सीसीटीवी फुटेज वायरल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कल्याण में 14 साल के बच्चे से रेप, रेलवे क्राइम ब्रांच और जीआरपी ने आरोपी सौरभ सोनवणे को अरेस्ट किया। गुजरात के महीसागर में सड़क हादसे बेकाबू, इको कार की टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरत के लसकाना इलाके में कंटेनर से टकराया बाइक सवार, हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में स्कॉर्पियो का कहर, जूस ठेले के पास में खड़े लोगों को रौंदा, एक की मौत, कई घायल। जयपुर के जगतपुरी इलाके में 3 रुपए की दहशत, घटना सीसीटीवी में कैद, सतर्क रहने की लोगों से अपील। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में आकाशीय बिजली गिरने से 10 भैंसों की मौत, पशुपालकों ने राहत की मांग की है। जूनागढ़ में एक खाली चाय की तस्करी ने बुजुर्ग महिला की हत्या का रहस्य सुलझा दिया, मृतक के बेटे के दोस्त ने इस वारदात को दिया था अंजाम। भोपाल में अश्लील फोटो बनाकर छात्रा को दो युवकों ने किया ब्लैकमेल, 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बिहार के गोपालगंज में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए गई प्रेमी की पीट पीट कर हत्या, शादीशुदा महिला ने काफी समय पहले से इसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में पूरा, और दोनों ही देशों के बीच में आपसी तालमेल, रक्षा सहयोग को बढ़ावा। अकोला वर्धा में 46 डिग्री सेल्सियस ने लोगों को झुलसाया, अमरावती में भी सड़कों पर सन्नाटा। प्रयागराज में लू और भीषण गर्मी का कहर, 45 डिग्री के पार पारा, लोग परेशान। श्रीनगर में पारंपरिक जल संरक्षण और सामुदायिक उत्सव का दिखा अनूठा संगम, फिशिंग एंड क्लीनिंग फेस्टिवल में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। चमोली में चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर के से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आज करेंगे पवित्र धाम के कपाट। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मानों का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम ढील को भी मिलेगा पद्मश्री, और अलगोजाबादन के लिए ये सम्मान उन्हें मिलेगा। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में जगतगुरु रामभद्राचार्य का कथावाचन, महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा फ्री किचन में श्रद्धालुओं को मिलता रहेगा खाना, गेल इंडिया ने पीएनजी पाइपलाइन का शुभारंभ किया। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत में उमड़ा आस्था का सैलाब, अमरावती में अंबाजी मंदिर में आस्था का माहौल। ईरान पर हमलों की तैयारी में अमेरिका खाड़ी देशों से सैन्य परिवहन ले रहा है वापस, सैन्य उपकरणों को सुरक्षित करने की कोशिश। अमेरिका के सहयोगी देशों को ईरान की बड़ी चेतावनी, हिंसा के लिए सहयोगी देश होंगे जिम्मेदार। ईरान के सरकारी टीवी शो पर लाइव शो के दौरान यूएई के झंडे पर चलाए गए गोले, एंकर ने यूएई के ध्वज को बनाया निशाना। इटली के मोडेना में कार भीड़ में जा घुसी, इसमें 8 लोग घायल, 4 गंभीर रूप से घायल। फुटबॉल में 8 साल के बाद आमने सामने होंगे दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, 20 मई को वुमेन एशियन चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश में तेल की कीमतें आपका पसीना छुड़ाने वाली हैं और 3 रुपए महंगा हुआ ये तेल देश में कितनी महंगाई बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि आपकी रसोई, आपका बजट, इन सब पर सीधा हमला है। इसलिए आपको महंगाई के नए दौर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तेल महंगा यानी भाड़ा महंगा, भाड़ा महंगा मतलब सामान की कीमतें महंगी, इसके साथ ही आपका आना जाना महंगा। आज सरकार युद्ध की वजह से सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों का की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई को लेकर डरा हुआ है। और आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर, आपके इलाके में जो सब्जियां, फल, रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है उससे भी यही होने वाला है। कैसे, वो समझिए। अगर एक बाइक सवार हर महीने से में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास कार है उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2-5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं वो 7-10% भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2-4% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5-7% महंगे हो सकते हैं। अनाज, दाल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, अधिकतम 2% महंगी हो सकती है। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे, तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और ये 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब ये होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना, सामान, वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है, लेकिन थोक महंगाई दर 8.3% पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है, इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था, 15.08, अभी कितना है, 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर, 8.3% पर सर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई पर 5% की दर से बढ़ी और ये 8.3% हो गई। सोचिए, ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसका असर कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा इन चीजों का, माल ढुलाई का, वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है, और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान युद्ध से पहले जानते हैं कितना था, $68 और अब $108 हो गया है। दुनिया के 98 देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही युद्ध के कारण इन कीमतों को बढ़ा दिया था। तब भारत ने न सिर्फ तेल की किल्लत होने दी बल्कि 14 मई तक इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब 3 रुपए की वृद्धि हुई है और कई देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमत जो है वो कम हुई है। आइए युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस देश में कितनी बढ़ी हैं वो जल्दी से आपको जरा यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिएगा, पीला कर लेती हूँ, ये देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है। कोई गेसवर्क करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो भारत का कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक ही वो देश है जिसका नाम है P for Pakistan, 61% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया है पेट्रोल कीमत की कीमत 50.5%। मलेशिया 58%, यूएई 52%, अमेरिका 46%, श्रीलंका 38%, नेपाल 38%, 34%, कनाडा, साउथ अफ्रीका 33%, चाइना 25%, फ्रांस 22%। तो ये पूरा आपको यहां से लेकर तमाम देशों का हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहां पर आते हैं जहां पर कम वृद्धि हुई है, उन देशों में आप ब्रिटेन को रख सकते हैं 19.1%, फिर है साउथ कोरिया 19.7% है, 17% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, इसराइल में 16.7%, बांग्लादेश में भी 16.7%, इटली में 16.2%, जर्मनी में 10.7%, जापान में 9.70% और 3.2% ये भारत का वृद्धि परसेंटेज है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव होंगे बाकी कीमतों पर। और खुदरा महंगाई दर तो हमने आपको बताया 3.5% है, लेकिन 8.3% के स्तर पर होलसेल महंगाई दर जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की जो औसतन कीमत है वो हम आपको तमाम देशों का दिखा रहे हैं, तो इसमें आप इस पर नजर डालिएगा। तो फ्रांस में 227, हमने आपके लिए सब रुपया में कन्वर्ट किया ताकि रुपये में आपको समझ में आए, 227.81 रुपया, मतलब 227.81 रुपया। जर्मनी 219 रुपया, नंबर 2 पर इसकी यहां पर कीमत है। फिर आ गया इटली, इटली में देखिए 216.99 रुपये, ब्रिटेन 203, कनाडा, इसको जरा ब्लू कर लेते हैं तब ये ठीक से समझ में आएगा, कनाडा में देखिए 148.72, मतलब 150 रुपये के आसपास, साउथ कोरिया में भी 146 रुपया है, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में 143 रुपया, पाकिस्तान में 142 रुपया, श्रीलंका में 139 रुपया, नेपाल में 135 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 127 रुपये, अमेरिका में 121 रुपये, बांग्लादेश में 108 रुपये, लगभग 109 रुपये है, 103 रुपये के आसपास यहाँ पर जर्मनी में है, सॉरी जापान में है, और भारत में 101 रुपये पर पेट्रोल की कीमतें फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हमने ये कोशिश किया कि हर देश में जब रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पेट्रोल की कीमत है औसतन 1 लीटर की, वो हम आपको बताएं कि बाकी देशों की तुलना में भारत इन कीमतों में कहां पर है। तो ये हमने आपको नंबर्स बता दिए कि जब आप अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली सब जगह जाएंगे तो भारत में 101 रुपये उसकी कीमत है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा है, जो खुदरा महंगाई उसमें है, लेकिन जब आप विश्व के साथ कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के आसपास भारत की है। अब यहां कांग्रेस ये कह रही है कि अगर साल 2016 से 26 तक देखें तो बाकी देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंकड़े में थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें आंकड़े 2014 के लिए से लिए गए हैं, और अब इस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिना लाग लपेट के असली आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं 1 अप्रैल 2014 से। तो चलिए यहां से आपको हम ये पूरा नंबर दिखाना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है, 21.74 रुपये, जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत, जो हरे रंग से है ऊपर में कोने में दिखा दीजिए ये ताकि उनको रेफरेंस समझ में आ जाए, ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है, तो ये थी डीजल की कीमत और 33.71 रुपये थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई, और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 55.49, मतलब 55 रुपये 49 पैसे पर डीजल था उस वक्त और 72 रुपये 26 पैसे पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई। अब इसमें आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे है, वृद्धि कितनी है 63.4%। यहां पर कितनी थी 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है 35.3%। ये हमने अभी का आंकड़ा 15 मई 2026 का निकाला है आपके लिए। तो ये पूरा जो पूरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 से लेकर 26 तक का, 35.3% वृद्धि है पेट्रोल में, और तब कितनी थी 114.4% की वृद्धि थी। तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है। 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखिए तो वहां पर 10 साल है, और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। ये तस्वीरें उस दौर की है जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार है। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबह नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है। उसी से बचने की बात देश में हो रही है। लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर IMF से $58 बिलियन का बेलआउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको IMF से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेलआउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गईं कि हमारे जैसा देश, मेहनती स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको IMF से लोन लेना पड़ रहा है और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। ये अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश सोना दे सकते हैं वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या? इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचिए जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपने निजी सोना सरकार को देन दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का, लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक साल तो भूल जाइए। ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है। स्वाहा। खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है, जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और यह सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी, जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। और यहां तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं और सोचिए इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर ये संकट एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचाकर रखना है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है। और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से युद्ध के पहले की स्थिति पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। यहां आप कहेंगे कि युद्ध तो रुक चुका है, 7 अप्रैल से सीज फायर है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलती है, क्योंकि स्थिति हमने आपको बता दी, युद्ध रुका हुआ है। युद्ध रुका हुआ तब माना जाता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका होता। युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला है। जब तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही कर रहे होते तब स्थिति सामान्य होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह समुद्री रास्ता अब भी बंद है, इसकी वजह से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति लगभग ठप है। बड़ी बात यह है कि अब तो यह कागजी सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है। ईरान ने समझौता करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जो शर्तें बताई थी, उन शर्तों को राष्ट्रपति ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में फेंकने की बात कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस युद्ध में लागू हुआ सीज फायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सीज फायर कोई कह रहे हैं कि आईसीयू में है, आईसीयू भी नहीं, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, मतलब आखिरी सांसें चल रही हैं, जिसके बचने की बहुत कम संभावना है। बहुत जल्द ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस धमकी को सुनिए, समझिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, जब सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे अपील करना क्यों जरूरी था?
1: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Bad prognostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: अमेरिका का मीडिया दावा यह कर रहा है कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हकीकत में फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। सीएनएन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दोबारा से हमले करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो ईरान द्वारा रखी जा रही शर्तों से नाराज हैं और उन्हें यह लगता है कि ईरान इस समझौते को करने के लिए गंभीर नहीं है। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफ दिया और इस ब्रीफ में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके खिलाफ आक्रामक रुख को अपनाना बहुत जरूरी है और पेंटागन के अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर फिर से हमला होना ही चाहिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ना तो सीज फायर का कोई फायदा है, ना ही ये उम्मीद करना सही है कि अगले कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। ना रास्ता तेल गैस का खुला है और ना ही ये सीज फायर परमानेंट दिख रहा है। हकीकत तो ये है कि जैसे बॉक्सिंग रिंग के मैच में एक राउंड खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक के बाद बॉक्सिंग का मुकाबला फिर से शुरू हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बदलते हुए फैसले को देखते हुए इसकी संभावना जताई जा रही है। आप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।
3: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे।
0: अमेरिकी मीडिया का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले 2 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में लगभग 1 साल या फिर 8 से 10 महीने लगेंगे। अगर यही हॉर्मूज 6 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं और अगर यही हॉर्मूज 1 साल बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई 3 साल बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी से अच्छी स्थिति में भी ये संकट 2027 तक खत्म होगा और बुरी से बुरी स्थिति में ये 2029 तक खींच सकता है। अब सोचिए 2029 तक अगर कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल भी रही तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव आएगा। हमें हर दिन उतनी कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना होगा जो युद्ध से पहले की कीमतों से 66% ज्यादा होंगी और क्योंकि तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य होता है, इसके लिए भारत ज्यादा कीमतों पर भी कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर रहेगा और फिर हम लोगों की जेब पर जो मार पड़ेगी वो स्वाभाविक है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ये कहा है कि वो तेल का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, जबकि सोने को वो 1 साल तक खरीदे ही नहीं। सोना एक लग्जरी आइटम है, इसके ना होने पर गुजारा किया जा सकता है। अगर आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? शायद उन परिवारों में थोड़ी मायूसी होगी जिनके घर में शादी है, लेकिन अगर तेल नहीं मिलेगा तो पूरा देश रुक जाएगा। और यही कारण है कि तेल हमें खरीदना ही खरीदना है। तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। तो समझिए ऐसे कि आपके पास अपने घर खर्च के लिए रुपए हैं, वैसे ही देश में जब हमें कुछ विदेश से खरीदना होता है तो हमारे पास फिक्स्ड डॉलर है और वो डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। अब वो हमारे पास फिक्स्ड है, हमें यह तय करना है कि हम उससे सोना ज्यादा खरीद कर देश में लाना चाहते हैं क्योंकि सबको सोना खरीदना है भारत में, या हम उससे तेल खरीदना चाहते हैं क्योंकि तेल के बिना अर्थव्यवस्था थम जाएगी और तेल जरूरी है। ऐसे में हमें वो विदेशी मुद्रा भंडार तेल के लिए ज्यादा रखना चाहिए, तेल के खरीद के लिए, क्योंकि ये खर्च कहां होता है विदेशी मुद्रा भंडार? ऐसे ही क्रूड ऑयल पर होता है, तेल पर होता है, या फिर जो खाने वाले एडिबल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होता है। तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है क्योंकि तेल गैस अभी की स्थिति, जितना हम बाहर से आयात करते हैं उस स्थिति में हमें हर हाल में खरीदना ही होगा। हमें जितने डॉलर बचाकर रखेंगे उतना हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रख पाएंगे और तेल को ज्यादा कीमतों पर खरीद कर भी स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है। भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की है, लेकिन दूसरे देशों में वो हो रहा है जिसके बारे में आपने अभी तक अपने देश में हमने स्थिति नहीं देखी है, सोचा नहीं है। जैसे थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह की लिफ्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है कि भाई किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगा। थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए और कम से कम ही एसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन सोचिए क्या वहां इस पर कोई राजनीति हुई? भारत और थाईलैंड में फर्क यह है कि थाईलैंड में न्यूज एंकर्स और वहां के नागरिक लाइव प्रसारण के दौरान अपना कोट उतारकर बिजली और तेल बचा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी एंकर या नागरिक ने कह दिया कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है और एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा, तेल की बचत करेगा, तो उसको तुरंत सरकार से जोड़ दिया जाएगा। भाई फैसला सरकार का हो सकता है, लेकिन देश तो अपना है। थाईलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है। थाईलैंड क्या, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भी सभी गाड़ियों के लिए एक फ्यूल लिमिट तय की गई है, जिसमें दो पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है, लेकिन वहां भी कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी पेट्रोल पंपों को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन श्रीलंका में भी कोई राजनीति नहीं हो रही है। तमाम ऐसे देश हैं जो हॉर्मूज के तेल से सीधा प्रभावित होते हैं। फिलीपींस, बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। लंच ब्रेक के दौरान लाइट्स कंप्यूटर सब बंद करने के आदेश है, लेकिन फिलीपींस में इसको सरकार की नाकामी छिपाने के लिए उनके एसी टेम्परेचर का कंट्रोल सरकार ने हाथ में ले लिया है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वियतनाम में भी वहां के लोग इस फैसले का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, वहां पहले ही से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, 60% सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की गई है, 60% सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में आम लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं या जो सामान्य पेट्रोल सामान्य डीजल आपको मिलता है, उसकी कीमतें पिछले साल से एक बार भी नहीं बढ़ी है और इसके लिए कई देशों ने भारत की तारीफ की है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, यह भी बताना जरूरी है, लेकिन जब संकट बढ़ रहा है इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कम तेल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम चूज करें, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राएं टाल दें, तो ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं, सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी,

0: 90% से कहीं ज्यादा सोना तो हम बाहर से खरीदते हैं, उसके लिए हमको अपने डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। यानी जब संकट नहीं थी तब भी यूपीए की सरकार ये समझ रही थी कि अगर सोना इसी तरह से लोग खरीदते रहे तो हमें नुकसान हो सकता है, और वह तब सरकार कह रही थी लोगों से कि कम सोना खरीदिए। लेकिन जब संकट है, संकट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को क्या हक है वो लोगों को अपने पैसे से सोना खरीदने से रोके। सुनिए।
1: There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports.
0: यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई, बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई, बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की इतनी ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मूज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। सुनिए।
2: डोंट डिमांड गोल्ड एंड वी डोंट हैव टू इंपोर्ट गोल्ड फॉर वन ईयर। जस्ट इमेजिन फॉर वन ईयर द होल सिचुएशन विल सो ड्रामेटिकली चेंज। यू थिंक यू आर बाइंग गोल्ड इन रुपीज बट एक्चुअली यू आर बाइंग गोल्ड इन डॉलर्स। I would once again appeal to everyone, please resist the temptation to buy gold. And if we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit.
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाइना की बात सुनिए। चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स। एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते, और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब यह हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन से जनता से अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों की को अपनाने की अपील की थी। 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी, और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दें। पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी भारत में खाद्य संकट

0: कट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसे, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है। उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी अपील को पूरे देश ने माना। 1974 में जब अरब और इजराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी, लेकिन यह बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से यह अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो। और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है। और वेस्ट एशिया का यह युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है।
1: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
0: आज एक सवाल और है कि क्या देश हित में सोने की खरीद का त्याग भी नहीं किया जा सकता? आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए, अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब ईरान के लिए भारत के लोग अपना सोना दान दे सकते हैं, तो अपने देश भारत के लिए सिर्फ एक साल सोना खरीदना बंद करने में कौन सा तूफान आ जाएगा?

0: इसमें जो लोग आते हैं जोग दर जोग और इस डोनेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मदद का इजहार करके यहाँ पे जेवरात, नकदी और बर्तन जो भी है उनके पास वो डोनेट करते हैं।
1: हमें ईरान के साथ एक मजहबी वाबस्तगी है, उस वजह से यहाँ की आवाम ने पुरजोश होकर जो उनका कीमती एहसास है, जो चाहे उनके पास सोना हो, पैसा हो या जेवरात हो या बाकी असासा जो उनके पास मौजूद हैं, वो उन्होंने इस बड़े मकसद के लिए यहाँ पे जमा किया है।
2: काफ़ी ज़रूरत है ईरान की आवाम के लिए। हमारे जो हाल ही में रहबर मौज़म की शहादत हुई है, हमारी जानी कुर्बान, माल कुर्बान, हमारे औलाद कुर्बान,
3: मेरी हजार हुई थी
4: सारे दिन।
3: हाँ।
4: क्यों दिया?
3: मैंने एक साल तक ये पैसे किए थे जमा, ये मैंने ईरान की मदद करने के लिए दिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार।
5: मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में, हमने देखा, मेट्रो पर यात्रा की है। मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या कदम उठाए हैं?
6: देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद, मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का कारकेट कम किया। हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी। अच्छा। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खासकर अभी का संदेश, वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है। ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने, मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है।
5: मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए, वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है तो आप कार पूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस लगना चाहिए, दिल्ली में फैसला भी हुआ है। फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं। अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है।
6: देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए के डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्हें ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और मैं देश को बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है। हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी, ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्यप्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोग दिखावा, इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है, जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का, जिसपे हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है, वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए।
5: अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने अपने एक, जितना मुझे याद आ रहा है, आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई, उनके उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का, तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिलाध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है।
6: नहीं, ये जो आपने कहा, हमने तुरंत इस दिशा में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगल मंडल अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ, इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे, और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे।
5: अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत है। तो अब इस पर क्या है, क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है?
6: देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं। आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं? और उनके खर्चे पे भी प्रश्न उठे, मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पे अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पे भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी, सच में मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते। आप बताइए, चुनाव यहां चलते हैं और वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी काउंटिंग के दिन भी जो अपने देश के अंदर नहीं रहेंगे और आने के बाद वो जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बहुत पवित्र पद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसमें लंबे समय तक देश के सामने, नहीं दुनिया के सामने, हमारे लोकतंत्र के लिए गरिमा और गौरव वाले पद पे एक अपोजिशन के लीडर का जो गरिमा और व्यक्तित्व होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने निराश किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है, उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना 1 साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी है, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है, लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो यह संकट कटने वाला है नहीं, क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अब तो जनता यह भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी आपने 3-3 रुपए, दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब।
4: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं। और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है, उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं। अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्रहित के अंदर उन्होंने अपील किया है, और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग न करें उसके बारे में हमने कहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के विकल्प किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा तो ऐसा नहीं है, देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और ये राष्ट्रहित में सर्वोपरि है, ये हमारा प्रयास है, हम उसको लेकर के अंजना जी काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मैंने कहा है कि ये विशेष एक व्यक्ति या एक उसके लिए नहीं है, समस्त राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की इसके अंदर जिम्मेवारी है कि इसमें आगे बढ़कर के अपना योगदान देने का वो काम करे। इस वैश्विक संकट से हमने आगे गति से बढ़ना है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत, उसमें इस प्रकार की समस्याएं संकट ये वैश्विक आते हैं उनका हम मिलकर के सामना करें।
7: कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सद में आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुए है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कोई बुलडो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
3: कहाँ तक दिया गया?
4: या आगे आगे तक दिया गया, इसके आगे जो भी है। इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के आदेश दिया गया
4: जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने थे, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
8: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया
8: गया जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
8: रहा है। नहीं नहीं, ऐसा सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर लिया,
8: आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
9: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
10: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
11: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
9: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
12: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
9: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मंदी का गुस्सा फूटा, मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
13: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा, जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहां रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। ठीक, इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
9: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए से सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया? ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे, वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और तीसरी वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
5: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
5: नीट में दो साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
6: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था दो साल पहले। आज एक स्टूडेंट दो साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
7: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है, और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैक मनी भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
8: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की कटौती करने वाली अपील के बाद दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। तय किया है कि आज से दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। डीएमआरसी के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेनों के 24 अधिक फेरे रोजाना लगेंगे। इसके लिए 6 अधिक मेट्रो ट्रेनें लगाने का फैसला किया है। मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमें उन्होंने तेल की खपत करने के लिए देशवासियों से अपील की है। कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, इसी मकसद से मेट्रो ने यह फैसला किया है। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
9: People say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League. Fanatical about the FA Cup. And rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज है। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में एक बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए, मेरे पिताजी देखिए इनकी हालत क्या है।
1: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
1: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर ढहा दिए।
3: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जाए।
1: कहाँ तक दिया गया?
3: ये आगे आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
1: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
3: दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।

0: चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए, बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
2: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा कह रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। वो तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
3: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है कि इस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
1: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा, मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
4: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली, और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए। लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा। जब बंकी

0: बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
1: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए से सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस के आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाए हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से, जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
1: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
1: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
3: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही
1: है। कहाँ तक दिया गया?
3: ये आगे आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है, इसके आगे
1: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
3: दिया गया। जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
1: कितने गिराने थे, कितने गिरा रहे हैं?
3: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
4: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
5: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
1: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
6: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया
6: गया? जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
6: रहा है? नहीं नहीं, ऐसा सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
6: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
7: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
8: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
9: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा कह रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। वो तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
7: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चला। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में IOW विभाग, RPF और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
10: ये बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
7: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा। मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
11: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा, जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहां रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
7: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए से सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वह एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस के आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है, नीट परीक्षा के पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया, हमने सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दी। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्य को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सद में आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कभी कोई नोटिस
2: कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं पे लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
3: कहाँ तक दिया गया?
4: या आगे तक दिया गया, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट हाईकोर्ट के आदेश
4: दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले एक्टिंग एक्टिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
8: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया गया
8: जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
8: रहा है। नहीं नहीं, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
8: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
9: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
10: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में

0: कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए, बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
2: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे, अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में IOW विभाग, RPF और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
3: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
1: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा, मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
4: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा, जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहां रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
1: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ NTA की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका NTA से सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं NTA प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या NTA के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया?

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की कटौती करने वाली अपील के बाद दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। तय किया है कि आज से दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। डीएमआरसी के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेनों के 24 अधिक फेरे रोजाना लगेंगे। इसके लिए 6 अधिक मेट्रो ट्रेनें लगाने का फैसला किया है। मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमें उन्होंने तेल की खपत करने के लिए देशवासियों से अपील की है। कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, इसी मकसद से मेट्रो ने यह फैसला किया है। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।
1: देखिए, पुलिसकर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सद में आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से, जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
2: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुए है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैम्बर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैम्बर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैम्बर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैम्बर बने थे।
1: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैम्बर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
3: अभी हम लोगों लोगों को ना नोटिस मिली ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
2: पिताजी
3: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा बताइए।
2: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस
3: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है बताइए, अभी हमको तो 7-8 साल हुए हैं भाई। ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए
2: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैम्बर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
1: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैम्बर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैम्बर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं पे लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
2: कहाँ तक दिया गया?
4: या आगे आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
2: लगभग हाईकोर्ट हाईकोर्ट के आदेश
4: दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
2: गिराने के कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैम्बर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैम्बर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैम्बर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैम्बर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैम्बर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
2: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
1: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
7: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
2: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया गया
7: जी जी।
2: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
7: रहा है। नहीं नहीं, ऐसा सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
2: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैम्बर में बंद कर
7: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
1: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैम्बर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
8: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
9: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा कह रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे, अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
0: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
10: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
0: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है। इसे विवादित गीत बताया। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मंदी का गुस्सा फूटा। मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
11: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए। लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा। जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। ठीक है, इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
0: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा उनका एनटीए से सीधा वास्ता है। वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया? ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे, वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है। 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहां जहां लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले
5: एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्य को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जाए।
3: कहाँ तक दिया गया?
4: ये आगे आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है, इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
4: दिया गया। जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले एक्टिंग एक्टिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बात कार्यों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बात कार्यों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
8: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
3: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराए गए?
8: जी जी।
3: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराए जा
8: रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
3: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
8: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
9: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
10: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
11: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा,

0: और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। वो तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे, अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में IOW विभाग, RPF और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
2: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है कि इस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
1: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की 2 दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा। मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
3: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए। लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा। जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
1: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ NTA की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते 2 दिनों में जिन 2 लोगों पर शिकंजा कसा है उनका NTA से सीधा वास्ता है। वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं NTA प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या NTA के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते 2 दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या NTA से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे, वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस के आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है, नीट परीक्षा के पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्य को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से, जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए, मेरे पिताजी देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कभी कोई नोटिस, कभी कुछ नहीं,
2: कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं, देखिए।
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं पे लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
3: कहाँ तक दिया गया?
4: ये आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के आदेश दिया गया?
4: जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने थे, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैम्बर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैम्बर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैम्बर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैम्बर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैम्बर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले एक्टिंग एक्टिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
8: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
3: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया
8: गया? जी जी।
3: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
8: रहा है? नहीं ऐसा, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया
3: है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर लिया,
8: आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
9: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ, उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
10: चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए, बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
11: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। वो तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
9: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में IOW विभाग, RPF और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
12: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
9: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मंदी का गुस्सा फूटा, मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
13: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा, जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहां रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
9: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए से सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है। 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया, हमने सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दी। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मतलब टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

मंत्रियों के बंटे विभाग, भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री, राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट गार्ड में पेपर सेटर ही निकले चीटर, केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधारे पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप, किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम, जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में एक बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
1: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
1: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर गहा दिए।
3: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
1: कहाँ तक दिया गया?
3: ये आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
1: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
3: दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
1: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
3: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
4: क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
5: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
1: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
6: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया गया
6: जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
6: रहा है। नहीं ऐसा, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
6: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, आदेश के बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
7: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
8: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
9: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। वो तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
7: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस

0: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
1: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
0: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमा हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मंदी का गुस्सा फूटा। मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
2: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली, और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए। लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा। जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है, और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
0: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा, उनका एनटीए से सीधा वास्ता है। वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे, वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: पर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनके डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैक मेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। कोटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्य को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की कटौती करने वाली अपील के बाद दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। तय किया है कि आज से दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। डीएमआरसी के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेनों के 24 अधिक फेरे रोजाना लगेंगे। इसके लिए 6 अधिक मेट्रो ट्रेनें लगाने का फैसला किया है। मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमें उन्होंने तेल की खपत करने के लिए देशवासियों से अपील की है। कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, इसी मकसद से मेट्रो ने यह फैसला किया है। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक। आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीट कांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी के टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल, और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सद में आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से, जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुए है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कोई बुलडो, कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक, आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
4: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
3: कहाँ तक दिया गया?
4: यह आगे आगे तक दिया था, इसके आगे जो भी है, इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट के आदेश दिया गया
4: जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने थे, कितने गिरा रहे हैं?
4: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
5: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
6: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
3: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
7: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया
7: गया जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
7: रहा है। नहीं नहीं, ऐसा सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
7: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
8: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
9: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
10: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
8: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाए। कई सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां वहां अभियान चलाया जाएगा।
11: बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
8: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मंदी का गुस्सा फूटा। मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
12: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा, जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहां रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
8: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा उनका एनटीए से सीधा वास्ता है, वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है, 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और 3री वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: लीड पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत तूफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्य को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। दो दिनों के दौरे में कई समझौते, भारतीय समुदाय से भी संवाद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के बंटे विभाग। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। विस्तार के बाद आज योगी सरकार का पहला कैबिनेट बैठक।